एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये चायबासा केंद्र है। आज बुधवार है, शक संवत 1948, भाद्रपद माह की तिथि 17, तदनुसार 9 सितंबर ईस्वी सन 2026। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 5:58 हो रहे हैं। आरंभ हो रही है हमारी आज की सभा।

हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के चायभाषा केंद्र से एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओं, अब से कुछ ही देर में स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 6 बजने वाले हैं। वक्त है आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित समाचारों का, तो आइए समाचारों के लिए आपको लिए चलते हैं आकाशवाणी दिल्ली।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत अब चिप से लेकर जहाज तक विनिर्माण के क्षेत्र में नया भविष्य तैयार कर रहा है। उन्होंने कहा कि देश में उच्च तकनीक वाले इलेक्ट्रॉनिक्स से लेकर बड़े समुद्री जहाजों तक पूरी तरह आत्मनिर्भर आपूर्ति श्रृंखला विकसित की जा रही है। प्रधानमंत्री ने गुजरात के वडोदरा में 35,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित की। प्रधानमंत्री ने पश्चिमी समर्पित माल गलियारे डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के 3 महत्वपूर्ण खंड भी राष्ट्र को समर्पित किए।
1: 2,800 किलोमीटर से अधिक का डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर प्रोजेक्ट पूरा हो गया। ये 21वीं सदी के भारत के लिए बहुत ऐतिहासिक कार्य संपन्न हुआ है। ये डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर इस बात का साक्षी है कि बीते 12 साल में देश की काम करने की संस्कृति कैसे बदली है।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत ने फिनटेक क्षेत्र को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। इसमें नवाचार और वित्तीय समावेशन को सर्वाधिक महत्व दिया जा रहा है। मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट में उन्होंने कहा कि नई प्रौद्योगिकियां वित्तीय क्षेत्र में नई संभावनाओं के द्वार खोल रही हैं। श्री मोदी ने कहा कि भारत साइबर सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले महीने यूपीआई से 2,400 करोड़ रुपए से अधिक लेन देन हुए। भारतीय यूपीआई अब 11 देशों में संचालित हो रहा है। श्री मोदी ने यूपीआई को फिनटेक क्षेत्र की बड़ी उपलब्धि बताया।
2: भारत की फिनटेक स्टोरी अद्भुत रही है और इसका एक बड़ा चैंपियन है हमारा यूपीआई। मैंने पिछले साल भी इसकी चर्चा की थी, लेकिन ये इतनी बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन है कि जब भी फिनटेक की चर्चा होगी तो वो यूपीआई के बिना अधूरी ही होगी।
0: प्रधानमंत्री मोदी नई दिल्ली में 12 और 13 सितंबर को ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान कई देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में बताया कि इन बैठकों के दौरान रूस यूक्रेन संघर्ष सहित कई मुद्दों पर चर्चा होगी। उन्होंने कहा कि भारत युद्ध समाप्त करने के लिए किसी भी तरह की सहायता करने के लिए तैयार है। श्री जायसवाल ने कहा कि भारत और चीन सीमा संबंधी मुद्दे पर लगातार संवाद कर रहे हैं। रूस ने यूक्रेन संघर्ष को समाप्त करने के लिए भारत के शांति प्रयासों का स्वागत किया है। रूस की सरकार के प्रवक्ता दमित्री पेस्कोव ने कहा कि इस मुद्दे पर रूस का रुख भारत के जैसा ही है। श्री पेस्कोव ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से इतर द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी आज गोवा में पोरवोरिम एलिवेटेड कॉरिडोर का उद्घाटन करेंगे। राष्ट्रीय राजमार्ग 66 पर बना ये 6 लेन का कॉरिडोर 5 किलोमीटर से अधिक लंबा है और इसे करीब 641 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। कॉरिडोर 11 सितंबर से वाहनों के लिए खोल दिया जाएगा। केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्रालय आज वाराणसी में 9वें राष्ट्रीय पोषण माह की शुरुआत करेगा। केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति में रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में इस अभियान का शुभारंभ करेंगी। उत्तर प्रदेश में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के मानदेय में बढ़ोतरी की गई है। राज्य सरकार ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए राज्य के हिस्से में 4,000 रुपये प्रतिमाह और सहायिकाओं के लिए राज्य के हिस्से में 2,000 रुपये प्रतिमाह की अतिरिक्त बढ़ोतरी की गई है। एशियाई खेलों के लिए भारतीय दल को कल नई दिल्ली में शानदार विदाई दी गई। इस अवसर पर युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया उपस्थित रहे। डॉक्टर मांडविया ने भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष पीटी उषा, खेल सचिव हरि रंजन राव और भारतीय दल के प्रमुख सहदेव यादव के साथ मिलकर खिलाड़ियों और सहयोगी सदस्यों की उपस्थिति में आधिकारिक जर्सी का अनावरण किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय शगुन चोपड़ा. Praising the remarkable achievement of India's rise in fintech, Prime Minister Narendra Modi has said that the country's unified payments interface, UPI, is the undisputed champion of the success story. Inaugurating the Global Fintech Fest 2026 in Mumbai, Mr. Modi said this is such a massive transformation that whenever fintech is discussed, it will remain incomplete without UPI.
2: Bharat ki fintech story adbhut rahi hai. Aur iska ek bada champion hai. हमारा यूपीआई. मैंने पिछले साल भी इसकी चर्चा की थी, लेकिन ये इतनी बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन है कि जब भी फिनटेक की चर्चा होगी तो वो यूपीआई के बिना अधूरी ही होगी.
3: Reiterating his core philosophy of technological empowerment, Prime Minister praised UPI as ultimate tool for financial inclusion, successfully penetrating areas ignored by traditional banking models. The Prime Minister pointed out that over 24 billion UPI transactions occurred in August alone. Mr. Modi said it is because of this impact that French President Emmanuel Macron said that UPI is not just a tech story, it is a civilizational story. The revamped Nehru Planetarium, a premier public outreach facility under the Prime Minister's Museum and Library, PMML, was inaugurated in New Delhi yesterday. The upgraded facility aims to strengthen science communication, promote astronomy awareness and enhance public engagement. PMML Chairperson Nipendra Mishra presided over the inauguration ceremony. Speaking on the occasion, PMML Director Ashwini Lohani said the Nehru Planetarium has emerged as one of the leading planetariums in the country, equipped with state-of-the-art facilities to promote scientific temper and inspire curiosity among students, youth and the public. The Union Ministry of Women and Child Development will launch the 9th National Nutrition Month 2026 in Varanasi today. Union Women and Child Development Minister Annapurna Devi will launch the campaign at Rudraksh Convention Centre in the presence of Chief Minister Yogi Adityanath. The campaign will be conducted throughout the month of September in Anganwadi centres, schools, panchayats and homes across the country with community participation. This year, the theme of National Nutrition Month is Our Anganwadis, Our Responsibility. Uttar Pradesh government has enhanced the honorarium for Anganwadi workers and helpers. State government has issued an order in this regard. As per the order, an additional increase of 4,000 rupees per month has been made in the state share of Anganwadi workers and 2,000 rupees per month in the state share of helpers. Following this revision, Anganwadi workers will receive a total honorarium of 12,000 rupees per month, while helpers will receive 6,000 rupees per month. Defence Minister Rajnath Singh has said that India will always stand firmly with Sri Lanka in times of crisis, underlining that the relationship between the two countries is based on shared history, culture and faith. Mr. Singh arrived in Colombo yesterday on his maiden three-day visit to hold talks with Sri Lanka's top leadership. He made the remarks during an interaction with the Indian diaspora. He said both nations share close cultural and civilizational ties, which have provided a strong foundation for the growth of the bilateral relationship.

अवध के राज सिंहासन पर बैठना अस्वीकार करते हुए भरत ने अपने हृदय में धधकती जिस ज्वाला और पश्चाताप की व्यथा कथा गुरुजनों को सुनाई, उससे सबके हृदय में मर्मांतक पीड़ा के साथ एक आनंद का संचार भी हुआ। श्री राम के प्रेम रूपी अमृत से सने भरत के प्रिय वचन सभी के हृदय में दहकती राम विरह की ज्वाला को शांत करने वाले सिद्ध हुए। सबने भरत को मुक्त कंठ से श्री रामचंद्र के प्रेम की प्रतिमूर्ति मानकर उनके वन जाने के लिए सहमति प्रकट की। भरत के इस निश्चय से जैसे शोक सागर में डूबी अयोध्या नगरी को एक सहारा मिल गया। सबके हृदय में ऐसे आनंद का संचार हुआ जैसे मेघों की गर्जना से चातक और मोर आनंद विभोर हो उठते हैं। भरत का जीवन धन्य है, इस उद्गार के साथ सभी उनके शील और स्नेह की प्रशंसा करते नहीं आघाते।

आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस गान। आज के कलाकार थे सुरेश वाडेकर और साथी संगीत था सतीश भाटिया का। FM के 101.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये चायबासा केंद्र है।

ये आकाशवाणी का चायबासा केंद्र है FM के 101.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। आइए श्रोताओं, अब हम आपको सुनवाते हैं भक्ति गीतों का कार्यक्रम समर्पण। कार्यक्रम समर्पण सुनने वाले हमारे तमाम श्रोता दोस्तों का इस कार्यक्रम में तहे दिल से स्वागत है। श्रोताओं, कार्यक्रम की ये पहली भक्ति रचना हम आपको सुनवा रहे हैं भजन गायक हरिओम शरण के स्वर में।

गायक कलाकार सचिन लेमिया के स्वर में ये भक्ति रचना आपने सुनी। कार्यक्रम की अगली भक्ति रचना आपको सुनवा रहे हैं भजन गायक हरिओम शरण और साथियों के स्वरों में।

भजन गायक हरिओम शरण और साथियों के स्वरों में गाई हुई इस भक्ति रचना के साथ ही श्रोताओं, हमारा आज का ये भक्ति गीतों का कार्यक्रम समर्पण अब यहीं समाप्त होता है। आप सुन रहे थे भक्ति गीतों का कार्यक्रम समर्पण।

ये आकाशवाणी का चायबासा केंद्र है FM के 101.7 मेगा हर्ट्ज पर। श्रोताओं, स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 6:40 हो चुके हैं। वक्त हो चला है आप सभी श्रोताओं को हमारे यहाँ से प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की संक्षिप्त जानकारी देने का। तो लीजिए, प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण। आइए श्रोताओं, अब हम आपको हमारे यहाँ से प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा दे दें। अब से कुछ ही देर बाद श्रोताओं, यानी कि सुबह के 6:45 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम सुगम संगीत। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाएंगे एक ही गायक कलाकार सतीश कुमार शर्मा को। सुबह के 7 का प्रसारण समय रहेगा आप सभी श्रोताओं के पसंदीदा कार्यक्रम फिल्म संगीत के कार्यक्रम जोहार चायबासा का। प्रातः के 8 आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित क्रमशः हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। 8:30 पर हम आपको लिए चलेंगे आकाशवाणी के रांची केंद्र, जहां से आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार। लोक गीतों का कार्यक्रम माटी की महक, इस कार्यक्रम का आनंद आप लेंगे सुबह के 8:40 पर। आज इस कार्यक्रम के तहत हम आपको सुनवाएंगे बांग्ला लोक गीत कलाकार गायक कलाकार किशोर कुमार के स्वर में। कार्यक्रम विविधा, इस कार्यक्रम का प्रसारण होगा सुबह के 9:00। फिल्म संगीत के कार्यक्रम रसरंजन को लेकर हम आपके साथ होंगे सुबह के 9:30 पर। और पूर्वाहन के 10 आप सुनेंगे NCERT के द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। 10:30 पर हम आपको लिए चलेंगे आकाशवाणी के रांची केंद्र, जहां से आप सुनेंगे आकाशवाणी रांची के कार्यक्रमों को। दोपहर के 1:10 पर आप सुनेंगे आकाशवाणी रांची से प्रसारित प्रादेशिक समाचार। और यहीं से प्रसारित आकाशवाणी रांची के कार्यक्रमों को आप सुन सकेंगे दोपहर के 1:20 पर। आकाशवाणी रांची से प्रसारित मुख्य प्रादेशिक समाचारों को आप सुनेंगे दोपहर के 2:55 पर। और दोपहर के 3 प्रसारित होंगे आकाशवाणी रांची के कार्यक्रम। संध्या 4 आप सुनेंगे आकाशवाणी रांची से प्रसारित मुख्य समाचार। और 4:02 पर आप सुन सकेंगे आकाशवाणी रांची के कार्यक्रमों को। संध्या 5 प्रसारित होंगे आकाशवाणी रांची से मुख्य समाचार। और 5:02 पर आप जानकारी लेंगे हमारे यहां से प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की, यानी कि आप सुनेंगे कार्यक्रम विवरण। संध्या के 5:05 का प्रसारण समय रहेगा फिल्म संगीत के कार्यक्रम गुलदस्ता का। आज के कार्यक्रम गुलदस्ता के तहत आप सुनेंगे एक ही गायिका के स्वरबद्ध जन चुनिंदा नगमे। कार्यक्रम खेती गृहस्थी, इस कार्यक्रम का

प्रसारण होगा संध्या 5:30 पर। संध्या के 6 बजे आप सुनेंगे आकाशवाणी रांची से मुख्य समाचार और 6:02 पर हम आपके साथ होंगे क्षेत्रीय भाषा के कार्यक्रम हो अखड़ा को लेकर। हमारी बहनों को संबोधित साप्ताहिक कार्यक्रम मनोरमा, इस कार्यक्रम का प्रसारण होगा संध्या 6:30 पर। संध्या 7 बजे आप सुनेंगे आकाशवाणी रांची से प्रसारित प्रादेशिक समाचार, यहीं से प्रसारित जिले में आजकल का प्रसारण होगा संध्या 7:10 पर। संध्या के 7:15 पर आप सुनेंगे फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम आपकी पसंद, और रात्रि के 8 बजे आप सुनेंगे आप सभी श्रोताओं के फरमाइशी खतों पर आधारित हिंदी फिल्म संगीत का कार्यक्रम आपकी रजनीगंधा। रात्रि के 8:45 पर आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित क्रमशः हिंदी और अंग्रेजी में समाचार, और रात्रि के 9:15 पर हम आपको लिए चलेंगे आकाशवाणी के रांची केंद्र, जहां से आप सुनेंगे आकाशवाणी रांची के कार्यक्रमों को। गजलों का कार्यक्रम महफिल, इस कार्यक्रम का प्रसारण होगा रात्रि के 10 बजे। 10:30 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुरों के रंग। रात्रि के 11 बजे प्रसारित होंगे आकाशवाणी दिल्ली से हिंदी में समाचार, यहीं से प्रसारित अंग्रेजी समाचारों को आप सुनेंगे रात्रि के 11:05 पर, और रात्रि के 11:10 पर श्रोताओं हमारे आज के सभा समापन की उद्घोषणा होगी। तो श्रोताओं, ये थी हमारे यहाँ से प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। आप सुन रहे थे कार्यक्रम विवरण, ये आकाशवाणी का चायबासा केंद्र है FM के 101.7 MHz पर। आइए श्रोताओं, अब हम बढ़ते हैं हमारे आज के अगले कार्यक्रम सुगम संगीत की ओर। तो लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम सुगम संगीत। कार्यक्रम सुगम संगीत सुनने वाले हमारे तमाम श्रोता दोस्तों का इस कार्यक्रम में तहे दिल से स्वागत है। श्रोताओं, आज के इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाने जा रहे हैं एक ही गायक कलाकार सतीश कुमार शर्मा को।

श्रोताओं, सतीश कुमार शर्मा के स्वर में गाए हुए इस गीत के साथ ही हमारा आज का ये कार्यक्रम सुगम संगीत अब यहीं समाप्त होता है। आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुगम संगीत।

एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये चायबासा केंद्र है। श्रोताओं, स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 7 बज चुके हैं। वक्त हो चला है आप सभी श्रोताओं के पसंदीदा कार्यक्रम फिल्म संगीत के कार्यक्रम जोहार चायबासा का। तो लीजिए, प्रस्तुत है कार्यक्रम जोहार चायबासा। कार्यक्रम जोहार चायबासा सुनने वाले हमारे तमाम श्रोता दोस्तों को मेरा नमस्कार, जोहार। आज के कार्यक्रम जोहार चायबासा को लेकर आप सभी श्रोता दोस्तों के साथ हूँ मैं, यानी कि आपकी रेडियो सखी संगीता। करते हैं आज की प्यारी सी सुहानी सी सुबह की शुरुआत हमारे आज के कार्यक्रम सदाबहार के प्यारे प्यारे नगमों के साथ। तो आइए करते हैं कार्यक्रम की शुरुआत और लेते हैं आज के कार्यक्रम का ये पहला गीत फिल्म हम दोनों से। आवाज़ का एक कलाकार लता मंगेशकर की है, बोल लिखे हैं साहिल लुधियानवी ने और धुन है जयदेव की।

श्रोताओं, ये गीत आपने सुना फिल्म आपकी कसम से। आवाज़ें थीं गायक कलाकार किशोर कुमार और लता मंगेशकर की। इस गीत के बोल लिखे थे आनंद बख्शी ने और धुन है राहुल देव वर्मन की। आइए अब हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत फिल्म सफ़र से। गायक कलाकार मुकेश के स्वर में इस गीत के बोल लिखे हैं इंदिवर ने, धुन है कल्याण जी आनंद जी की।

श्रोताओं, फिल्म सफ़र के इस गीत के बाद आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत, गायक कलाकार मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर के युगल स्वरों में फिल्म ताजमहल से।

श्रोताओं, गायक कलाकार मुकेश और लता मंगेशकर के युगल स्वरों में ये गीत आप सुन रहे थे फिल्म सरस्वती चंद्र से। इस गीत के बोल लिखे थे इंदिवर ने, धुन थी कल्याण जी आनंद जी की। इस गीत के बाद आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला नगमा गायक कलाकार लता मंगेशकर के स्वर में फिल्म सौदागर से। बोल लिखे हैं रविंद्र जैन ने और धुन भी रविंद्र जैन की ही।

गायक कलाकार लता मंगेशकर के स्वर में श्रोताओं, ये गीत आपने सुना फिल्म सौदागर से। इस गीत के बोल लिखे थे रविंद्र जैन ने और धुन रविंद्र जैन की ही थी। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला नगमा फिल्म धनवान से। आवाज़ें हैं गायक कलाकार लता मंगेशकर और सुरेश वाडेकर की।

फिल्म रोटी के इस गीत को आपने सुना गायक कलाकार किशोर कुमार और लता मंगेशकर के युगल स्वरों में। आइए अब कार्यक्रम का अगला नगमा आपको सुनवाते हैं, फिल्म वो कौन थी।

फिल्म वो कौन थी के इस गीत के बाद श्रोताओं आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। गायक कलाकार लता मंगेशकर और भूपेंद्र सिंह के युगल स्वरों में फिल्म सितारा से।

कार्यक्रम के आखिर में श्रोताओं आपको सुनवा रहे हैं गायक कलाकार आशा भोसले और शैलेंद्र सिंह के युगल स्वरों में गाया हुआ ये गीत फिल्म सागर से।

0: गायक कलाकार आशा भोसले और शैलेंद्र सिंह के युगल स्वरों में गाए हुए फिल्म सागर के इस गीत के साथ ही श्रोताओं, हमारा आज का ये कार्यक्रम जो हार चाय पासा अब यहीं समाप्त होता है। आप सुन रहे थे कार्यक्रम जोहार चायबासा। यह आकाशवाणी का चायबासा केंद्र है FM के 101.7 मेगाहर्ट्ज पर। स्टूडियो की घड़ी में अब से कुछ ही देर में सुबह के 8 बजने वाले हैं। वक्त हो चला है आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित समाचारों का। तो आइए समाचारों के लिए आपको लिए चलते हैं आकाशवाणी
1: से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत की फिनटेक सफलता की कहानी में निर्विवाद रूप से UPI का महत्वपूर्ण योगदान। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने श्रीलंका में भारतीय समुदाय को दोनों देशों के बीच महत्वपूर्ण सेतु बताया। अमेरिका ने अपने युद्धपोत पर हमले के बाद फारस की खाड़ी में ईरान के 5 तेल टैंकर नष्ट किए। कनाडा ने 600 से अधिक अमरीकी वस्तुओं पर 50% तक जवाबी शुल्क लगाया। दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी शुरू होने से पहले 12 से 21 सितंबर के बीच केंद्रीय दक्षिणी पूर्वी और पश्चिमी भारत के बड़े हिस्सों में तेज बारिश की आशंका। और खेलों में टेनिस में आर्ना सबलेंका और फ्रांसिस टियाफो US ओपन के सेमीफाइनल में पहुंचे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के फिनटेक क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की सराहना की है। उन्होंने कहा कि फिनटेक की सफलता की कहानी में एकीकृत भुगतान इंटरफेस UPI का निर्विवाद रूप से महत्वपूर्ण योगदान है। श्री मोदी ने मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट का उद्घाटन करते हुए ये बात कही।
2: भारत की फिनटेक स्टोरी अद्भुत रही है और इसका एक बड़ा चैंपियन है हमारा UPI। मैंने पिछले साल भी इसकी चर्चा की थी, लेकिन ये इतनी बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन है कि जब भी फिनटेक की चर्चा होगी तो वो UPI के बिना अधूरी ही होगी।
1: प्रधानमंत्री ने बताया कि केवल अगस्त महीने में UPI के माध्यम से 24 अरब से अधिक लेन देन हुए। श्री मोदी ने कहा कि इसी प्रभाव के कारण फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कहा था कि UPI केवल तकनीकी नहीं बल्कि सभ्यतागत कहानी है। प्रधानमंत्री ने भारत की प्रमुख डिजिटल भुगतान प्रणाली के वैश्विक विस्तार का जिक्र करते हुए बताया कि UPI अब 11 देशों में उपलब्ध है। श्री मोदी ने कहा कि डिजिटल इंडिया की सफलता की कहानी अब एक नए अध्याय के लिए तैयार है।
2: डिजिटल इंडिया की सक्सेस स्टोरी अब एक नए अध्याय के लिए तैयार है। हमारी फिनटेक सक्सेस स्टोरी की अब तक की सफलता स्केल है, स्कोप है, सिक्योर सिस्टम है, डेमोक्रेटाइजेशन अब टेक्नोलॉजी है और जनता का ट्रस्ट है। इन्हीं कोर वैल्यूज को ध्यान में रखते हुए फिनटेक सेक्टर को नेक्स्ट जनरेशन इनोवेशन पर फोकस करना है।
1: श्री मोदी ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय डिजिटल भुगतान के लिए अगले रणनीतिक चरण की रूपरेखा प्रस्तुत करते हुए UPI को साझेदार देशों की घरेलू भुगतान प्रणालियों के साथ तत्काल एकीकृत करने की आवश्यकता पर भी उन्होंने बल दिया। उन्होंने कहा कि जब दुनिया अनिश्चितता के दौर से गुजर रही है और भारत इस दौर में भी 7.8% की दर से विकास करता है तो विश्व को एक नया भरोसा मिलता है।
2: दुनिया कॉन्फ्लिक्ट्स और अनसर्टेनिटी के दौर से गुजर रही है और इसमें भी जब भारत 7.8% से ग्रो करता है तो दुनिया को एक नया भरोसा मिलता है। भारत पर इस बढ़ते भरोसे का एक और उदाहरण हमारी सॉवरेन रेटिंग्स भी है।
1: प्रधानमंत्री ने स्पष्ट किया कि वैश्विक स्तर पर डिजिटल भुगतान प्रणालियों को एकीकृत करने से लोगों को स्वदेश में अपने परिवारों को धन भेजने में काफी तेजी आएगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने श्रीलंका में रहने वाले भारतीय समुदाय को दोनों देशों के बीच सेतु बताया है। उन्होंने कहा कि वो दोनों राष्ट्रों के बीच मित्रता को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। श्री सिंह कल श्रीलंका के 3 दिन के दौरे पर कोलंबो पहुंचे। उन्होंने प्रवासी भारतीय समुदाय के सदस्यों से बातचीत में कहा कि भारत संकट के समय में हमेशा श्रीलंका के साथ मजबूती से खड़ा रहेगा। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि दोनों देशों के बीच संबंध साझा इतिहास, संस्कृति और आस्था पर आधारित हैं। श्री राजनाथ सिंह ने भारत के तीव्र आर्थिक परिवर्तन का जिक्र करते हुए कहा कि देश विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक है।
2: आज भारत दुनिया के ग्रोथ में 16% से ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है। पिछले 10-12 सालों में अब हमारी इकोनॉमी की साइज दोगुनी हो गई है और आज सारी दुनिया इकोनॉमिक ग्रोथ को लेकर जब चैलेंजेस का सामना कर रही है, उस समय भारत की जीडीपी ग्रोथ अप्रॉक्सिमेटली 7.8% है।
1: श्री सिंह रक्षा और विदेश मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारियों के उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे हैं। बंदरनायके अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर श्रीलंका के उपरक्षा मंत्री सेवानिवृत्त मेजर जनरल अरुणा जयसेकरा ने रक्षा मंत्री का स्वागत किया। भारत और कुवैत विभिन्न क्षेत्रों में रणनीतिक साझेदारी प्रगाढ़ करने पर सहमत हो गए हैं। कुवैत में कल 8वीं भारत कुवैत विदेश कार्यालय परामर्श बैठक में ये सहमति बनी। विदेश मंत्रालय के अपर सचिव असीम महाजन और कुवैत के विदेश मंत्रालय में एशिया मामलों के सहायक विदेश मंत्री नवाफ अब्दुल लतीफ सुलेमान अल अहमद ने बैठक की सह अध्यक्षता की। एक रिपोर्ट।

0: के दौरान दोनों पक्षों ने कई क्षेत्रों में रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की। इन क्षेत्रों में राजनीतिक संबंध, व्यापार, निवेश, रक्षा, सुरक्षा, ऊर्जा, तकनीक, कृषि, स्वास्थ्य, संस्कृति और लोगों के बीच आपसी संबंध शामिल है। दोनों पक्षों ने सहयोग के लिए संयुक्त आयोग के तहत संयुक्त कार्य समूह की बैठकों में हुई प्रगति की भी समीक्षा की। विदेश मंत्रालय ने कहा कि दोनों पक्ष नई दिल्ली में आपसी सहमति वाली तारीख पर विदेश कार्यालय परामर्श का अगला दौर आयोजित करने पर सहमत हुए हैं। मंत्रालय ने कहा कि भारत और कुवैत के बीच लंबे समय से संबंध रहे हैं, जिन्हें दिसंबर 2024 में रणनीतिक साझेदारी का दर्जा दिया गया था। मंत्रालय ने यह भी कहा कि कुवैत में रहने वाले 10.5 लाख भारतीय दोनों देशों के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में काम कर रहे हैं। शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
2: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
3: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
2: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
4: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका और ईरान के बीच लगातार हमलों के कारण पश्चिम एशिया में तनाव तेजी से बढ़ गया है। इससे व्यापक क्षेत्रीय संघर्ष की आशंका बढ़ गई है। अमेरिकी सैन्य बलों ने ईरान के कच्चे तेल के 5 टैंकर नष्ट कर दिए हैं। अमेरिका के अनुसार पिछले 2 दिनों में उनके एक युद्धपोत पर ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर IRGC ने हमले किए थे। ईरान ने जॉर्डन में अमरीकी ठिकानों पर मिसाइलें दागी। अमरीकी केंद्रीय कमान ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि ये हमले पिछले 2 दिनों में अमरीकी पोत पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला करने के ईरान के 2 प्रयासों के जवाब में किए गए। ओमान की खाड़ी में नष्ट किए गए ईरानी जहाजों में केवेक, चारमीनार, होराइजन 1 और रिस्को शामिल थे। कनाडा ने अमेरिका की 600 से ज्यादा चीजों पर 50% तक जवाबी शुल्क लगाया है। इससे इन दोनों पड़ोसी देशों के बीच व्यापार विवाद बढ़ गया है। अमेरिकी सामान पर ये शुल्क आधिकारिक रूप से कल रात से लागू हो गए। एक रिपोर्ट।
5: कनाडा के वाणिज्यिक उद्यम फेडरल सरकार के नए लागू किए गए डॉलर के बदले डॉलर शुल्क के तहत काम कर रहे हैं, जिसमें लगभग 28 अरब डॉलर मूल्य का अमरीकी आयात शामिल है। अमरीका के 600 से अधिक उत्पादों पर 15-50% तक शुल्क लगाया गया है। प्रभावित सामानों में स्टील और एल्यूमिनियम जैसे औद्योगिक सामान, टॉयलेट पेपर जैसी रोजमर्रा की जरूरत की चीजें और कॉइन ऑपरेटेड आर्केड मशीन जैसे विशेष उत्पाद शामिल है। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फेडरल एजेंसियों को आदेश दिया है कि वे सरकार के मुख्य खरीद कैटलॉग के जरिए कनाडाई उत्पादों की खरीद तब तक रोक दे जब तक कनाडा अमेरिकी कारोबारियों और किसानों को अपने बाजार में सामान की पहुंच नहीं देता। समाचार कक्ष से मैं मनोज।
1: छत्तीसगढ़ में कांकेर अदालत ने 2015 में सुरक्षा बलों पर हमले से जुड़े मामले में 5 माओवादियों को सजा सुनाई है। इनमें कट्टर नक्सली प्रभाकर और उसकी पत्नी राजे कांगे भी शामिल हैं। दंडकारिणी स्पेशल जोनल कमेटी के कैडर प्रभाकर और डिविजनल कमेटी सदस्य उसकी पत्नी राजे कांगे को 7-7 वर्ष की जेल की सजा सुनाई गई। इस मामले में शामिल 3 अन्य माओवादियों को 5-5 वर्ष की जेल की सजा दी गई। वर्ष 2015 में माओवादियों के एक समूह ने सुरक्षा बलों की उस टीम पर हमला किया था जो कोरार इलाके में सर्च ऑपरेशन चला रही थी। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी आज गोवा में पोरवोरिम एलिवेटेड कॉरिडोर का उद्घाटन करेंगे। राष्ट्रीय राजमार्ग 66 पर बना ये 6 लेन का कॉरिडोर 5 किलोमीटर से ज्यादा लंबा है और इसे करीब 641 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। कॉरिडोर 11 सितंबर से वाहनों के लिए खोल दिया जाएगा। एक रिपोर्ट।
6: इस कॉरिडोर से

0: रोज करीब 75 से 80 हजार वाहनों के गुजरने की उम्मीद है। इससे नीचे की मौजूदा सड़क पर करीब 60% ट्रैफिक कम होने की उम्मीद है। इससे मापुसा पणजी के व्यस्त रास्ते पर ट्रैफिक कम करने में मदद मिलेगी, साथ ही पर्यटकों और व्यावसायिक वाहनों की आवाजाही भी आसान होगी। निखिल उपाध्याय, आकाशवाणी समाचार, पणजी।
1: केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्रालय आज वाराणसी में 9वें राष्ट्रीय पोषण माह की शुरुआत करेगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति में रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में इस अभियान का शुभारंभ करेंगी।
2: इस वर्ष राष्ट्रीय पोषण माह की थीम हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी रखी गई है। पोषण माह 2026 में आहार विविधता और पर्याप्त प्रोटीन, आंगनवाड़ी केंद्रों पर ताजा गर्म पका हुआ भोजन, सामुदायिक स्वामित्व एवं जवाबदेही, पोषण एवं प्रारंभिक बाल विकास के लिए शिक्षा तथा प्रधानमंत्री मातृवंदन योजना के 10 वर्ष पूरे होने को प्रमुखता दी जाएगी। वाराणसी में होने वाले शुभारंभ कार्यक्रम में पोषण मेले का आयोजन होगा, लाभार्थियों के अनुभव पर आधारित वीडियो का प्रदर्शन होगा। उसके साथ ही केंद्रीय मंत्री और आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों के बीच संवाद इसका प्रमुख आकर्षण होंगे। इस दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर और प्रदेश की महिला कल्याण एवं बाल विकास मंत्री बेबी रानी मौर्य भी मौजूद रहेंगी। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: उत्तर प्रदेश में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के मानदेय में बढ़ोतरी कर दी गई है। राज्य सरकार ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए राज्य के हिस्से में 4,000 रूपये प्रतिमाह और सहायिकाओं के लिए राज्य के हिस्से में 2,000 रूपये प्रतिमाह की अतिरिक्त बढ़ोतरी की गई है। भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी शुरू होने से पहले 12 से 21 सितंबर के बीच केंद्रीय, दक्षिणी, पूर्वी और पश्चिमी भारत के बड़े भाग में वर्षा होने का अनुमान है। मौसम के मॉडलों ने संकेत दिया है कि आने वाले दिनों में होने जा रही वर्षा कमजोर पड़ते मानसून चक्र को अस्थायी रूप से पुनर्जीवित कर सकती है। इसके कारण सितंबर के उत्तरार्ध में देश के कई भागों में बौछारें पड़ सकती हैं और गरज के साथ वर्षा हो सकती है। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल के गांगई क्षेत्र, उड़ीसा, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में आज तेज वर्षा होने का अनुमान है। मौसम विभाग ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पुद्दुचेरी और कराईकल में भी तेज हवा के साथ गरज चमक की संभावना व्यक्त की है। खेलों में यूएस ओपन टेनिस में महिला सिंगल्स की मौजूदा चैंपियन और शीर्ष वरीयता प्राप्त अरीना सबालेंका तथा पुरुष सिंगल्स में फ्रांसिस टियाफो सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। अरीना सबालेंका ने रोमांचक क्वार्टर फाइनल में चेंगर राज्य की छठी वरीयता प्राप्त लिंडा नोस्कोवा को हराकर सेमीफाइनल में जगह पक्की कर ली है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: अपडेट रहे, आगे रहे। @AIRNewsHindi और Instagram पर AIR News Alerts को फॉलो करें।
1: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
4: धन्यवाद फरहत। वडोदरा में माल ढुलाई गलियारे के उद्घाटन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर सभी समाचार पत्रों ने प्रकाशित की है। जनसत्ता लिखता है, प्रधानमंत्री ने विपक्ष पर साधा निशाना, कहा विपक्षी पार्टियां अब नए नए मुद्दे उठाएंगी। ब्रिक्स घोषणा पर सहमति बड़ी चुनौती, यूएई, ईरान आमने सामने, राजस्थान पत्रिका की खबर है। पत्र लिखता है, आर्थिक और वित्तीय मामलों पर भी जोर, कृषि, बीज और ऊर्जा पर साझेदारी को लेकर विशेष बातचीत होने की संभावना। देश भर में इमारतों की जांच पर विचार कर रहा शीर्ष कोर्ट, दिल्ली में 17 संपत्तियों पर चला बुलडोजर, अमर उजाला की खबर है। हिंदुस्तान ने श्रीनगर की शांत डल झील पर 4 दिवसीय फिल्म फेस्टिवल के आगाज होने का समाचार दिया है। पत्र लिखता है, कश्मीर की डल झील पर शिकारी, ठहरी शाम और सिनेमा का जादू।
1: धन्यवाद मुकेश। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने कहा, भारत की फिनटेक सफलता की कहानी में निर्विवाद रूप से यूपीआई का महत्वपूर्ण योगदान। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने श्रीलंका में भारतीय समुदाय को दोनों देशों के बीच महत्वपूर्ण सेतु बताया। अमेरिका ने अपने युद्धपोत पर हमले के बाद फारस की खाड़ी में ईरान के 5 तेल टैंकर नष्ट किए। कनाडा ने 600 से अधिक अमरीकी वस्तुओं पर 50% तक जवाबी शुल्क लगाया। और टेनिस में अरीना सबालेंका और फ्रांसिस टियाफो यूएस ओपन के सेमीफाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग। morning. I am Saira Mujtaba. The headlines. Prime Minister Narendra Modi says UPI is undisputed champion of India's fintech success story. Defense Minister Rajnath Singh describes Indian community in Sri Lanka as important bridge between the two countries. US says it destroyed 5 Iranian oil tankers in Persian Gulf after attacks on American warship. Canada imposes retaliatory tariffs of up to 50% on more than 600 US goods. Rain likely to lash large parts of central, south, east and west India between September 12 and 21 before southwest monsoon begins its seasonal retreat. And in tennis, Aryna Sabalenka and Francis Tiafoe enter semifinals of US Open in New York. And now the news in detail. Praising the remarkable achievement of India's rise in fintech, Prime Minister Narendra Modi has said that the country's Unified Payments Interface, or UPI, is the undisputed champion of this success story. Inaugurating the Global Fintech Fest 2026 in Mumbai, Mr. Modi said, "This is such a massive transformation that whenever fintech is discussed, it will remain incomplete without UPI."
6: भारत की फिनटेक स्टोरी अद्भुत रही है और इसका एक बड़ा चैंपियन है हमारा यूपीआई. मैंने पिछले साल भी इसकी चर्चा की थी, लेकिन ये इतनी बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन है कि जब भी फिनटेक की चर्चा होगी तो वो यूपीआई के बिना अधूरी ही होगी.
5: Reiterating his core philosophy of technological empowerment, the Prime Minister praised UPI as the ultimate tool for financial inclusion, successfully penetrating areas ignored by traditional banking models. The Prime Minister pointed out that over 24 billion UPI transactions occurred in August alone. Highlighting the global expansion of India's flagship digital payment system, the Prime Minister said that UPI is now live in 11 countries, turning what was once unimaginable into an everyday reality for international payments.
6: 21वीं सदी का दूसरा क्वार्टर हमारे लिए और भी नई संभावनाओं लेकर आया है. एजेंटिक एआई, टोकनाइजेशन, क्वांटम, ऐसी टेक्नोलॉजीज फाइनेंशियल सेक्टर में नई संभावनाओं के द्वार खोल रही है. अब हमारे सामने चुनौती है इन संभावनाओं को वास्तविक इम्पैक्ट में कैसे बदले.
5: Defense Minister Rajnath Singh has described the Indian community in Sri Lanka as a bridge between the two countries, saying they play a crucial role in strengthening friendship between the two nations. Mr. Singh, who reached Colombo yesterday on a three-day visit to Sri Lanka, made the remarks while interacting with members of the Indian diaspora. The Defense Minister said that India will always stand firmly with Sri Lanka in times of crisis, underlining that the relationship between the two countries is based on shared history, culture and faith. In his address, Mr. Singh highlighted India's rapid economic transformation, saying the country is among the fastest growing major economies in the world and contributes more than 16% to global growth.
7: आज भारत दुनिया के ग्रोथ में 16% से ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है.
8: टुडे इंडिया इज कंट्रीब्यूटिंग मोर देन 16% टू ग्लोबल ग्रोथ. ओवर द पास्ट 10 टू 12 इयर्स द साइज ऑफ आवर इकोनॉमी हैज डबल्ड एंड एट अ टाइम व्हेन द एंटायर वर्ल्ड इज फेसिंग चैलेंजेस रिलेटेड टू इकोनॉमिक ग्रोथ, इंडियाज जीडीपी इज ग्रोइंग एट अप्रोक्सीमेटली 7.8%.
7: 7.8% है.
5: India and Kuwait have agreed to deepen their strategic partnership across various areas. The 8th India-Kuwait Foreign Office consultations between both the countries were held in Kuwait yesterday. The meeting was co-chaired by Additional Secretary of Ministry of External Affairs, Asim Mahajan, and Assistant Foreign Minister for Asia Affairs for Kuwait's Foreign Affairs Ministry, Abdul Latif Suleiman Al-Ahmad. More from our correspondent.
9: During the meeting, both sides discussed avenues to further deepen the strategic partnership across a range of areas including political, relations, trade, investment, defense, security, energy, technology, agriculture, health, culture and people-to-people ties. They also reviewed the progress of meetings of joint working groups under the Joint Commission for Cooperation Mechanism. External Affairs Ministry said that both sides agreed to hold the next round of Foreign Office consultations in New Delhi at a mutual convenient date. It said that India and Kuwait enjoy long-standing ties, which were elevated to strategic partnership in December 2024. The ministry added that the 1.5 million strong Indian community in Kuwait continues to serve as an important bridge between the two countries. Shiva Mishra, Akashwani News, Delhi.
5: The Union Ministry of Women and Child Development will launch the 9th National Nutrition Month 2026 in Varanasi today. Union Women and Child Development Minister Annapurna Devi will launch the campaign at the Rudraksh Convention Centre in the presence of Chief Minister Yogi Adityanath. A report.
2: The campaign will be conducted throughout the month of September in Anganwadi centers, schools, panchayats and homes across the country with community participation. This year, the theme of National Nutrition Month is Our Anganwadis, Our Responsibility. Nutrition Month 2026 will highlight dietary diversity and adequate protein, fresh hot-cooked meals at Anganwadi centers, community ownership and accountability, education for nutrition and early childhood development and completion of 10 years of the Pradhan Mantri Matrivandan Yojana. The inaugural event in Varanasi will feature a nutrition fair, a video presentation based on beneficiaries' experiences and a dialogue between the Union Minister and Anganwadi workers. Union Minister of State Savitri Thakur and the State's Minister for Women's Welfare, Child Development and Nutrition Baby Rani Maurya will also be present. Sushil Chandra Tiwari, Akashwani News, Lucknow.
5: Nagaland is joining the rest of the country in observing the 9th Rashtriya Poshan Maah 2026 with the theme Hamari Anganwadi, Hamari Zimmedari, Our Anganwadi, Our Responsibility. The month-long campaign is being observed throughout September across Nagaland, with the State Department of Social Welfare coordinating activities in convergence with the Departments of Health and Family Welfare. Union Minister for Road Transport and Highways Nitin Gadkari will inaugurate the Porvorim Elevated Corridor in Goa today. The six-lane, over 5-kilometer project on NH-66, built at a cost of around 641 crore rupees, is expected to ease traffic and improve connectivity between Panji and the northern part of the state. The corridor will open for regular traffic from September 11. More from our correspondent.
10: It is expected to carry around 75,000 to 80,000 vehicles a day, taking nearly 60% of the traffic off the existing ground-level road. The project is aimed at easing congestion on the busy Mapusa-Panji road. It is also expected to improve the movement of the tourists and commercial vehicles along this important corridor. Nikhil Upadhyay, Akashwani News, Panji.
5: This is Akashwani giving you the news.
3: Stay connected with AIR News. Follow us on X at AIR News Alerts and visit newsonair.gov.in for the latest updates.
5: Welcome back to Morning News. Tensions across West Asia have escalated sharply as the United States and Iran continue to exchange strikes, raising fears of a wider regional conflict. The United States said its military destroyed 5 Iranian crude oil tankers following what Washington described as attacks by Iran's Islamic Revolutionary Guard Corps, IRGC, on a U.S. warship over the past 2 days. Iran, in retaliation, launched missiles towards U.S. targets in Jordan. U.S. Central Command said in a social media post that the strikes came in response to 2 Iranian attempts over the previous 2 days to target the U.S. warship with ballistic missiles. Meanwhile, IRGC vowed retaliation against tankers near Bahraini and Kuwaiti ports. It urged tanker crews to immediately leave vessels located either at anchor or inside ports, warning that the ships could be targeted. Canada has imposed retaliatory tariffs of up to 50% on more than 600 U.S. goods, escalating trade dispute between the two neighbors. The tariffs targeting U.S. merchandise officially came into force last night. Canadian commercial enterprises operating under the federal government's newly implemented dollar-for-dollar tariffs, covering approximately $28 billion U.S. dollars worth of American imports. More from our correspondent.
11: The measures, which took effect from midnight, imposed tariffs ranging from 15% to 50% on more than 600 U.S. products. The affected goods include industrial materials such as steel and aluminium, household essentials such as toilet paper, and specialized products such as coin-operated arcade machines. Meanwhile, U.S. President Donald Trump has ordered federal agencies to stop purchasing Canadian products through the government's primary procurement catalog until Ottawa provides American businesses and farmers with equal access to Canadian market. In a social media post, Trump accused Canada of unfair trade practices, alleging that Canadian federal and provincial governments prevent American businesses from selling to public sector entities, while Canadian companies enjoy relatively open access to U.S. government contracts. Rupesh Rathor for Akashvani News.
5: In Chhattisgarh, a Kanker court has sentenced 5 Maoists, including dreaded Prabhakar and his wife Raji Kange, to imprisonment in a case related to an attack on the security forces in 2015. Prabhakar, a cadre of the Dandakaranya Special Zonal Committee, and his wife Raji Kange, associated with the Divisional Committee member rank, were each sentenced to 7 years in prison. The 3 other Maoists involved in the case were awarded 5 years imprisonment each. The case originates from 2015 when a group of Maoists attacked a team of security forces that was conducting a search operation in the Kora region. India could witness one final surge of monsoon activity before the southwest monsoon begins its seasonal retreat. Rains are expected to return across large parts of central, south, east and west India between September 12 and 21. Weather models indicate that the coming spell could provide a temporary revival into the fading monsoon circulation, bringing showers and thunderstorms to several parts of the country during the second half of September. The latest satellite imagery shows a noticeable reduction in cloud cover over large parts of the Indian subcontinent, particularly over northwest India, while convective cloud clusters remain active over eastern and southern regions. India Meteorological Department, IMD, has forecast heavy rainfall over Bihar, Jharkhand, Gangetic West Bengal, Odisha, Arunachal Pradesh, Assam, Meghalaya, Nagaland, Manipur, Mizoram and Tripura today. The Met Department has predicted thunderstorm accompanied with lightning and gusty winds over Andaman and Nicobar Islands, Andhra Pradesh, Tamil Nadu, Puducherry and Karaikal. According to IMD, coastal Andhra Pradesh and Keralam and Mahe are expected to experience hot and humid weather today. On to sports. In US Open tennis, defending women's singles champion and top seed Arina Sabalenka has advanced to the semifinals after overcoming 6th seed Linda Noskova of the Czech Republic in a thrilling quarterfinal. Sabalenka prevailed in a tightly contested match last night. In the men's singles, Francis Tiafoe booked his place in the last four after defeating fellow American Alex Michelson in a 5-set thriller. India Para Archers will be in the hunt for multiple medals at the World Archery Para Series in Ahmedabad today as they compete in several gold and bronze medal matches across different events. In the Para Recurve Mixed Team Gold Medal match, India's Bhavna and Harvinder Singh will take on China's Liangxi Rong and Xia Lei in the final. India's Sheetal Devi will have another opportunity to claim gold when she faces Aizada Seidan of Kazakhstan in the Para Compound Women's Individual Final. And now for a look at today's newspapers, it's over to Shagun Chopra.
12: Thank you, Saira. Russia says BRICS can bridge Iran-UAE gap, writes Hindustan Times. The Tribune writes Modi-Putin bilateral on September 11, Sukhoi 57 sale, tech transfer on table. The newspapers have widely covered PM Modi inaugurating infrastructure projects. The Asian Age headlines, PM unveiled 35,000 crore projects. The Tribune writes, India-China holds second LAC flag meet in 2 days. After the tragic incident of building collapse in Satyaniketan area in Delhi, the matter has reached the Supreme Court. The Pioneer writes, safety of PGs in Delhi and a Supreme Court lens. The Hindu writes, Supreme Court mulls ban India's safety regulations for student hostels. And finally, Dinin Express writes, 60 years of Star Trek, fans pass down not only shared language but values too, adding that Star Trek functions as connective tissue between fans past and present. And with that, it's back to you, Saira.
5: Thanks, Shagun. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi says UPI is undisputed champion of India's fintech success story. Defence Minister Rajnath Singh describes Indian community in Sri Lanka as important bridge between the two countries. US says it destroyed 5 Iranian oil tankers in Persian Gulf after attacks on American warship. Canada imposes retaliatory tariffs of up to 50% on more than 600 US goods. Rain likely to lash large parts of central, south, east and west India between September 12 and 21 before southwest monsoon begins its seasonal retreat. And in tennis, Arina Sabalenka and Francis Tiafoe enter semi-finals of US Open in New York. For details of these stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and News on AIR app. And with that, we end the morning news. Have a great day.
13: आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। थोड़ी ही देर में प्रादेशिक समाचार प्रसारित किए जाएंगे। वेक्टर जनित रोग मलेरिया, फाइलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, कालाजार और जापानीज इंसेफेलाइटिस से बचाव के लिए मच्छरों से अपना बचाव करें। अपने घर के आसपास सफाई रखें, जल जमाव न होने दें, पानी के बर्तनों को ढक कर रखें, पूरे आस्तीन के कपड़े पहने और हमेशा मच्छरदानी के अंदर सोएं।
14: बुखार होने पर ओझागुनी के पास ना जाएं, अपने गांव की सहिया को बताएं या नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में जाएं, मुफ्त जांच और उपचार कराएं।
13: वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
15: दीदी मुझे तो बहुत चिंता हो रही है बच्चे के जन्म को लेकर।
16: चिंता मत करो, बस अस्पताल जरूर जाना, सब बहुत अच्छे से होता है वहाँ, जांच, दवाई।
17: पर खर्चा?
16: बच्चे का जन्म और दो रात अस्पताल में माँ और बच्चे दोनों की देखभाल।
17: तो ठीक है पर खर्चा?
16: अरे देवर जी, अब हर सेवा मुफ्त है। सरकार का जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम जो है, जच्चा बच्चा के स्वास्थ्य को लेकर चांस क्यों लेना?
18: चांस क्यों लेना है, चांस क्यों लेना।
19: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड द्वारा जनहित में जारी।
20: डॉक्टर दीदी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहू का प्रसव अच्छे से हो गया, क्या आप जच्चा बच्चा को घर ले जाएं?
21: अभी माँ बहुत कमजोर है, उसे दो दिन यहीं रहने दें। प्रसव के तुरंत बाद जच्चा बच्चा को संक्रमण और रोग का खतरा ज्यादा रहता है। सही देखभाल और संक्रमण से बचने के लिए माँ और बच्चे को प्रसव के बाद दो दिन अस्पताल में ही रहने दें। यह सुविधा सभी सरकारी अस्पताल में उपलब्ध है।
19: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड द्वारा जनहित में जारी।
22: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी आज करेंगी राष्ट्रीय पोषण जागरूकता अभियान की शुरुआत। झारखंड के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में विशेष कार्यक्रमों का संचालन शुरू। परीक्षा गड़बड़ी मामले पर भाजपा का राज्यव्यापी आंदोलन दूसरे दिन भी जारी। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने सीबीआई जांच का किया दावा। मंत्री योगेंद्र साव ने लगाया राजनीतिकरण का आरोप। राज्य के 248 पीएम श्री विद्यालयों में आयोजित होगी मॉडल यूथ ग्राम सभा। छात्र मुखिया और वार्ड सदस्य बनकर सीखेंगे पंचायती राज व्यवस्था। मानव हाथी संघर्ष पर काबू पाने के लिए झारखंड को मिलेंगे 6 विशेष प्रशिक्षित कुमकी हाथी, कर्नाटक सरकार ने दी मंजूरी। और मौसम विभाग ने रांची, धनबाद और बोकारो सहित कई जिलों में आज भारी बारिश और वज्रपात का जारी किया अलर्ट। तेज हवाएं चलने की आशंका। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी आज राष्ट्रीय स्तर पर पोषण जागरूकता अभियान की शुरुआत कर रही हैं। इसके तहत आज से झारखंड के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में विशेष सामुदायिक कार्यक्रमों का संचालन शुरू हो रहा है। इस देशव्यापी अभियान का मुख्य उद्देश्य कुपोषण मिटाना और स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। झारखंड भाजपा का राज्यव्यापी आंदोलन आज दूसरे दिन भी जारी है। आज बोकारो, पलामू और कोडरमा सहित 6 जिलों में डीसी कार्यालयों का घेराव किया जाएगा। बोकारो में पूर्व मुख्यमंत्री मधुकोड़ा और पलामू में दीपक प्रकाश प्रदर्शन का नेतृत्व संभालेंगे। भाजपा छात्रों पर दर्ज केस वापस लेने की मांग कर रही है। इस बीच रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने दावा किया है कि झारखंड में जेएसएससी और जेपीएससी परीक्षा घोटाले की सीबीआई जांच जल्द शुरू होगी। उन्होंने राज्य सरकार पर भर्ती परीक्षाओं में करोड़ों रुपए के बड़े लेन देन का आरोप लगाते हुए कहा कि परीक्षा रद्द करना समाधान नहीं है।
23: हेमंत सोरेन जी, आपकी बड़ी मछलियाँ जल्दी ही फुटवार जेल में जाने वाली हैं। आपके आधी कैबिनेट से ज्यादा फुटवार जेल में जाने वाली है, क्योंकि जल्द ही सीबीआई जांच भी होने वाली है।
22: भाजपा के आंदोलन पर राज्य के मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने पलटवार किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा अपने लोगों को बचाने के लिए आंदोलन कर रही है और छात्रों के प्रदर्शन का राजनीतिकरण कर रही है। उन्होंने कहा कि राज्य की एजेंसियां मामले की मुस्तैदी से जांच कर रही हैं।
0: इनसे पूछना चाहते हैं कि भाई पहली और दूसरी जेपीएससी का परिणाम अब तक सीबीआई का क्यों नहीं आया। वैसे लोगों को बचाना चाहते हैं जो निस्संदेह गलत तरीके से नौकरी पाया है, शायद उन लोगों को बचाना चाह रही है भारतीय जनता पार्टी, उन लोगों को बचाना चाह रही है। हमारी सरकार तत्परता से राज्य की एजेंसी काम कर रही है और कई ऐसे चेहरों को कटघरे में ला करके खड़ा करके जेल में डालने का काम किया।
22: गिरिडीह के बेंगाबाद में इजराइल से प्रशिक्षित उद्यमी सुमन कुमार ने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना से मछली पालन की नई मिसाल कायम की है। उन्होंने आर्थिक मदद से खुद की कार्प हैचरी और 32 तालाब बनाए हैं जहां सालाना 150 टन मछली उत्पादन हो रहा है। सुमन कहते हैं कि इससे बंगाल पर निर्भरता खत्म हुई है और 40 ग्रामीणों को रोजगार मिला है।
1: प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत हमें कार्प हैचरी का निर्माण हेतु हमको मिला हुआ है। बंगाल से बच्चा लाते थे तो उसमें मॉर्टलिटी स्ट्रेस आता था, इसीलिए हमें एक रिक्वायरमेंट था कि एक हैचरी का डेवलप हमारे यहाँ तैयार हो ताकि हम यहाँ प्रोडक्शन करके हम अपना यूज करें और यहाँ जितने भी फार्मर है उनको हम सरकारी दर से वो बीज का हम मुहैया करा पाए।
22: राज्य के सरकारी स्कूलों में छात्रों को पंचायत व्यवस्था सिखाने के लिए मॉडल यूथ ग्राम सभा आयोजित की जाएगी। झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में पहले चरण में 248 पीएम श्री स्कूलों के कक्षा 9वीं से 12वीं के छात्र मुखिया और वार्ड सदस्य बनकर स्थानीय मुद्दों पर चर्चा करेंगे। इससे छात्रों में नेतृत्व क्षमता विकसित होगी। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIRNews Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। राज्य में बढ़ते मानव हाथी संघर्ष को रोकने के लिए कर्नाटक सरकार राज्य को 6 कुमकी हाथी देगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आग्रह पर कर्नाटक सरकार ने इन विशेष प्रशिक्षित हाथियों को भेजने की मंजूरी दी है। कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट SR नतेश ने बताया कि ये कुमकी हाथी राज्य के हिंसक जंगली हाथियों को नियंत्रित कर ग्रामीणों को सुरक्षा प्रदान करेंगे।
4: कुमकी हाथी के ऊपर बैठ करके जाएंगे तभी हम दूसरे समस्या उत्पन्न करने वाले हाथी के पास तक पहुंच सकते हैं। इसी के लिए कुमकी हाथी हम लोगों ने कर्नाटक से प्राप्त करने के लिए पत्राचार किया था, वहां सहमति भी प्राप्त हुआ था। वहां का ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर भी विभाग को डायरेक्शन दिए हुए माननीय मुख्यमंत्री जी का ओर से ही अपना बात रखे थे। पहले कर्नाटक सरकार ने 4 हाथी का सहमति किया था, बातचीत के दौरान वो 6 के लिए मान गए।
22: राज्य सरकार ने असंगठित कामगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा नियमावली के प्रावधान स्पष्ट कर दिए हैं। नए नियमों के तहत विवादों का निपटारा 6 महीने में करना अनिवार्य होगा। कंपनियों को 1 फरवरी तक वार्षिक रिटर्न पोर्टल पर अपलोड करना होगा। नियमों की अनदेखी करने वाले संस्थानों पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। झारखंड हाईकोर्ट ने रांची के नगड़ी गांव में करीब 3 एकड़ जमीन को अधिग्रहण मुक्त करने की याचिका खारिज कर दी है। अदालत ने स्पष्ट किया कि 1957-58 में कानूनी रूप से अधिग्रहित और मुआवजा दी गई भूमि को सार्वजनिक उपयोग के बाद वापस नहीं किया जा सकता। रांची नगर निगम ने डोरंडा के ग्वाला टोली में सरकारी भूमि पर कब्जे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। खाता संख्या 213 की 1 एकड़ 20 डिसमिल जमीन से 48 घंटे के नोटिस के बाद 2 अवैध गैरेज, 6 खटाल और दुकानें हटाई गई हैं। निगम ने चेतावनी दी है कि सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। राज्य में सुखाड़ की तमाम आशंकाओं के बीच राहत की खबर है। कृषि विभाग के अनुसार राज्य में अब तक 70% से अधिक फसल कवरेज दर्ज किया जा चुका है। कृषि सचिव अबू बकर सिद्दीकी ने बताया कि भविष्य में सिंचाई संकट से निपटने के लिए राज्य भर में वाटर कैनाल का जाल बिछाने की बड़ी कवायद शुरू की जा रही है।
6: जुलाई अगस्त में हमारा अच्छा कवरेज हो गया। डेफिसिट लेवल से लगभग बाहर आता है, कुछ लेट सोइंग अभी भी लोग कर रहे हैं। लोग का कवरेज का 100% तो नहीं हो पाया, फिर भी हम लोग 70 के ऊपर श्रेणी में चला गया। और क्रिसाइड करके एक संस्था है, ड्राई एग्रीकल्चर में ज्यादा काम करते हैं। हमारे राज्य में इवन पानी कम भी रहे, उनको उस तरह का समय में भी किस तरह का खेती एक्टिविटी करना चाहिए, उसको हम लोग उसको एजुकेट करने का प्रयास कर रहे हैं।
22: राज्य में अगले 5 दिनों तक मौसम का मिजाज बदला रहेगा। मौसम विभाग के अनुसार आज और कल रांची, बोकारो, धनबाद और हजारीबाग सहित राज्य के कई हिस्सों में भारी बारिश, गरज चमक और 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने और वज्रपात की आशंका है। विभाग ने इसे लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। अब अखबारों की सुर्खियां।

0: कार्यक्रमों का संचालन शुरू, परीक्षा गड़बड़ी मामले पर भाजपा का राज्यव्यापी आंदोलन दूसरे दिन भी जारी। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने सीबीआई जांच का किया दावा, मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने लगाया राजनीतिकरण का आरोप। राज्य के 248 पीएम श्री विद्यालयों में आयोजित होगी मॉडल यूथ ग्राम सभा, छात्र मुखिया और वार्ड सदस्य बनकर सीखेंगे पंचायती राज व्यवस्था। मानव हाथी संघर्ष पर काबू पाने के लिए झारखंड को मिलेंगे 6 विशेष प्रशिक्षित कुमकी हाथी, कर्नाटक सरकार ने दी मंजूरी। और मौसम विभाग ने रांची, धनबाद और बोकारो सहित कई जिलों में आज भारी बारिश और वज्रपात का जारी किया अलर्ट, तेज हवाएं चलने की आशंका। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: घंटे के भीतर पिलाए माँ का पहला गाढ़ा पीला दूध।
2: माँ का पहला पीला गाढ़ा दूध यानी कोलेस्ट्रम या खेरसा दूध
1: नवजात शिशु के लिए सबसे अच्छा और पौष्टिक आहार है।
2: ये बच्चे को अनेक गंभीर बीमारियों से बचाने में मदद करता है
1: और बच्चे की रोग निरोधक क्षमता को बढ़ाता है।
2: जन्म से लेकर 6 महीने तक पिलाएं सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध,
1: पानी भी नहीं।
2: बच्चा दिन रात में जितनी बार जितनी देर तक चाहे माँ उसे स्तनपान कराए।
1: माँ का दूध सर्वोत्तम आहार,
2: स्वस्थ बच्चा खुशियां अपार।
3: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड द्वारा जनहित में जारी।
4: अली अली लिन मुन्ना, कैसे ऋतु? तुम्हें तो दस्त हो रहा था,
1: अभी ORS और जिंक की गोली से बिल्कुल स्वस्थ है।
5: दस्त होने से बच्चे के शरीर में पानी और जरूरी तत्वों की कमी हो जाती है।
6: 5 ग्लास साफ पानी में 1 पैकेट ORS का घोल बनाएं।
5: 24 घंटे के बाद नया घोल बनाएं।
6: थोड़ी थोड़ी देर में बच्चे को पिलाएं।
5: साथ ही हर दिन 1 जिंक की गोली बच्चे को दें।
6: याद रखें, दस्त बंद होने पर ORS बंद कर दें,
5: पर जिंक की गोली 14 दिनों तक देते रहें।
3: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड द्वारा जनहित में जारी।

0: घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन। आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।
1: मेरे प्यारे देशवासियों, आज हर घर में मोबाइल फोन, लैपटॉप, टैबलेट जैसी डिवाइसेस आम हो चली है। देश भर में इनकी संख्या बिलियंस में होगी। आज के लेटेस्ट डिवाइस भविष्य के ई वेस्ट भी होते हैं। अगर ई वेस्ट को ठीक से डिस्पोज नहीं किया गया तो यह हमारे पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन अगर सावधानी पूर्वक ऐसा किया जाता है तो रिसाइकल और रीयूज की सर्कुलर इकोनॉमी की बहुत बड़ी ताकत बन सकता है। आप जानकर चौंक जाएंगे कि अलग अलग प्रोसेस के जरिए इस ई वेस्ट से करीब 17 प्रकार के प्रेशियस मेटल्स निकाले जा सकते हैं। इसमें गोल्ड, सिल्वर, कॉपर और निकल शामिल है। इसलिए ई वेस्ट का सदुपयोग करना कचरे को कंचन बनाने से कम नहीं है। आज ऐसे स्टार्टअप्स की कमी नहीं जो इस दिशा में इनोवेट काम कर रहे हैं। इस सेक्टर ने हजारों लोगों को

सीधे तौर पर रोजगार भी दिया है। ये सभी भारत को ग्लोबल रिसाइकलिंग हब बनाने में मदद कर रहे हैं। लेकिन ऐसे इनिशिएटिव की सफलता के लिए एक जरूरी शर्त भी है, वो ये है कि ई वेस्ट के निपटारे से सुरक्षित उपयोगी तरीकों के बारे में लोगों को जागरूक करते रहना होगा।

आप सुन रहे थे आकाशवाणी रांची से प्रसारित प्रादेशिक समाचार। FM के 101.7 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 9:47 हो चुके हैं। वक्त है लोक गीतों के कार्यक्रम माटी की महक का, तो लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम माटी की महक। कार्यक्रम माटी की महक सुनने वाले हमारे तमाम श्रोता दोस्तों का इस कार्यक्रम में तहे दिल से स्वागत है। श्रोताओं, लोक गीतों के इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवाने जा रहे हैं बांग्ला लोकगीत कलाकार किशोर कुमार के स्वर में। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये पहला बांग्ला लोकगीत।

आप सुन रहे हैं लोकगीतों का कार्यक्रम माटी की महक। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं बांग्ला लोकगीत कलाकार किशोर कुमार के स्वर में।

श्रोताओं, गायक कलाकार किशोर कुमार के स्वर में गाए हुए इस बांग्ला लोकगीत के साथ ही हमारा आज का ये लोकगीतों का कार्यक्रम माटी की महक अब यहीं समाप्त होता है। आप सुन रहे थे लोकगीतों का कार्यक्रम माटी की महक। ये आकाशवाणी का चायबासा केंद्र है।

कार्यक्रम विविधा सुनने वाले हमारे तमाम श्रोता दोस्तों का इस कार्यक्रम में मैं संगीता तहे दिल से स्वागत करती हूँ। कार्यक्रम सुनने वाले हमारे तमाम श्रोता दोस्तों को मेरा नमस्कार चौहार।

0: श्रोताओं कैसे हैं आप? आशा नहीं बल्कि पूरी पूरी उम्मीद और भरोसा है मुझे कि आप सभी स्वस्थ और सुखी होंगे और अपनी दैनिक दिनचर्या में व्यस्त भी होंगे। और श्रोताओं, अपनी दैनिक दिनचर्या में आप हमारे लिए ये जो समय निकालते हैं ना, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमें हर दिन सुनते हैं, इसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हम चाहते हैं श्रोताओं कि आप यूं ही ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हमें सुने। और आप जो ये कार्यक्रम सुनते हैं और अपनी प्रतिक्रिया हमें खत के माध्यम से लिख भेजते हैं श्रोताओं, ये हमें प्रोत्साहित करता है आपके लिए हर दिन कुछ नया कर गुजरने का। तो श्रोताओं, जैसा कि आप सभी ये जानते हैं कि कार्यक्रम विविधा में भी हम हर दिन आपके लिए कुछ नई जानकारियां लेकर हाजिर रहते हैं। तो श्रोताओं, जानकारियों का ये दौर आज भी वैसे ही जारी रहेगा। श्रोताओं, जैसा कि हम सभी ये जानते हैं कि कैलेंडर का हर पन्ना इतिहास, संघर्ष और बदलाव की एक नई कहानी समेटे होता है। और जैसा कि हमने आपको बताया कि इस कार्यक्रम में भी हम आपके लिए हर दिन कुछ नई जानकारी लेकर हाजिर होते हैं, और विशेष तौर पर जिस तारीख को ये कार्यक्रम प्रसारित होता है उस दिन से जुड़ी हुई भी कुछ, उस तिथि से जुड़ी हुई भी कुछ जानकारियां हम आपको इस कार्यक्रम में देते हैं। तो जैसा कि आज 9 सितंबर है और इस तिथि का भी हमारे देश की इतिहास में, न सिर्फ देश के इतिहास में यानी और बल्कि वैश्विक इतिहास में भी इसका विशेष तौर पर महत्व है। तो आइए जानते हैं कि इस तिथि को क्या क्या खास हुआ था, क्योंकि ऊपर से देखने वाला ये एक सिर्फ साल का आम दिन जैसा ही दिन लगता है, लेकिन वैश्विक और देश के इतिहास की अगर हम बात करें तो इस दिन का एक गहरा और बहुत बेहद महत्वपूर्ण और रोचक इतिहास है। तो आइए हम आज के इस कार्यक्रम की करते हैं शुरुआत, और आपको आज की तिथि यानी कि 9 सितंबर से जुड़ी हुई कुछ जानकारियां देते हैं। तो श्रोताओं, सबसे पहले हम आपको ये बताएं कि आज 9 सितंबर के दिन हमारा देश मना रहा है आधुनिक साहित्य के पितामह भरतेंदु हरिश्चंद्र जी की जयंती। आइए इनके बारे में हम आपको अति संक्षिप्त रूप से बता दें। तो श्रोताओं, भरतेंदु हरिश्चंद्र जी का जन्म 9 सितंबर 1850 में वाराणसी में, जिसे कि अब हम बनारस के नाम से जानते हैं, हुआ था। इन्हें आधुनिक हिंदी साहित्य और हिंदी रंगमंच का जनक माना जाता है। इन्होंने उस समय हिंदी भाषा में लिखना और नाटक रचना शुरू किया था जब हमारा देश गुलाम था, और या फिर हम यूँ कहें कि गुलामियों की बेड़ियों में जकड़ा हुआ था। उन्होंने खड़ी बोली को बढ़ावा दिया। खड़ी बोली कहने से हमारा तात्पर्य है श्रोताओं, जो आज हम हिंदी भाषा का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि आधुनिक हिंदी भाषा को इन्होंने बढ़ावा दिया था। इनकी प्रसिद्ध रचनाओं में भारत दुर्दशा और अंधेर नगरी चौपट राजा शामिल है। इन्होंने ब्रिटिश शासन और समाज की कमियों पर तीखा व्यंग किया था। इनके महान साहित्यिक योगदान के कारण ही इनके नाम पर हिंदी साहित्य के पूरे एक कालखंड को भरतेंदु युग के नाम से जाना जाता है। इस युग को सन 1868 से 1900 के बीच का जो समय है उसे भरतेंदु युग के नाम से जाना जाता है। पर बहुत दुख की बात है श्रोताओं कि महज 34 वर्ष की अल्प आयु में ही इनका निधन हो गया, लेकिन इन्होंने हिंदी भाषा को एक नई पहचान दी थी। तो आज इनके जन्मदिन के अवसर पर आकाशवाणी के चायबासा परिवार की ओर से हम इन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि देते हुए कोटि कोटि नमन करते हैं।
1: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी। आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
2: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
2: डायल कीजिए 8700014242।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
0: इन छोटे से विराम के बाद श्रोताओं, एक बार फिर से आपका स्वागत है कार्यक्रम विविधा में। ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से। श्रोताओं, इस विराम से पहले हमने आपको बताया कि आज 9 सितंबर को हमारा देश मना रहा है आधुनिक साहित्य के पितामह भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की जयंती। इसके अलावा आज 9 सितंबर को हमारे देश में एक और विशेष दिन मनाया जाता है, वो है हिमालय दिवस। तो आप जरूर जानना चाहते होंगे कि ये हिमालय दिवस आखिर क्या है और इसे मनाने की शुरुआत कब से हुई। तो श्रोताओं, हम आपको बताएं कि हर साल 9 सितंबर को भारत में हिमालय दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत मुख्य रूप से उत्तराखंड राज्य में हुई थी और वर्ष 2015 में इसे आधिकारिक तौर पर मनाने की घोषणा की गई। इस दिवस को मनाने के पीछे का मुख्य उद्देश्य हम ये है श्रोताओं कि हिमालयी क्षेत्र में पर्यावरण और जैव विविधता और वहाँ के पारिस्थितिकी तंत्र को बचाने की खास मुहिम चलाना इस दिन का महत्व है, क्योंकि हिमालय केवल भारत का पहरेदार या पहाड़ों की श्रृंखला नहीं है श्रोताओं, बल्कि यह एशिया की बड़ी नदियों का स्रोत भी है और भारत के मौसम को, यानी कि हम ये कहें कि भारत में मौसम और मॉनसून को ये नियंत्रित करने में भी काफ़ी अहम भूमिका निभाता है। वर्तमान समय में ग्लोबल वार्मिंग, जंगलों की आग और अनियंत्रित निर्माण के कारण हिमालय पर बड़ा खतरा मंडरा रहा है। तो ये दिन हम इस बात को याद दिलाने के लिए भी मनाते हैं कि हमें हिमालय को बचाना है, क्योंकि हिमालय सुरक्षित रहेगा तभी हमारा भविष्य भी सुरक्षित रहेगा। और इसी कारण से आज के दिन को, यानी कि 9 सितंबर को हमारे देश में हिमालय दिवस के रूप में मनाया जाता है और लोगों को जागरूक किया जाता है हिमालय को बचाने में आगे बढ़ने के लिए। तो श्रोताओं, अभी हमने आपको जानकारी दी हिमालय दिवस के बारे में कि ये दिन क्यों मनाया जाता है, इसके मनाए जाने के पीछे का कारण क्या है और इसको मनाने का महत्व क्या है। तो इस जानकारी के बाद आइए अब हम आपका मनोरंजन करते हैं इस गीत के साथ।

श्रोताओं, इस गीत के साथ अभी हम आपका मनोरंजन कर रहे थे। जिन श्रोताओं ने अभी अभी अपना रेडियो सेट ऑन किया है, हम उन्हें बता दें कि आकाशवाणी के चायबासा केंद्र से आप इस समय आनंद ले रहे हैं कार्यक्रम विविधा का। तो श्रोताओं, आइए जानकारियों के दौर में हम आपको एक बार फिर से वापस लिए चलते हैं। इस मनोरंजन से पहले श्रोताओं, हम आपके साथ बात कर रहे थे हमारे देश के आज के दिन के इतिहास की। अब आइए अब चलते हैं वैश्विक इतिहास की तरफ। तो श्रोताओं, हम आपको बताएं कि आज पूरी दुनिया वर्ल्ड ईवी डे यानी कि विश्व इलेक्ट्रिकल वाहन दिवस मना रही है। तो अब लाजमी है आपके मन में ये सवाल उठना कि अब ये विश्व इलेक्ट्रिक वाहन दिवस क्यों मनाया जाने लगा। तो आइए हम आपको बताते हैं इसके बारे में। तो श्रोताओं, बढ़ते प्रदूषण और पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के बीच इलेक्ट्रिक वाहन यानी कि ईवी आज की सबसे बड़ी जरूरत बन चुके हैं। ये दिन लोगों को पारंपरिक ईंधन वाले वाहनों से हटाकर शून्य उत्सर्जन वाले ई वाहनों को अपनाने के लिए जागरूक करने का एक खास जरिया है। आइए अब हम आपको इस दिन के इतिहास के बारे में बताएं कि कब से इस दिन की शुरुआत की गई। तो श्रोताओं, इस दिन को मनाने की शुरुआत साल 2020 में ग्रीन टीवी संस्था द्वारा की गई थी और इस दिन को मनाने के पीछे का मुख्य उद्देश्य दुनिया भर में सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देना और कार्बन फुटप्रिंट को कम करना है। श्रोताओं, आज हमारे देश में भी इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स, कार और ई रिक्शा की मांग काफ़ी तेजी से बढ़ रही है। अब आप अपने शहर में जगह जगह ई रिक्शा और टू व्हीलर्स को देख सकते हैं। सरकार की प्रोत्साहन नीतियां, सब्सिडी और जगह जगह लग रहे चार्जिंग स्टेशन ने इसे और भी ज़्यादा आसान बना दिया है। बैटरी तकनीक में सुधार आने से और अब लंबी दूरी तय करने के लिए भी ये वाहन काफ़ी ज़्यादा सुलभ हो गए हैं। और इसके अलावा ये इलेक्ट्रिकल वाहन न केवल हवा को शुद्ध रखते हैं बल्कि ध्वनि प्रदूषण को भी कम करते हैं। लंबे समय तक चलने के कारण ये आपकी जेब पर भी भारी बचत करते हैं। तो श्रोताओं, इस विश्व ईवी दिवस पर हम सब मिलकर एक हरित और स्वच्छ भविष्य की ओर कदम बढ़ाते हैं। और श्रोताओं, जब आप अगली बार अपना नया वाहन लेने की सोचें तो हम आपसे ये जरूर कहेंगे कि आप इलेक्ट्रिकल व्हीकल पर विचार अवश्य करें, उनके फीचर्स को देखें और उन पर लगने वाली लागत को भी आप जरूर नापें। आप देखेंगे कि जो नॉर्मल व्हीकल जो कि डीजल और पेट्रोल से जो गाड़ियां चलती हैं उसकी तुलना में ये इलेक्ट्रिकल व्हीकल आपकी जेब पर काफ़ी अच्छा प्रभाव डालेंगे, यानी कि आपकी जेब पर अच्छी खासी बचत होगी इन व्हीकलों को लेने से। और इसके अलावा एक और जो अच्छी बात होगी कि हमारे पर्यावरण को भी काफ़ी ज़्यादा इससे आराम मिलेगा। कहने का तात्पर्य हमारा ये है कि प्रदूषण कम फैलेगा, चाहे हम ध्वनि प्रदूषण की बात करें या फिर वायु प्रदूषण की। इनसे निकलने वाला जो धुआं होता है वाहनों से वो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होता है। तो आप कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा ईवी व्हीकल यानी कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल अपने इस्तेमाल में लाने के लिए। तो श्रोताओं, अभी हमने आपको साथ बात की वर्ल्ड इलेक्ट्रिकल व्हीकल डे के ऊपर। इसके बाद आइए अब हम आपको बताते हैं एक और अहम दिन के बारे में जो कि मनाया जाता है हमारे विश्व के इतिहास में। तो श्रोताओं, संयुक्त राष्ट्र द्वारा आज के दिन को इंटरनेशनल डे टू प्रोटेक्ट एजुकेशन फ्रॉम अटैक यानी कि शिक्षा को हमलों से बचाने का अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। क्योंकि श्रोताओं, अभी हमारे दुनिया में कई हिस्सों में युद्ध और संघर्ष चल रहे हैं
और वहाँ मासूम बच्चों और उनके स्कूलों पर हमले हो जाते हैं, और हमले होने के कारण होता ये है कि स्कूल तहस नहस हो जाती है, पाठशालाएं टूट जाती हैं, और बच्चों की शिक्षा पर इससे काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। तो ये दिन वैश्विक नेताओं को इस बात को याद दिलाता है कि युद्ध के मैदान में भी बच्चों की शिक्षा और उनके स्कूलों की सुरक्षित रखना हमारे मानवता की जिम्मेदारी है। तो क्योंकि शिक्षा हर बच्चे का मौलिक अधिकार है और उन्हें ये अधिकार मिलना ही चाहिए। तो जब भी कोई देश युद्ध की स्थिति में होता है तो वो भी इस बात का ध्यान रखता है कि हमलों में बच्चों के स्कूलों को नुकसान ना पहुंचे। श्रोताओं, इसके अलावा हमारा ये आज का दिन यानी कि 9 सितंबर एक और खास दिन के चलते काफ़ी ज़्यादा जाना जाता है, वो है कि साल 1948 में आज ही के दिन यानी कि 9 सितंबर 1948 को एशिया के नक्शे पर एक ऐसे देश का उदय हुआ जो पहले हमारे एशिया के नक्शे पर नहीं था। वो देश है उत्तर कोरिया, जिसे हम डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया के नाम से भी जानते हैं। आज के दिन को वहाँ पर यानी कि उत्तर कोरिया में राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस एक दिन ने वैश्विक राजनीति की दिशा को पूरी तरह बदल कर रख दिया था, जिसका असर आज भी हम वैश्विक सुरक्षा पर देख सकते हैं। तो श्रोताओं, अभी हमने आपको जानकारी दी हमारे देश के वैश्विक इतिहास के बारे में, और इसी क्रम में श्रोताओं आइए एक और अहम विषय पर हम आपसे बात करते हैं। श्रोताओं, आज के दिन ही 9 सितंबर 1947 को हमारे देश दुनिया में मनाया जाता है बग डे, यानी कि जो कंप्यूटर की दुनिया में सबसे मशहूर शब्द है बग, जिसे हम कंप्यूटर में खराबी आ जाने के नाम से जानते हैं, इसका भी जन्म आज ही के दिन हुआ था। 9 सितंबर 1947 को प्रसिद्ध वैज्ञानिक ग्रेस हाइपर की टीम ने हार्डवर्क मार्क कंप्यूटर में आ रही खराबी की जांच की, तो उन्हें कंप्यूटर में रिले में फंसा हुआ एक असली कीड़ा, जिसे कि हम बग के नाम से जानते हैं, वो मिला था। उन्होंने इसे निकाला और उसे डायरी में लिखा। पहला वास्तविक बग पाए जाने का मामला ये था, और तब से लेकर आज तक जब भी हमारे सॉफ्टवेयर में किसी भी तरह की खराबी आती है तो हम उसे बग कहते हैं। है ना दिलचस्प बात? क्या ये बात आपको पता थी कि जिसे हम कंप्यूटर में किसी भी खराबी आ जाने पर हम कहते हैं कि कंप्यूटर में के सॉफ्टवेयर में बग आ गया है, यानी कि कोई खराबी आ गई है, वो आज ही के दिन खोजी गई थी? नहीं पता था ना? तो देखिए, हमने आपको कितनी अच्छी जानकारी दी, और हम ऐसी उम्मीद करते हैं श्रोताओं कि हम इस कार्यक्रम में जो भी जानकारी आपको देते हैं वो अवश्य ही आपके व्यक्तिगत जीवन में भी काम आती होगी। आपका ज्ञान तो बढ़ाती ही है ये, और आप देखेंगे कि जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं उसमें भी इस तरह की जानकारियां आपके काफ़ी काम आती हैं, क्योंकि जो ये प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं श्रोताओं, वो जुड़ी हुई होती है तिथियों की जानकारियों से काफ़ी ज़्यादा जुड़ी हुई होती है और सामान्य ज्ञान से जुड़ी हुई होती है। और इस कार्यक्रम में हम आपके साथ अमूमन इसी बात पे चर्चा करते हैं कि जिस तिथि को ये कार्यक्रम प्रसारित हो रहा होता है उस दिन का आपको इतिहास बताएं कि देश दुनिया में उस दिन का इतिहास क्या था और क्यों वो तिथि हमारे देश के इतिहास में जानी जाती है। तो श्रोताओं, अब हमारे स्टूडियो की घड़ी भी इशारा कर रही है कि कार्यक्रम से विदा लेने का वक्त हो रहा है, पर विदा लेने से पहले हम आपसे कहना चाहेंगे श्रोताओं कि हमने आज इस कार्यक्रम में जो भी जानकारियां आपको दी वो कैसे लगी, आप हमें अपनी प्रतिक्रिया खत के माध्यम से अवश्य लिख भेजें। खत लिखने के लिए हमारा पता है कार्यक्रम विविधा द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी चाईबासा, चाईबासा का पिन कोड नंबर है 833201। और श्रोताओं, खत में आप ये तो लिखें ही
कि हमारा आज का ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा, बल्कि इस कार्यक्रम से जुड़ा हुआ कोई भी सुझाव या शिकायत आपके पास है तो आप उसे भी अवश्य लिख भेजें। हम आपको खत लिखने के लिए कहते हैं, इसका तात्पर्य ये नहीं है कि हम आपको ये कह रहे हैं कि आप सिर्फ हमारी प्रशंसा लिखें। आप हमारी कोई भी, इस कार्यक्रम से जुड़ी हुई कोई भी शिकायत हो या फिर आपके पास कोई सुझाव हो तो वो भी आप हमें अवश्य लिख भेजें, क्योंकि आप जो अपनी प्रतिक्रिया देते हैं न श्रोताओं, वो हमें काफ़ी प्रोत्साहित करती है, वो हमें प्रोत्साहित करती है कि हम आपके लिए अच्छे कार्यक्रम लाएं और अच्छे से अच्छी जानकारियों को इस कार्यक्रम में शामिल कर सकें। तो श्रोताओं, अब इन्हीं सी सब के साथ आपकी रेडियो सखी संगीता को इस कार्यक्रम से विदा दें। नमस्कार। आप सुन रहे थे कार्यक्रम विविधा।

स्टूडियो की घड़ी में इस समय सुबह के 9:30 हो चुके हैं। वक्त है फिल्म संगीत के कार्यक्रम रस रंजन का, तो लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम रस रंजन। कार्यक्रम रस रंजन की शुरुआत श्रोताओं हमने की है फिल्म मन के इस गीत के साथ, जिसे आवाज़ें दी हैं गायक कलाकार उदित नारायण और अलका याग्निक ने। इस गीत के बोल लिखे हैं समीर ने और धुन है संजीव दर्शन की।

0: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए 8700014242।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
2: क्या आप तनाव, चिंता, उदासी, मानसिक परेशानी या आत्महत्या के विचारों से जूझ रहे हैं? याद रखिए, आप अकेले नहीं हैं। मानसिक स्वास्थ्य महत्वपूर्ण है। मदद के लिए संपर्क करें रिनपास कांके रांची।
3: पिछले 100 वर्षों से मानसिक स्वास्थ्य चिकित्सा के क्षेत्र में एक अग्रणी संस्थान, जहां अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा मानसिक स्वास्थ्य संबंधी परामर्श और नशा मुक्ति का निःशुल्क उपचार उपलब्ध है। डायल करें 24/7 हेल्पलाइन नंबर 9471366697, टोल फ्री नंबर 1444 99 या 1800345406 पर।
2: समय पर मदद लें, स्वस्थ मन, बेहतर जीवन पाएं। ऋण पास एवं झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
4: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे। सो इजी।
5: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है,
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
7: इन जरूरी संदेशों के बाद श्रोताओं, एक बार फिर से आपका स्वागत है कार्यक्रम रसरंजन में। ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के चायबासा केंद्र से। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सुनवाते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत, फिल्म हम तुम्हारे हैं सनम से। आवाज़ें हैं गायक कलाकार सोनू निगम और सपना अवस्थी की, बोल लिखे हैं कार्तिक अवस्थी ने और धुन है बाली ब्रह्मभट्ट की।

वक्त जैसे ठहर गया है यहीं, हर तरफ एक अजब उदासी है, बेघर

श्रोताओं, ये गीत आप सुन रहे थे फिल्म बागवान से। इस गीत को गाया था गायक कलाकार अमिताभ बच्चन ने, बोल लिखे थे समीर ने और धुन है आदि श्रीवास्तव की। इस गीत के बाद श्रोताओं आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

गायक कलाकार कुमार सानू और साधना सरगम के स्वरों में श्रोताओं, ये गीत आपने सुना फिल्म हम दोनों से। इस गीत के बोल लिखे समीर ने और धुन थी आनंद मिलिंद की। इस गीत के बाद श्रोताओं आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत फिल्म एक पहेली लीला से। आवाज़ें हैं गायक कलाकार तुलसी कुमार और आलम खान की, बोल है कुमार के और धुन है उजैर जायसवाल की।

माफ़ कीजिए श्रोताओं, समय के अभाव के कारण ये गीत हम आपको नहीं सुनवा पाएंगे। और इस गीत के साथ ही श्रोताओं, हमारा आज का ये कार्यक्रम रस रंजन अब यहीं समाप्त होता है। आप सुन रहे थे कार्यक्रम रस रंजन।

हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से FM के 101.7 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओं, स्टूडियो की घड़ी में पूर्वाह्न के 10 बज चुके हैं। वक्त है NCERT के द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग का। तो लीजिए, प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: उमंग
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: आप सबको विमलेश का नमस्कार और जोहार। आज के उमंग कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। सुनते हैं आज का एक सुंदर विचार जिसे हमें भेजा है मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर और रतनमाला सुरलकर जी ने। लिखते हैं, जीवन में वही आगे बढ़ता है जो अपनी गलतियों से सीखता है। अक्सर ठोकरें रास्ते की रुकावट नहीं बल्कि मंजिल की तैयारी का प्रशिक्षण होती हैं। धन्यवाद आप दोनों का इस सुंदर विचार के लिए। और अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। गांव ठाणी कुतुबपुर जिला हांसी हरियाणा से रामधारी गुर्जर, अवाना, अवनी, प्रियांशी, रियांशी, ओजस, अनाया, गुरदीप और बेबी कीरत ने लिखा है, आदरणीय विमलेश जी एवं अजीत जी सादर नमस्कार। 13 अगस्त 2026 को 1857 के गुमनाम वीर स्वतंत्रता सेनानियों की श्रृंखला के अंतर्गत वीर सावरकर जी के जीवन को जानने का अवसर मिला। आपकी ये प्रेरणादायी प्रस्तुति हमें स्वतंत्रता के मूल्य और हमारे वीरों के त्याग एवं बलिदान से परिचित कराती है। इतिहास के ऐसे प्रेरणादायी प्रसंगों को जन जन तक पहुंचाने के लिए आप दोनों का हार्दिक धन्यवाद और साधुवाद। आपको भी हमारा बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। ग्राम पजोनिया जिला जालौन उत्तर प्रदेश से सत्येंद्र कुमार चंसौलिया जी ने लिखा है, आदरणीय अजीत जी और विमलेश जी, आज हमने उमंग कार्यक्रम के अंतर्गत ये भी जानिए मैं पिंगली वेंकैया जी के बारे में, अपने राष्ट्रध्वज के बारे में और आजाद हिंद फौज के संस्थापक सुभाष चंद्र बोस के बारे में बहुत कुछ जाना। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। इसके साथ साथ ही हमें संदेश मिला है जेल रोड दिल्ली से लाल बाबू दीवाना और उमाराज, लेवाई छत्तीसगढ़ से गुलाब दास मानिकपुरी, राजा दास मानिकपुरी और रानी मानिकपुरी। आप सबके संदेशों के लिए धन्यवाद। श्रोताओ, जैसा कि आप जानते हैं इन दिनों हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं बहुत सारे प्रेरक प्रसंगों को। आज हम एक ऐसे व्यक्ति की कहानी लेकर आए हैं जिसने न कोई बड़ी मशीन इस्तेमाल की, न उसके पास कोई बड़ी टीम थी। उसके पास था एक हथौड़ा, एक छेनी और एक अद्भुत संकल्प। आज के प्रेरक प्रसंग का शीर्षक होगा पहाड़ से भी ऊंचा आदमी। ये कहानी भी NCERT की हिंदी की कक्षा 8 की पूर्व पाठ्य पुस्तक वसंत से संदर्भित है। ये कहानी है दृढ़ संकल्प के धनी दशरथ मांझी जी की। श्रोताओ, ये कहानी शायद आपने भी सुनी होगी, लेकिन हम इसे आज एक अलग परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत करेंगे। उनकी कहानी शुरू होती है बिहार के गया जिले के गहलोर गांव से। श्रोता मित्रों, ये वो समय था जब आज के युग के उन्नत यातायात, संचार और चिकित्सा के साधन नहीं थे। उन दिनों में गहलोर गांव के लोगों को अस्पताल और बाजार तक पहुंचने के लिए एक बड़े पहाड़ के चारों ओर घूमकर जाना पड़ता था। रास्ता बहुत लंबा और कठिन था। कहा जा सकता है कि पहाड़ मात्र एक प्राकृतिक बाधा ही नहीं था बल्कि गांव के लोगों के जीवन में रोज की परेशानी भी था। दशरथ मांझी मजदूरी करते थे। एक दिन उनकी पत्नी फाल्गुनी देवी पहाड़ के दूसरे छोर पर काम कर रहे अपने पति दशरथ मांझी के लिए खाना लेकर जा रही थीं। पहाड़ पार करते समय वे दुर्घटनाग्रस्त हो गईं। चोट गंभीर थी। उन्हें समय पर चिकित्सा सहायता नहीं मिल सकी और उनकी मृत्यु हो गई। सचमुच बहुत दुखद घटना थी, लेकिन उस दुख ने दशरथ मांझी के भीतर एक ऐसा संकल्प पैदा किया जिसकी कल्पना शायद किसी ने नहीं की थी। उन्होंने फैसला किया, मैं इस पहाड़ को काटकर रास्ता बनाऊंगा। और ये फैसला उन्होंने अकेले ही किया। उनके पास था एक साधारण हथौड़ा और छेनी। दृढ़ संकल्प के साथ उन्होंने पहाड़ पर प्रहार करना शुरू किया। एक दिन, दो दिन, एक महीना, एक साल, समय बीतता गया। हो नहीं सकता मित्रों कि गांव वालों ने उनका मजाक नहीं उड़ाया होगा, लेकिन उन्होंने लोगों की बातों की चिंता नहीं की। वे रोज काम करते रहे। दशरथ मांझी जानते थे कि उन्हें एक ही दिन में पहाड़ नहीं काटना है, उन्हें बस हर दिन थोड़ा सा काम करना है। और श्रोता मित्रों, यही बात बहुत महत्वपूर्ण है। अक्सर ऐसा होता है ना कि हम कई बार बड़े लक्ष्य को देखकर डर जाते हैं। हम सोचते हैं इतना बड़ा काम कैसे होगा, लेकिन दशरथ मांझी ने सुनिश्चित कर लिया था कि वे अपने काम में निरंतरता बनाए रखेंगे। उन्होंने हथौड़ा उठाया और पहाड़ पर एक चोट की, फिर दूसरी, फिर तीसरी और फिर हजारों चोटें, लाखों चोटें, और धीरे धीरे वो पहाड़ टूटने लगा। श्रोताओं आपको बता दें कि लगभग 22 वर्षों तक वे लगातार काम करते रहे। जी हाँ श्रोताओं, पूरे 22 साल। और उन्होंने अंततः पहाड़ के बीच से लगभग 110 मीटर लंबा और लगभग 9 मीटर चौड़ा रास्ता बना दिया। और जिस रास्ते के लिए लोगों को बहुत दूर घूमकर जाना पड़ता था, वो दूरी काफी कम हो गई थी। मुझे लगता है मित्रों कि आज की उमंग कार्यक्रम का यही संदेश है, विशेषकर विद्यार्थियों के लिए। हम सबके जीवन में कोई न कोई पहाड़ होता है, कोई न कोई कठिनाई अवश्य होती है, सीखने में, समझने में। और कई बार हम उस पहाड़ को देखकर सोचते हैं

ये मेरे बस की बात नहीं, लेकिन दशरथ मांझी की कहानी बताती है, एक दिन में पहाड़ नहीं टूटता, लेकिन रोज की एक चोट उसे धीरे धीरे बदल सकती है। यानी सफलता का रहस्य केवल शक्ति ही नहीं, दृढ़ संकल्प के साथ निरंतरता भी है। श्रोताओं, कई बार हमारी छोटी छोटी कोशिशें हमें दिखाई नहीं देती, लेकिन यदि निरंतरता बनी रहे तो हम वर्षों बाद पीछे मुड़कर देखते हैं तो पता चलता है कि हमने बहुत लंबी यात्रा तय कर ली है। तो श्रोताओं, ये था हमारा आज का प्रेरक प्रसंग। आशा है आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो अपनी प्रतिक्रिया जरूर भेजें। अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। प्रश्न है, दृढ़ संकल्प के धनी दशरथ मांझी जी को पहाड़ खोदकर रास्ता बनाने में कितना समय लगा? प्रश्न एक बार फिर से सुन लेते हैं। दृढ़ संकल्प के धनी दशरथ मांझी जी को पहाड़ खोदकर रास्ता बनाने में कितना समय लगा? आप 8800440559 पर अपने उत्तर हमें भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@cit.nic.in। और हाँ, ताज़ा जानकारी के लिए आप इंस्टा, फेसबुक, लिंक्डइन और एक्स पर भी CIT NCERT को लगातार फॉलो करते रहें। NCERT की पाठ्य पुस्तकों को डाउनलोड करने के लिए किसी भी सर्च इंजन में जाकर टाइप कीजिए NCERT बुक्स PDF। और NCERT की पाठ्य पुस्तकों को ध्वनि रूप में सुनने या हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों को सुनने के लिए आप NCERT ऑफिशियल YouTube को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। पहला कार्यक्रम है कम बैक सून। ये कार्यक्रम कक्षा 2 की अंग्रेजी की पाठ्य पुस्तक की एक सुंदर कविता पर आधारित है, जिसमें गीत के द्वारा यातायात के कुछ साधनों के बारे में जानकारी दी गई है।

0: जी हाँ, जन जन होगा अब साक्षर उल्लास के साथ। आइए नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के इस अभियान में बटाएं हाथ उल्लास के साथ। उल्लास भारत सरकार की एक अनूठी पहल।
1: उस रात ऑफिस से निकलने में तुबा हो गई थी, आंखें भी भारी हो रही थी, पर सोचा 15 किलोमीटर ही तो है, निकल जाता हूँ। हाईवे पर एक ट्रक के पीछे चला गया। ट्रक के पीछे एक आयरन रॉड लगी थी, टेल लाइट दिखाई नहीं दे रही थी। मुझे लगा कि वो सीधा जा रहा है, पर जैसे ही उसने ब्रेक मारे,
2: मुझे समझने में 1 सेकंड ज्यादा लग गया। नींद में गाड़ी चलाना और पीछे की रोशनी ना दिखना, दोनों ही गंभीर हादसे को बुलावा देना है।
3: थकान या नींद की अवस्था में वाहन चलाने से बचें। यात्रा के दौरान यदि थकान या नींद महसूस हो तो आगे बढ़ने के बजाय थोड़ी देर रुककर आराम करना सुरक्षित होता है।
4: और अब सुनते हैं कार्यक्रम रेलगाड़ी। इस कार्यक्रम में बच्चों को रेलगाड़ी, रेलवे स्टेशन और इससे जुड़ी कई बातों को बड़े ही मनोरंजक ढंग से बताया गया है। गीतों और ध्वनि प्रभावों का प्रयोग करके कार्यक्रम को और अधिक प्रभावी बनाया गया है।
5: बच्चों, रेलगाड़ी तो तुमने देखी होगी, है ना? हाँ, पहचान गए ना? रेलगाड़ी में होता है एक बड़ा सा इंजन और उसमें जुड़े होते हैं बहुत सारे डब्बे, तभी तो बहुत सारे लोग रेलगाड़ी में बैठकर आते और जाते हैं। और हाँ बच्चों, कितना मजा आता है जब तुम रेलगाड़ी का खेल खेलते हो, है ना? कैसे? तो आओ चलते हैं राजू और संजू के घर, जहां हो रहा है रेलगाड़ी का खेल।
6: रेल चली भाई रेल चली, छुक छुक करती रेल चली। रेल चली भाई रेल चली, छुक छुक करती रेल चली।
7: अरे संजू, वो देखो, राजू तो पीछे छूट गया।
8: अरे हाँ, गाड़ी रोको, गाड़ी रोको।
7: आ जाओ संजू, अब मुझे पकड़ लो, छूटना मत।
8: हाँ, अब बन गई रेल। रेल चली भाई रेल चली, छुक छुक करती रेल चली।
7: दादाजी आ गए।
8: दादाजी, आप भी हमारे संग खेलिए ना।
9: अच्छा भाई, पर मैं तो तुम सबसे बड़ा हूँ और भारी भी, तो ऐसा करते हैं तब मैं इंजन बन जाता हूँ।
7: हाँ, हाँ दादाजी, ये ठीक रहेगा।
9: चलो।
6: रेल चली भाई रेल चली,
9: एक के पीछे एक आओ, रेल बनाओ, रेल बनाओ। इंजन आगे डिब्बे पीछे, लोहे की पटरी पर खींचे, गांव गांव और शहर शहर में धूल उड़ाती रेल चली। रेल चली भाई रेल चली, चुक चुक करती रेल चली, चुक चुक करती रेल चली। अरे अरे भाई, मैं तो थक गया, अब रेल गाड़ी रोकनी पड़ेगी।
7: हाँ दादाजी, हम भी थक गए।
9: अच्छा तो फिर आओ यहाँ बैठते हैं, हैं?
7: अच्छा
9: अब ये बताओ, तुम में से किसने सचमुच की रेलगाड़ी देखी है? हाँ?
8: दादाजी, मैंने देखी है।
9: अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा।

0: अच्छी बात है।
1: जब माँ के साथ नाना जी को लाने स्टेशन गया था तभी देखी है बस।
0: अच्छा तो चलो, मैं आज तुम लोगों को सचमुच की रेलगाड़ी दिखाऊंगा।
1: अरे वाह,
0: यही पास में तो है रेलवे स्टेशन।
1: हाँ,
2: आज तुम बड़ा मजा आ जाएगा, हम लोग रेलगाड़ी देखेंगे। चलो चलो जल्दी चले। हाँ
0: अरे ओ रामू भैया, कहाँ जा रहे हो?
3: अरे दादाजी, स्टेशन जा रहा हूँ सवारी लेने को।
0: अरे भैया, तब तो हमारे बच्चों को भी साथ लेते चलो, रेलगाड़ी देख आएंगे।
3: अरे हाँ हाँ दादाजी, आओ आओ बच्चों, आ जाओ बैलगाड़ी में चढ़ जाओ।
0: बैठो, जल्दी खड़ो, जल्दी करो, बैठो बैठो बैठो। चलो चलो चलो, उतरो बच्चों, जल्दी करो, गाड़ी आने ही वाली है।
3: उतरो उतरो
1: रानी, जल्दी चलो नहीं तो गाड़ी चली जाएगी।
0: हाँ हाँ, उतरो बेटी।
4: बच्चों, रेलवे स्टेशन पहुंचकर दादाजी और बच्चों ने सबसे पहले खरीदे प्लेटफॉर्म टिकट और फिर झटपट पहुंचे स्टेशन के अंदर।
2: दादाजी, यहाँ तो बड़े सारे लोग हैं।
0: हाँ बच्चों, कुछ लोग तो रेलगाड़ी में चढ़कर आने वाले हैं और अच्छा, कुछ जाने वाले हैं।
2: अच्छा तो ये बात है।
0: अच्छा बच्चों, वो देखो, वो है लोहे की पटरी, इसी पर रेलगाड़ी छुक छुक करके चलती है। बच्चों अब जल्दी जल्दी पीछे आ जाओ।
5: यात्रीगण कृपया ध्यान दें, बिलासपुर से रामपुर को जाने वाली सवारी गाड़ी प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर कुछ ही समय में आ रही है।
2: हो हो हो, रेलगाड़ी आ गई, रेलगाड़ी आ गई।
1: अरे वाह दादाजी, ये तो बहुत बड़ी गाड़ी है।
0: हाँ बच्चों, देखा, ये है सचमुच की रेलगाड़ी। वो सबसे आगे इंजन है और उसके पीछे डिब्बे।
2: दादाजी वो देखिए, एक आदमी हरी झंडी दिखा रहा है। वो हरी झंडी क्यों दिखा रहा है?
0: इसलिए क्योंकि हरी झंडी दिखाने से तो गाड़ी चलती है और लाल झंडी दिखाने से रुक जाती है।
2: अच्छा, अच्छा। अरे हाँ, रेलगाड़ी तो चल रही। आइए दादाजी, अब तो गाड़ी चली गई, सब लोग भी चले गए।
0: हाँ हाँ बच्चों, चलो चलो वापस घर चले।
2: हाँ हाँ दादाजी, चलिए।
5: छुक छुक छुक छुक छुक छुक छुक छुक रेलगाड़ी आती है। छुक छुक छुक छुक

वे पीछे लोहे की पटरी पर खींचे। इंजन आगे डब्बे पीछे लोहे की पटरी पर खींचे, गांव गांव और शहर शहर तक।

सीटी बजाती है, इंजन आगे डब्बे पीछे, लोहे की पटरी पर खींचे। इंजन आगे डब्बे पीछे, लोहे की पटरी पर खींचे, गांव गांव और शहर शहर तक वो

0: अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। अब आपकी मित्र विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
1: उमंग, उमंग, उमंग, उमंग।
2: आप सुन रहे थे NCERT के द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। FM के 101.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये चायबासा केंद्र है।

0: एफएम के 101.7 मेगा हर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये चायबासा केंद्र है। श्रोताओं, स्टूडियो की घड़ी में पूर्वाहन के 10:30 हो चुके हैं। हमारा आज का अगला प्रसारण आकाशवाणी रांची के कार्यक्रमों का होगा, जो कि प्रसारित किए जाएंगे आकाशवाणी के रांची केंद्र से। तो आइए इन कार्यक्रमों के लिए आपको लिए चलते हैं आकाशवाणी रांची, कृपया प्रतीक्षा करें।
1: ऋतुश्री, तो दोनों का
2: जोहार, नमस्कार। तो ऋतुश्री, क्यों ना आज कार्यक्रम की शुरुआत हम एक अच्छे सुविचार के साथ कर लें।
1: बिल्कुल हिमांशु, हर रोज की तरह हम एक सुविचार से आज के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। देखिए, सफलता उन्हें नहीं मिलती जो कभी गिरते नहीं, बल्कि उन्हें मिलती है जो हर बार गिरकर फिर से खड़े होते हैं।
2: और इसी सुविचार को मद्देनजर रखते हुए ये प्यारा सा गीत

0: तो ऋतु, इस सुविचार के बाद अब क्या ख्याल है?
1: बस अब हम बातें करेंगे आज के मौसम की।
0: जी हाँ बिल्कुल।
1: तो 9 सितंबर 2026 को पूरे झारखंड में मौसम सक्रिय रहने की संभावना है और मौसम विभाग के ताजा पूर्वानुमान के अनुसार राज्य के अधिकांश हिस्सों में बारिश गरज के साथ बौछारें हो सकती हैं। और 9 सितंबर से झारखंड में व्यापक बारिश का दौर शुरू होने की भी संभावना जताई गई है।
0: 9 सितंबर के संभावित मौसम की अगर हम बात करें तो बारिश, राज्य के कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश, कुछ स्थानों पर तेज बारिश हो सकती है। गरज चमक की अगर बात करें तो कई इलाकों में वज्रपात और गरज की संभावना बनी हुई है। वहीं कुछ स्थानों पर 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज हवा भी चल सकती है।
1: और हिमांशु, अगर हम बातें करें तापमान की, तो बारिश के कारण तापमान सामान्य से कम रहने की संभावना है। और सावधानी की अगर बात करें
0: हाँ
1: तो
0: हाँ
1: बिजली चमकने के दौरान खुले मैदान, पेड़ और बिजली के खंभों के पास जाने से बचें। और रांची के लिए आईएमडी का 9 सितंबर का पूर्वानुमान 21 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस तापमान और बादल, कुछ दौर की बारिश गरज के साथ बौछार और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा का संकेत दे रहा है।
0: और खास बात हम बताएं ऋतु अपने श्रोताओं को कि 9 और 10 सितंबर को झारखंड में बारिश का असर व्यापक रहने की संभावना जताई जा रही है। तो आइए इस जानकारी के साथ अब इस खूबसूरत गीत का भी आनंद ले लें।
1: हाँ।

0: 49 में हिंदी को राजभाषा का दर्जा आज ही के दिन मिला था।
1: 9 सितंबर 1949 को संविधान सभा में हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में स्वीकार किए जाने की प्रक्रिया से जुड़ी महत्वपूर्ण कार्यवाही हुई। हालांकि संविधान का अनुच्छेद 343 बाद में 14 सितंबर 1949 को अपनाया गया, इसलिए 9 सितंबर को हिंदी दिवस की तारीख समझना सही नहीं है।
0: बिल्कुल, और ये भी बता दें कि 1974 में कैप्टन विक्रम बत्रा का जन्म आज के दिन ही हुआ था। कारगिल युद्ध के वीर सैनिक और परमवीर चक्र से सम्मानित कैप्टन विक्रम बत्रा का जन्म 9 सितंबर 1974 को हुआ था।
1: वहीं 1924 की बात करें तो आज ही के दिन 9 से 11 सितंबर 1924 के दौरान तत्कालीन ब्रिटिश भारत के कोहाट क्षेत्र में गंभीर सांप्रदायिक हिंसा हुई थी।
0: हाँ, 9 सितंबर को विश्व इतिहास में 1776 में अमेरिका का नाम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कर दिया गया था, और 9 सितंबर 1776 को अमेरिकी महाद्वीपीय कांग्रेस ने आधिकारिक रूप से यूनाइटेड कॉलोनीज के स्थान पर यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का नाम अपना लिया था।
1: वहीं 1850 ईस्वी की बात करें तो आज ही के दिन कैलिफोर्निया अमेरिका का 31वां राज्य बना। 9 सितंबर 1850 को कैलिफोर्निया अमेरिका का 31वां राज्य बना था।
0: 1923 में तुर्की में रिपब्लिकन पीपल्स पार्टी की स्थापना, मुस्तफा कमाल अतातुर्क ने 9 सितंबर 1923 को रिपब्लिकन पीपल्स पार्टी की स्थापना की, जिसने आधुनिक तुर्की के राजनीतिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
1: वहीं 1940 की अगर बात करें तो कंप्यूटर के रिमोट ऑपरेशन की शुरुआत हुई थी। अमेरिकी वैज्ञानिक जॉर्ज स्टीटब्रिज ने कंप्यूटर के दूरस्थ संचालन का शुरुआती प्रयोग किया, जो कंप्यूटिंग इतिहास की महत्वपूर्ण उपलब्धि थी।
0: और 1948 में उत्तर कोरिया की स्थापना आज के दिन ही हुई थी। 9 सितंबर 1948 को डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिकन ऑफ कोरिया उत्तर कोरिया की स्थापना हुई और किम इल सुंग इसके नेतृत्व में आ गया है।
1: वहीं 9 सितंबर 1956 की बात करें तो एल्विस प्रेस्ली का ऐतिहासिक टीवी पदार्पण हुआ था। 9 सितंबर 1956 को प्रसिद्ध अमेरिकी गायक एल्विस प्रेस्ली पहली बार द एड सुलविन शो में दिखाई गए।
0: 1971 में अटिका जेल विद्रोह। 9 सितंबर 1971 को अमेरिका की अटिका जेल में कैदियों ने विद्रोह किया। ये घटना अमेरिकी जेल सुधार और नागरिक अधिकारों के इतिहास में महत्वपूर्ण मानी जाती है।
1: वहीं 9 सितंबर 1991 की बात करें तो ताजिकिस्तान स्वतंत्र हुआ। 9 सितंबर 1991 को ताजिकिस्तान ने सोवियत संघ से स्वतंत्रता की घोषणा की। आज यही दिन वहाँ स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है।
0: और हिमांशु, बातें उनका जिन उनकी जिन्होंने आज के दिन जन्म लिया।
1: जी हाँ बिल्कुल।
0: तो 1828 में लियो टॉल्स्टॉय, जो महान रूसी साहित्यकार थे, इनका जन्म आज के दिन हुआ था। इनके कुछ प्रमुख उपन्यास हैं वॉर एंड पीस और
1: एना केरेनिना।
0: हाँ।
1: और कर्नल हार्लैंड सैंडर्स, 1890 में आज ही के दिन उनका जन्म हुआ था। वो KFC के संस्थापक रहे थे।
0: ओटिसा रेंडिंग 1941 में प्रसिद्ध अमेरिकी सोल गायक थे, इनका जन्म आज के दिन ही हुआ था।
1: ह्यू ग्रांट की अगर बात करें तो 1960 में आज ही के दिन इनका जन्म हुआ था। वो ब्रिटिश अभिनेता रहे थे।
0: और जैसा कि हमने बताया था कि कैप्टन विक्रम बत्रा, भारतीय सेना के परमवीर चक्र विजेता, इनका जन्म भी आज के दिन ही हुआ था।
1: वहीं अगर हम अपने बॉलीवुड की बात करें तो खिलाड़ी कुमार के नाम से चर्चित अक्षय कुमार का जन्म भी आज ही के दिन हुआ है। और पूरे विश्व में अक्षय कुमार ने अभिनय की ऐसी डंका बजाई कि जिसकी शोहरत की बुलंदी आज भी दूर दूर तक देखी जा रही है।
0: बिल्कुल।
1: तो क्यों ना अब आगे बढ़ते हुए एक प्यारा सा गीत सुन लिया जाए।

0: स्लीपिंग बैग।
1: ऋतु, मानसून का जो समय है अब खत्म होने वाला है बहुत जल्दी और अच्छे मौसम की शुरुआत होने वाली है, तो इस मौसम में क्या कुछ प्लान है?
0: तो इस मौसम में ये होता ना हिमांशु कि छुट्टियां भी आती हैं, दशहरे की छुट्टी होती है और भी दिवाली की छुट्टी होती है, तो अगर यहाँ नहीं रहे तो फिर कहीं घूमने का अगर हम प्लान करते हैं।
1: पर्व त्योहारों के मौसम में घूमने का कुछ और ही मजा होता है, और क्यों ना हम कश्मीर की सैर अपने श्रोताओं को करवाएं।
0: बिल्कुल, कश्मीर तो कहते हैं कि वो धरती का स्वर्ग है ना।
1: हाँ हाँ बिल्कुल, बर्फ से ढके ऊंचे ऊंचे पहाड़, हरे भरे मैदान, झीलों में तैरती शिकारें और चारों तरफ बिखरी प्राकृतिक खूबसूरती कश्मीर को खास बनाती है।
0: हाँ, कश्मीर की यात्रा की शुरुआत हो तो श्रीनगर से बेहतर जगह शायद ही कोई हो। यहाँ के डल झील पर शिकारी की सवारी करते हुए जब आप चारों तरफ नजर दौड़ाते हैं तो ऐसा लगता है जैसे प्रकृति ने खुद को एक खूबसूरत तस्वीर बनाती हो।
1: बिल्कुल सही कहा ऋतु, गुलमर्ग अपनी बर्फीली पहाड़ियों और मनमोहक नजारों के लिए प्रसिद्ध है। सर्दियों में यह जगह बर्फ प्रेमियों और रोमांच पसंद करने वाले पर्यटकों के लिए बेहद आकर्षक बन जाती है। वहीं पहलगाम की शांत वादियां, बहती नदियां और हरे भरे पहाड़ मन को एक अलग ही सुकून देते हैं।
0: हाँ हिमांशु, कश्मीर सिर्फ खूबसूरत नजारों का नाम नहीं बल्कि यहाँ की संस्कृति, खान पान, पारंपरिक हस्तशिल्प और लोगों की मेहमान नवाजी भी पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करती है।
1: तो अगर आप रोजमर्रा की भागदौड़ से दूर प्रकृति की गोद में कुछ यादगार पल बिताना चाहते हैं तो कश्मीर जरूर जाइए, क्योंकि कश्मीर को सिर्फ देखा नहीं जाता, कश्मीर को महसूस किया जाता है।
0: तो फिर आइए कश्मीर की वादियों में खो जाइए और अपने जिंदगी की खूबसूरत यादों को एक नया अध्याय जोड़ लीजिए।

0: जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार,
1: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है सेल।
2: तो श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे हमारा दैनिक कार्यक्रम, जो कि आपका पसंदीदा कार्यक्रम भी है, जोहार रांची। और आज का जो समय है वो अब हमसे चाह रहा है इजाजत, क्योंकि अगले कार्यक्रम का वक्त हो चला है। तो क्यों न ऋतुश्री, आज हम अपने श्रोताओं को कहें,
3: विदा लेते हैं और कहते हैं जोहार, नमस्कार।

आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। मीडियम में 546.45 मीटर यानी 549 किलो हर्ट्स और FM 100.5 मेगा हर्ट्स पर। आइए श्रोताओं, अब सुनते हैं कार्यक्रम इनसे मिलिए। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आज हम आपको मिलवा रहे हैं राज्यसभा सांसद डॉक्टर महुआ मांझी से। इनसे बातचीत की है सिंधु मिश्रा ने और प्रस्तुति है प्रभु शरण की।

0: श्रोताओं, आज हमारे साथ स्टूडियो में हैं डॉक्टर महुआ मांझी जी। मैं आप सबको बता दूं कि वर्तमान में राज्यसभा की सांसद हैं और साथ ही साथ महुआ मांझी जी का साहित्यिक योगदान भी अतुलनीय है। ये एक प्रसिद्ध कथाकार हैं, साहित्यिक लेखन में इनकी काफ़ी रुचि है और कई सम्मान भी इन्हें मिले हैं। मैडम का मैं अभिनंदन करती हूँ कार्यक्रम में। नमस्कार मैडम।
1: नमस्कार।
0: आज कार्यक्रम की शुरुआत में मैं विशेष तौर से आपके बारे में जानना चाहूँगी कि आपका बचपन कहाँ बीता, कहाँ आप पली बढ़ी और स्कूल और कॉलेज की शिक्षा कहाँ हुई।
1: मेरा जन्म रांची में हुआ और यहीं मैं पली बढ़ी हूँ। यहीं से स्कूलिंग भी हुई है, कॉलेज की पढ़ाई भी हुई है। इनफैक्ट मेरे जो दादाजी और हमारे पूर्वज यहाँ के एक तरह से मुझे लगता है डोमिसाइल हम लोगों का है, चूंकि 1932 के पहले से ही यहाँ बसे हुए हैं। इसकी वजह ये है कि ये पूरा इलाका पहले बंगाल प्रेसिडेंसी का हिस्सा हुआ करता था, फिर वहाँ से कट के बिहार बना और बिहार से कट के झारखंड बना, तो ये पूरा इलाका बंगाल के अंदर में आता था। तो मैं बंगाली हूँ और यहीं पर मेरा जन्म तो हुआ ही है, मेरे पिता का भी जन्म यहीं हुआ है, मेरे दादाजी भी यहीं बसे हुए थे। रांची के काके रोड में हमारा पुराना पुश्तैनी मकान भी है और मुझे अभी भी मैं देश दुनिया घूमती रहती हूँ राज्यसभा जाने के बाद से और ज्यादा, लेकिन मुझे सबसे सुंदर सबसे अच्छी जगह रांची ही लगती है।
0: यहाँ पे मैडम आपसे मैं विशेष तौर से साहित्य के बारे में जानना चाहूंगी कि इसमें आपकी रुचि कैसे और कब बढ़ी।
1: साहित्य में मेरा आना हुआ जब मैं एमए में पढ़ रही थी। मैं सोशियोलॉजी से एमए की हूँ, उसके बाद पीएचडी और यूजीसी नेट वगैरह, लेकिन उसी दौरान मेरी एक फ्रेंड रेमी वहाँ पे मेरे साथ थी पीजी में, रांची यूनिवर्सिटी ही, तो वो अखबारों में लिखा करती थी, तो उसी ने मेरे से कविता मांगी और मैंने कविता लिख कर दी। और फिर कादम्बनी क्लब यहाँ उस समय स्टार्ट हुआ था तो उससे मुझे जोड़ा गया और फिर कादम्बनी क्लब के कार्यक्रमों में जाती थी और वहाँ महीने में एक बार मीटिंग होती थी जिसमें हम अपनी लिखी हुई कविता पढ़ते थे और यहाँ के कुछ प्रोफेसर्स रांची यूनिवर्सिटी के और जो इंटेलेक्चुअल्स थे वो आते थे, वो सुनते थे हमें, कहीं कुछ अशुद्धि होती तो बताते थे, वो एक मंच था। फिर वहीं से कादम्बनी क्लब के प्रोग्राम के बाद ही मैं फिर आकाशवाणी ने मुझे इनवाइट किया, उसके बाद दूरदर्शन ने, ऐसे करके मैं धीरे धीरे जुड़ गई साहित्यिक गतिविधियों से। फिर कहानी लिखा, कहानी के बाद फिर राष्ट्रीय स्तर पर मैं छपी और फिर उपन्यास पे आ गई और उपन्यास भी राजकमल प्रकाशन ने छापा, तो ऐसे करके मैं एक साहित्यकार बनी।
0: जो भी कृति आपकी आई है साहित्य में, जो भी आपने उपन्यास लिखा है या कहानी लिखा है, तो इसमें कोई ऐसी उपन्यास के बारे में आप हमारे श्रोताओं को बताएंगे जो आदिवासी समाज से जुड़ा है या जल जंगल और जमीन से जुड़ी हुई बातें हैं।
1: मेरा उपन्यास मरंगोड़ा नीलकंठ हुआ, ये पूरी तरह से आदिवासी जीवन पर है झारखंड के, ये हो आदिवासियों पर केंद्रित है और सिंहभूम पर है ये उपन्यास। उसमें पूर्वी और पश्चिमी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम में सारिंडा का पूरा जंगल और पूर्वी सिंहभूम में जमशेदपुर के पास जो इलाके हैं उसके आसपास के इलाके हैं जहाँ कॉपर माइनिंग होती है और भी यूरेनियम की माइनिंग होती है, तो इस तरह के माइंस एरिया में जो आदिवासी हैं उनके जीवन को, उनके पूर्वज जब आए थे झारखंड उस समय उन्होंने क्या किया, कैसे जंगल काट के खेती की, उनके रिचुअल्स जितने हैं, जो मृत्यु संस्कार, जन्म संस्कार, विवाह संस्कार, वो सब बहुत डिटेल में मैंने दिया है। यहाँ की प्रकृति की खूबसूरती, यहाँ जो माइनिंग से जो कुछ कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं, रेडिएशन पॉल्यूशन, उसके प्रॉब्लम्स झेलते हैं वो, कैसे क्या, तो ये सब चीज़ लेकर समेटा हुआ है जिसमें कि पूरी तरह से वहाँ के आदिवासी जीवन की एक गाथा है वो आप कह सकते हैं, जिस पर मुझे आज के समय में बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ में, हमारे देश के ढेर सारी यूनिवर्सिटीज़ में एमफिल पीएचडी डिलीट हो चुके हैं उस पर।
0: तो ये विचार आपके मन में कैसे आया कि इन सब चीज़ों को हम इसमें समाहित कर सकते हैं, अपनी पुस्तिका में जोड़ सकते हैं।
1: जी एक्चुअली मैं सोशियोलॉजिस्ट भी हूँ और समाजशास्त्र में शोध वगैरह करना ही पड़ता है, मैंने पीएचडी भी की है और यूजीसी नेट के दौरान भी बार बार फील्ड वर्क वगैरह मैं बहुत सारे कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के दौरान भी करती रही हूँ, तो साहित्य और समाजशास्त्र ये दोनों का जो मिश्रण होता है तो लगता है कि समाज के बारे में लोगों को बताना चाहिए साहित्य के माध्यम से।
0: बिल्कुल।
1: तो मैंने उसको एक लिटरेचर ऑफ सोशियोलॉजी भी एक विंग है सोशियोलॉजी का, तो वैसे मैं राइटर के उपन्यास ही है वो, एक फिक्शन है, लेकिन उसको मैंने एक तरह से बहुत शोध करके लिखा है ताकि उस जीवन के बारे में लिखूं जो धीरे धीरे खोता जा रहा है, क्योंकि आजकल मॉडर्नाइजेशन के दौर पर या जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है और जंगल खत्म हो रहे हैं, संस्कृतियां नष्ट हो रही है, ऐसे समय में अगर हम उसका डॉक्यूमेंटेशन नहीं करते हैं तो फिर वो चीज़ें खत्म हो जाएंगी। तो उनके जो लोकगीत हैं, जो परंपराएं हैं, नृत्य संगीत, उनका जीवन, उनका स्ट्रगल, वहाँ की प्रकृति, वहाँ के पेड़, वहाँ की चिड़िया, वहाँ का जानवर, हर चीज़ को मैंने उसमें प्रिजर्व करने की कोशिश की है, वहीं के विद्वानों से बात करके जो इंटेलेक्चुअल्स रहे हैं उनके समाज के, उनसे इंटरव्यू लिया है मैंने, चाहे वो ओझा गुनी हो, क्योंकि पहले के लोग पढ़े लिखे नहीं थे ऐसा नहीं था, उनके पास ज्ञान बहुत था, जो फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन उनके पास था वो शायद किताबों में आपको नहीं मिलेगा। तो मैं तो उनके कल्चर को बहुत रिच मानती हूँ और उनके कल्चर की समृद्धि को दिखाती हूँ अपने रचनाओं में। मैं एक उदाहरण दूंगी, मेरे उपन्यास मरंगोड़ा नीलकंठुआ की शुरुआत, मतलब उसके फर्स्ट पेज में ही मैंने ये दिखाने की कोशिश की कि उनका लैंग्वेज कितना रिच है, क्योंकि एक पेड़ अगर कहीं पर टूट के गिरा हुआ हो जंगल में तो हम क्या कहेंगे कि एक पेड़ गिर गया या टूट गया, एक टहनी भी टूटेगी तो कहेंगे कि टहनी टूट गई। तो वहां पे हर चीज के लिए अलग अलग शब्द हैं, पूरा वाक्य नहीं बोलना पड़ता है
0: जी।
1: टोया कहेंगे तो समझ जाएंगे क्या है, होचा कहेंगे तो क्या समझ जाएंगे, तो ऐसे अलग अलग शब्द हैं, अगर वो कह दे कि वो पेड़ पूरा जड़ से उखड़ के गिर गया है तो उसको एक शब्द का इस्तेमाल करना पड़ेगा
0: जी।
1: अगर कहेंगे कि टहनी टूटी है तो उसका अलग शब्द है, अगर डाल टूट के लटक गया है और आधा उसका छिल लटक गया है तो उसका जो छिलका है बाहर का वो गिरा है तो उसके लिए अलग शब्द है। तो ऐसे ऐसे ऐसे शब्द हैं जो हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते, उसके लिए हमें कम से कम 20-25 शब्दों का इस्तेमाल करना होगा जिसे वो एक शब्द से कैसे समझा सकते हैं। तो इस तरह की खूबियों को, उनकी जो आइडियोलॉजी है, उनका जो एक तरह से कहा जाए या फिर आप कहेंगे कि उनकी जो सोच है वो कितनी समृद्ध है। देखिए कि अगर एक पेड़ में दो फल है तो वहाँ के बुजुर्ग कहते थे अपने बच्चों से कि आप एक फल तोड़ो और एक फल छोड़ दो गिलहरियों के लिए, पक्षियों के लिए, क्योंकि इस जंगल में इस पेड़ पर सिर्फ तुम्हारा अधिकार नहीं है, सबका अधिकार है। तो इस तरह की सोच लेकर वो चलते हैं, जो कि सामूहिकता की संस्कृति झलकती है कि समूह में जीते हैं वो लोग, अखड़ा में सामूहिक निर्णय होता है। अगर किसी के घर में, किसी के खेत में धान बोना है तो गांव के कई घर के लोग जाएंगे उनको मदद करने, मदद का कॉन्सेप्ट है। छप्पर छाना है तो सब लोग मदद कर रहे हैं, तो सामूहिकता की संस्कृति है, सब लोग मिलजुल के निर्णय लेते हैं, तो ये आजकल कहाँ मिलता है।
0: बिल्कुल।
1: तो उनके पास जल जंगल जमीन की रक्षा का भी अपना तरीका होता है और पर्यावरण की रक्षा का भी तरीका होता है। उनके जितने पर्व त्योहार हैं, कर्मा सरहुल या जो भी है, माघे पोरो, सोहराय जत्रा, सब में आप देखेंगे कि प्रकृति की पूजा होती है, नदी, झरना, पहाड़ या फिर सखुआ का पेड़, करम डाल। इसका मतलब है कि आप इनको बचा के रखो, जो आज पूरी दुनिया झेल रही है, कहीं बाढ़ आ रहा है, कहीं अनावृष्टि, कहीं अतिवृष्टि, कहीं बादल फट रहे हैं, इसलिए कि प्रकृति से छेड़छाड़ हो रहा है ना। हमारा झारखंड अभी भी इतना समृद्ध है, इतने पेड़ पौधे हैं, यहाँ पूजा होती है पेड़ों की, जंगल का, इसीलिए आज हमारा झारखंड इतना हरा भरा है। और ये संस्कृति आदिवासी संस्कृति का ही देन है।
0: और मैडम, मैं तो समझती हूँ कि आपने काफ़ी गहराई से इन बातों को देखा, सुना और पढ़ा भी है और इन बातों को उकेरा है अपनी साहित्य पुस्तिकाओं में। झारखंड की जहाँ तक बात है तो हमारा राज्य एक खूबसूरत प्रकृति से आच्छादित राज्य माना जाता है। एक और आपने उपन्यास लिखा है जिसका नाम है बोरीशाइल्ला। हाँ,
1: मैं बोरीशाइल्ला
0: के बारे में भी मैं थोड़ा सा जानना चाहती हूँ, जानकारी लेना चाहती
1: हूँ। देखिए, ये एक्चुअली बांग्लादेश में एक शहर और एक जिला है जिसका नाम है बोरीशाल। तो ये जो ये है यहाँ पे, इसके माध्यम से मतलब एक जो हीरो है इस उपन्यास का वो बोरीशाल का रहने वाला है और अविभाजित भारत, उस समय विभाजन भारत का नहीं हुआ था, उस समय का है। तो उसमें मैंने ये दिखाया है कि जैसे ये आदिवासी कल्चर को मैंने दिखाया, वहाँ बंगाल के कल्चर को दिखाया
0: जी।
1: और दिखा के मैंने कहा कि एक सुंदर जो देश का एक टुकड़ा जिसमें सभी लोग मिलजुल के रहते थे, सभी लोग रहते थे, उसको किस तरह से राजनीति करके धर्म के नाम पर एक नए राष्ट्र का इमर्जेंस हुआ जिसमें कि बांग्लादेश बना, भारत का ही एक टुकड़ा बांग्लादेश बना, उसमें क्या क्या राजनीति हुई। तो उससे बचना चाहिए कि धर्म के नाम पर लोगों को लड़ाना बंद किया जाए, जो कि आज भी दुनिया में हर जगह देखने को मिल रहा है कि धर्म को लेकर ही बांटा जा रहा है लोगों को। इसे ना बांटा जाए, एक दूसरे का सहयोग करें जो जहां बसा हुआ है उनके साथ, और आपसी जो कटुता है उसे दूर करें
0: जी,
1: क्योंकि ये एक मानवता के हित में नहीं है, इससे नुकसान दोनों पक्ष को होता है। तो मैंने ये दिखाने की कोशिश की, अगर धर्म के नाम पर होता तो विभाजन नहीं होता, एक नए राष्ट्र का इमर्जेंस नहीं होता, धर्म महत्वपूर्ण होता तो।
0: बिल्कुल
1: जी,
0: ये बात बिल्कुल सही है। प्रेम, भाईचारा और सौहार्दपूर्ण माहौल अगर बना रहेगा तो हम किसी भी काम को कर सकेंगे। एक संस्कृत में श्लोक है, साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीन, यानी साहित्य और संगीत और इस तरह की जितनी भी कलाएं हैं इससे विहीन व्यक्ति एक पशु के समान है।
1: जी।
0: तो मैडम मैं आपसे जानना चाहूंगी, साहित्य में तो आपकी रुचि है ही, और इसके अलावा क्या गीत संगीत का भी शौक है आपको?
1: मैं बंगाली परिवार से हूँ और बंगाली परिवार में पढ़ाई के साथ साथ सब कुछ सिखाया जाता है। तो बचपन से मैं शास्त्रीय संगीत भी सीखी हूँ, मैं गिटार भी, हवाइन गिटार भी बजाती थी स्कूल के फंक्शंस वगैरह में, और मेरे पिताजी को भी वायलिन बजाने का बहुत शौक था। वो है थे बिजनेसमैन, लेकिन उनके उनको हर तरह के इंस्ट्रूमेंट में बड़ा शौक था, और मैं बचपन में जैसे हारमोनियम बजा के रियाज करती थी, क्योंकि मैंने क्लासिकल सीखा है।
0: अच्छा।
1: हाँ, और तो इस तरह से, और पेंटिंग का भी बड़ा शौक था, मैंने फाइन आर्ट्स में भी मेरे पास डिग्रियां है, और तो एक एक तो पेंटिंग, ऑयल पेंटिंग्स मेरे घर में बड़े बड़े लगे हुए हैं, मेरे बनाए हुए, और अभी भी मुझे पेंटिंग कभी कभी मन करता है करने का। तो पेंटिंग का शौक, गाने का शौक, गिटार बजाने का शौक रहा है, और इसके अलावा बचपन में डांस ड्रामा करती थी, रविंद्रनाथ टैगोर वगैरह की जो श्यामा और इस तरह के जो उनके प्लेज हैं, तो डांस ड्रामा करती थी, यूनियन क्लब वगैरह में मैं मेंबर भी हूँ। तो ये सब बहुत प्रेस्टिजियस ये है जहाँ पर आर्ट कल्चर का, बंगाली कम्युनिटी का जो होता है उस तरह का हम लोग करते रहे। अभी भी मैं इन चीज़ों में बहुत रुचि रखती हूँ, और रांची में जो पौने 200 साल पुराना यूनियन क्लब है वो एक्चुअली आर्ट कल्चर का एक सेंटर ही है, जिसमें कलकत्ता से बड़े बड़े संगीतकार, गीतकार, बड़े बड़े साहित्यकार वहाँ आते रहे हैं। बचपन से उनका सानिध्य मिला वहाँ पर, जो भी बड़े आर्टिस्ट आते हैं मैं उनको सुनने जरूर जाती हूँ अभी भी। तो इस, और मेरे, चूंकि मेरे बहुत सारे रिलेटिव्स कलकत्ता में भी हैं, तो उनके माध्यम से भी मुझे जुड़े रहने का मौका मिलता रहता है इस तरह की चीज़ों में। और आपने जो कहा कि बिना कला साहित्य संस्कृति के इंसान पशु जैसा है, बिल्कुल सही है। आप देखेंगे कि जहाँ पर जो लोग कला की तरफ जिनका झुकाव होता है वो कम अपराधी होते हैं। अगर आप देखेंगे कि कोई भी अपराध तभी बढ़ता है जब उन परिवारों में आर्ट कल्चर की तरफ झुकाव नहीं होता है, और अगर झुकाव है तो उस परिवार के बच्चे बहुत कम ही अपराधी होते हैं।
0: जी।
1: बहुत कम, आप देखेंगे अगर अगर निकालेंगे डेटा तो आपको पता चलेगा। सोशियोलॉजी से मैं हूँ, तो सोशियोलॉजी में कहा जाता है कि मैन इज अ सोशल एनिमल।
0: जी।
1: मतलब मैन एनिमल तो है, पशु तो है वो भी, लेकिन वो सोशल एनिमल है क्योंकि उसे सभ्य बनाया जाता है सोसाइटी के द्वारा।
0: जी।
1: और सोसाइटी कैसे उन्हें सभ्य बनाती है? आर्ट कल्चर एजुकेशन इनके माध्यम से।
0: जी।
1: तो इसलिए मुझे लगता है कि ये आपने जो कहा वो बिल्कुल सही है, और हर पेरेंट्स को चाहिए अपने बच्चों को कला साहित्य संस्कृति के प्रति भी रुझान उनका पैदा करें, और उसके साथ फिर पढ़ाई करें, क्योंकि उससे एक नज़रिया भी बदलता है। और मुझे लगता है कि जो बच्चे पढ़ाई के साथ साथ इन चीज़ों से जुड़े रहते हैं और वो स्टेज में चढ़ते हैं, पब्लिक के साथ इंटरेक्शन करते हैं, तो उनमें कॉन्फिडेंस बढ़ता है, और बाद में जब पढ़ाई के और उन्हें इंटरव्यू फेस करना पड़ता है तो वो कॉन्फिडेंटली अपनी बात को रख सकते हैं, नहीं तो फिर वो शाई हो जाते हैं। वो जानते हैं, नॉलेज बहुत है, लेकिन उससे वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते। इसलिए मुझे लगता है कि अभी भी हर समाज के लोगों को पढ़ाई के साथ साथ बच्चों को जरूर सिखाना चाहिए बंगाली परिवार की तरह।
0: बिल्कुल मैडम, यहाँ पर मेरा उद्देश्य आपसे यह प्रश्न करने का यही था कि कार्यक्रम में हम आपकी पसंद का एक गीत यहाँ पर श्रोताओं को सुनवाना चाहेंगे। तो कोई ऐसा गीत जो आपके जहन में हो, जो आप बहुत पसंद करती हो।
1: ऐसे तो बहुत सारे गीत हैं, लेकिन एक गीत विशेष रूप से मुझे पसंद है, रविंद्रनाथ टैगोर का लिखा हुआ, जिसे श्रेया घोषाल ने बहुत अच्छे अंदाज में गाया है। वैसे तो इसे कई लोगों ने गाया है, लेकिन श्रेया घोषाल ने जिस क्लासिकल अंदाज में उसे गाया है, मैं कई बार सुनती रहती हूँ। ये गीत मुझे बहुत पसंद है क्योंकि इंस्पायर भी करता है। गीत की कुछ पंक्तियां हैं। ज्योति तुर

0: श्रोताओं, आज हमारी बातें हो रही हैं डॉक्टर महोमान जी, राज्यसभा सांसद से। आज विशेष तौर से हमारी बातें हो रही हैं इनके साहित्य लेखन के बारे में। मैडम, बातचीत के क्रम में आपने बताया कि आप बंगाली परिवार से बिलोंग करती हैं और उस परिवार में आप पली बड़ी, तो आपने हिंदी लेखन को कैसे चुना, इसके बारे में थोड़ा
1: जी,
0: बताएं।
1: चूंकि मेरा जन्म रांची में ही हुआ है, यहीं पढ़ी लिखी हूँ, यहीं स्कूलिंग हुई है, तो हिंदी यहाँ पर चूंकि हिंदी मेन लैंग्वेज है, तो घर में तो बांग्ला में बोलते रहे या बंगाली ही लोगों से तो बांग्ला में ही बात करते
0: जी
1: हैं, लेकिन हिंदी में चूंकि पढ़ाई लिखाई हुई है और हिंदी मेरा काफ़ी स्ट्रांग था, तो हिंदी में ही मैंने लेखन किया और मैंने बहुत मेहनत भी की है। अपने जब मैं साहित्यकार बनने की कोशिश कर रही थी, कविताएं लिख रही थी और उपन्यास कहानी, तो मैंने एक तरह से तपस्या ही की, क्योंकि मुझे हमेशा रविन्द्रनाथ टैगोर की एक पंक्ति याद रहती है कि तुम अपने आप को समृद्ध करो, तपस्या से तुम्हारी शक्ति इतनी बढ़ जाएगी कि फिर किसी की हिम्मत नहीं होगी कि तुम्हारा अपमान कर सके। तो
0: बिल्कुल
1: उसमें होता है कि तपस्या मतलब आप जिस भी फील्ड में हो उसमें आप प्रयास करो समर्पण के साथ, ईमानदारी के साथ। वैसे भी मेरे पिताजी स्वर्गीय परिमल घोष हमेशा कहते थे कि तुम्हारी अपनी एक आइडेंटिटी होनी चाहिए, तुम किसकी बेटी हो, किसकी माँ हो या किसकी पत्नी हो, ये तो अपनी जगह सही है, लेकिन लोग ये भी कहें कि तुम कौन हो। तो
0: बिल्कुल
1: अपना तो मेरे मन में हमेशा ये बात थी कि मुझे अपनी एक आइडेंटिटी बनानी है, चाहे किसी भी फील्ड में हो। मुझे लगता है कि हर इंसान में ईश्वर ने कोई ना कोई प्रतिभा दे रखा है, और महिलाओं में भी, और अगर आप उसे ढूंढें और आपके पास जो सुविधाएं उपलब्ध हैं उनके अनुरूप आप उस फील्ड में मेहनत करें तो सफलता जरूर मिलेगी। आप किसमें, ईश्वर ने कौन सा गुण आप में ज्यादा दे रखा है, आपको खुद तलाशना होगा और फिर आगे बढ़ना चाहिए। और एक दरवाजा बंद होता है तो 10 दरवाजे खुलते हैं,
0: जी
1: इसलिए कभी भी हताश ना हो, डिप्रेशन में ना जाए। मैंने देखा है, मैं खुद सोचती हूँ कि मैंने जब एमए किया, फिर पीएचडी और यूजीसी नेट किया,
0: जी
1: तो बाहर से अच्छे ऑफर आए थे, कई अच्छे यूनिवर्सिटीज में पढ़ाने के लिए मैं जा सकती थी रांची से बाहर, लेकिन मैं, मेरा चूंकि परिवार था, बच्चे छोटे छोटे थे, तो मैं रांची छोड़ के नहीं जा सकती थी और मुझे छोड़ने का मन भी नहीं था, मैं
0: जी
1: रांची को ही अपना बेस बना के रखी थी। तो उस समय कुछ दिनों तक बड़ी हताशा होती थी कि रांची में मेरे सब्जेक्ट का कोई पोस्ट नहीं है, सोशियोलॉजी का उस समय नहीं था, और बाहर जा नहीं सकती थी, तो मुझे लगा कि क्या मेरा पढ़ाई लिखाई सब व्यर्थ चला जाएगा, ऐसा लग रहा था।
0: जी
1: लेकिन फिर मैं हिम्मत नहीं हारी, मैंने लिटरेचर में काम करना शुरू किया, मैंने काफी मेहनत की, एक साहित्यकार के रूप में अपने आप को स्थापित करने की कोशिश की, और मेरा साथ, सबका साथ मिला, मेरे पाठकों ने मुझे पसंद किया और एक राइटर के रूप में मैं जाने जाने लगी, कई पुरस्कार मिले, और उसके बाद फिर मैं वुमेन्स कमीशन में चेयरपर्सन बनी, फिर मैं अपनी पार्टी, मुझे जेएमएम ने मुझे वुमेन विंग का सेंट्रल प्रेसिडेंट बनाया, फिर
0: जी
1: अभी राज्यसभा भेजा। तो एक वो रास्ता बंद हुआ था मेरा जब मैं लेक्चरर नहीं बन पाई थी और थोड़ा मुझे बुरा भी लगा था, लेकिन मैं हिम्मत नहीं हारी और जो भी मेरे पास सुविधाएं उपलब्ध थी उसके अनुरूप मैंने निरंतर काम किया, अपने परिवार को भी देखा, बच्चों को भी देखा, उनको अच्छा एजुकेशन दिया, परिवार के प्रति दायित्व निभाया और साथ साथ कुछ करने की कोशिश करती रही, और उस कोशिश ने रंग लाया और आज मैं राज्यसभा में जा पाई। तो इसीलिए मैं सबसे कहूंगी कि कभी भी अगर कोई एक रास्ता बंद हो, या किसी की जैसे नौकरी कर रही है कहीं दूसरे शहर में, शादी हो गई, दूसरे शहर आ गए, तो आप बिल्कुल ये मत सोचिए कि आपका लाइफ खत्म हो गया या आपका करियर बर्बाद हो गया। आप जहां जा रही हैं उन वहां पे सबको साथ लेके चले, परिवार को साथ लेके चले, क्योंकि आप परिवार से विद्रोह करके आगे नहीं बढ़ सकते हैं।
0: बिल्कुल
1: अगर आप अपने फैमिली वालों को, चाहे वो मायका वाला हो, चाहे वो ससुराल वाले हों, उनके प्रति अपने दायित्वों को नहीं निभाएंगे और फेमिनिज्म के नाम पे झंडा उठाएंगे, तो फिर सब कोई आपके विरोधी हो जाएंगे, फिर आप खुद डिप्रेशन में चली जाएंगी। आप कुछ ऐसा कीजिए कि उनको भी कॉन्फिडेंस मिले, उनको ऐसा लगना चाहिए कि अगर बाहर कुछ कर रही है तो परिवार का नाम ही बढ़ाएंगी, उससे किसी को नुकसान नहीं होगा, अच्छा ही होगा, तब वो सब आपको धीरे धीरे साथ देने लगेंगे, उसके बाद आप अपनी ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं। जितनी भी सफल महिलाएं हैं सबने अपने परिवार को साथ लेकर चला और फाइनली सबने, परिवार ने उनका साथ दिया, वो आगे बढ़ी। जैसे मैं राज्यसभा में देखती हूँ सुधा मूर्ति जी हैं जो इन्फोसिस की ओनर हैं, वो अपने स्ट्रगल के बारे में बताती हैं, तो स्ट्रगल तो सबको करना पड़ता है। जब टाटा कंपनी में वो ज्वाइन की थी उस समय महिलाएं, टाटा कंपनी महिलाओं को नहीं रखती थी एम्प्लॉय के रूप में, लेकिन उन्होंने चिट्ठी लिखा टाटा के ओनर को कि क्या एक महिला होने के कारण मेरी पढ़ाई लिखाई का कोई मोल नहीं, और उस लेटर के आधार पे उनको वहाँ जॉब मिला और वो पहली महिला थी जो वहाँ नौकरी की, वो बताती है हमें कि हम ऐसे करके आगे बढ़े। तो उसी तरह से जया बच्चन जी हमारे साथ हैं, उनका अपना करियर है, और पीटी उषा जी हम लोगों के साथ हैं। तो जितनी भी सफल महिलाएं हैं, फिर एक कॉन्फ्रेंस में मैं गई थी, वहां पे एक महिला मिली जिन्होंने बताया कि लिज्जत पापड़ उन्होंने ही स्टार्ट किया था। वो बोली कि 8-10 महिलाओं को लेकर मैं घर पे पापड़ बेलना शुरू की, और फिर उन्होंने एक कोऑपरेटिव बनाया। फिर आज वर्ल्ड में कितने कंट्रीज में लिज्जत पापड़ जा रहा है, करोड़ों का टर्नओवर है, ब्रांड नेम है एक लिज्जत पापड़। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि कोई काम छोटा नहीं होता, आप कोई भी काम कर सकती हैं जो भी हुनर आप में है, और आगे बढ़ सकती हैं।
0: बहुत महत्वपूर्ण संदेश एक तरह से कहूँ कि मैडम आपने कार्यक्रम में चलते चलते दिया, और मैं समझती हूँ कि जितने भी श्रोता अभी सुन रहे हैं, खासकर हमारे युवा वर्ग के लोग, उनको इससे प्रेरणा जरूर मिलेगी और महिलाएं भी प्रेरित होंगी। और चलते चलते एक लाइन मैं यहाँ जरूर कहूँगी कि असफलता इस बात का द्योतक है कि सफलता के लिए पूर्ण प्रयास नहीं किया गया, जो आपकी बातों में अभी अभी दिख रहा था। श्रोताओं, आज हमारे साथ स्टूडियो में थी डॉक्टर महुआ मांझी जी। मैडम, आज कार्यक्रम में आपने समय निकाला और यहाँ शामिल हुई और कई बातों को हमारे साथ साझा किया, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद आप सभी को, आपके श्रोताओं को भी।

इनसे मिलिए। अभी आप इस कार्यक्रम के अंतर्गत सुन रहे थे राज्यसभा सांसद डॉक्टर महुआ मांझी से सिंधु मिश्रा की बातचीत। प्रस्तुति थी प्रभु शरण की। आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है।

आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलो हर्ट्स और FM 100.5 मेगा हर्ट्स पर। दिन के 11:30 हो चुके हैं और ये वक्त है आपके पसंदीदा फिल्मी गीतों के कार्यक्रम आपकी पसंद का। तो कार्यक्रम में सबसे पहला खत हम ले रहे हैं रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा, लच्छनपुर से विश्वनाथ साहू, लेवई से गुलाब दास मानिकपुरी, दतरंगी से भागवत वर्मा, मेहरनगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत गोहाणकर राही, सरिता गोहाणकर, सिद्धांत गोहाणकर, प्रिंस एकांश गोहाणकर, आकार हाइट्स बहादुरा नागपुर से शैलेश गोहाणकर, वैशाली गोहाणकर, श्वेता सुमित गोहाणकर, कुमारी ध्वनि गोहाणकर परी, नया बाजार बक्सर से राजेश केसरी, पंकज केसरी, रोहन केसरी, गोलाघाट बक्सर से विजय केसरी, गौरी शंकर केसरी, शंभू केसरी। आप सबों ने सुनना चाहा है फिल्म साजन की बाहों में का ये युगल गीत। आवाजें हैं कुमार सानू और आशा भोसले की। समीर के शब्दों को संगीतबद्ध किया है नदीम श्रवण ने।

अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर

0: ಸ್ವಯಂ ಇದು ಕಟ್ಪಡೆ ಭಾರತೀಯ ಸೇನಾ.
1: कार्यक्रम का अगला गीत आप सभी श्रोताओं के फरमाइश पर कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय, दुबिहा नेवादा गाजीपुर से प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी राय, प्रांजल राय, शेरपुर कलां गाजीपुर से अवधेश राय, श्रीमती प्रीति राय, नवनीत राय, छत्रपति संभाजी नगर से राजेश साबले पाटिल, राजदीप राजेश,

ये फरमाइशी फिल्मी गीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के रांची केंद्र से आपकी पसंद कार्यक्रम के अंतर्गत। कार्यक्रम में अगला खत आप सबों का, मगनपुर से अमजद अली अब्बास आलम, बड़ा बाम्बो सुपाई साई से देवेंद्र तांती, राकेश तांती, कुमारी निशा, प्रकाश तांती, श्याम देव नायक, ललित प्रधान, चक्रधरपुर ग्राम गेलिया लोहर से कोमल बेसरा, बासंती बनमाली बेसरा, सिद्ध कुमारी, नूरमहल महसूल सीतामढ़ी से नुसरत जहानाज, तलत जहानाज, फरहत जहानाज, रिफत जहानाज, नुजहत जहानाज, साजिया शाहिनाज, नाजिया नूरीनाज, कुआत बिहार से नरगिस जफर। आप सबों की फरमाइश पर आइए सुनते हैं बादल फिल्म का ये गीत, सोनू निगम और कविता कृष्णमूर्ति की आवाजों में, समीर के शब्दों को संगीतबद्ध किया है अनु मल्लिक ने।

और अब कार्यक्रम के आखिर में आप सबों की फरमाइश। गोंदा टाउन कांके रोड रांची से रमेश प्रसाद जायसवाल, मनदीप, मंटू, मोनू, सोनू, आराध्या। खरसावां झारखंड से सुकरा नायक, गौरव नायक, मंजू नायक, जलेश्वर नायक और परिवार के सभी लोग। जतुका किशनपुर से आलम दिलकश, शबाना नाज, रिजवान राही, इमरान राजा, आलम शेख, फिरोज आलम और चांदनी नाज। आप सबों की फरमाइश पर आइए सुनते हैं फिल्म परिचय का ये गीत। किशोर कुमार की आवाज में गुलजार के शब्दों को संगीतबद्ध किया है आर डी बर्मन ने।

इस गीत के साथ ही आपकी पसंद कार्यक्रम यही संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। दिन के 12 बज चुके हैं और ये वक्त है महिलाओं के खास प्रोग्राम गृह लक्ष्मी का। तो आइए सुनते हैं इस कार्यक्रम को।

0: नई सुबह, नई उम्मीद, नई सोच का पैगाम, सजग कदमों से करे हर मुश्किल आसान, ज्ञान बने अपनी ताकत और जागरूकता बने पहचान। नमस्कार सखियों, आप सभी को रेडियो सखी खुशबू की ओर से स्नेह भरा नमस्कार और आप सभी का स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम गृहलक्ष्मी में। और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी जहाँ भी होंगी स्वस्थ होंगी और खुश होंगी।
1: और बहनों, स्वीकार कीजिए रानी का भी प्यार भरा नमस्कार और ढेरों मंगल कामनाएं आप सभी के लिए। बहनों, आज के हमारे इस गृहलक्ष्मी कार्यक्रम में एक ऐसे विषय को लेकर आए हैं जो आज के डिजिटल दौर में हम सभी के लिए बहुत जरूरी है ना खुशबू?
0: हाँ रानी, और आज मोबाइल और इंटरनेट हमारे जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुके हैं। घर बैठे बिल जमा करना हो, पैसे भेजने हो, ऑनलाइन खरीदारी करनी हो या किसी से भी बातचीत करनी हो, सब कुछ हमारी उंगलियों के एक टच से संभव है ना?
1: हाँ बिल्कुल, लेकिन जहाँ डिजिटल दुनिया ने हमारी जिंदगी को आसान बनाया है, वहीं इसके साथ कुछ खतरे भी तो सामने आए हैं। इन्हीं खतरों में से एक है साइबर अपराध। साइबर अपराध एक ऐसा अपराध जिसमें तकनीक और इंटरनेट का इस्तेमाल करके किसी व्यक्ति को धोखा दिया जाता है बहनों, या उसकी निजी और आर्थिक जानकारी का गलत इस्तेमाल किया जाता है।
0: और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि साइबर अपराधी अक्सर हमारी छोटी सी लापरवाही का फायदा उठाते हैं। कभी हमें फर्जी कॉल करते हैं, कभी आकर्षक मैसेज भेजते हैं, तो कभी जीतने का लालच देते हैं, तो कभी बैंक या किसी सरकारी संस्था के नाम पर डर पैदा करते हैं और लोगों से उनकी गोपनीय जानकारी हासिल करने की कोशिश करते हैं।
1: हाँ बिल्कुल, लेकिन बहनों एक बात हमेशा याद रखिए, आपकी गोपनीय जानकारी आपकी सुरक्षा की चाबी है। इसे किसी अनजान आदमी के साथ कभी साझा न करें, क्योंकि ऐसा करना खतरे को आमंत्रण देने जैसा है।
0: बिल्कुल सही, और सबसे जरूरी बात याद रखिए कि अनजान लिंक पर क्लिक करने से पहले 100 बार सोचिए, अनजान व्यक्ति से जानकारी साझा करने से पहले रुकिए और किसी भी भुगतान को करने से पहले पूरी तरह जांच कर लीजिए, है ना रानी?
1: हाँ बिल्कुल सही कहा खुशबू, और सबसे जरूरी बात OTP किसी के साथ साझा नहीं करना है। बैंक या कोई विश्वसनीय संस्था भी आमतौर पर आपसे आपका OTP, ATM पिन या पासवर्ड बताने के लिए कभी नहीं कहता है ना?
0: बिल्कुल, और इसलिए सखियों, साइबर अपराध से बचने का सबसे आसान तरीका है सावधान रहना, है ना?
1: बिल्कुल,
0: और सतर्क रहना, जल्दबाजी ना करना। अगर कोई फोन करके आपसे तुरंत कहे ना कि पैसे भेजिए या कोई गोपनीय जानकारी देने को कहे, तो पहले उसकी सच्चाई को जांचे।
1: हाँ, और सावधानी ही बचाव है। और इसके साथ ही अपना पासवर्ड मजबूत रखें। अलग अलग डिजिटल खातों के लिए अलग पासवर्ड रखना, मोबाइल में स्क्रीन लॉक और जरूरी सुरक्षा सुविधाएं जरूर रखें।
0: सोशल मीडिया पर अपनी निजी जानकारी जैसे मोबाइल नंबर, पता, बैंक संबंधी जानकारी सार्वजनिक करने से पहले 100 बार सोचे।
1: साथ ही सखियों, ऑनलाइन खरीदारी करते समय भी वेबसाइट की विश्वसनीयता जांचें। किसी अनजान ऐप को डाउनलोड करने से पहले सावधानी बरतें और ऐप को दी जाने वाली जो परमिशन होती है उस पर भी ध्यान दें। यानी डिजिटल दुनिया में सुविधा के साथ जिम्मेदारी और सावधानी बहुत जरूरी है बहनों।
0: बिल्कुल रानी, क्योंकि एक छोटी सी सावधानी हमारी मेहनत की कमाई और हमारी निजी जानकारी दोनों को सुरक्षित रख सकती है।
1: हाँ बिल्कुल खुशबू, साइबर सुरक्षा सिर्फ अपने तक सीमित रखने की बात नहीं है बहनों, बल्कि घर के बच्चों और बुजुर्गों को भी और इसके बारे में जागरूक करना चाहिए।
0: सही कहा, खासकर बच्चों को समझाना जरूरी है कि इंटरनेट पर हर आदमी भरोसे के लायक नहीं होता।
1: हाँ, किसी अनजान आदमी से बातचीत करते समय निजी जानकारी साझा न करें और संदिग्ध लिंक या मैसेज को तुरंत अपने माता पिता को दिखाएं, ये भी तो उन्हें समझाना है।
0: बिल्कुल, बच्चों को ये समझाना बहुत जरूरी है। और सखियों, अगर कभी दुर्भाग्यवश साइबर ठगी का हम शिकार हो जाएं, तो चुप ना बैठे, तुरंत अपने बैंक या संबंधित अधिकारी को सूचित करें और उपलब्ध आधिकारिक साइबर अपराध शिकायत व्यवस्था के माध्यम से शिकायत दर्ज करें। साइबर अपराध की शिकायत दर्ज करने के लिए 1930 यानी 1930 हेल्पलाइन नंबर और नेशनल साइबर रिपोर्टिंग पोर्टल का इस्तेमाल किया जा सकता है।
1: हाँ बहनों, लेकिन सावधानी को अपना साथी बनाकर, और सखियों ये जरूरी है, घटना से जुड़े संदेश, स्क्रीनशॉट, लेनदेन की जानकारी, फोन नंबर और अन्य उपलब्ध प्रमाण सुरक्षित रखें। तो सखियों, डिजिटल दुनिया का हिस्सा बनिए लेकिन सावधानी के साथ, क्योंकि तकनीक हमारे जीवन को बेहतर बनाने का माध्यम है, लेकिन इसका सुरक्षित इस्तेमाल हमारी जिम्मेदारी है।
0: तो सखियों, सजग रहिए, सुरक्षित रहिए और डिजिटल दुनिया का इस्तेमाल समझदारी से कीजिए। जिंदगी को, खुशियों को महसूस कीजिए, क्योंकि जो भी है बस यही एक पल है।

0: जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार,
1: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है सेल।
2: वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, बस एक क्लिक में। अरे वाह,
3: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है,
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: सखियो, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम गृहलक्ष्मी में। और सखियो, आज है बुधवार, यानी हमारे कार्यक्रम की विशेष कड़ी संस्कार की। तो सखियो, आज हम बातें करेंगे बच्चों का समाजीकरण आज की जरूरत। क्यों रानी?
6: खुशबू, याद है वो बचपन जब शाम होते ही गली में, खेल के मैदान में बच्चों की आवाजें गूंजने लगती थी?
5: हाँ।
6: कोई दोस्तों के साथ खेल रहा होता था, कोई पड़ोस के घर चला गया, तो कोई दादा दादी के पास बैठकर उनकी कहानियां सुन रहा होता था। रूठना भी था, मनाना भी था, है ना?
5: हारना भी था और फिर जीतने की कोशिश भी थी। और इन्हीं छोटी छोटी अनुभवों के बीच बच्चे रिश्ते निभाना, यानी कि मिलजुल कर रहना और दूसरों को समझना और समझाना सीखते थे, है ना रानी?
6: आज भी बचपन तो वही है, बच्चे भी हैं, लेकिन उनकी दुनिया थोड़ी बड़ी और बदल गई है। आज हाथ में मोबाइल है, सामने पूरी दुनिया सिर्फ एक क्लिक में, लेकिन आज बच्चों का बचपन कहीं खो गया है। बच्चों के पास अपने आसपास की दुनिया के लिए क्या उतना समय है?
5: सखियों, बदलती जीवन शैली में यही सवाल बच्चों के समाजीकरण को हमारे लिए एक जरूरी विषय बना देता है। बदलती जिंदगी ने बच्चों को बहुत कुछ सिखा दिया है, लेकिन कहीं ना कहीं उनसे कुछ छीना भी है। लोगों के साथ बैठने का समय, खुलकर बातचीत करने का समय, मिलकर खेलने का समय और रिश्तों को समझने के लिए छोटे छोटे जो मौके हैं, वो हमसे छिनता जा रहा है।
6: और शायद इसलिए आज बच्चों को सिर्फ पढ़ाई और करियर के लिए तैयार करना काफी नहीं है। उन्हें लोगों के बीच रहना, रिश्तों की कदर करना और दूसरों की भावनाओं को समझना भी सिखाना होगा, क्योंकि कल का समाज कैसा होगा इसकी शुरुआत आज हमारे घरों में पल रहे बच्चों से ही तो होती है। खुशबू,
5: तो सखियों, आज संस्कार की इस खूबसूरत कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम बातें करते हैं बच्चों के समाजीकरण की एक ऐसी जरूरत, जो कि एक ऐसी जरूरत है जिस पर हर माता पिता को थोड़ा ठहर कर सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए।
6: बिल्कुल खुशबू, आज हमने बच्चों को दुनिया से जुड़ने के बहुत सारे साधन तो दे दिए, लेकिन जो वो अपने आसपास की दुनिया से दूर होते जा रहे हैं, और इसमें बच्चों की गलती भी नहीं है। जिस माहौल में वे बड़े हो रहे हैं, वही उनके व्यवहार को आकार दे रहा है।
5: घर छोटे हुए हैं, दिनचर्या व्यस्त हो गई है और मोबाइल उनकी जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। और बच्चे जो पहले खेलते हुए बहुत कुछ सीख जाते थे, किसी दोस्त से झगड़ा भी हुआ तो थोड़ी देर बाद दोस्ती हो जाती थी। हार जीत के साथ साथ अपनी बारी का इंतजार करना, अपनी चीजें दूसरों के साथ बैठना, ये सब कुछ हाँ, बच्चे आज भूलते जा रहे हैं।
6: हाँ, और आज इनमें से कई अनुभव, जैसा कि खुशबू ने कहा, बच्चों की जिंदगी से कम होते जा रहे हैं, और यही वजह है कि समाजीकरण की बात आज पहले से ज्यादा जरूरी हो गई है। समाजीकरण यानी केवल लोगों के बीच उठना बैठना नहीं, बल्कि ये भी समझना कि सामने वाला व्यक्ति क्या महसूस कर रहा है।
5: अपनी बात रखना, दूसरों की बात सुनना, मिलकर काम करना, सहयोग करना, अपनी बारी का इंतजार करना और जरूरत पड़ने पर किसी के काम आना, और इसकी पहली पाठशाला कौन होती थी रानी? हमारा घर।
6: हाँ बिल्कुल खुशबू, बच्चा सबसे पहले परिवार से ही सीखता है कि लोगों के साथ कैसा व्यवहार करना है। अगर घर में प्यार सम्मान से बात होगी, सहयोग की भावना होगी, तो बच्चे भी वही सीखेंगे। और बच्चों को संस्कार देने का मतलब केवल उन्हें समझाते रहना भी नहीं है खुशबू।
5: बिल्कुल, और हम जैसा व्यवहार करते हैं रानी, जैसे तुमने बताया कि बच्चे अपने बड़े से ही सीखते हैं, बच्चा भी उसी को देखकर सीखता ही है। अगर हम बच्चे को कहते हैं कि गुस्सा मत करो, लेकिन उससे पहले क्या करना होगा रानी?
6: हमें अपना गुस्सा कम करना होगा, है ना?
5: बिल्कुल सही।
6: हाँ, और क्योंकि बच्चा हमारी बात नहीं मानता, हमारा व्यवहार याद रखता है। और आज माता पिता के पास भी समय की कमी है, काम, घर, पढ़ाई, जिम्मेदारियां, बहुत सारी चीजें हैं। कई बार बच्चा सामने बैठा होता है और हम उसके साथ होते हुए भी उसके साथ नहीं होते, और यही फर्क है सिर्फ बच्चे के पास होने और बच्चे के साथ रहने में।
5: बहुत अच्छी बात कही रानी तुमने। हर दिन बच्चों के साथ बातचीत करने का समय होना चाहिए हमारे पास, जिसमें हम सिर्फ उनकी

0: बातें सुने, ये उनके लिए भी बहुत मायने रखती है। और बातचीत भी सिर्फ पढ़ाई और नंबरों की नहीं होनी चाहिए।
1: बिल्कुल, पढ़ाई के साथ साथ उनकी भावनाओं को समझने की कोशिश करें। जैसे आज क्या हुआ स्कूल में, कोई परेशानी तो नहीं है तुम्हारे दोस्तों को या तुम्हें भी, तुमने किसी की मदद की, ये ऐसे सवाल है ना खुशबू जो बच्चे को अपनी भावनाओं के साथ साथ दूसरों की भावनाओं के बारे में सोचने की आदत देते हैं।
0: हाँ बहनों, बच्चों को घर के छोटे छोटे कामों में भी शामिल करना बहुत जरूरी है, जैसे कि पौधे में पानी देना, अपनी चीजें व्यवस्थित करना। ये छोटे काम बच्चों को बताते हैं कि परिवार में हमारी भी जिम्मेदारी है। इसके साथ साथ बच्चों को दोस्तों के साथ खेलने का समय भी मिलना चाहिए, क्योंकि खेल केवल शरीर को स्वस्थ नहीं रखता बल्कि हमें व्यवहार भी सिखाता है।
1: हाँ, कभी जीतना, कभी हारना, कभी अपनी बात मनवाना तो कभी दूसरे की बात मान लेना, यही तो जीवन है बहनों। लेकिन यहाँ एक बात समझना और भी जरूरी है खुशबू, आज समाजीकरण का मतलब ये नहीं है कि बच्चे को हर किसी से घुलने मिलने या हर किसी पर भरोसा करने को कह दिया जाए। बच्चों का सामाजिक व्यवहार के साथ साथ सामाजिक समझ भी देनी है ना?
0: बिल्कुल। और सखियों, उन्हें ये भी बताना जरूरी है कि अपनी निजी जानकारी हर किसी के साथ साझा नहीं करनी चाहिए। कोई व्यक्ति असहज महसूस कराए तो चुप नहीं रहना चाहिए। किसी भी गलत व्यवहार को सिर्फ इसलिए नहीं सहन करना चाहिए कि सामने वाला बड़ा है या हमारा परिचित है।
1: हाँ, और ये बात लड़के और लड़कियों दोनों के लिए जरूरी है। बच्चों को ये विश्वास देना जरूरी है बहनों कि अगर तुम्हारे साथ कुछ गलत हो तो तुम बिना डर या शर्म के हमारे पास आ सकते हो, क्योंकि जिस घर में बच्चे की बातें सुनी जाती है वो परेशानी में घर से दूर नहीं भागता, है ना खुशबू?
0: और बच्चों की हर गलती को खुद सुधारने की जल्दी भी नहीं करनी चाहिए हमें। उन्हें अपनी छोटी छोटी समस्याओं को खुद सुलझाने का मौका देना चाहिए। इससे वे बातचीत करना, समझौता करना, समस्या सुलझाना सीखते हैं। क्यों रानी?
1: हाँ बिल्कुल, यानी बच्चे को हर मुश्किल से बचाना नहीं, उसे मुश्किलों का सामना करना भी तो सिखाना है खुशबू, क्योंकि जिंदगी में हर व्यक्ति उसकी बात नहीं मानेगा, हर बार जीत नहीं मिलेगी, हर रिश्ता उसकी इच्छा के अनुसार नहीं चलेगा। बच्चे को ये समझाना बहुत जरूरी है कि हर असहमति का मतलब दुश्मनी नहीं होता।
0: सही कहा रानी तुमने, और शायद यही आज के समाजीकरण की सबसे बड़ी जरूरत है। बच्चे अपनी बात मजबूती से कहे लेकिन दूसरे की बात सुनने का भी धैर्य रखे।
1: हाँ बिल्कुल, अपनी सफलता की खुशी मनाए लेकिन किसी दूसरे की सफलता से जले नहीं। अपनी जरूरतों के साथ साथ दूसरे की जरूरत भी महसूस करे। बच्चों को दुनिया की हर सुविधा देने से पहले उन्हें दुनिया को समझना सिखाए बहनों। बच्चों को मोबाइल और इंटरनेट की दुनिया से तो जोड़िए लेकिन उन्हें रिश्तों की दुनिया से टूटने मत दीजिए।
0: बिल्कुल सही कहा रानी तुमने। तो इसलिए सखियों, बच्चों के साथ थोड़ा सा वक्त बिताइए, उनकी बातें सुनिए, उन्हें लोगों से जुड़ने दीजिए और अपने व्यवहार से वो संस्कार दीजिए जिसे आप अपने व्यक्तित्व में देखना चाहते हैं।
1: हाँ, उनके व्यक्तित्व में।
0: बिल्कुल,
1: बच्चों को सिर्फ ये सिखाना जरूरी नहीं है कि दुनिया में आगे कैसे बढ़ना है, उन्हें ये भी तो सिखाना है खुशबू कि इस दुनिया को थोड़ा और बेहतर कैसे बनाना है। और हमने इतनी सारी बातें की है ना, तो चलो अब इसी खूबसूरत सोच के साथ सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

0: सखियों, सफर यूं ही कट जाता है साथ रहने से, और साथ हम रहते हैं समाज में, और समाज में नैतिक मूल्यों का काफी महत्व होता है, क्योंकि नैतिक मूल्य है हमारे जीवन और समाज की नींव। ईमानदारी, सच्चाई, दया, सम्मान, सहयोग, जिम्मेदारी जैसे नैतिक गुण हमें एक अच्छा इंसान बनाते हैं, और जब समाज के लोग इन मूल्यों को अपनाते हैं तो आपसी विश्वास, प्रेम और भाईचारा बढ़ता है।
1: हाँ खुशबू, नैतिक मूल्य हमें सही और गलत में फर्क करना सिखाते हैं बहनों, और कठिन परिस्थितियों में सही निर्णय लेने की प्रेरणा भी देते हैं। आज के बदलते समय में नैतिक मूल्यों की आवश्यकता और भी बढ़ गई है। यदि हम अपने व्यवहार में विनम्रता, सच्चाई, अनुशासन और दूसरों के प्रति सम्मान रखें तो एक शांतिपूर्ण, सुरक्षित और आदर्श समाज को बनाया जा सकता है ना खुशबू?
0: बिल्कुल। और सखियों, हम अक्सर कहते हैं कि आज दुनिया बहुत आगे बढ़ गई है, नई तकनीक, नई सुविधाएं, सफलता के नए रास्ते, लेकिन जरा सोचिए, केवल आगे बढ़ जाना ही एक अच्छे समाज की पहचान है?
1: और समाज की असली पहचान उसकी ऊंची इमारतों या बड़ी उपलब्धियों से नहीं, बल्कि वहां के रहने वाले लोगों के व्यवहार से होती है। हम एक दूसरे से किस तरह बात करते हैं, दूसरों की भावनाओं को कितना समझते हैं, और जरूरत के समय एक दूसरे के कितने काम आते हैं, यही हमारे समाज का चरित्र बनता है ना?
0: यही नैतिक मूल्यों की भूमिका है ना रानी, सामने आती है।
1: हाँ, बिल्कुल।
0: और जैसा कि हमने बताया कि सच्चाई, ईमानदारी, बड़ों का सम्मान करना और दूसरों की मदद करना और अपनी जिम्मेदारी निभाना, ये सभी बातें सुनने में जरूर छोटी लगती हैं, लेकिन इन्हीं से एक मजबूत समाज की नींव तैयार होती है और समाज में नैतिक मूल्यों का महत्व बढ़ता है।
1: आज हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे पढ़ाई में आगे बढ़ें, अपने पैरों पर खड़े हों और जीवन में सफल बने, लेकिन सफलता के साथ संवेदनशीलता भी तो उतना ही जरूरी है, और साथ में ईमानदारी भी।
0: बिल्कुल। इसलिए नैतिक मूल्य केवल व्यक्ति के चरित्र को मजबूत नहीं करती, बल्कि पूरे समाज को बेहतर और संवेदना युक्त या मानवीय बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हमें स्वयं नैतिक मूल्यों को अपनाने के साथ साथ आने वाली पीढ़ी को भी इसका महत्व समझाना चाहिए।
1: हाँ, तो बहनों सावधान रहें, बच्चों के साथ समय बिताएं और खुश रहें। और खुशबू, इसी के साथ अब वक्त हो गया है अपनी बहनों से विदा लेने का।
0: बिल्कुल।
1: लेकिन जाने से पहले बता दें कि कार्यक्रम की प्रस्तुति थी गौरव कुमार पांडे की। अब अपनी सखियों रानी
0: और खुशबू को दे इजाजत।
1: नमस्कार।
2: गृहलक्ष्मी, आप सुन रहे थे गृहलक्ष्मी, प्रस्तुति थी गौरव कुमार पांडे की। आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। आइए अब सुनते हैं फिल्म संगीत कार्यक्रम की पहली प्रस्तुति, फिल्म काला पत्थर। आवाजें हैं किशोर कुमार और साथियों की, शब्द रचना है साहिर लुधियानवी की, और संगीत है राजेश रोशन का।

अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर

0: स्वयं ही घट पड़े
1: भारतीय सेना।
2: कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए आपको सुनवाते हैं फिल्म नैया का ये गीत यशुदास की आवाज में। गीत और संगीत है रविंद्र जैन का।

0: ये फिल्म संगीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के रांची केंद्र से फिल्म संगीत कार्यक्रम के अंतर्गत। आगे बढ़ते हुए आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का अगला गीत, फिल्म देश प्रेमी से।
1: जाओ जाओ, अरे जाओ ना।

फिल्म देश प्रेमी में अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज, शब्द थे आनंद बख्शी के, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का था। आइए अब सुनते हैं नसीब फिल्म में लता मंगेशकर और साथियों को। गीत आनंद बख्शी, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

और अब कार्यक्रम के आखिर में आपको सुनाते हैं फिल्म कुदरत का ये गीत लता मंगेशकर की आवाज में। मजरूह सुल्तानपुरी के शब्द हैं और संगीत है आर डी बर्मन का।

फिल्म कुदरत के इस गीत के साथ ही आज का फिल्म संगीत का कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है, दिन का एक बजने को है। अब समाचार होंगे हमारे दिल्ली केंद्र से, पहले हिंदी फिर अंग्रेजी में, कृपया प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनसेवा के 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर 17 सितंबर से एक महीने का सेवा संकल्प अभियान शुरू करेगी। ये अभियान प्रधानमंत्री के जन्मदिन के अवसर पर शुरू किया जाएगा। नई दिल्ली में आज संवाददाता सम्मेलन में भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 अक्टूबर को जनसेवा के 25 वर्ष पूरे करेंगे। प्रधानमंत्री ने 7 अक्टूबर 2001 को ही गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला था। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने इन वर्षों में जनसेवा से राष्ट्र सेवा के मंत्र के साथ सेवा की यात्रा को लगातार आगे बढ़ाया है।
1: जो आम लोगों के जीवन को बेहतर बनाने का प्रयास रहा है, एक बहुत बड़ा योगदान नेतृत्वकर्ता के रूप में उन्होंने दिया है। उनका सफर एक साधारण कार्यकर्ता के रूप में जो प्रारंभ हुआ और आज देश के प्रधान सेवक के रूप में जो उन्होंने काम को आगे बढ़ाया, ये केवल उनके स्पष्ट विजन, उनके दृढ़ संकल्प, सामाजिक जीवन में लगातार गुणात्मक कैसे परिवर्तन आए, कैसे उनके जीवन में बदलाव आए, इसका प्रयास उन्होंने किया।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज कोलंबो में श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसनायका से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत और श्रीलंका के बीच सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने दोनों देशों के विकास और लोगों की भलाई के लिए मिलकर काम करने की प्रतिबद्धता दोहराई। श्री सिंह ने कहा कि दोनों देश क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और समृद्धि के लिए भी मिलकर काम करते रहेंगे। भारत ने सऊदी अरब में हाउसी विद्रोहियों के हमलों की निंदा की है। भारत ने आम नागरिकों और आर्थिक ठिकानों को निशाना बनाए जाने पर चिंता व्यक्त की। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि ऐसे हमले क्षेत्र की सुरक्षा और स्थिरता के लिए खतरा हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे हमलों से बाब अल मंदेब जलडमरू मध्य में आवाजाही प्रभावित होती है और इन्हें बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि नेपाल के काठमांडू में भारतीय फोरेंसिक टीम ने अपने काम में महत्वपूर्ण प्रगति की है। टीम अब तक 1400 से अधिक डीएनए नमूनों की जांच कर चुकी है और 378 डीएनए प्रोफाइल तैयार किए हैं। इस बीच भारत के संयुक्त तकनीकी टीम ने आज चिले में स्थित सुरंग में जल निकासी और कीचड़ हटाने का काम जारी रखा। इस्माइली समुदाय के 50वें इमाम प्रिंस रहीम आगा खान पंचम आज से 15 सितंबर तक भारत की यात्रा पर रहेंगे। वे उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन के निमंत्रण पर भारत आए हैं। प्रिंस रहीम का कल उपराष्ट्रपति से मिलने का कार्यक्रम है। वे नई दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से भी मुलाकात करेंगे। न्यायमूर्ति महेश चंद्र त्रिपाठी ने आज बंबई उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। महाराष्ट्र के राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश के वाराणसी में 9वें राष्ट्रीय पोषण माह की शुरुआत की। इस वर्ष का विषय है हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी। जवाहर नवोदय विद्यालयों के लिए 27वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता 2025-26 का पुरस्कार वितरण समारोह कल नई दिल्ली के संसद भवन परिसर में आयोजित किया जाएगा। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू इस समारोह की अध्यक्षता करेंगे और उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों और विद्यालयों को पुरस्कार से सम्मानित करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने परमवीर चक्र से सम्मानित कैप्टन विक्रम बत्रा की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। अमरीकी ओपन टेनिस के पुरुष सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में स्पेन के कार्लोस अल्कराज और अमरीका के बेन शेल्टन के बीच मुकाबला जारी है। वहीं अमरीका की जेसिका पेगुला ने महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। मौसम विभाग ने कल बिहार, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। अगले दो दिनों तक उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आंधी तथा बिजली कड़कने की स्थिति बनी रहेगी। आज तटीय आंध्र प्रदेश, केरलम और माही में गर्म और उमस भरा मौसम रहने का अनुमान है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani. The news read by Anuja Kumar. The BJP will launch a month-long Seva Sankalp Abhiyan from the 17th of this month on the occasion of the birthday of Prime Minister Narendra Modi to mark the completion of his 25 years in public life. Addressing a press conference in New Delhi today, BJP President Nitin Naveen said the Prime Minister will complete 25 years of his public service on the 7th of October, as on this day. In 2001, Mr. Modi began his tenure as the Chief Minister of Gujarat. The BJP president emphasized that under the leadership of Prime Minister Modi, India's progress has not been limited to development, but India's cultural identity and heritage have also been strengthened.
1: उन्होंने केवल इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट की बात नहीं
3: He did not just focus on infrastructure and development. He also sought to change the way the people of this country think. When we look at his entire tenure, we can see that his decisions were not merely transformative in terms of governance and development, but also brought about a significant change in the lives of ordinary people. His 25 years of service and dedication have been marked by continuous efforts, a life rooted in values and committed governance. His contribution has given a new dimension to the history of democracy in the world.
1: के लोकतंत्र के इतिहास को एक अलग परिभाषा के साथ सामने लाया है
2: The Seva Sankalp Abhiyan will begin with organizing blood donation camp. Mr. Naveen informed that Seva Jyoti Kalash Yatra will also be taken out on the 7th of October, connecting villages and urban areas to express gratitude to the Prime Minister. He said that Seva Mera Yogdan program will be held from the 17th of this month to the 17th of October with public participation under which various activities will be undertaken. Defence Minister Rajnath Singh held a meeting with President of Sri Lanka Anura Kumara Dissanayake in Colombo today. During the meeting, both the leaders reaffirmed that as civilizational twins, close neighbours and maritime partners, India and Sri Lanka will continue to work together for the development of both the countries and also for the welfare of their people. In a social media post, Mr. Singh said that they also reaffirmed the work jointly to ensure the safety, security, peace and prosperity of the region. The External Affairs Ministry today stated that the Indian forensic team in Kathmandu has made significant progress in its work, processing more than 1,400 DNA samples so far. It said that the team has generated 378 DNA profiles till now. Meanwhile, the joint technical team from India sustained its dewatering and slush removal activities at the tunnel in Chilimi today. However, the slope of the tunnel and constrained access continue to pose challenges despite the use of innovative methods by the team. MEA said that construction of the makeshift path for inducting heavy machinery for clearing the tunnel is also moving forward and expected to be complete in another 2 to 3 days. India has condemned the reported Houthi attacks on Saudi sovereign territory, especially the targeting of civilian and economic facilities. In a response to a media query on the attacks in Saudi Arabia, External Affairs Ministry spokesperson Randhir Jaiswal said that such attacks that undermine regional security and stability and threaten freedom of navigation in the Bab el Mandeb were unacceptable. In Rajasthan, voting for the first phase of urban local body elections is being held today. Polling will continue until 6 p.m. Candidates have already been elected unopposed in 6 wards of the 4 municipal councils and 1 ward of a municipal corporation. Polling is being held in the municipal corporations of Alwar, Bharatpur, Bikaner and Bhilwara, besides several municipal councils, including those in Barmer, Jaisalmer, Karoli, Dungarpur, Pratapgarh, Chittorgarh and Nagaur. The IMD has forecast heavy rainfall over Bihar, Jharkhand, Odisha, West Bengal and parts of Northeast India till tomorrow. The Met Department said that thunderstorms and lightning conditions will continue over Uttarakhand, Andhra Pradesh, Tamil Nadu, Puducherry, Karaikal and Andaman and Nicobar Islands during the next 2 days. Benchmark domestic equity indices were trading in the red during the afternoon session today. The Sensex shed 396 points to 75,181, while the Nifty declined 75 points to 23,560 when reports last came in. And that is the end of this news bulletin.
4: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री के जन सेवा के 25 वर्ष पूरे होने पर 17 सितंबर से देशव्यापी सेवा संकल्प अभियान शुरू करेगी भाजपा। रक्तदान शिविर और सेवा ज्योति कलश यात्रा होंगे मुख्य आकर्षण। देश भर में आज से 9वें राष्ट्रीय पोषण माह की शुरुआत। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने हमारी आंगनबाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ जन जन से जुड़ने की अपील की। जमशेदपुर के मतदाता सूची में 3 अफगान नागरिकों के नाम मिलने पर भाजपा का हेमंत सरकार पर हमला। झामुमो ने पलटवार कर चुनाव आयोग की निगरानी का दिया हवाला। सरायकेला में उठी पारंपरिक स्वशासन को मान्यता देने की मांग। 53 गांवों के ग्रामीणों ने अपर उपायुक्त को सौंपा ज्ञापन। पेसा अधिनियम के तहत संवैधानिक पहचान की अपील। और चतरा में 2 गुटों में झड़प। बचाव करने पहुंची पुलिस टीम पर उग्र भीड़ ने किया पथराव। थाना प्रभारी गंभीर रूप से घायल। क्षेत्र में स्पेशल फोर्स की तैनाती। और अब समाचार विस्तार से। भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन सेवा के 25 वर्ष पूरे होने पर 17 सितंबर से 1 महीने का सेवा संकल्प अभियान शुरू करेगी। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने बताया कि यह अभियान 17 अक्टूबर तक चलेगा, जिसकी शुरुआत देशव्यापी रक्तदान शिविरों से होगी। 7 अक्टूबर को विशेष सेवा ज्योति कलश यात्रा भी निकाली जाएगी।
1: सभी लोगों से ये उम्मीद की जा रही है कि 25 मिनट का कम से कम श्रमदान वो दे। इसमें करीब 25 अलग अलग कार्यक्रम लिए गए हैं। हर व्यक्ति जो आम जनमानस से इसमें हम अपील करेंगे कि उनके भी योगदान से इस देश के विकास में योगदान मिले, परिवर्तन आए, इस दृष्टि से ये कार्यक्रम लिए गए हैं। इसमें समाज के जुड़े हुए विभिन्न विषयों को लिया गया है। सेवा सेतु अभियान 17 सितंबर से 17 अक्टूबर के बीच में प्रत्येक ब्लॉक स्तर पर शिविर कैंप आयोजित किए जाएंगे।
4: केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने आज से 9वें राष्ट्रीय पोषण माह की शुरुआत की है। इस वर्ष का मुख्य संकल्प हमारी आंगनबाड़ी हमारी जिम्मेदारी रखा गया है। इसके तहत आंगनबाड़ी केंद्रों पर बच्चों को प्रोटीन युक्त आहार और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जाएगी। मंत्री ने देशवासियों से नजदीकी आंगनबाड़ी केंद्रों को सशक्त बनाने में योगदान देने की अपील की है।
5: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन के अनुरूप 9 सितंबर 2026 से 9वें राष्ट्रीय पोषण माह का शुभारंभ हो रहा है। इस वर्ष पोषण माह का हमारा संकल्प है हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी, जिसमें हमारा विशेष ध्यान विविधतापूर्ण और प्रोटीन युक्त आहार, आंगनवाड़ी केंद्रों पर ताजा गर्म पौष्टिक भोजन ECCE और गर्भवती व धात्री माताओं की समग्र देखभाल पर केंद्रित रहेगा। यही है विकसित भारत की तैयारी, हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी।
4: जमशेदपुर के मतदाता सूची में 3 अफगान नागरिकों के नाम शामिल होने पर भाजपा के मुख्य प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने हेमंत सोरेन सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने इसे सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बताते हुए आरोप लगाया कि बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों के बाद अब अफगान नागरिकों को भी अवैध रूप से वोटर लिस्ट में जोड़ा गया है।
6: SIR चल रहा है, तीनों नागरिकों के पास अफगान का पासपोर्ट है लेकिन इनका नाम वोटर लिस्ट में शुमार हो गया। चुनाव आयोग की अपनी तो कोई मशीनरी नहीं होती, वो तो स्टेट गवर्नमेंट के जो अफसर होते कर्मचारी होते उन पर ही निर्भर रहता है। जो संथाल परगना का इलाका स्थित है तो वहाँ पर भी डेमोग्राफी पूरे तरीके से चेंज की जा रही है। कई विसंगतियां पाई हम लोगों ने वोटर लिस्ट में। कहीं कहीं बूथ में मुसलमान वोटर्स जो है उनकी संख्या में 400% की वृद्धि हुई है। हमने सब पर आपत्तियां भेजी।

0: राज्य सरकार के अधिकारियों और कर्मचारियों को भी कहा है साहब।
1: जमशेदपुर मतदाता सूची विवाद पर झामुमो प्रवक्ता मनोज पांडे ने भाजपा के आरोपों पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि विशेष मतदाता सूची पुनरीक्षण का काम चुनाव आयोग की निगरानी में हो रहा है, जिसमें राज्य सरकार की कोई भूमिका नहीं है।
2: चुनाव आयोग मॉनिटरिंग कर रही है एसआईआर का, केंद्र सरकार उसमें शामिल है। हम तो खुद आरोप लगाते हैं, पूरे देश में आरोप लगा, बंगाल में क्या कुछ किया इन लोगों ने, एसआईआर को एक मजाक बना के रख दिया, उसमें राज्य सरकार की क्या भूमिका है। और जो आरोप इन लोगों पर लगा है, कई जगह इनके कार्यकर्ता पकड़े गए हैं, फॉर्म 7 लेकर घूम रहे थे और लोगों का नाम डिलीट करवा रहे थे। बड़े पैमाने पर नाम डिलीट करवाने का एक षड्यंत्र इन लोगों ने रचा था, भाजपा कार्यालय से वो षड्यंत्र रचा गया था।
1: राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय के अनुसार राज्य में मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत अब तक करीब 6,40,000 से अधिक आवेदन और आपत्तियां प्राप्त हुई हैं। दावा आपत्ति दर्ज कराने की अंतिम तिथि 15 सितंबर है, जबकि अंतिम मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 19 अक्टूबर को किया जाएगा। गिरिडीह के सरिया बीडीओ ललित नारायण तिवारी पर ग्रामीणों से मारपीट के आरोप में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। 3 सितंबर को कुसमाडीह पंचायत सचिवालय में वीडियो रिकॉर्डिंग विवाद में मारपीट के बाद बीडीओ को ग्रामीणों ने बंधक बनाया था, जिसके जवाब में बीडीओ ने भी ग्रामीणों पर केस किया था। इस विरोध में पूर्व विधायक विनोद कुमार सिंह के नेतृत्व में हजारों भाकपा माले कार्यकर्ताओं ने थाने पर धरना दिया, जिसके बाद पुलिस ने ये कार्रवाई की और बीडीओ पर प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIRNews Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। सरायकेला खरसावां जिले के नीमडीह प्रखंड के 53 गांवों के ग्रामीणों ने अपनी पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था को संवैधानिक पहचान देने की मांग उठाई है। ग्रामीणों ने प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर पेसा अधिनियम के तहत पारंपरिक मुंडा, सरदार और नाया जैसे पदाधिकारियों को सरकारी अभिलेख में दर्ज कराने का आग्रह किया है।
3: सरकारी पद से अध्यक्ष हो, सचिव हो, कोषाध्यक्ष हो, जो ग्रामीण विकास के लिए जमीनी स्तर पर काम को चलाने के लिए, तो उसकी जानकारी हम लोग लिस्ट के साथ उपायुक्त महोदय को देने आए। सभी समाज के लोगों को बैठा करके महत्वपूर्ण सुझाव रहा, समाज धरातल में उसका विकास कर पाएंगे, शिक्षा का स्तर हो, कृषि हो, स्कूल हो।
1: जमशेदपुर के XLRI और एकेडमी ऑफ मैनेजमेंट के बीच वैश्विक अकादमिक सहयोग को मजबूत करने के लिए एक ऐतिहासिक समझौता हुआ है। संस्थान में आयोजित 5 दिवसीय डॉक्टोरल कोलोक्वियम में देश विदेश के शिक्षाविदों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम के कन्वीनर प्रोफेसर प्रशांत कुमार ने बताया कि इसका उद्देश्य शोधार्थियों को अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों से जोड़ना और उनके रिसर्च को बहतर बनाने में मदद करना है।
4: PhD स्कॉलर्स को इनवाइट किया गया, ने रिसर्च आइडियाज सबमिट किए थे, 500 रिसर्च आइडियाज आए थे, 150 रिसर्च आइडियाज शॉर्टलिस्ट होकर के उनको यहाँ पर बुलाया गया है। फीडबैक के लिए हमारे एडिटर्स आए हैं जो एक्सपर्ट्स हैं। XLRI ने एकेडमी ऑफ मैनेजमेंट के साथ MOU साइन किया है।
1: चतरा जिले के टंडवा थाना क्षेत्र के सिद्धपा गांव में प्रेम प्रसंग को लेकर 2 गुटों में हिंसक झड़प हुई। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को हवाई फायरिंग करनी पड़ी। पूरे मामले में भारी पुलिस बल गांव में तैनात कर दिया गया है। पूर्वी सिंहभूम के बहरागोड़ा में पुलिस ने मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 113 किलो गांजा बरामद किया है। ओडिशा से आ रही कार से तस्करी के आरोप में पूरी निवासी एक व्यक्ति को भी गिरफ्तार किया गया है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज लगभग 0.5% की गिरावट देखी गई। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 493 अंक गिरकर 75,085 पर आया, जबकि निफ्टी 116 अंक फिसलकर 23,520 पर पहुंच गया। इधर राजधानी रांची के सराफा बाजार में आज 22 कैरेट सोने की कीमत 1,43,500 रुपये प्रति 10 ग्राम है, जबकि चांदी की कीमत 2,45,000 रुपये प्रति किलो है। गोड्डा के गांधी मैदान में 3 दिवसीय नेटबॉल चैंपियनशिप रंगारंग कार्यक्रमों

0: के साथ संपन्न हुई। प्रतियोगिता के सीनियर और सब जूनियर वर्ग में कुल 50 टीमों के 1500 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। राष्ट्रीय खिलाड़ी मोनालिसा ने गोड्डा में नए आवासीय प्रशिक्षण केंद्र की सराहना करते हुए कहा कि इससे स्थानीय प्रतिभाओं को निखारने में बड़ी मदद मिलेगी। और अब अंत में मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री के जनसेवा के 25 वर्ष पूरे होने पर 17 सितंबर से देशव्यापी सेवा संकल्प अभियान शुरू करेगी भाजपा। रक्तदान शिविर और सेवा ज्योति कलश यात्रा होंगे मुख्य आकर्षण। देश भर में आज से 9वें राष्ट्रीय पोषण माह की शुरुआत। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने हमारी आंगनबाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ जन जन से जुड़ने की अपील की। जमशेदपुर के मतदाता सूची में 3 अफगान नागरिकों के नाम मिलने पर भाजपा का हेमंत सरकार पर हमला। झामुमो ने पलटवार कर चुनाव आयोग की निगरानी का दिया हवाला। सरायकेला में उठी पारंपरिक स्वशासन को मान्यता देने की मांग। 53 गांवों के ग्रामीणों ने अपर उपायुक्त को सौंपा ज्ञापन। पेसा अधिनियम के तहत संवैधानिक पहचान की अपील। और चतरा में 2 गुटों में झड़प। बचाव करने पहुंची पुलिस टीम पर उग्र भीड़ ने किया पथराव। थाना प्रभारी गंभीर रूप से घायल। क्षेत्र में स्पेशल फोर्स की तैनाती। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। उप शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम अनुरंजनी में आइए सुनते हैं सिद्धेश्वरी देवी को।

मनोरंजनी कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे कलाकार सिद्धेश्वरी देवी को। अब ये कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। आइए अब सुनते हैं सुगम संगीत में चंद गजल। कलाकार हैं आशा भोसले।

आशा भोसले की आवाज में अब सुनते हैं आमिर मिनाई का लिखा और जगजीत सिंह का संगीतबद्ध ये गजल।

और अब कार्यक्रम के आखिर में आपको सुनवा रहे हैं आशा भोसले की ही आवाज में मोहसिन नकवी की लिखी और गुलाम अली का संगीतबद्ध किया हुआ ये गजल।

सुगम संगीत कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे चंद गजलें। कलाकार थीं आशा भोसले। आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। दिन के 2 बज रहे हैं। अब हम आपको लिए चलते हैं हमारे दिल्ली केंद्र, जहां से आप पहले सुनेंगे मिड डे न्यूज़, उसके बाद दोपहर समाचार।

0: defending champion Carlos Alcaraz. And with that, we end the midday news.
1: नमस्कार आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कोलंबो में श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारदिसनायके से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने क्षेत्र की सुरक्षा शांति और समृद्धि के लिए मिलकर काम करने की प्रतिबद्धता दोहराई। ब्रिक्स के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की वित्तीय मामलों पर अंतिम बैठक मुंबई में। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने वाराणसी में राष्ट्रीय पोषण माह का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनसेवा के 25 वर्ष पूरे होने पर भारतीय जनता पार्टी 17 सितंबर से एक महीने का सेवा संकल्प अभियान शुरू करेगी। पूर्वी और पूर्वोत्तर राज्यों में अगले 24 घंटों के दौरान मूसलाधार वर्षा का अनुमान। और अमरीकी ओपन टेनिस में बेन शेल्टन ने मौजूदा चैंपियन कार्लोस अल्कराज को हराकर पुरुष सिंगल सेमीफाइनल में प्रवेश किया। अब समाचार विस्तार से। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज कोलंबो में श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारदिसनायके से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत और श्रीलंका के बीच सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने दोनों देशों के विकास और लोगों की भलाई के लिए मिलकर काम करने की प्रतिबद्धता दोहराई। श्री सिंह ने कहा कि दोनों देश क्षेत्र में शांति सुरक्षा और समृद्धि के लिए भी मिलकर काम करते रहेंगे। ब्रिक्स नेताओं के शिखर सम्मेलन से पहले आज मुंबई में ब्रिक्स वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की अंतिम बैठक हो रही है। ये कल भी जारी रहेगी। इस वर्ष ब्रिक्स वित्तीय चर्चाओं का विषय है मजबूत नवाचार सहयोग और सतत विकास के लिए निर्माण। इससे पहले वित्त मंत्री और गवर्नर पिछले महीने जयपुर में बैठक कर चुके हैं। केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारामन ने मुंबई में इस बैठक से पहले पिछली बैठकों के मुख्य निष्कर्षों की समीक्षा की। भारत ने सऊदी अरब में हौसी विद्रोहियों के कथित हमलों की निंदा की है। भारत ने आम नागरिकों और आर्थिक ठिकानों को निशाना बनाए जाने पर चिंता व्यक्त की। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि ऐसे हमले क्षेत्र की सुरक्षा और स्थिरता के लिए खतरा हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे हमले अस्वीकार्य हैं और इनसे बाब अल मंदीब जलडमरू मध्य में आवाजाही प्रभावित होती है। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि नेपाल के काठमांडू में भारतीय फोरेंसिक टीम ने अपने काम में महत्वपूर्ण प्रगति की है। टीम अब तक 1400 से अधिक डीएनए नमूनों की जांच कर चुकी है और 378 डीएनए प्रोफाइल तैयार किए हैं। इस बीच भारत की संयुक्त तकनीकी टीम ने आज चिले में स्थित सुरंग में जल निकासी और कीचड़ हटाने का काम जारी रखा। नेपाल में विनाशकारी बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 1365 हो गई है। बचाव दल 5326 लोगों की तलाश में जुटे हैं, जिनमें लगभग 589 विदेशी नागरिक शामिल हैं। अब तक 102 शव परिजनों को सौंपे जा चुके हैं। चीन की मीडिया के अनुसार इस आपदा में चीन के लगभग 43 नागरिकों की मौत हुई है, जबकि तिब्बत में 500 से अधिक लोग अब भी लापता हैं। इस्माइली समुदाय के 50वें इमाम प्रिंस रहीम आगा खान पंचम आज से 15 सितंबर तक भारत की यात्रा पर रहेंगे। वे उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन के निमंत्रण पर भारत आए हैं। प्रिंस रहीम का कल उपराष्ट्रपति से मिलने का कार्यक्रम है। वे नई दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर से भी मुलाकात करेंगे। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतरश ने आशा व्यक्त की है कि हाल के कूटनीतिक प्रयासों से रूस और यूक्रेन के बीच शांति वार्ता फिर शुरू हो सकती है। संयुक्त राष्ट्र के प्रवक्ता स्टीफन ड्यूजारिक ने कहा है कि इन प्रयासों से तत्काल पूर्ण और बिना शर्त युद्ध विराम का रास्ता खुल सकता है। उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र शांति के लिए किए जा रहे सभी सार्थक प्रयासों का समर्थन करने के लिए तैयार है। अमरीका और ईरान के बीच लगातार हमलों के कारण पश्चिम एशिया में तनाव और बढ़ गया है। इससे व्यापक क्षेत्रीय संघर्ष की आशंका बढ़ गई है। अमरीकी सैन्य बलों ने ईरान के कच्चे तेल के 5 टैंकर नष्ट कर दिए हैं। अमरीका के अनुसार पिछले 2 दिनों में उसके एक युद्धपोत पर ईरान ने हमले किए थे। ईरान ने जॉर्डन में अमरीका अमेरिकी ठिकानों पर मिसाइलें भी दागी। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
2: लगातार खबरों से जुड़े रहने के लिए एक्स पर @AIRNews हिंदी को फॉलो करें और हमारे व्हाट्सएप चैनल आकाशवाणी समाचार से जुड़े।
1: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में आज अंतर्राष्ट्रीय रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में 9वें राष्ट्रीय पोषण माह का शुभारंभ किया गया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस अवसर पर महिला और बाल विकास राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर और उत्तर प्रदेश सरकार के अन्य मंत्री भी उपस्थित थे। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि 9वां राष्ट्रीय पोषण माह स्वस्थ और सशक्त भारत के संकल्प को आगे बढ़ाने का अभियान है। उन्होंने कहा कि ये अभियान हर माँ के स्वास्थ्य, हर बच्चे के पोषण और हर परिवार की खुशहाली से जुड़ा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वर्ष 2014 से गरीबों, बच्चों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं के पोषण को प्राथमिकता दी गई है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में आंगनबाड़ी केंद्रों में भी बड़े बदलाव किए गए हैं।
3: हमने पिछले 9.5 वर्ष में 70,000 से अधिक आंगनबाड़ी केंद्रों को एक नया स्वरूप दिया है और हमने प्रायोरिटी ली है इसमें। राज्य वित्त आयोग हो, केंद्रीय वित्त आयोग का हो या राज्य के स्वयं का अपने बजट का पैसा, आंगनबाड़ी केंद्र उसकी टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए उसके निर्माण की। वहाँ पर बच्चों के लिए टॉयलेट की, शुद्ध पेयजल की, ये उसकी प्रायोरिटी का हिस्सा है। आज वहाँ पे बाल वाटिकाएं चलती हैं। खेल खेल में कैसे अक्षर ज्ञान और कैसे अंकों का ज्ञान बच्चे वहाँ प्राप्त करते हैं।
1: इस वर्ष पोषण माह का विषय है हमारी आंगनबाड़ी हमारी जिम्मेदारी। भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनसेवा के 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर 17 सितंबर से एक महीने का सेवा संकल्प अभियान शुरू करेगी। ये अभियान प्रधानमंत्री के जन्मदिन के अवसर पर शुरू किया जाएगा। नई दिल्ली में आज संवाददाता सम्मेलन में भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 अक्टूबर को जनसेवा के 25 वर्ष पूरे करेंगे। प्रधानमंत्री ने 7 अक्टूबर 2001 को ही गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला था। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने इन वर्षों में जनसेवा से राष्ट्र सेवा के मंत्र के साथ सेवा की यात्रा को लगातार आगे बढ़ाया है।
4: जो आम लोगों के जीवन को बेहतर बनाने का प्रयास रहा है, एक बहुत बड़ा योगदान नेतृत्वकर्ता के रूप में उन्होंने दिया है। उनका सफर एक साधारण कार्यकर्ता के रूप में जो प्रारंभ हुआ और आज देश के प्रधान सेवक के रूप में जो उन्होंने काम को आगे बढ़ाया, ये केवल उनके स्पष्ट विजन, उनके दृढ़ संकल्प, सामाजिक जीवन में लगातार गुणात्मक कैसे परिवर्तन आए, कैसे उनके जीवन में बदलाव आए, इसका प्रयास उन्होंने किया।
1: भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश की प्रगति केवल विकास तक सीमित नहीं रही, बल्कि भारत की सांस्कृतिक पहचान और विरासत भी मजबूत हुई है।
4: माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम कह सकते हैं कि केवल विकास ही नहीं, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की भी जड़ों को मजबूत किया गया। आज अगर हम भव्य राम मंदिर की बात करते हैं, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की बात करते हैं, सोमनाथ की बात करते हैं, महाकाल कॉरिडोर की बात करते हैं, तो हम कह सकते हैं कि देश के सांस्कृतिक धरोहर को पूरी तरह से सृजित और विकसित करने में उन्होंने पहल किया।
1: भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि जब प्रधानमंत्री ने देश को संभाला उस समय भारत नीतिगत गतिरोध से जूझ रहा था और दुनिया की कमजोर मानी जाने वाली 5 अर्थव्यवस्थाओं में शामिल था। उन्होंने कहा कि आज भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था है। श्री नवीन ने कहा कि प्रधानमंत्री ने पूरे देश के लोगों की सोच को बदलने का भी प्रयास किया।
4: उन्होंने केवल इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट की बात नहीं की, उन्होंने इस देश के सोच को भी बदलने का प्रयास किया। उनके पूरे कालखंड को हम जब देख रहे हैं तो केवल युगांतकारी निर्णय ही नहीं हुए, आम लोगों के जीवन में बदलाव ही नहीं हुआ, आम लोगों के जीवन के सोच में भी बदलाव आया है। और 25 साल के ये सशस्त्र सेवा और समर्पण के जो उनके कार्यकाल रहे हैं, जो उनके बेदाग जीवन, लगातार शासन दुनिया भर के लोकतंत्र के इतिहास को एक अलग परिभाषा के साथ सामने लाया है।
1: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सत्य निकेतन में इमारत ढहने की घटना के बाद राष्ट्रीय राजधानी के कई इलाकों में अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने नगर निगम के सभी वरिष्ठ अधिकारियों को कार्रवाई के दौरान मौके पर मौजूद रहने के भी निर्देश दिए हैं। उन्होंने दिल्ली में पीजी आवासों का निरीक्षण करने और वहां अनधिकृत निर्माण की जांच के साथ साथ इमारतों से जुड़े रिकॉर्ड की भी जांच करने को कहा है। न्यायमूर्ति महेश चंद्र त्रिपाठी ने आज बम्बई उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। मुंबई के लोक भवन में महाराष्ट्र के राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा ने उन्हें पद की शपथ दिलाई। न्यायमूर्ति त्रिपाठी बम्बई उच्च न्यायालय के 50वें मुख्य न्यायाधीश हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने कर्नाटक में 18 स्थानों पर छापेमारी की है। इनमें राज्य के लोक निर्माण मंत्री सतीश जारकीहोली, उनकी बेटी और लोकसभा सांसद प्रियंका जारकीहोली के आवास भी शामिल हैं। गुजरात विधानसभा का 3 दिन का मॉनसून सत्र आज गांधीनगर में शुरू हुआ। सदन की कार्यवाही प्रश्नकाल से शुरू हुई। इस दौरान सामान्य प्रशासन, राजस्व और पंचायती राज समेत विभिन्न विभागों से जुड़े तारांकित प्रश्नों पर चर्चा हुई। पुद्दुचेरी में तट्टान सावड़ी विधानसभा सीट के उपचुनाव के लिए आज नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 16 सितंबर है। राजस्थान में शहरी स्थानीय निकाय चुनाव के पहले चरण के लिए मतदान जारी है। मतदान शाम 6 बजे तक चलेगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: आकाशवाणी समाचार से जुड़े रहिए expert@AIRnewsHindi को फॉलो करें और ताजा खबरों के लिए newsonair.gov.in पर जाएं।
1: ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने कल बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। अगले 2 दिनों तक उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आंधी तथा बिजली कड़कने की स्थिति बनी रहेगी। आज तटीय आंध्र प्रदेश, केरलम और माहे

पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। अगले 2 दिनों तक उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आंधी तथा बिजली कड़कने की स्थिति बनी रहेगी। आज तटीय आंध्र प्रदेश, केरलम और माहे

और अब कार्यक्रम के आखिर में आपको सुनवाते हैं फिल्म याराना का ये गीत किशोर कुमार और साथियों के स्वर में। अनजान के शब्दों को संगीतबद्ध किया है राजेश रोशन ने।

0: लोगों का राज्यव्यापी आंदोलन आज दूसरा दिन भी जारी है। आज बोकारो, पलामू और कोडरमा सहित 6 जिलों में डीसी कार्यालयों का घेराव किया जा रहा है। सरायकेला समाहरणालय के सामने भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू के नेतृत्व में प्रदर्शन किया जा रहा है। इस मौके पर श्री साहू ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी छात्रों के साथ हर कदम पर खड़ी है।
1: भविष्य मान वाले हमारे समय के इस राज्य की ताकत बनने वाले हैं, उनके रोजगार के साथ इस राज्य की सरकार इस प्रकार से खेल करने का काम कर रही है। उनको तो आप नौकरी नहीं दे रहे हैं, उल्टे इनकी नौकरियों को बेचने का काम कर रही है। तो भारतीय जनता पार्टी इन सारे विषयों को लेकर के लगातार आंदोलन करते रही है।
0: गिरिडीह में एंटी करप्शन ब्यूरो की धनबाद टीम ने साइबर थाना के एसआई पुनित कुमार गौतम को 30,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। शिकायत के सत्यापन के बाद एसीबी ने यह कार्रवाई की। गिरफ्तारी के बाद टीम थाना प्रभारी को धनबाद ले गई। लोहरदगा जिले के कुड़ू थाना क्षेत्र के एक पेट्रोल पंप के पास भूसा लदे ट्रक से पुलिस ने लगभग 50 लाख रुपए की शराब जब्त की है। ट्रक से करीब 850 पेटी शराब बरामद हुई, जो चंडीगढ़ निर्मित है। पुलिस को शक है कि शराब रांची के अलावा बिहार भेजी जानी थी। पुलिस अधीक्षक सादिक अनवर रिजवी को मिली गुप्त सूचना के आधार पर यह कार्रवाई की गई। और अब मौसम का हाल। राजधानी रांची समेत राज्य के कई हिस्सों में रुक रुक कर बारिश हो रही है। मौसम विभाग के अनुसार आज और कल रांची, बोकारो, धनबाद और हजारीबाग सहित राज्य के कई हिस्सों में भारी बारिश, गरज के साथ तेज हवाएं चलने और वज्रपात का पूर्वानुमान भी है। विभाग ने इसे लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। साहिबगंज में गंगा नदी के बढ़ते जलस्तर और बाढ़ की स्थिति को देखते हुए जिला प्रशासन ने राहत और बचाव कार्य तेज कर दिए हैं। एसडीओ अमर जॉन आइंद, अंचल अधिकारी बासुकीनाथ टूडू और एनडीआरएफ की टीम ने प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण कर जरूरतमंद परिवारों के बीच खाद्य सामग्री वितरित की। अधिकारियों ने प्रभावित लोगों से बातचीत कर उनकी समस्याओं और जरूरतों की जानकारी ली तथा हर संभव सहायता उपलब्ध कराने का भरोसा दिलाया। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 4 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
2: आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। आइए अब सुनते हैं प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। प्रायोजक हैं एनसीईआरटी।

0: CIET प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: आप सबको विमलेश का नमस्कार और जोहार। आज के उमंग कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। सुनते हैं आज का एक सुंदर विचार जिसे हमें भेजा है मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर और रतनमाला सुरलकर जी ने। लिखते हैं, जीवन में वही आगे बढ़ता है जो अपनी गलतियों से सीखता है। अक्सर ठोकरें रास्ते की रुकावट नहीं बल्कि मंजिल की तैयारी का प्रशिक्षण होती हैं। धन्यवाद आप दोनों का इस सुंदर विचार के लिए। और अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। गांव ठाणी कुतुबपुर जिला हांसी हरियाणा से रामधारी गुर्जर, अवाना, अवनी, प्रियांशी, रियांशी, ओजस, अनाया, गुरदीप और बेबी किरत ने लिखा है, आदरणीय विमलेश जी एवं अजीत जी सादर नमस्कार। 13 अगस्त 2026 को 1857 के गुमनाम वीर स्वतंत्रता सेनानियों की श्रृंखला के अंतर्गत वीर सावरकर जी के जीवन को जानने का अवसर मिला। आपकी ये प्रेरणादायी प्रस्तुति हमें स्वतंत्रता के मूल्य और हमारे वीरों के त्याग एवं बलिदान से परिचित कराती है। इतिहास के ऐसे प्रेरणादायी प्रसंगों को जन जन तक पहुँचाने के लिए आप दोनों का हार्दिक धन्यवाद और साधुवाद। आपको भी हमारा बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। ग्राम पजोनिया जिला जालौन उत्तर प्रदेश से सत्येंद्र कुमार चंसौलिया जी ने लिखा है, आदरणीय अजीत जी और विमलेश जी, आज हमने उमंग कार्यक्रम के अंतर्गत ये भी जानिए मैं पिंगली वेंकैया जी के बारे में, अपने राष्ट्रध्वज के बारे में और आजाद हिंद फौज के संस्थापक सुभाष चंद्र बोस के बारे में बहुत कुछ जाना। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। इसके साथ साथ ही हमें संदेश मिला है जेल रोड दिल्ली से लाल बाबू दीवाना और उमा राज, लेवाई छत्तीसगढ़ से गुलाब दास मानिकपुरी, राजा दास मानिकपुरी और रानी मानिकपुरी। आप सबके संदेशों के लिए धन्यवाद। श्रोताओ, जैसा कि आप जानते हैं इन दिनों हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं बहुत सारे प्रेरक प्रसंगों को। आज हम एक ऐसे व्यक्ति की कहानी लेकर आए हैं जिसने न कोई बड़ी मशीन इस्तेमाल की, न उसके पास कोई बड़ी टीम थी। उसके पास था एक हथौड़ा, एक छेनी और एक अद्भुत संकल्प। आज के प्रेरक प्रसंग का शीर्षक होगा पहाड़ से भी ऊंचा आदमी। ये कहानी भी NCERT की हिंदी की कक्षा 8 की पूर्व पाठ्य पुस्तक वसंत से संदर्भित है। ये कहानी है दृढ़ संकल्प के धनी दशरथ मांझी जी की। श्रोताओ, ये कहानी शायद आपने भी सुनी होगी, लेकिन हम इसे आज एक अलग परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत करेंगे। उनकी कहानी शुरू होती है बिहार के गया जिले के गहलोर गांव से। श्रोता मित्रों, ये वो समय था जब आज के युग के उन्नत यातायात, संचार और चिकित्सा के साधन नहीं थे। उन दिनों में गहलोर गांव के लोगों को अस्पताल और बाजार तक पहुंचने के लिए एक बड़े पहाड़ के चारों ओर घूमकर जाना पड़ता था। रास्ता बहुत लंबा और कठिन था। कहा जा सकता है कि पहाड़ मात्र एक प्राकृतिक बाधा ही नहीं था बल्कि गांव के लोगों के जीवन में रोज की परेशानी भी था। दशरथ मांझी मजदूरी करते थे। एक दिन उनकी पत्नी फाल्गुनी देवी पहाड़ के दूसरे छोर पर काम कर रहे अपने पति दशरथ मांझी के लिए खाना लेकर जा रही थीं। पहाड़ पार करते समय वे दुर्घटनाग्रस्त हो गईं। चोट गंभीर थी। उन्हें समय पर चिकित्सा सहायता नहीं मिल सकी और उनकी मृत्यु हो गई। सचमुच बहुत दुखद घटना थी, लेकिन उस दुख ने दशरथ मांझी के भीतर एक ऐसा संकल्प पैदा किया जिसकी कल्पना शायद किसी ने नहीं की थी। उन्होंने फैसला किया, मैं इस पहाड़ को काटकर रास्ता बनाऊंगा। और ये फैसला उन्होंने अकेले ही किया। उनके पास था एक साधारण हथौड़ा और छेनी। दृढ़ संकल्प के साथ उन्होंने पहाड़ पर प्रहार करना शुरू किया। एक दिन, दो दिन, एक महीना, एक साल, समय बीतता गया। हो नहीं सकता मित्रों कि गांव वालों ने उनका मजाक नहीं उड़ाया होगा, लेकिन उन्होंने लोगों की बातों की चिंता नहीं की। वे रोज काम करते रहे। दशरथ मांझी जानते थे कि उन्हें एक ही दिन में पहाड़ नहीं काटना है, उन्हें बस हर दिन थोड़ा सा काम करना है। और श्रोता मित्रों, यही बात बहुत महत्वपूर्ण है। अक्सर ऐसा होता है ना कि हम कई बार बड़े लक्ष्य को देखकर डर जाते हैं। हम सोचते हैं इतना बड़ा काम कैसे होगा, लेकिन दशरथ मांझी ने सुनिश्चित कर लिया था कि वे अपने काम में निरंतरता बनाए रखेंगे। उन्होंने हथौड़ा उठाया और पहाड़ पर एक चोट की, फिर दूसरी, फिर तीसरी और फिर हजारों चोटें, लाखों चोटें, और धीरे धीरे वो पहाड़ टूटने लगा। श्रोताओं आपको बता दें कि लगभग 22 वर्षों तक वे लगातार काम करते रहे। जी हाँ श्रोताओं, पूरे 22 साल। और उन्होंने अंततः पहाड़ के बीच से लगभग 110 मीटर लंबा और लगभग 9 मीटर चौड़ा रास्ता बना दिया। और जिस रास्ते के लिए लोगों को बहुत दूर घूमकर जाना पड़ता था, वो दूरी काफी कम हो गई थी। मुझे लगता है मित्रों कि आज के उमंग कार्यक्रम का यही संदेश है, विशेषकर विद्यार्थियों के लिए। हम सबके जीवन में कोई न कोई पहाड़ होता है, कोई न कोई कठिनाई अवश्य होती है, सीखने में, समझने में। और कई बार हम उस पहाड़ को देखकर सोचते हैं, ये मेरे बस की बात नहीं। लेकिन दशरथ मांझी की कहानी बताती है, एक दिन में पहाड़ नहीं टूटता, लेकिन रोज की एक चोट उसे धीरे धीरे बदल सकती है। यानी सफलता का रहस्य केवल शक्ति ही नहीं, दृढ़ संकल्प के साथ निरंतरता भी है। श्रोताओं, कई बार हमारी छोटी छोटी कोशिशें हमें दिखाई नहीं देती, लेकिन यदि निरंतरता बनी रहे तो हम वर्षों बाद पीछे मुड़कर देखते हैं तो पता चलता है कि हमने बहुत लंबी यात्रा तय कर ली है। तो श्रोताओं, ये था हमारा आज का प्रेरक प्रसंग। आशा है आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो अपनी प्रतिक्रिया जरूर भेजें। अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। प्रश्न है, दृढ़ संकल्प के धनी दशरथ मांझी जी को पहाड़ खोद कर रास्ता बनाने में कितना समय लगा। प्रश्न एक बार फिर से सुन लेते हैं, दृढ़ संकल्प के धनी दशरथ मांझी जी को पहाड़ खोद कर रास्ता बनाने में कितना समय लगा। आप 8800440559 पर अपने उत्तर हमें भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@cit.nic.in। और हाँ, ताज़ा जानकारी के लिए आप इंस्टा, फेसबुक, लिंक्डइन और एक्स पर भी CIT NCERT को लगातार फॉलो करते रहें। NCERT की पाठ्य पुस्तकों को डाउनलोड करने के लिए किसी भी सर्च इंजन में जाकर टाइप कीजिए NCERT बुक्स PDF। और NCERT की पाठ्य पुस्तकों को ध्वनि रूप में सुनने या हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों को सुनने के लिए आप NCERT ऑफिशियल YouTube को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। पहला कार्यक्रम है कम बैक सून। ये कार्यक्रम कक्षा 2 की अंग्रेजी की पाठ्य पुस्तक की एक सुंदर कविता पर आधारित है, जिसमें गीत के द्वारा यातायात के कुछ साधनों के बारे में जानकारी दी गई है।

0: जी हाँ, जन जन होगा अब साक्षर उल्लास के साथ। आइए नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के इस अभियान में बटाएं हाथ उल्लास के साथ। उल्लास भारत सरकार की एक अनूठी पहल।
1: उस रात ऑफिस से निकलने में दुबा हो गई थी, आंखें भी भारी हो रही थी, पर सोचा 15 किलोमीटर ही तो है, निकल जाता हूँ। हाईवे पर एक ट्रक के पीछे चला गया। ट्रक के पीछे एक आयरन रॉड लगी थी, टेल लाइट दिखाई नहीं दे रही थी। मुझे लगा कि वो सीधा जा रहा है, पर जैसे ही उसने ब्रेक मारे मुझे समझने में 1 सेकंड ज्यादा लग गया। नींद में गाड़ी चलाना और पीछे की रोशनी ना दिखना, दोनों ही गंभीर हादसे को बुलावा देना है।
2: अवस्था में वाहन चलाने से बचें। यात्रा के दौरान यदि थकान या नींद महसूस हो तो आगे बढ़ने के बजाय थोड़ी देर रुककर आराम करना सुरक्षित होता है।
3: और अब सुनते हैं कार्यक्रम रेलगाड़ी। इस कार्यक्रम में बच्चों को रेलगाड़ी, रेलवे स्टेशन और इससे जुड़ी कई बातों को बड़े ही मनोरंजक ढंग से बताया गया है। गीतों और ध्वनि प्रभावों का प्रयोग करके कार्यक्रम को और अधिक प्रभावी बनाया गया है।
4: बच्चों, रेलगाड़ी तो तुमने देखी होगी, है ना? हाँ, पहचान गए ना? रेलगाड़ी में होता है एक बड़ा सा इंजन और उसमें जुड़े होते हैं बहुत सारे डब्बे। तभी तो बहुत सारे लोग रेलगाड़ी में बैठकर आते और जाते हैं। और हाँ बच्चों, कितना मजा आता है जब तुम रेलगाड़ी का खेल खेलते हो, है ना? कैसे? तो आओ चलते हैं राजू और संजू के घर, जहां हो रहा है रेलगाड़ी का खेल।
5: रेल चली भाई रेल चली, छुक छुक करती रेल चली। रेल चली भाई रेल चली, छुक छुक करती रेल चली।
6: अरे संजू वो देखो, राजू तो पीछे छूट गया।
7: अरे हाँ, गाड़ी रुको।
6: आ जाओ संजू, अब मुझे पकड़ लो, छूटना मत।
7: हाँ, अब बन गई रेल।
5: रेल चली भाई रेल चली, छुक छुक करती रेल चली।
6: अरे अरे दादाजी आ गए, दादाजी आ गए।
7: दादाजी आप भी हमारे संग खेलिए ना।
8: अच्छा भाई, पर मैं तो तुम सबसे बड़ा हूँ और भारी भी, तो ऐसा करते हैं तब मैं इंजन बन जाता हूँ।
7: हाँ दादाजी, ये ठीक रहेगा।
8: चलो
5: रेल चली भाई रेल चली,
8: रेल चली भाई रेल चली, एक के पीछे एक आओ रेल बनाओ, रेल बनाओ। इंजन आगे डिब्बे पीछे, लोहे की पटरी पर खींचे, गांव गांव और शहर शहर में धूल उड़ाती रेल चली।
5: रेल चली भाई रेल चली,
8: चुक चुक करती रेल चली, चुक चुक करती रेल चली। अरे अरे भाई, मैं तो थक गया, अब रेल गाड़ी रोकनी पड़ेगी।
6: हाँ दादाजी, हम भी थक गए।
8: अच्छा तो फिर आओ यहाँ बैठते हैं, हैं?
6: अच्छा
8: अच्छा, अब ये बताओ तुम में से किसने सचमुच की रेलगाड़ी देखी है?
7: दादाजी मैंने देखी है।
8: अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है।
7: जब माँ के साथ
9: नाना जी को लाने स्टेशन गया था, तभी देखी है बस।
8: अच्छा तो चलो, मैं आज तुम लोगों को सचमुच की रेलगाड़ी दिखाऊंगा।
9: अरे वाह,
8: यही पास में तो है रेलवे स्टेशन।
9: हाँ, आज तो बड़ा मजा आ जाएगा, हम लोग रेलगाड़ी देखेंगे। चलो चलो जल्दी चले। हाँ
8: अरे ओ रामू भैया, कहाँ जा रहे हो?
10: अरे दादाजी, स्टेशन जा रहा हूँ सवारी लेने को।
8: अरे भैया, तब तो हमारे बच्चों को भी साथ लेते चलो, रेलगाड़ी देख आएंगे।
10: अरे हाँ हाँ दादाजी, आओ आओ बच्चों, आ जाओ बैलगाड़ी में चढ़ो।
8: बैठो बैठो, जल्दी खड़ो, जल्दी खड़ो, बैठो बैठो बैठो। चलो चलो चलो, उतरो बच्चों, जल्दी करो, गाड़ी आने ही वाली है।
9: रानी जल्दी चलो, नहीं तो गाड़ी चली जाएगी।
8: हाँ हाँ उतरो बेटी।
11: बच्चों, रेलवे स्टेशन पहुंचकर दादाजी और बच्चों ने सबसे पहले खरीदे प्लेटफॉर्म टिकट और फिर झटपट पहुंचे स्टेशन के अंदर।
12: दादाजी, यहाँ तो बड़े सारे लोग हैं।
8: हाँ बच्चों, कुछ लोग तो रेलगाड़ी में चढ़कर आने वाले हैं और अच्छा, कुछ जाने वाले हैं।
12: अच्छा तो ये बात है।
8: अच्छा बच्चों, वो देखो, वो है लोहे की पटरी, इसी पर रेलगाड़ी छुक छुक करके चलती है। बच्चों जल्दी जल्दी पीछे आ जाओ।
13: यात्रीगण कृपया ध्यान दें, बिलासपुर से रामपुर को जाने वाली सवारी गाड़ी प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर कुछ ही समय में आ रही है।
12: हो हो हो, रेलगाड़ी आ गई, रेलगाड़ी आ गई।
9: अरे वाह दादाजी, ये तो बहुत बड़ी गाड़ी है।
8: हाँ बच्चों, देखा, ये है सचमुच की रेलगाड़ी। वो सबसे आगे इंजन है और उसके पीछे डिब्बे।
12: दादाजी वो देखिए, एक आदमी हरी झंडी दिखा रहा है। वो हरी झंडी क्यों दिखा रहा है?
8: इसलिए क्योंकि हरी झंडी दिखाने से तो गाड़ी चलती है और लाल झंडी दिखाने से रुक जाती है।
12: अच्छा, अच्छा। अरे हाँ, रेलगाड़ी तो चल रही। दादाजी अब तो गाड़ी चली गई, सब लोग भी चले गए।
8: हाँ हाँ बच्चों, चलो चलो वापस घर चले।
12: हाँ हाँ दादाजी चलिए।
13: छुक छुक छुक छुक छुक छुक छुक छुक रेलगाड़ी आती है। छुक छुक छुक छुक छुक

इंजन आगे डब्बे पीछे लोहे की पटरी पर खींचे। इंजन आगे डब्बे पीछे लोहे की पटरी पर खींचे। गांव गांव और शहर शहर तक वो

इंजन आगे डब्बे पीछे लोहे की पटरी पर खींचे। इंजन आगे डब्बे पीछे लोहे की पटरी पर खींचे। गांव गांव और शहर शहर तक वो सबको पहुंचाती है। गांव गांव और शहर

0: अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। अब आपकी मित्र विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है।

मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्स और FM 100.5 मेगाहर्ट्स पर हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम रांची मेलोडीज। कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं फिल्म सबसे बड़ा खिलाड़ी के इस युगल गीत के साथ। आवाजें हैं कुमार सानू, अलका याग्निक और साथियों की। शब्द रचना है देव कोहली के, संगीत राजेश रोशन की।

कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए आपको सुनवाते हैं फिल्म कसूर का ये युगल गीत। समीर के शब्दों को संगीतबद्ध किया है नदीम श्रवण ने। आवाजें हैं अलका याग्निक और उदित नारायण की।

ये फिल्म संगीत आप सुन रहे हैं रांची मेलोडीज कार्यक्रम के अंतर्गत आकाशवाणी के रांची केंद्र से। आगे बढ़ते हुए फिल्म दरिया दिल का ये गीत सुनते हैं नितिन मुकेश और विट्ठल भाई पटेल की आवाजों में। शब्द विट्ठल भाई पटेल के हैं, संगीत राजेश रोशन का।

आइए अब आपको सुनाते हैं फिल्म नमक हलाल का ये गीत, आशा भोसले, बप्पी लहरी और शशि कपूर की आवाजों में। अनजान के शब्द को संगीतबद्ध किया है बप्पी लहरी ने।

किसे नहीं मरने दोगी? ये क्या हो गया तुम्हें है? तुम्हारे माथे पर पसीना क्यों? किसकी मौत के बारे में सोच रही थी? मेरी? अरे मेरी जिंदगी और मौत तो अब तुम्हारे साथ है, और प्यार करने वाले मौत से डरा नहीं करते।

और अब कार्यक्रम के आखिर में आपको सुनवाते हैं फिल्म बलमा का ये गीत, कुमार सानू और अलका याग्निक के युगल स्वरों में। नदीम श्रवण हैं संगीतकार और गीतकार समीर।

0: फिल्म बर्मा के से युगल गीत के साथ ही आज का फिल्म संगीत का कार्यक्रम रांची मेलोडीज यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलो हर्ट्स और FM 100.5 मेगा हर्ट्स पर। शाम के 4 बजने को हैं, आइए सुनते हैं प्रादेशिक मुख्य समाचार।
1: नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं कामिनी। भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनसेवा के 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर 17 सितंबर से एक महीने का सेवा संकल्प अभियान शुरू करेगी। यह अभियान प्रधानमंत्री के जन्मदिन के अवसर पर शुरू किया जाएगा। नई दिल्ली में आज संवाददाता सम्मेलन में भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत 2047 के संकल्प को भी इस कार्यक्रम में लाने का प्रयास किया गया है। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने आज से 9वें राष्ट्रीय पोषण माह की शुरुआत की है। इस वर्ष का मुख्य संकल्प हमारी आंगनबाड़ी हमारी जिम्मेदारी रखा गया है। इसके तहत आंगनबाड़ी केंद्रों पर बच्चों को प्रोटीन युक्त आहार और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जाएगी। मंत्री ने देशवासियों से नजदीकी आंगनबाड़ी केंद्रों को सशक्त बनाने में योगदान देने की अपील की है। रांची विश्वविद्यालय का 39वां दीक्षांत समारोह आज रांची में आयोजित किया जा रहा है। राज्यपाल सह कुलाधिपति संतोष कुमार गंगवार और रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ समारोह में शामिल हुए। इस दौरान 58 मेधावी विद्यार्थियों को स्वर्ण पदक प्रदान किया गया, वहीं 2 शिक्षाविदों को मानद उपाधि से सम्मानित किया गया। रांची में MSME विकास कार्यालय की ओर से 2 दिवसीय विक्रेता विकास कार्यक्रम आयोजित किया गया है। कार्यक्रम में राज्य के विभिन्न जिलों से बड़ी संख्या में उद्यमी शामिल हुए। इसका उद्देश्य उद्यमियों को बाजार उपलब्ध कराना है। उद्घाटन सत्र में CMPDI के अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक चौधरी शिवराज सिंह ने MSME को भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ बताया। गिरिडीह में एंटी करप्शन ब्यूरो की धनबाद टीम ने साइबर थाना के SI पुनित कुमार गौतम को 30,000 रूपए रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। राजधानी रांची समेत राज्य के कई हिस्सों में रुक रुक कर बारिश हो रही है। मौसम विभाग के अनुसार आज और कल रांची बोकारो धनबाद और हजारीबाग सहित राज्य के कई हिस्सों में भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 5 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार,
0: आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है, आइए सुनते हैं कार्यक्रम बढ़ते कदम। भेंट करता है कमलेश कुमार मिश्र, प्रस्तुति है प्रभु शरण की।
2: नमस्कार, बढ़ते कदम कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं कमलेश कुमार मिश्र। बढ़ते कदम कार्यक्रम हमेशा सरकार के द्वारा चलाए जा रहे महत्वपूर्ण और महत्वाकांक्षी योजनाओं की पूरी जानकारी लेकर आपके बीच में आता है, और साथ ही साथ हम वो भी कोशिश करते हैं कि हम वैसे लोगों को शामिल करें जो समाज में एक उदाहरण है, जिन्होंने अपनी मेहनत से अपनी एक पहचान बनाई है, जिन्होंने अपनी मेहनत से बहुत कुछ हासिल किया है, जिन्हें देखकर हम कुछ सीखते हैं। आज के कार्यक्रम में हम आपकी मुलाकात एक राष्ट्रीय कलाकार से करा रहे हैं, जिन्होंने अपनी मेहनत से वो मुकाम हासिल किया जहां देश में लोग उन्हें उनके कला के लिए पहचानते हैं। हमारे साथ मूर्तिकार अमृत प्रकाश हैं, हाथों का हुनर है। आप झारखंड के किसी भी जिले की बात कर लें, देश में अलग अलग राज्यों की बात कर लें, अमृत प्रकाश के बनाए गए मूर्ति लोग देखते हैं, उसकी सराहना करते हैं। चाहे आप रेलवे स्टेशन की बात करें या अन्य जिला में उन जगहों की जिन्हें हम देखना और घूमना पसंद करते हैं, वहाँ अमृत प्रकाश का हुनर नजर आता है। अमृत प्रकाश जी, कार्यक्रम बढ़ते कदम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
3: नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।
2: शुरुआत यहीं से करते हैं, जब भी हम कला की बात करते हैं या किसी हुनर की बात करते हैं, और कितनी खुशी मिलती है कि जब लोग आपको पहचानते हैं या आपके काम को पसंद करते हैं, या फिर कहते हैं कि देखो ये इस व्यक्ति ने बनाया है और वो एक उदाहरण बनता है।
3: हाँ जी, बिल्कुल खुशी मिलती है, क्योंकि ये कला आत्मा और परमात्मा का ही एक खेल है। हमारी जो सांसें चलती है और हमारा जो आत्मा है, दोनों का जो संबंध है, वो समाज और एक कलाकार का संबंध है। और इसी वजह से एक कलाकार अपने समाज में अपनी कला को बिखेरता है और समाज को सजाता है, संवारता है, और अपनी संस्कृति, चाहे वो भारतीय संस्कृति की बात हो, पूरे दुनिया की बात की जाए, अपने झारखंड की बात किया जाए, देखिए झारखंड में क्या है, ये झाड़ियों का देश है, जल जंगल और जमीन की बात की जाती है यहाँ पे। इस सृष्टि में, इस दुनिया में जितनी भी चीज विकसित हुई सब नेचर से है, और हम नेचर वाले गांव में, नेचर वाले साहिबगंज के किनारे एक छोटे से गांव में हम रहते हैं, नदी और पहाड़ के बीच में, और यहाँ की जो जंगल है वहाँ से अपनी कलाओं को ढूंढ कर निकालते हैं। बड़े शहरों को रुक करने के बाद, सारी चीजों को समझने के बाद वापस हम साहिबगंज आ गए, अपनी शिक्षा दीक्षा और सारी चीजें कंप्लीट होने के बाद।
2: अमृत प्रकाश जी, आज बहुत सारे लोग आपको कार्यक्रम बढ़ते कदम में सुन रहे हैं। मैंने शुरुआत में कहा कि आपकी कला की वजह से लोग आपको पहचानते हैं। ये मूर्तिकार के सफर की शुरुआत कैसे हुई, कब आपको ये महसूस हुआ कि आप सैंड से मूर्ति बना सकते हैं? पहले तो आप हमारे श्रोताओं को बताएं कि आप क्या क्या करते हैं, आप क्या क्या बनाते हैं, किन किन चीजों से बनाते हैं।
3: देखिए, मैं मजा करता हूँ, मैं आनंद लेता हूँ और लाइफ को सेलिब्रेट करता हूँ, और खूब घूमता हूँ, फिरता हूँ, गाता हूँ, बजाता हूँ, गंगा किनारे रहता हूँ, गंगा की मिट्टी से खेलता हूँ, जंगल झाड़ियों में रहता हूँ, पक्षियों का आवाज सुनता हूँ, नाचता भी हूँ। तो इस शरीर के अंदर जो आत्मा प्रवेश किए उसके साथ मैं अपने आप को जीता हूँ, सेलिब्रेट करता हूँ।
2: मैं बढ़ते कदम सुन रहे तमाम श्रोताओं को बताएं कि अमृत प्रकाश यूं तो देश के अलग अलग राज्यों में रहे, वहाँ पे कई जगहों पर अपनी जो कला है उसके माध्यम से बहुत सारे काम किए, अपनी पहचान बनाई। अमृत प्रकाश बेसिकली रहने वाले हैं साहिबगंज के, और अब फिर से साहिबगंज में आकर साहिबगंज जिले में ये लोगों के लिए काम कर रहे हैं, लोगों को प्रोत्साहित कर रहे हैं। आपने बताया कि आप गंगा किनारे रहते हैं, मैं चाहूंगा कि पहले आप हमारे श्रोताओं को ये बताएं कि किन किन चीजों से आप ये जो आर्ट है, जो मूर्ति आप तैयार करते हैं।
3: मेरा मुख्य विषय जो है वो है टेराकोटा। गंगा के किनारे रहते आसानी से मिट्टी मिलती है, तो मिट्टी में काम करना पसंद है, पत्थर में काम करता हूँ। आजकल इस जो कबाड़ कचरे हैं गंगे से, बहुत सारे प्लास्टिक के बोतल, वेस्टेज मटेरियल निकल रहा है, तो उसको लेकर भी काम कर रहा हूँ। चित्रकला, चारकोल से काम करता हूँ, यहाँ पे कोयला की खदान भी है, कोयले भी निकलते हैं, तो जले हुए कोयले से जो राख बनती है उससे मैं अभी ड्राइंग करता हूँ। सोहराय पेंटिंग है, या जो झारखंड की लोक कलाएं हैं, जादू पटिया है जो साहिबगंज की लोक कला है। तो मैं चित्रकला, मूर्तिकला, स्थापत्य कला, और ये सभी को मिश्रण करके मैं एक नई कला बनाता हूँ जी। और ये सारे माध्यम हैं, मीडियम हैं, इन सभी विषयों में काम करता हूँ।
2: एक बहुत अच्छी बात आपने बताई, और मैं चाहूँगा कि इसके डिटेल पे हम बात करें, कि आपने बताया कि जो कचड़े निकलते हैं, जो वेस्टेज है, जो बर्बाद हो जाते हैं, या आज लोग कहीं ना कहीं इरिस्पॉन्सिबल नज़र आते हैं कि जब आप प्लास्टिक को गंगा नदी में बहा देते हैं या ऐसी जगह बहाते हैं जहाँ पे नहीं आपको भेजना चाहिए, और आप उन्हीं कचड़ों से एक आर्ट तैयार करते हैं, इसके पीछे की सोच क्या है आपकी, क्या एक संदेश आप लोगों को देना चाहते हैं?
3: देखिए, कचरा पे बहुत दिनों से काम कर रहा हूँ, और मेरा जिस जगह पे, जिस गांव में जन्म हुआ है उसके पास में नदी है, वहाँ पे प्लास्टिक का बोतल, जब गंगा किनारे खेलता था वहाँ के बालू से, मिट्टी से, तो कचरा भी आता था, तो कचरे को उस समय से देखना शुरू किया, तो मज़ा आता है, क्योंकि कचरे को जोड़ना, उसको नए नए फॉर्म में ढालना, उसको एक जीवंत चीज़ बनाना, लाइफ में उसको यूज़ किया जा सके, उस तरह से चीज़ों को बनाता हूँ। डस्टबिन बनाता हूँ, वाल बनाता हूँ, कुछ बड़े बड़े लेटर राइटिंग लिखता हूँ आप, और अभी मतलब ये बता नहीं सकता हूँ ये वेस्ट मटेरियल क्या है, ये कबाड़ से जुगाड़ क्या है, ये कबाड़ से कमाल क्या है।
2: ये कबाड़ से जुगाड़ क्या है और ये कबाड़ से कमाल क्या है, लोगों को जागरूक होने की ज़रूरत है, और ये समझने की ज़रूरत है कि हम जिन चीज़ों को एक तो बाहर फेंक दे रहे हैं जिससे लोगों को एक हानि पहुँचेगी, अगर आप समझदार बनेंगे, आप रिस्पॉन्सिबल बनेंगे, तो उन्हीं चीज़ों से बहुत कुछ आप कर सकते हैं, और ये जो वातावरण को हम प्रदूषित कर रहे हैं उससे भी वातावरण को संरक्षित किया जा सकता है। अमृत प्रकाश जी, जब आपकी बात हम करते हैं, आपने बताया कि स्थापत्य कला, मूर्ति कला, चित्रकला, इन तमाम चीज़ों पे आप काम, बहुत सारे युवा हैं उनमें भी ये प्रतिभा है, आप बताएं पहले आपकी शिक्षा दीक्षा क्या रही, आपने क्या कुछ किया?
3: मेरी शिक्षा यहाँ के रेलवे स्कूल से मैंने पढ़ाई किया, और मास्टर बैचलर्स किया मैं पटना आर्ट कॉलेज से, वहाँ से गोल्ड मेडलिस्ट था। कोलकाता रविंद्र भारती से मैं मास्टर्स किया, और बहुत सारी चीज़ विषयों पे रिसर्च भी किया, स्थापत्य कला और बाकी विषयों पे, और देश के एक महान कलाकार हैं हिम्मत शाह जी, उनके साथ मैं वर्षों काम किया, अभी भी उनके साथ लगा हूँ। तो वो इस दुनिया के अद्भुत कलाकार हैं। मैं पिकासो वैन गॉग से तो नहीं मिला, पर हिम्मत शाह के साथ जो मिला वो मेरे लिए भगवान के स्वरूप है वो। पर वो अभी जयपुर में है, राजस्थान में है, और मैं यहाँ झारखंड में हूँ। पर टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम उनसे मिल पाते हैं, उनकी कला को हम देख पाते हैं, हम अपनी कला को उनको दिखा पाते हैं। आज की कला भी वही है, इंटरेक्टिव आर्ट। तो हमारी शिक्षा दीक्षा यही है।
2: जो बच्चे इस फील्ड में आना चाहते हैं, बहुत सारे बच्चे हैं जो फाइन आर्ट करना चाहते हैं, बहुत सारे बच्चे हैं जो मूर्तिकार बनना चाहते हैं, एक तो कब हम कैसे ये समझ पाए कि हाँ हमें ये इंटरेस्ट है या हम ये बेहतर कर सकते हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें कि हमें उस वक्त में ये समझ जाना है कि ये फील्ड मुझे इस ओर खींच रहा है। और दूसरा, उनके लिए क्या आप उनसे क्या कहेंगे अगर वो भी इस फील्ड में आना चाहते हैं, किस तरह का धैर्य रख के किन चीज़ों पर इंटरेस्ट होना चाहिए?
3: देखिए, ये बहुत अच्छी सवाल है ये। मैं अपने बारे में पहले बता दूं कि मैं जब स्कूल में पढ़ाई करता था तो मुझे पढ़ाई समझ में नहीं आता था, लेकिन जो शब्द कहा जाता था तो वो शब्द मुझे चित्र के रूप में दिखता था। क से लिखा जाता था, क बच्चे को भी पहले शब्द नहीं, पहले चित्र दिखाया जाता है कि क से कौआ, तो पहले कौआ का चित्र बनाता है, फिर उसके बाद में लिखता है क, और क से कौआ। क याद नहीं रहता लेकिन चित्र याद रहता है। तो बचपन से मेरे भी दिमाग में ऐसे ही था कि राम घर जा रहा है, तो वो लिखा हुआ शब्द मुझे याद नहीं रहता था, राम चित्र के रूप में तीर धनुष लेके घर जा रहा है, तो वो मुझे याद रहता था, दिमाग में चित्र आ जाता। तो ये जो प्रॉब्लम जो था ये मुझे एक आर्टिस्ट बनने में के रास्ते पे लेकर आ गया। और यही गुण या उस बच्चों में जो आना चाहते हैं इस फील्ड में, जिसको कला की बेचैनी है, क्योंकि सब लोग तो आईएएस और डॉक्टर नहीं बन सकते, इंजीनियर नहीं बन सकते हैं। तो हम लोग के जैसे कुछ बच्चे होते हैं जो क्लास के सबसे पीछे वाले बेंच में बैठते हैं, और स्टूपिड स्टूडेंट्स भी हम लोगों को कहा जाता था, उस स्टूपिड स्टूडेंट्स वालों में से मैं भी एक हूँ, और मैं कला का क्षेत्र में अपने आप को प्रयास कर रहा हूँ।
2: जब हम सरकार की बात करते हैं, आज हम ये भी देख रहे हैं कि एक बहुत बड़ा बदलाव पहले से आया है, चाहे केंद्र सरकार की बात करें या फिर राज्य सरकार की बात करें। अब जो लोग हैं वो इस बात पे जोर दे रहे हैं कि ऐसे कलाकार को भी सामने लाया जाए, उन्हें भी एक मंच दिया जाए। कैसे देखते हैं आप इन चीज़ों को, इन प्रयासों को?
3: ये सरकार अभी बहुत अच्छी प्रयास कर रही है, और झारखंड में जो कला की शुरुआत अब जो हुई है, और देश में बहुत अच्छा काम हो रहा है कला के ऊपर, तो अब यहाँ जो कला की शुरुआत हुई है ये अद्भुत है, और इसका फ्यूचर बहुत अच्छा होने वाला है। सरकार को थोड़ा और प्रयास करने की जरूरत है, और कुछ सच्चे कलाकार जो कला में साधना करते हैं, कला में डूबे पड़े हैं, वैसे कलाकारों को ढूंढकर बाहर निकालना, और उनसे इस समाज में कला के क्षेत्र में कला के लिए क्या करना है उनके उनकी जिम्मेवारी उनके ऊपर दी जाए। आप कलाकार को यूज कीजिए, कलाकार को आप सामने लेकर आइए, उनसे आप बात कीजिए, तो फिर क्या है कि आपका समाज एक सांस्कृतिक क्षेत्र में आगे जाएगी, खूबसूरत होगी, पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। आने वाले 200 साल बाद क्या देखा जाएगा यहाँ पे, हम और आप नहीं रहेंगे, शरीर रहेगा ही नहीं। तो आने वाले 200 साल बाद यहाँ की जो कला और संस्कृति है, ये धरोहर के रूप में यही निकल कर आएगी।
2: अमृत प्रकाश क्या सोचते हैं? हम हमेशा कहते हैं कि हम जब भी हम लोगों ने देखा कि हम बड़े बुजुर्गों के साथ बैठे होते हैं या किन्हीं के साथ बैठे होते हैं, और जब बात होती है कलाकारों की तो कहते हैं कि कलाकार की तो सोच अलग होती है, वो हर चीज को एक अलग तरीके से सोचते हैं। आप जब आप समाज को देखते हैं, समाज में हो रहे विकास को देखते हैं, तो आपका नजर क्या कहता है एक कलाकार के तौर पर?
3: देखिए, मैं तो इतने सालों से ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर कर रहा हूँ। बचपन में जो चीजें थी दिमाग पे, पूरा शरीर आत्मा सब बदल गया। सब चित्र, मैं कुछ भी देखता हूँ, चित्र देखता हूँ, बादल देखता हूँ तो वो मुझे देखकर हंसता है, पेड़ को देखता हूँ तो हवा से मुझे लगता है, झोंका से हिलता है तो लगता है मुझे हाथ दिखा रहा है, मुझे बुला रहा है। तो मुझे तो मैं तो हमेशा पागल की तरह ही, मैं चाहता नहीं हूँ सब चीज़ से, थोड़ा अपने आप को बचाना भी चाहता हूँ लेकिन हो नहीं पाता है। ये पत्ते अलग बात करते हैं, हवाएं अलग छू कर हमको स्पर्श करके जाती है, ये बारिश आता है तो वो एक अलग फील देकर जाती है। तो रोम रोम जो है ना मेरा एकदम, ये इस सृष्टि को, इस पृथ्वी को, मनुष्य जो में जो जन्म हुआ है इसको एकदम स्पर्श कर लेता है। ये फीलिंग जो है ना, ये फीलिंग एक कलाकार के अंदर पर कुछ सालों तक लगातार काम करते करते या कला में डूबे रहने से ये चीज़ें जो है ना, लगता है आ गया अपने अंदर, मैं कभी कभी आम इंसान की तरह रूट करता हूँ, लेकिन वो फिर घूम फिर के उधर ही आ जाता हूँ। अब कभी मुझे चोट भी लग जाता है, चोट लगने के बाद जो उसमें जो एक मज़ा आता है, दर्द के बाद जो फिर थोड़ा सुकून मिलता है, तो वो जो फीलिंग है ना, वो बता नहीं सकता हूँ। एक कलाकार जो होता है ना, वो सच में अद्भुत होता है। ये मैं पहले जब मैं फर्स्ट ईयर में था और कलाकार बनने की प्रयास कर रहा था, तो मुझे ये समझ में नहीं आता था, लेकिन 20-25 सालों से जो मैं इतना सॉफ्ट ब्रश चलाता हूँ, इतना सॉफ्ट मिट्टी से कुछ टॉयज बनाता हूँ, कुछ स्कल्पचर बनाता हूँ, जो इस सृष्टि में है ही नहीं, उसको मैं पहली बार बना रहा हूँ, और फिर उसके बाद हो सकता है उस पर कुछ हो। तो ऐसी सारी चीज़ें जो है, वो एक मानव के लिए, कलाकार के लिए बहुत अद्भुत है। अभी तक मैं कलाकार बनने का कोशिश कर रहा हूँ, मैं अपने आप को पूरा सफल कलाकार भी नहीं मानता हूँ, लेकिन मैं प्रयास कर रहा हूँ, उसी रास्ते पे हूँ। अब ये पता नहीं, क्योंकि कला बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ी, मैं उसको छू लूँ ना तो बस वही मेरे लिए बहुत है। तो आगे देखते हैं और क्या हो सकती है।
2: कितनी मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि एक ऐसी मिट्टी जो शायद बहुत लोग उसका वो सोचते हैं कि ये यूजलेस है, इसका इस्तेमाल कुछ नहीं होना है, पड़ा हुआ है मिट्टी, और आप उसी मिट्टी से एक स्ट्रक्चर तैयार करते हैं, आप उसी मिट्टी से खिलौने तैयार करते हैं। कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कितना पेशेंस रखना पड़ता है, और जब आप उस मिट्टी में जान डाल रहे होते हैं तो क्या सोचते हैं?
3: मिट्टी जो है ना, वो एक मीडियम है, एक माध्यम है। जैसे कि नॉलेज और इंफॉर्मेशन, ये दोनों अलग अलग चीज़ हैं। बुद्धि और ज्ञान जो है, दोनों अलग अलग चीज़ हैं। लोग, आम आदमी क्या है, वो अपने बुद्धि से चीज़ों को देखता है, ज्ञान से नहीं देखता है। तो मिट्टी जो है ना, वो एक मीडियम है, कुछ भी चीज़ें हमारे पास हो, लेकिन मिट्टी मुझे इसलिए पसंद है क्योंकि मिट्टी तुरंत मेरा बात को समझ लेता है, मैं क्या चाह रहा हूँ। मेरा हाथ, मेरे को कुछ देखना भी नहीं पड़े, लेकिन मेरा हाथ चलेगा अपने आप, तो वो अपना एक जगह पे आ जाता है, अपने आप को तैयार कर देते। मेरा मस्तिष्क में क्या चल रहा है, वो मेरे हाथ के द्वारा आकर के उस मिट्टी पर स्पर्श हो जाता है। तो मिट्टी जो है वो, और हम लोग भी मिट्टी में ही जाना है, इसलिए मिट्टी के साथ जो प्रेम है, वो अभी से हम बना कर रख रहे हैं, दोस्ती बना कर रख रहे हैं। ये हाथों के द्वारा स्पर्श करने के बाद जो मिट्टी जो अपना फॉर्म लेता है, अपना जो स्पेस को जो पकड़ता है, एक कला का जो रूप में आता है, और फिर वो धीरे धीरे धीरे धीरे धीरे धीरे एक सही स्थान पे चला आता है, फिर एक कला का पूरा स्वरूप, पका हुआ स्वरूप वो अपने आप को लेता है। फिर वैसे ही मीडियम से फिर हम उसको इनलार्ज करते हैं, एक बड़े स्कल्पचर के रूप में लेते हैं, फिर उसको हम टेराकोटा बनाते हैं, फिर उसको सुखाते हैं, फिर उसको जाके पकाते हैं 800-1200 डिग्री के अंदर में, और फिर एक नया रूप में उसको लेकर आते हैं। जैसे कि आप नालंदा का विक्रमशिला देखेंगे, हरप्पा देखेंगे, मोहनजोदड़ो देखेंगे, विक्रमशिला देखेंगे, सब टेराकोटा से हैं, सब गंगा के किनारे जो मिट्टी पाई जाती है, क्योंकि इस देश में, दुनिया में जितनी भी सभ्यता विकसित हुई, सब नदी के किनारे हैं। तो ये भी इस तरह से जो मिट्टी का जो खेल है, ये बहुत अद्भुत है। इसलिए हम मिट्टी के साथ, मिट्टी के प्लेट में खाना खाया करते थे, मिट्टी के साथ हम जुड़े रहे हमेशा, और धीरे धीरे धीरे धीरे, और अभी हमारा पहचान भी ये मिट्टी के काम से होने लगा। टेराकोटा के वजह से लोग मुझे जानने लगे, तो मुझे भी मज़ा आने लगा। तो ये एक मीडियम है, एक माध्यम है, इसको हम सेलिब्रेट करते हैं, इसको एंजॉय करते हैं।
2: कहाँ कहाँ पे आपने काम किया अमृत प्रकाश जी, आपको लोग राष्ट्रीय स्तर पे भी जानते हैं, कहाँ कहाँ मंच मिला, कहाँ कहाँ आपने काम किया, और वो कौन सा काम है जिसे आप जब याद करते हैं तो आपको लगता है कि वो एक होता नहीं कि सारी चीज़ें फ्लैशबैक में आ जाती हैं, उसकी यादें दिमाग में आ जाती हैं, आप उन चीज़ों को याद करने लगते हैं?
3: देखिए, बहुत सारे, बहुत जगहों पे काम हुआ, देश और विदेश दोनों जगह पे अपनी कलाकृति लगी है। लेकिन देश में किलकारी बाल भवन पटना है, वहाँ पे एक बड़ी सी म्यूरल लगी है, 80 फीट की म्यूरल लगी है,
2: 80 फीट की।
3: और अभी हाल ही में 2-4 महीने पहले पटना के सर्किट हाउस जो है, नई बिल्डिंग बनी है, उसमें 82 फीट का एक टेराकोटा का म्यूरल लगा है। ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट टेराकोटा म्यूरल है, वर्ल्ड रिकॉर्ड 42 फीट का है, लेकिन ये जो पटना सर्किट हाउस में लगा है, ये 82 फीट का है, टेराकोटा का म्यूरल है, ये प्योर गंगा के मिट्टी से इसको पूरा बनाया गया है। दूसरा, अभी नालंदा के जो संग्रहालय एक बनाई जा रही है, उसमें अभी हमारी 20 पेंटिंग गई है, और भी पेंटिंग चल रही है। तो 20 पेंटिंग बनना एक संग्रहालय में, एक आर्टिस्ट के द्वारा, वो भी ऐसे ऐतिहासिक जगह जो नालंदा विश्वविद्यालय की जो संग्रहालय है, उसमें हमारी कलाकृति को लगाना, ये ईश्वर की, माँ सरस्वती की कृपा है। दूसरा, अभी साहेबगंज और झारखंड में बहुत सारा काम हो रहा है। अभी एक नया काम बोकारो में कंप्लीट किया। तिरंगा पार्क है वहाँ पे, उस पार्क के अंदर शहीद स्मारक बनाया। एक शहीद स्मारक हमारा साहिबगंज में भी बना है पुलिस मुख्यालय में। दूसरा, गंगा किनारे एक माँ गंगा की प्रतिमा लगाई गई है जो ब्रॉन्ज की है, और उसमें अद्भुत बातें ये है कि वो डॉल्फिन पे विराजमान है। कि गुप्त काल के पीरियड में देखेंगे, गुप्ता पीरियड की जो मंदिरें हैं, उसकी जो गर्भगृह है, उसके जो मुख्य द्वार हैं, उसमें माँ गंगा की प्रतिमाएं लगाई गई हैं, यमुना और गंगा की। साहिबगंज में जो गंगा की मूर्ति है, ये दुनिया का सबसे अद्भुत मूर्ति है, क्योंकि ये डॉल्फिन पे है, ब्रॉन्ज में है, और भारतीय जो इंडियन क्लासिकल जो है, वो इंडियन क्लासिकल स्कल्पचर जो मूर्ति है, उसके तत्व को, उसके मटेरियल को, उसके एथेंस, उसको सबको ध्यान में रख करके उस मूर्ति को गढ़ा गया। तो वो आप देखेंगे, वो भी बहुत ही अद्भुत है। उसमें जो टेराकोटा का जो डिज़ाइन बना है गंगा की मिट्टी से, और उसमें भागीरथी माँ गंगा को कैसे अवतारित की धरती पे, वो सारी चीज़ें आप देख पाएंगे। अभी वहाँ पानी का बार से पूरा भरा हुआ है, लेकिन कभी भी वो डिज़ाइन ही ऐसा बनाया कि कभी भी लगेगा नहीं कि वो डूबा हुआ है। वो जब भी पानी आएगा, फिर एक लेयर के बाद एक अलग ही डिज़ाइन दिखेगा, दूसरा लेयर में दूसरा डिज़ाइन दिखेगा। वो पानी कितना भी आ जाए, वो डूबा हुआ नहीं लगेगा गंगा माँ। तो वो भी अद्भुत डिज़ाइन है, वो भी आप देख सकते हैं। और दूसरा, यहाँ के उपायुक्त कार्यालय में जो कलाकृतियाँ लगाई गई हैं, वो देख सकते हैं। सिंधी दलान है राजमहल में, वहाँ पे अशोक स्तंभ, और वहाँ पे जो टेराकोटा की जो पिलर है, इस देश में जो टेराकोटा की पिलर है, स्तंभ है, वो आपको और जगहों पे नहीं मिलेगी, लेकिन ये साहिबगंज के राजमहल में वो टेराकोटा का म्यूरल आप देख पाएंगे। एक पिलर, एक स्तंभ, उसके ऊपर अशोक स्तंभ है, और ठीक उसके नीचे जो है वो संथाल प्रगना क्या है, झारखंड क्या है, यहाँ की दैनिक जीवन क्या है, पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर, ये तीनों आप उसमें देख सकते हैं।
2: बढ़ते कदम कार्यक्रम में आज अमृत प्रकाश से हम बात कर रहे हैं, और हमेशा हम कलाकार की बात करते हैं, उनकी मेहनत की बात करते हैं, जिस तरीके से वो मूर्ति में अपने कला को तराशते हैं, हम उसकी बात करते हैं। आप ये मानते हैं अमृत प्रकाश जी कि जीवन में आप कहीं भी रहें, कुछ भी करें, एकाग्रता बहुत जरूरी है?
3: बिल्कुल, इसलिए तो हम नेचर के बीच में आ गए हैं, इस प्राकृतिक सौंदर्य के बीच में, गंगा और पहाड़ों के बीच में है, इसलिए जंगल में जाके मंथन करते हैं, कला साधना करते हैं, और प्राकृतिक से जो लेते हैं उसको कला के स्वरूप बना के कला के रूप में परोसते हैं समाज में।
2: आज किस समय की बात करें, भाग दौड़ भरी जिंदगी है, लोग परेशान हैं, हर किसी को कुछ ना कुछ पाना है, और हम इतने व्यस्त हो जा रहे हैं, जहाँ पे एक स्ट्रेस भरी जिंदगी जी रहे हैं। एक कलाकार, जब आपको ही हम देखते हैं, और आप जिस तरीके से मिट्टी को उस निर्जीव मिट्टी में एक जान भरते हैं, तो समझ में आता है कि कितना जरूरी है कि खुद को काम रखे, शांत रखे। कैसे हमें क्या कुछ करना चाहिए, कैसे हम अपनी जिंदगी को जीने का तरीका अपनाएं, जिससे हम भी स्ट्रेसफुल जिंदगी से बच सके?
3: कला का आगमन ही मानव को करुणामय कर सकता है। कला का उत्सव मनाने से मानव के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आता। कला ही है जो किसी व्यक्ति को स्वतंत्रता का अनुभूति कराती। कला ही है, सही अर्थों में, मानव को आत्मविश्वास बढ़ाती है। कला के माध्यम से ही पृथ्वी पर सभ्यताओं का श्रृंगार होता है। इसलिए कला और कलाकार और कला समाज, इन सभी को जीवित रखने की जरूरत है, तभी हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता बची रहेगी।
2: आज बहुत सारे लोग अमृत प्रकाश को, मूर्तिकार अमृत प्रकाश को कार्यक्रम बढ़ते कदम में सुन रहे हैं, उनसे क्या कहना चाहेंगे आप?
3: देखिए, जो भी इस हमारी बात को सुन रहे हैं, वो सब अंदर से एक कलाकार हैं, क्योंकि वो किसी न किसी रूप में अच्छा कपड़ा पहनना चाहते हैं, अच्छा खाना खाना चाहते हैं, अच्छा भोजन चाहिए, अच्छा दिखना चाहते हैं। ये सब जो ग्रंथों में 164 कलाओं का वर्णन किया गया है, इस सभी का एक एक रूप है, लेकिन कला के आसपास सभी लोग रहते हैं। और कुछ लोग हैं जो कला प्रेमी होते हैं, कुछ लोग हैं कला को पकड़ते हुए भी कला से दूर रहते हैं। तो कला को महत्व दीजिए, कला आपको जीवन में, आपके जीवन में आनंदमय कर देगा, आनंद भर देगा। इस जीवन में, मानव जीवन में कला का बहुत बड़ा योगदान है। कला आपके आत्मा, आपके शरीर, आपके मस्तिष्क सबको प्रफुल्लित कर देगा। लाइफ को सेलिब्रेट करना है तो कला के साथ जुड़िए और कलामय हो जाइए।
2: अमृत प्रकाश जी, कार्यक्रम बढ़ते कदम में शामिल होने, हमारे श्रोताओं को इतनी अच्छी बातें बताने, जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
3: मैं भी आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इस लायक समझा। जी, धन्यवाद।
2: तो आज बढ़ते कदम कार्यक्रम में आपने सुना मूर्तिकार अमृत प्रकाश को राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाई अपनी मेहनत से। कलाकार हैं, गढ़ते हैं, सोचते हैं, तराशते हैं। हमारी जिंदगी भी कुछ ऐसी ही है, हमें भी गढ़ना है, तराशना है। लेकिन ये बहुत जरूरी है कि आज हम अपनी जिंदगी में जिस कदर आगे बढ़ रहे हैं उसमें हम खुद को शांत रखें, सकारात्मक सोचें, बेहतर करें। बढ़ते कदम कार्यक्रम भी वही काम करता है, अपने हर अंक में एक नई जानकारी लाता है, चाहे वो योजना की बात हो, सकारात्मक पहल की बात हो। जब सरकार की हम बात करते हैं तो सरकार की भी कोशिश यही होती है कि हम और आप कैसे एक कदम आगे बढ़ेंगे। बढ़ते कदम कार्यक्रम के अगले अंक में एक नए मेहमान होंगे, नया विषय होगा, नई बातें होंगी। कार्यक्रम की प्रस्तुति थी प्रभु शरण की। अब मुझे यानी कमलेश कुमार मिश्र को दीजिए इजाजत। नमस्कार। और आपको छोड़े चल रहा हूं इस खूबसूरत से गीत के साथ।

मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्स और FM 100.5 मेगाहर्ट्स पर आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण के माध्यम से आज के विभिन्न सभाओं में शेष कार्यक्रमों की रूपरेखा।

अब से कुछ ही देर में यानी कि 4:30 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम सांझ सरगम। 5 बजे का समय होगा प्रादेशिक मुख्य समाचार का। पर आप सुनेंगे युवाओं को संबोधित हमारा दैनिक कार्यक्रम युवा वाणी। प्रस्तुत करता होंगे गौरव कुमार पांडे। 5:30 का समय होगा कार्यक्रम श्रमिक लोक का। प्रस्तुति प्रभु शरण की होगी। 6 बजे आप सुनेंगे प्रादेशिक मुख्य समाचार। 6:02 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम खेती बाड़ी। प्रस्तुति प्रभु शरण की होगी। 6:32 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम हमारी दुनिया। प्रस्तुति प्रभु शरण की होगी। 7 बजे का समय होगा प्रादेशिक समाचार का। 7:11 पर आप सुनेंगे जिले में आजकल। सात बजकर 15 मिनट का समय होगा आदिवासी अखड़ा का। आज ये कार्यक्रम आप सुनेंगे मुंडारी भाषा में। प्रस्तुत करता होंगे गौरव कुमार पांडे। 7:45 का समय होगा प्रायोजित कार्यक्रम उड़ान का। 8 बजे आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम रजनी गंधा। 8:30 का समय होगा सुर्खियों में का। 8:45 पर आप सुनेंगे समाचार संध्या। 9 बजे आप सुनेंगे न्यूज एट 9। 9:15 का समय होगा उर्दू में समाचार का। 9:30 पर आप सुनेंगे चर्चा का विषय। 10 बजे आप सुनेंगे नाटक। 10:30 का समय होगा शास्त्रीय संगीत का। आज की कलाकार होंगी सविता राय। 11 बजे आप सुनेंगे हिंदी में समाचार। 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार।

हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम सांझ सरगम। सांझ सरगम का पहला गीत हमने लिया है फिल्म रेडी से। कुमार के लिखे इस गीत को संगीत दिया है प्रीतम ने। आवाजें हैं के और तुलसी कुमार की।

आइए अब सुनते हैं एनिमल फिल्म से ये गीत, अरिजीत सिंह की आवाज़ में। शब्द रचना सिद्धार्थ गरिमा के हैं, धुन बनाई है श्रेयस पौराणिक ने।

0: जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कॉन्क्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार,
1: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है सेल।
2: ध्यान दें, आपकी मेहनत को राष्ट्रीय पहचान। पशुपालन क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने और नवीन प्रौद्योगिकी प्रथाओं को अपनाने वालों को भारत सरकार का पशुपालन एवं डेयरी विभाग प्रदान करता है राष्ट्रीय सम्मान। आज ही नामांकन करें राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 के लिए।

0: जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार
1: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है। सेल

कार्यक्रम का आखिरी गीत आइए सुनते हैं फिल्म आकर्षण से। प्रशून जोशी के लिखे इस गीत को संगीत दिया है शंकर एहसान लॉय ने, आवाजें हैं मोहित चौहान और श्रेया घोषाल की।

0: हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं प्रादेशिक मुख्य समाचार।
1: नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं कामिनी। रांची विश्वविद्यालय का 39वां दीक्षांत समारोह आज रांची में आयोजित किया गया। राज्यपाल सह कुलाधिपति संतोष कुमार गंगवार और रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ समारोह में शामिल हुए। इस दौरान 58 मेधावी विद्यार्थियों को स्वर्ण पदक प्रदान किए गए, वहीं 2 शिक्षाविदों को मानद उपाधि से सम्मानित किया गया। जेपीएससी और जेएसएससी की भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी की सीबीआई जांच और आंदोलनरत छात्रों पर दर्ज मुकदमे वापस लेने की मांग को लेकर भाजपा का धरना प्रदर्शन आज दूसरे दिन जारी रहा। वहीं कोडरमा जिला मुख्यालय में हटिया विधायक नवीन जायसवाल के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने रैली निकाली। भारत सरकार के सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय की पहल पर जामताड़ा समाहरणालय स्थित प्रशिक्षण भवन में एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई। उपायुक्त आलोक कुमार ने कहा कि पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत 18 ट्रेडों से जुड़े कारीगरों और शिल्पकारों को प्रशिक्षण के साथ वित्तीय सहायता देकर आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है। लोहरदगा के पेशरार प्रखंड में विधायक सह पूर्व मंत्री डॉ. रामेश्वर उरांव ने जनसंपर्क अभियान चलाकर ग्रामीणों की समस्याएं सुनी। जनसुनवाई में आवास, राशन कार्ड, पेयजल, पेंशन, सड़क, बिजली और जमीन से जुड़े मामले सामने आए। विधायक ने कई समस्याओं का मौके पर समाधान किया और अन्य मामलों में अधिकारियों को कार्रवाई के निर्देश दिए। साहिबगंज के उपायुक्त दीपक कुमार दुबे की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में 42 बच्चों को स्पॉन्सरशिप योजना का लाभ देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इनमें 20 बालक और 22 बालिकाएं शामिल हैं। प्रत्येक पात्र बच्चों को शिक्षा, स्वास्थ्य और भरण पोषण के लिए 4,000 रुपये प्रतिमाह की आर्थिक सहायता दी जाएगी। देवघर एम्स में मरीजों और उनके परिजनों के लिए निःशुल्क शुद्ध पेयजल की सुविधा शुरू की गई है। गुड्डा सांसद डॉ. निशिकांत दुबे ने आज एम्स परिसर में नमो जल सेवा का उद्घाटन किया। सेवा के तहत आरओ से फिल्टर किया हुआ ठंडा पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 6 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
2: अभी आप सुन रहे थे मुख्य समाचार आकाशवाणी के रांची केंद्र से। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के चायबासा केंद्र से, एफएम के 101.7 MHz पे। सांध्यकालीन सभा में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। सभा का आरंभ कर रहे हैं हमारे सांध्यकालीन सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा के जरिए। अब से थोड़ी देर बाद यानी शाम के 5:05 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम गुलदस्ता। इस कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे एक ही गायिका आशा भोसले की गाई चंद फिल्मी नगमे। शाम 5:30 पर सुनेंगे कार्यक्रम खेती गृहस्थी। इस कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे जल प्रबंधन पर चर्चा, साथ ही घर की छत पर कैसे करें बागवानी, इस विषय पर जानकारी देंगी रचना हेमरम और इनसे बातें करेंगी कोमल नायक। साथ ही इस कार्यक्रम में लोकगीतों का आनंद भी आप लेंगे। मुख्य समाचार आकाशवाणी के रांची केंद्र से सुनेंगे शाम के 6 बजे 6:10 पर, क्षमा करें 6:02 पर आप सुनेंगे क्षेत्रीय भाषा का कार्यक्रम हुआगड़ा। 6:30 पर सुनेंगे बहनों का कार्यक्रम मनोरमा। 6:55 पर हम चलेंगे आकाशवाणी के रांची केंद्र, जहां से शाम 7 बजे सुनेंगे प्रादेशिक समाचार और जिले में आजकल। फिल्म संगीत का कार्यक्रम आपकी पसंद हम प्रसारित करेंगे शाम के 7:15 पर। रात्रि 8 बजे सुनेंगे फरमाइसी फिल्म संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा। समाचार संध्या में क्रमशः हिंदी और अंग्रेजी में समाचार सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रात्रि के 8:45 पर। रात्रि 9:15 पर हम आपको पुनः शामिल करेंगे आकाशवाणी के रांची केंद्र के कार्यक्रमों में। गजलों का कार्यक्रम महफिल हम प्रसारित करेंगे रात्रि के 10 बजे। फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुरों के रंग के साथ हम होंगे आपके साथ रात्रि के 10:30 पर। रात्रि 11 आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से आप क्रमशः हिंदी और अंग्रेजी में समाचार सुनेंगे और सभा समापन की घोषणा हम करेंगे रात्रि के 11:10 पर। अभी आप जानकारी प्राप्त कर रहे थे हमारे केंद्र से सांध्यकालीन सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। हम आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से बोल रहे हैं FM 101.7 MHz पे। प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम गुलदस्ता। इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवाने जा रहे हैं एक ही गायिका आशा भोसले को। पहला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं आदमी और इंसान से हमने लिया है। संगीतकार हैं रवि, गीतकार हैं साहिर।

0: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए 8700014242।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
2: क्या आप तनाव, चिंता, उदासी, मानसिक परेशानी या आत्महत्या के विचारों से जूझ रहे हैं? याद रखिए, आप अकेले नहीं हैं। मानसिक स्वास्थ्य महत्वपूर्ण है। मदद के लिए संपर्क करें रिनपास कांके रांची।
3: पिछले 100 वर्षों से मानसिक स्वास्थ्य चिकित्सा के क्षेत्र में एक अग्रणी संस्थान, जहां अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा मानसिक स्वास्थ्य संबंधी परामर्श और नशा मुक्ति का निःशुल्क उपचार उपलब्ध है। डायल करें 24/7 हेल्पलाइन नंबर 9471136697, टोल फ्री नंबर 1449 या 1800-345-4060 पर।
2: समय पर मदद लें, स्वस्थ मन, बेहतर जीवन पाएं। रिनपास एवं झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
4: इस विराम के बाद पुनः एक बार स्वागत है कार्यक्रम गुलदस्ता में, और अब हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म चौदवी का चांद का ये खूबसूरत सा गीत। गीतकार हैं शकील वदायुनी, संगीत है रवि के, और आप जानते ही हैं आज हम आपको सुनवा रहे हैं एक ही गायिका आशा भोसले को।

और अब इस कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं, जिसे हमने लिया है फिल्म लोफर से। आनंद बख्शी के बोल है, संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

उमराव जान इस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे। शहरयार के बोल थे, संगीत खयाम के थे। आप सुन रहे हैं एक ही गायिका आशा भोसले को, और कार्यक्रम के आखिर में हम आपको सुनवा रहे हैं ठाकुर जनरल सिंह का ये खूबसूरत सा गीत। अरशद भोपाली की रचना है और संगीत दिया है गणेश ने।

खेती गृहस्थी कार्यक्रम सुनने वाले सभी किसान भाई बहनों को कोमल नायक का जोहार। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। जल प्रबंधन क्या है और इसके फायदों के बारे में आज हम जानेंगे, साथ ही आनंद लेंगे हो लोकगीत का और सुनवाएंगे एक भेंट वार्ता। तो किसान भाई बहनों, जल प्रबंधन का अर्थ जल संसाधनों की योजना बनाना, उनका विकास वितरण और उनका इस तरह से नियंत्रण व संचालन करना जिससे उनका कुशल, न्यायसंगत और टिकाऊ उपयोग सुनिश्चित किया जा सके। जल प्रबंधन के मुख्य उद्देश्य यह है कि पानी की बचत करना, उपलब्ध मीठे पानी के स्रोतों का बुद्धिमानी और जिम्मेदारी से उपयोग करना, आपदा से बचाव, बाढ़, सूखे और जल प्रदूषण जैसे जोखिमों को नियंत्रित करना और कम करना, संतुलन बनाए रखना, भविष्य में या भविष्य की जरूरतों के लिए भूजल स्तर को बनाए रखना, पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा करना। जल प्रबंधन के कई तरीकों को अपनाकर पानी को आप जमाव कर सकते हैं, जैसे वर्षा जल का संचयन, छतों या खुले स्थानों से बारिश के पानी को इकट्ठा करके जमीन में उतारना या टैंकों में सुरक्षित रख सकते हैं। घरेलू और कृषि कार्यों में पानी के रिसाव को रोकना और टपक सिंचाई जैसी आधुनिक तकनीकों का उपयोग करना, तालाबों, झीलों और बावड़ियों जैसी पारंपरिक जल संरचनाओं की सफाई और मरम्मत करना, गंदे पानी को ट्रीटमेंट प्लांट के जरिए साफ करके दोबारा उपयोग योग्य बना सकते हैं। जल प्रबंधन करने से हमें कई तरह के लाभ होते हैं जो हमारे पर्यावरण, समाज और अर्थव्यवस्था को सुरक्षित रखते हैं। जल संरक्षण करने से पानी की बर्बादी कम होती है और भूजल स्तर को बनाए रखने में मदद मिलती है। सही प्रबंधन से फसलों की सिंचाई और उद्योगों के लिए पर्याप्त पानी मिलता है जिससे उत्पादन बढ़ता है। इससे नदियों और झीलों जैसे प्राकृतिक जल स्रोतों में प्रदूषण कम होता है और जलीय जीवन सुरक्षित रहता है। साफ और सुरक्षित पानी मिलने से हैजा और टाइफाइड जैसी पानी से होने वाली बीमारियां कम होती है। पानी के कुशल उपयोग से घरों और उद्योगों के पानी और बिजली के बिल कम आते हैं। इसलिए किसान भाई बहनों, जितना हो सके अधिक से अधिक पेड़ लगाने और हरियाली बढ़ाने से वर्षा को बढ़ावा मिलता है और भूजल स्तर में सुधार होता है। तो किसान भाई बहनों, अभी हमने आपको जानकारी दी जल प्रबंधन के बारे में। कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं, आनंद लेते हैं हो लोकगीत का मिलानी बोदरा और साथी के स्वरों में।

0: की मुलाकात करवा रहे हैं रचना हेमब्रम जी से, जो कि शिक्षिका के साथ साथ घर की छत पर बागवानी भी करती हैं, या यूं कहें हम महिला कृषक भी हैं। तो रचना जी, क्या हम घर की छत पर बागवानी कर सकते हैं?
1: जी, हम लोग बहुत अच्छी तरह से घर के छत पर बागवानी कर सकते हैं, और खासकर आज अभी का जो मौसम है, बारिश का जो मौसम है जी, इस मौसम पे हम खेती बहुत उत्तम तरीके से कर सकते हैं। और ये हरे पौधों के लिए बहुत ही उत्तम समय है, इस समय जो पानी की है मात्रा काफी प्रचुर रहती है, रोशनी भी काफी तेज नहीं रहती है, और इस समय जो पौधों की जो पैदावार है काफी अच्छे तरीके से हो जाती है, इसलिए ये बहुत ही उत्तम समय है हमारे पौधों के लिए।
0: अच्छा, यानी कि हम छत पर जो बागवानी वो कर सकते हैं।
1: जी जी,
0: तो हम अगर छत पर बागवानी कर रहे हैं तो बागवानी की शुरुआत हमारे जो किसान भाई बहन है उनको किस तरह से करना होगा?
1: तो जी, जब आप बागवानी की सोच रहे हैं तो नॉर्मली जो जनरली हम लोग क्या करते हैं कि हम अपने घर पे छोटे छोटे पौधे तो लगाते ही हैं गमलों में, है ना? तो अगर हम बागवानी के उद्देश्य से अगर करेंगे तो इसके लिए सबसे अच्छा होगा कि आप पहले अपने जो छत की जो क्षमता है उसको जरूर ध्यान देंगे, और दूसरे आप उसमें किस तरह के पौधे लगा रहे हैं उसका आप चुनाव कीजिए, तीसरा आप जो मिट्टी का यूज कर रही हैं, ठीक है, तो वो मिट्टी का चयन उत्तम होना चाहिए, आप उसमें किस तरह के आप खाद का प्रयोग कर रही हैं उसका ध्यान दीजिएगा, आप गमलों में प्लास्टिक के गमलों का यूज कर रही हैं कि मिट्टी के गमलों का यूज कर रही हैं या किसी अन्य प्रकार के गमलों का यूज कर रही हैं, उस पर आपको ध्यान देने की जरूरत है, और ये आपके सीजन के आधार पे, मतलब मौसम के आधार पे आप पौधों का चयन करेंगी। जैसे अच्छा। हमारे अभी रबी के फसल लगाने का टाइम है कि खरीफ के फसल लगाने का टाइम है, ओके, तो समय के अनुसार आप पौधों का चयन करेंगी तो बहुत ही उत्तम रहेगा पौधों को बागवानी करने के लिए।
0: जी, तो जैसे कि आपने कहा कि पौधे लगाने के लिए गमले लगाने, मतलब गमले में लगाने चाहिए, तो क्या पौधे के हिसाब से हम लोगों को जो है गमले का चयन करना चाहिए? क्योंकि आजकल हम देखते हैं जो भी छत पर लगाते हैं, कोई कोई होते हैं कि जो पानी के बोतल मिलते हैं
1: जी,
0: उस पे पौधा लगा देते हैं, बोरे में लगा देते हैं, जो सरसों तेल का जो टीना का जो आता है जी, उसमें लगा देते हैं, तो क्या ये सब चीज में पौधे लगाना बेहतर है?
1: जी, बहुत ही बेहतर है। आजकल आधुनिकता को मद्देनजर रखते हुए आप बच्चों को काफी क्रिएटिव बनाने के लिए या काफी उनमें सिखाने के लिए आप इस तरह की आप तकनीकी अपना करके भी पौधों को लगा सकते हैं, लेकिन इस बात पे ध्यान दीजिएगा कि जिन गमलों का आप चयन कर रही हैं, है ना, तो वो गमले आपके पौधे के लिए नुकसानदायक नहीं होने चाहिए।
0: अच्छा, जी, जी, जी। तो जैसे कि हम विकास उस पे अच्छे से यानी कि होगा ही
1: जी,
0: जड़ विकसित होंगे
1: जी, जी जी,
0: तो हमें ऐसी कौन कौन सी सब्जियां लगानी चाहिए खासकर छत पे?
1: जी, कि जैसे मैंने आपको शुरू में ही कहा है कि आप मौसम के आधार पे सब्जियों का चयन कीजिए, तो जैसे अभी हमारा जो मौसम है ये बारिश का मौसम है, ठीक है, तो रबी की जो फसलें होती हैं जिनको हम अक्टूबर के सीजन पे लगा सकते हैं, उनका आप अभी चयन करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। जैसे सब्जियों में आप टमाटर हुआ, शलजम हुआ, गाजर हुआ, फूलगोभी हुए, प्याज हुए, ठीक है, पालक हुए, मेथी, बैगन, इन सब की लगा सकते हैं। उसके बाद हमारा जो खरीफ के सीजन की जो सब्जियां आती हैं जिनका जो समय होता है जून से जुलाई के मौसम में, तो ये गर्मी का मौसम है, इस समय आप गमलों का चुनाव में आप प्लास्टिक के गमलों का उपयोग नहीं कर सकती हैं, ठीक है, और इस समय आप टमाटर हुआ, भिंडी हुआ, करेला हुआ, मिर्च हुआ, इन सब का आप चयन कर सकती हैं सब्जियों में। और दूसरा है जायद की फसलें होती हैं, जायद का समय ही ना होता है, फरवरी मार्च और अप्रैल तक का सीजन समय होता है, उस समय अभी आप खीरा, खरबूजा, भिंडी, जो ज्यादातर हम घरों पे यूज करते हैं, उपयोग करते हैं, आप उन फल सब्जियों का चयन करके आप बहुत अच्छे तरीके से, बहुत उत्तम तरीके से आप इन सब्जियों को अपने छतों में लगाइए, और पैदावार भी काफी उत्तम होता है, काफी अच्छा होता है।
0: बिल्कुल, तो क्या लाभ मिलेगा अगर हमारे किसान भाई बहन छत पर लगाते, क्योंकि बहुत कोई जैसे कि अभी फ्लैट में रहते हैं उनको शौक भी रहता है कि वे बागवानी करें, तो वो अगर घर की छत पर सब्जियां लगाती है तो उनको क्या क्या लाभ मिल सकते हैं?
1: देखिए, लाभ की जब बात करें तो काफी लाभ है मैम, क्योंकि देखिए अभी हम जो अभी का जो आधुनिक युग है, आधुनिक युग में पैदावार बढ़ाने के लिए जो हमारे किसान जो है भाई बहने हैं, अगर वो गांव में अगर वो खेती कर रहे हैं तो वो जो क्या कहते हैं प्राकृतिक खाद का उपयोग कर रहे हैं, लेकिन हम जो बाजार से सब्जियां खरीद रहे हैं उनमें किस तरह के
0: मिलावटी
1: मिलावटी रसायनिक का यूज किया है, आप कह नहीं सकते, आपको तो सब्जियां सब हरी ही दिखेंगी, लेकिन आप अपने आने वाले होने वाले बच्चों या जो हमारे नवजात शिशुओं को जब आप देते हैं तो आपको वो पता नहीं, आप सब्जियां दे रही हैं लेकिन सब्जी के रूप में आप कौन से रसायन दे रही है नहीं पता, लेकिन आप घर पे खेती करते हैं तो आप रोजमर्रे की यूज जरूरत की जो सब्जियां आप लगाते हैं तो आपको पता है कि आपने उसमें कौन सा खाद लगाया है, तो आप प्राकृतिक खाद लगाते हैं तो ये आपके सेहत के हिसाब से बहुत ही उत्तम रहेगा, आपके बच्चों के हिसाब से बहुत उत्तम है। दूसरी बात है कि अगर आप लगाते हैं तो उसमें क्या होगा कि आप साथ ही साथ आप अपने लगा रहे हैं, आपके अगल बगल के लोगों को भी आप शिक्षा दे रहे हैं एंड उनको भी आप इसके बारे में बता रहे हैं, तो ये भी दूसरा बहुत बड़ा फायदा है।
0: और दूसरा कि हमारी जो महिला किसान है उन्हें बाजार से खरीदना भी सब्जी नहीं,
1: सब्जी नहीं पड़ेगा। अगर आपकी पैदावार काफी उत्तम है तो आप अगल बगल में भी दे सकते हैं, यहाँ तो आपकी एक जो रोजमर्रे की जो जरूरत है वो उसके भी पैसे आप आ जाएंगे, है ना, तो ये बहुत ही उत्तम रहेगा जी।
0: तो रचना जी, क्या हम जो फूल हैं
1: जी
0: फूल भी लगा सकते हैं क्या, फूल के पौधे सब्जियों के साथ साथ?
1: जी जी, बहुत अच्छी बात है कि आप पौधे भी लगा सकते हैं, फूल के पौधे भी। अब फूल के पौधे किन्हें किन्हें पसंद नहीं है, बच्चों से लेके बूढ़े तक सब लोग इनको पसंद करते हैं, है ना, और सीजन के हिसाब से आप इन पौधों को लगाइए, आप बागवानी कीजिए, हर सब्जी की एक क्यारी अलग बनाइए, आप फूल की अलग क्यारी बनाइए, है ना, फूल में आप बहुत अच्छी तरह से पैदावार करा सकते हैं, जैसे गुलाब के पौधे हुए, गेंदे के पौधे हुए, है ना, और अभी बारिश का सीजन है, अपराजिता के पौधे हैं, सदाबहार के पौधे हैं, ये पौधे क्या कहते हैं, औषधि के रूप में भी काफी उपयोग कर सकते हैं जी। बहुत तरीके के पौधे आप सीजन के हिसाब से, मौसम के हिसाब से आप लगाइए, बहुत उत्तम रहेगा।
0: और रचना जी, फूलों की खेती करने से क्या होगा कि

0: एरोफोनिक तकनीक है। तो हाइड्रोफोनिक तकनीक का मतलब होता है, हाइड्रो का मतलब होता है पानी, आप पानी में पौधों को लगाइए। पौधे के लिए सबसे उत्तम चीज क्या है, ऑक्सीजन की मात्रा और उसके जो उनकी जो उनको जो रसायन चाहिए ये मिनरल्स चाहिए वो उनका, तो आप पानी के माध्यम से उनको उपयुक्त दीजिए उनको। अच्छा, ठीक है। तो क्या उसमें क्या होती है कि छोटे पाइप नुमा आकृतियां होती हैं जिनको आप मार्केट से खरीद भी सकते हैं। आप चाहें तो घर पे हम लोग मनी प्लांट के पौधे लगाते हैं, तो उसमें आप लोगों ने देखे होंगे हम सिर्फ पानी देते हैं, समय समय पर पानी चेंज करते हैं, पानी में ऑक्सीजन की मात्रा रहती है और हम जो पानी पीते हैं उसमें बहुत सारे ऐसे मिनरल्स भी रहते हैं, तो जिनका आप उपयोग करके आप जब हमारे लिए इतना उत्तम है तो सोचिए पौधे के लिए कितना उत्तम है। तो बस आप पानी की समय समय पर बदलते रहिए और उनमें कुछ रसायन डालते रहिए, आप देखिएगा आप मिट्टी के बगैर भी बहुत अच्छे उत्तम तरीके से आप सब्जियों और फूलों को लगा सकते हैं।
1: जी, तो हम तो पौधे लगा देते हैं रचना जी,
0: जी।
1: और पौधे लगाने के बाद क्या होता है, हम उनका ध्यान नहीं रखते हैं
0: जी।
1: तो हम चाहेंगे कि हमारे किसान भाई बहनों को बताएं कि इन पौधों का हम ध्यान किस तरह से रखें।
0: जी, फूल लगाना अलग बात है मैम, उनको ध्यान देना ये बहुत बड़ी बात है। तो जैसे हम बच्चों की सेवा करते हैं वैसे हमें पेड़ पौधों की भी सेवा करनी चाहिए। अगर आप सब्जियां लगा रहे हैं तो उनके अगल बगल आप ऐसे कोई भी प्रदूषित पानी ना बहाएं। आप उनमें जब पानी दे रहे हैं, आप ज्यादा पानी पी लेते हैं तो सोचिए आप भी रह नहीं पाते, उसी तरह पौधे भी हैं, वो जीवित प्राणी हैं, आप उसको भी सही मात्रा में पानी दीजिए, ना अत्यधिक पानी दीजिए। जैसे हम लोगों को बढ़ावा के लिए हमें बहुत सारे कैसे कहते हैं जैसे पोषक तत्व की आवश्यकता होती है ना, तो वैसे ही पौधों को भी पोषक तत्व की आवश्यकता होती है। तो समय समय पे आप उनकी पोषक तत्वों को आप प्रभावित कीजिए, मतलब उनको आप देते रहिए। और उसके बाद जैसे कोई फूल सूख रहे हैं, पत्ते सूख रहे हैं, कब सूख रहे हैं, फूल अगर सूख गए हैं तो उनको आप हटा दीजिए, समय समय पर उसकी छटनी कीजिए, आप समय पर उनके खाद दीजिए, पानी की मात्रा दीजिए। पानी आप गमलों में पौधे लगाए हैं तो उनमें जो पानी डाल रहे हैं वो पानी सही मात्रा में जा रहा है, पानी रुक तो नहीं रहा है। अगर पानी रुकता है तो उससे जड़ें सड़ने लगती हैं, तो इस पे भी ध्यान दीजिए। मात्रा, हर चीज की मात्रा उत्तम रखिए पौधों को। और जहाँ बहुत इम्पोर्टेंट होता है, बहुत जरूरी है सूर्य की रोशनी, क्योंकि पौधे हैं वो अपना भोजन स्वयं बनाएंगे, तो उनके लिए जितनी जरूरत पानी की है उतनी जरूरत सूर्य की रोशनी की है। तो आप अपने छतों पर ये जरूर ध्यान दीजिए कि आप में वहां पे सूर्य की रोशनी प्रचुर मात्रा में पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है। तो एक पौधे के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे महत्वपूर्ण चीजें हैं जल, जिनका निकासी उत्तम हो और जल उत्तम मिलना चाहिए। दूसरा सूर्य की रोशनी है, उन्हें उत्तम मिलना चाहिए। किस समय उन्हें ज्यादा हो रहा है तो आप उनको छांव भी प्रदान करें। तीसरा है कि आप उनका उत्तम समय पे छटनी कीजिए। और एक बारिश के सीजन के बाद जब नया मौसम आता है तो उस समय मिट्टी का भी बदलाव कीजिए। अच्छा। और उसमें आप जो हमारे प्राकृतिक खाद है उनको लगाइए, और गमले में लगाया गया मिट्टी को हर तीसरा महीने में, हर पांचवें महीने में बदलते रहना चाहिए। तो इस तरह की अगर आप छोटी छोटी उपाय करते जाएंगे तो आप बहुत बेहतरीन तरीके से छत में खेती कर सकते हैं।
1: जी, आज रचना जी आपने हमारे जो किसान भाई बहनों को इतनी अच्छी जानकारी दी है, उम्मीद करते हैं कि हमारे जो जितने भी किसान भाई बहन है आज आपको सुन रही होंगी या सुन रहे होंगे। तो किसान भाई बहनों, हम उम्मीद करते हैं कि आज जो हम रचना जी ने आपको और मुझे जो भी जानकारी दी है आपको बहुत अच्छा लगा होगा। और रचना जी, आज आप हमारे कार्यक्रम से जुड़े उसके लिए आपका धन्यवाद।
0: धन्यवाद। मैं साथ में सारे किसान भाइयों को, बहनों को यही कहना चाहूंगी कि जो भी आप तकनीकी अपनाए आप बेहतरीन तरीके से अपने भी कीजिए, अगल बगल के लोगों को भी आप इसकी जानकारी दें, ताकि समय रहते हम और बहुत अच्छे तरीके से हमारे भारत को ग्रीनी, मतलब क्या कहते हैं, हरे भरे बनाए रखें। नहीं, जंगलों को ही हरा भरा ना बनाएं, हम अपने जो घरों को भी हरा भरा बनाएं और बच्चों को भी शिक्षा दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।
1: नमस्ते। किसान भाई बहनों, अभी आप जानकारी ले रहे थे घर की छत पर बागवानी किस तरह से करनी चाहिए, और इस विषय पर जानकारी दे रहे थे रचना हेम्ब्रम। कार्यक्रम के अंत में सुनवा रहे हैं कुरमाली लोकगीत संतोष महतो और साथी के स्वरों में।

तो किसान भाई बहनों, इस लोकगीत के साथ ही आज का हमारा खेती गृहस्थी कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। कार्यक्रम से कोमल नायक को दे विदा। जोहार।

0: समाचारों के साथ मैं कामिनी। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने कहा है कि एसआईआर के लिए विशेष रूप से नया जाति या आवासीय प्रमाण पत्र बनवाने की आवश्यकता नहीं है। सत्यापन का कार्य नागरिकों के पास पहले से उपलब्ध वैध दस्तावेजों के आधार पर किया जाना है। श्री कुमार राज्य के सभी सीएससी प्रबंधकों और उप निर्वाचन पदाधिकारियों के साथ विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर की ऑनलाइन माध्यम से समीक्षा कर रहे थे। मेरा युवा भारत की ओर से युवाओं को राष्ट्र निर्माण से जोड़ने के लिए विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग का आयोजन किया जा रहा है। राज्य निदेशक ललिता कुमारी और उपनिदेशक श्वेता सिंह ने आज रांची में बताया कि 30 सितंबर तक ऑनलाइन क्विज में युवा हिंदी और अंग्रेजी में भाग ले सकते हैं। चतरा में सशस्त्र सीमा बल की 35वीं बटालियन ने अपना स्थापना दिवस मनाया। चतरा कॉलेज में आयोजित कार्यक्रम में नागरिक कल्याण और महिलाओं के कौशल विकास पर जोर दिया गया। मुख्य अतिथि विधायक जनार्दन पासवान ने महिलाओं को ब्यूटीशियन प्रशिक्षण देने की पहल की सराहना करते हुए इसे आजीविका से जोड़ने वाला कदम बताया। रामगढ़ में खाद्य सुरक्षा विभाग ने अमानक, मिस लेबलिंग और भ्रामक दावों वाले खाद्य पदार्थों के खिलाफ औचक जांच अभियान चलाया। इस दौरान कई दुकानों का निरीक्षण कर कई उत्पाद हटाए गए। चतरा से लोजपा विधायक और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जनार्दन पासवान ने अपने बेटे सौरभ के साथ रांची में हुई मारपीट और कथित अपहरण प्रयास मामले पर पुलिस के बयान का विरोध किया है। उन्होंने कहा कि उनके बेटे ने शराब का सेवन नहीं किया था और मामले को राजनीतिक रंग दिया जा रहा है। गिरिडीह नगर थाना में युवक से कथित मारपीट के मामले में एसपी डॉक्टर विमल कुमार ने जांच के आदेश दिए हैं। एएसपी और डीएसपी मामले की जांच करेंगे। जांच प्रभावित ना हो इसके लिए नगर थाना प्रभारी रतन कुमार सिंह को लाइन हाजिर किया गया है। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन 7 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे मुख्य समाचार आकाशवाणी के रांची केंद्र से। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज पे। और अब प्रस्तुत है क्षेत्रीय भाषा का कार्यक्रम हो अकड़ा। इस कार्यक्रम के साथ हैं महेंद्र गुइया।

आकाशवाणी रिया चय भाषा केंद्र तना एफएम रिया 101.7 मेगाहर्ट्ज़ रेवन आई मतना ना आयुपिंग 6 बजे ने ते 2 मिनट होबा सिखाया ना कार्यक्रम हो अकड़ा आयु मिच बिन लगिन बिटा उजू किने लिंग महेंद्र गुई है सबिन को अलिंग पे ते जोहार जाओ दिन लिखा गे एस पुरे लिंग सगमगु तड इना को सभी मियन मियत लिंग आयु मिच बिना आयुम लगिन एफएम रेडियो जपारे तयन बन चेमर ना तरंग बन जपाओ जो ये नो एला आयु मिच बिना लिंग सभी को ते आयर अटकर जगर नीम दारू रिया गुण नीम दारू अबू हो मनवा को अलगिन ऐसु बुगिन दारू तेने नीम दारू नई रेड ते कोतो रिया पता जुका अबू रे रानू रे पाइटी रे हुजु तेने सीता करकट किनाते बारिये या तो अपिए पता बाले सगन जोमे रे होमोरिया करब मायम को सपावा ओंडो कसरा मलेरिये लेकिन हसु को का होबाना लाई जड़ाओ तन रे नीम हरता लो ओंडो जुका मिसरी मिलाओ कहते इना रेट गुंड कहते चाय चिमिनंग बो नुए इमिनंग जड़ाओ तन हो नुई चित रे लाई जड़ा को बंदावा नेलेकते अबो निम दारू रिया गुण को मेना अंडोगे मेना गया निम दारुए ते जो अबुए हो मनवा को अलगिन इनो अबो होमोरिया लगिन गे सीता निम करकट ते मिन हाट रे अपे सिंगिलिका करकटन रे अबुए होमोरे कसरा गाँव को ओंडो पोसुरी को ओल तंतिया को काओला नेलेकते निम दारू रिया गुण एसु पुरे मेना ओंडो ते निम दारू को आबो हातु दिसुम पेरेमा एस पुरे टाइट को मेना इना को वायते जुका तोड़ा नो रे निया को रुवतते एसु बुगिने ओंडो जेटे सिंगे ने निम दारू सुबेरे गीती दुबे केन रियो एन रिया साइड बो साइड रे दो आबो इनायते रियो अबुए होमो को बुगिले का तयने इना मनते आते निम दारु दो ऐसु बुगिन दारु तेने करकाते रियो पताते रियो ओंडो अबु ना रेड रिया चुकाते रियो अबुए रेड रनु रिया पाइट रबो आगुए तेने गवकन को रियो बु अबु निम पता रेड गुंडके ते एन रे तपाए रे जाचिमिन पुरे दुड़ाकन लेकन गाँव को रियो एना जिलू ऐसु अंजा संग नहीं एन लेकते निना दो बिना पैसा रिया रेट रनु रे हुजू नन रिया गुण को ऐस पुरे मिना कबू चिर गल ते रदो मर तिशिंग दो तुरंगलिंग जगर के डा अबो एन रदो निया को रिया मलों को रे सोलोंग कबन ओंडो निम्दा रुको अबो हागा मिसी को पा ओंडो बुंदु को पाए ते गुहारी मिना ची अबो जरूर नन निम्दा रुको मियन बारिये ओ आ ते जुका तोड़ा रेबो रोआचा तिसिंगे अटकर जागर दो नन मुली रगे चबाओ तना ना बन अयुम तन तय के ना अटकर जागर एन चनम एला जमनामा परोब रिया दूरंग लिंग आयुमिचे बिना।

0: सभी को सिविल जोहार।
1: अभी आप सुन रहे थे क्षेत्रीय भाषा का कार्यक्रम हो अकड़ा, और अब कुछ ही पलों में आप सुनेंगे बहनों का कार्यक्रम मनोरमा बसंती बिरुआ के साथ।

0: सभी बहनों को बसंती का जोहार, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम मनोरमा में। उम्मीद है बहनों इस समय आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। अपने स्वास्थ्य का ख्याल जरूर रखें। बहनों, हम अक्सर देखते हैं कि महिलाएं घर के कामों में इतनी व्यस्त हो जाती हैं कि अपने स्वास्थ्य की ओर अच्छे से ध्यान नहीं रख पाती है। लेकिन यदि वे अपने स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखेंगी तो घर परिवार को संभालना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि पूरे घर परिवार की जिम्मेदारी घर की महिलाओं के ऊपर ही रहता है। इसलिए स्वास्थ्य का ध्यान रखना बहुत जरूरी हो जाता है। महिलाओं को अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए संतुलित आहार, नियमित व्यायाम और पर्याप्त नींद पर विशेष ध्यान देना होगा। भोजन में हरी सब्जियां, ताजे फल, साबुत अनाज और दालों को जरूर शामिल करें। महिलाओं के लिए आयरन और कैल्शियम बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि माहवारी और उम्र बढ़ने के साथ महिलाओं में आयरन और कैल्शियम की कमी होना आम बात है। इसलिए दूध, दही, हरी पत्तेदार सब्जियां और बादाम खाएं और जंक फूड से दूरी बनाएं। पैकेट बंद खाना और ज़्यादा चीनी वाले खाद्य पदार्थों से बचें, ये स्वास्थ्य के लिए सही नहीं है। इसके साथ ही शारीरिक सक्रियता और फिटनेस भी बहुत ज़रूरी है, इसलिए नियमित व्यायाम भी करना जरूरी है। रोजाना कम से कम 30 मिनट योग या साइकिलिंग करें या तेज पैदल चलें। सक्रिय रहने से वजन भी नियंत्रित रहता है और दिल की बीमारियों का खतरा भी कम होता है। रोजाना योग ध्यान से तनाव भी दूर होता है, इसलिए अपने लिए हर दिन योग करने के लिए समय जरूर निकालें और शरीर को ठीक, स्वस्थ और ऊर्जावान बनाए रखने के लिए हर रात 7 से 9 घंटे की गहरी नींद जरूर लें। इससे आप सुबह काफ़ी ताजगी महसूस करेंगे और घर के कामों में भी मन लगा रहेगा। समय समय पर ब्लड प्रेशर, शुगर, हीमोग्लोबिन और अन्य जरूरी जांच करवाते रहें और माहवारी में अनियमितता या किसी भी तरह की कोई तकलीफ हो तो तुरंत स्त्री रोग विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें। तो बहनों, इस तरह से अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे तो आप अपने परिवार का ध्यान भी अच्छे से रख पाएंगी। बहनों, इसी बातचीत के साथ हम कार्यक्रम की ओर आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं ये जरूरी संदेश।
1: क्या आप तनाव, चिंता, उदासी, मानसिक परेशानी या आत्महत्या के विचारों से जूझ रहे हैं? याद रखिए, आप अकेले नहीं हैं। मानसिक स्वास्थ्य महत्वपूर्ण है। मदद के लिए संपर्क करें रिनपास कांके रांची।
2: पिछले 100 वर्षों से मानसिक स्वास्थ्य चिकित्सा के क्षेत्र में एक अग्रणी संस्थान, जहां अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा मानसिक स्वास्थ्य संबंधी परामर्श और नशा मुक्ति का निःशुल्क उपचार उपलब्ध है। डायल करें 24/7 हेल्पलाइन नंबर 9471366697, टोल फ्री नंबर 1449 या 1800-345-4060 पर।
1: समय पर मदद लें, स्वस्थ मन, बेहतर जीवन पाएं। रिनपास एवं झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
3: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
4: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
3: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: बहनों, अभी आप सुन रहे थे कुछ जरूरी संदेश। इन संदेशों के बाद आइए अब हम आनंद लेते हैं इस गीत से।

बहनों, अभी आप आनंद ले रहे थे जब जब फूल खिले फिल्म के गीत से, जिसे स्वर दिया था लता मंगेशकर ने। इस गीत के बाद आइए अब हम भेंटवार्ता के माध्यम से जानकारी प्राप्त करेंगे, महिलाओं के आर्थिक सहयोग में क्या योगदान है इस विषय पर, और इस विषय पर जानकारी दे रही हैं पिंकी जी। तो आइए सुनते हैं ये भेंटवार्ता।

0: होगा और उस परिवर्तन देश बदल रहा है और महिलाओं की दशा में सुधार आ रहा है। समय के साथ साथ नारी शक्ति और सशक्त होती जा रही है। परिवर्तन प्रकृति का नियम है, ये बात तो सत्य है। परिवर्तन का क्या परिणाम हुआ है और क्या होगा और उस परिवर्तन को आने वाली पीढ़ी को किस प्रकार स्वीकार करती है और इससे क्या सीख लेती है, ये बात अधिक महत्व रखती है। देखा जाए तो हर युग में प्रतिभाशाली महिलाएं रही हैं और हर युग में उन्होंने अपनी प्रतिभा से समाज में उदाहरण प्रस्तुत किया है। जैसे सीता, सावित्री, द्रौपदी जैसी पौराणिक देवियों से लेकर रानी दुर्गावती, रानी पद्मिनी, रानी लक्ष्मीबाई जैसी महान रानियों से लेकर इंदिरा गांधी और किरण बेदी आदि ने आधुनिक भारत की महिलाओं ने भारत को विश्व भर में गौरवान्वित किया और महिलाओं ने धरती पर ही नहीं अपितु अंतरिक्ष में भी अपना परचम लहराया है। इनमें सुनीता विलियम्स और कल्पना चावला प्रमुख है। कहने का तात्पर्य यह है कि आज महिलाएं किसी भी क्षेत्र में पुरुषों से कम नहीं है, यहाँ तक कि घर परिवार चलाने में भी हाथ बटा रही हैं। तो बहनों, चलिए आज हम इसी सिलसिले में आपकी मुलाकात करवाते हैं पिंकी जी से और उनसे हम जानेंगे कि महिलाएं अपने घर परिवार को चलाने के लिए आर्थिक सहयोग में किस तरह से अपना योगदान दे सकती है। तो स्वागत है पिंकी जी आपका हमारे कार्यक्रम में। जोहार।
1: जोहार।
0: तो पिंकी जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि महिलाएं आर्थिक सहयोग के रूप में अपना योगदान किस तरह से घर में दे सकती हैं।
1: जी हाँ, आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया है। तो सबसे पहले हम यही कहना चाहेंगे कि हर महिलाओं को शिक्षित किया जाना चाहिए या होना चाहिए। हम लड़कियों को बचपन से ही ये सिखाया जाता है कि पाक कला और गृह कार्य में निपुणता ही एक नारी के लिए परिपूर्णता है। लेकिन क्या हमने इस बात पर जोर दिया है कि उनका पढ़ना लिखना भी उतना ही जरूरी है, जो कि उनके बेहतर भविष्य के लिए बहुत ही जरूरी है। महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर और सक्षम बनाना भी आज के समय में आवश्यक है। आर्थिक रूप से सक्षम होना केवल परिवार के लिए नहीं बल्कि अपने लिए भी आवश्यक है। शिक्षा का महत्व तभी पता चलता है जब परिवार में आर्थिक संकट से गुजर रहा हो या किसी भी लड़की के वैवाहिक जीवन में अचानक परेशानी आ जाए। कहने का मतलब यह है कि यदि महिलाएं शिक्षित होंगी तो वो आत्मनिर्भर बनेगी, कहीं ना कहीं वे नौकरी करेंगी या फिर कोई अच्छा सा अपना व्यवसाय कर सकती हैं, शुरू कर सकती हैं, जिनसे वो आर्थिक रूप से मजबूत बनेगी और घर में आर्थिक सहयोग भी कर सकती है। आर्थिक स्थिति का संचालन भी अच्छे से कर पाएगी, कठिन परिस्थितियों में भी मदद कर पाएगी।
0: जी बिल्कुल, आपने सही कहा पिंकी जी। अगर एक पढ़ी लिखी महिला है तो कहीं भी नौकरी कर सकती है या अच्छा व्यवसाय कर सकती है, अपने व्यवसाय का संचालन भी सही रूप से कर पाएगी। और रही बात नौकरी और व्यवसाय की, तो बात है ही, साथ ही अगर पढ़ी लिखी महिला है, शिक्षित महिला है, तो घर परिवार में भी अच्छा संचालन कर पाएगी,
1: आर्थिक मदद अच्छे से कर
0: बिल्कुल पाएगी। आर्थिक मदद तो करेगी ही, साथ में घर परिवार को भी सही रूप से वो देख पाएगी। जी, तो ये हम पूछना चाहेंगे पिंकी जी, यदि कोई महिलाएं घर परिवार में छोटे छोटे बचत को रख करके या जो भी अगर खरीदारी कर रही हैं या कुछ पैसे बच रहे हैं तो उनको वो सेविंग के तौर पर रख सकती है, इससे भी आर्थिक समय में, आर्थिक संकट के समय में जो है ना बहुत ही मदद मिल जाती है, जिसकी हम उम्मीद नहीं किए रहते हैं कि अचानक से कभी भी किसी के साथ भी किसी भी तरह की संकट आ सकती है।
1: जी हाँ, कोई तो, भी परेशानी आ सकती
0: बिल्कुल,
1: है
0: बिल्कुल जी। तो ऐसे समय में ये छुपा हुआ पैसा, यानी कि आपने जो बचत करके जो रखे हुए हैं उन पैसों का आप इस्तेमाल कर सकती हैं ऐसे समय पर। तो पिंकी जी, यदि कोई महिला शिक्षित नहीं है तो वो महिला किस प्रकार से आर्थिक सहयोग कर सकती है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगी?
1: जी, ये सवाल भी काफ़ी अच्छा है कि यदि कोई महिला शिक्षित नहीं है तो क्या वो आर्थिक सहयोग कर सकती हैं। तो देखिए बसंती जी, एक सुखी जीवन यापन के लिए सिर्फ किताबी ज्ञान ही नहीं बल्कि व्यवहारिक ज्ञान भी अत्यावश्यक है
0: जी,
1: जो कि हमारे कौशल में निखार लाता है और हमारे व्यवहारिक ज्ञान और अनुभव में वृद्धि करता है। तो व्यवहारिक अनुभव और कौशल विपरीत से विपरीत स्थिति में भी जीवन यापन में सहायता करता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो अशिक्षित महिलाएं हैं वो कौशल में कम है या उनका हुनर कम है, ऐसा नहीं है
0: बिल्कुल।
1: अशिक्षित महिलाएं जो है वो कृषि या छोटे छोटे कुटीर उद्योग से या पारंपरिक व्यवसाय, दुग्ध व्यवसाय जैसे कार्यों से महिलाएं जो है घर में आर्थिक रूप से सहयोग कर सकती हैं
0: जी,
1: या फिर अपने गांव में छोटे से किराना की दुकान खोलकर भी वो आय का एक अच्छा स्रोत बना सकती हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: जरूरी नहीं कि सरकारी नौकरी से ही सहयोग किया जा सकता है, बस आपके पास जो है हुनर होना चाहिए, कुछ करने के लिए आपका जज्बा होना भी बहुत जरूरी है।
0: बिल्कुल बिल्कुल, ये आपने बहुत अच्छी बात कही पिंकी जी, एक अशिक्षित महिला भी बहुत अच्छे ढंग से अच्छे तरीके से अपना घर गृहस्थी चलाने में अपना आर्थिक सहयोग कर सकती है यदि उसके पास हुनर है तो। क्योंकि अगर आपके पास हुनर है तो कभी भी कहीं भी किसी भी समय भी आप अपने हुनर को निखार सकती हैं और अपना आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए आप उस हुनर को आप इस्तेमाल कर सकती हैं। तो ऐसे में आप भी एक पढ़ी लिखी महिला या नौकरी करने वाली महिलाओं के बराबर आप भी आर्थिक सहयोग कर सकती हैं यदि आपके पास कुछ करने की इच्छा शक्ति हो तो। तो पिंकी जी, जैसा अभी आपने कहा कि महिलाएं कुटीर उद्योग से भी स्वरोजगार कर सकती हैं, आर्थिक स्थिति को मजबूत कर सकती हैं, तो कुटीर उद्योग के रूप में महिलाएं किस प्रकार के कार्य को करके अपना रोजी रोटी कमा सकती हैं, स्वरोजगार के तौर पर कुछ काम कर सकती हैं? तो कुटीर उद्योग में हम ऐसा क्या काम है कि जिससे महिलाएं अच्छा से माने कर सकती हैं, उस काम को कर सकती हैं जो उसके

0: तैयार करके उन्हें बाजार में बेच सकती है। आज के हिसाब से जो है सरकार की तरफ से कई योजनाएं चलाई जाती है, जो बांस के जो कुटीर उद्योग लगाए जाते हैं ना उस पर महिलाओं को जागरूक करने के लिए उन्हें आर्थिक रूप से कुछ सहयोग दिया जाता है ताकि वे अपना व्यवसाय अपना कर सकें।
1: जी, ये तो बहुत अच्छी बात है। जी, जी।
0: इसके अलावा महिलाएं झाड़ू, रस्सी आदि भी बना सकती हैं और जूट के बैग से थैली और जूट से भी कई प्रकार के सजावट के सामान जो बनते हैं उन्हें बना सकती हैं, जिनसे महिलाएं अच्छा आमदनी कर सकती हैं। इसके अलावा घर की जो घरेलू गृहिणियाँ जो महिलाएं हैं वे जो अपने रसोई घर में जो भी काम करती हैं उनको भी व्यवसाय के रूप में अपना सकते हैं। जिस तरह से रसोई में हम लोग को खाने में लोग जो हैं अचार का इस्तेमाल बहुत करते हैं, पापड़ का इस्तेमाल बहुत करते हैं, तो महिलाएं जो हैं इसको व्यवसाय के रूप में अपना सकती हैं। अचार, पापड़, जैम, आलू चिप्स हुआ, केले के चिप्स हुए, ये सब जो है घर में हमें आसानी से प्राप्त होता है, तो इन्हें बना करके भी महिलाएं अपना व्यवसाय करके इन्हें बेच सकती है और आर्थिक रूप से मजबूत हो सकती है।
1: जी,
0: वर्तमान समय में जो है जिन चीज़ में उन्हें रुचि होती है उन्हें भी व्यवसाय के रूप में अपना सकती हैं। बहुत सारे महिलाओं को जो बागवानी का शौक होता है तो उन्हें भी अपने व्यवसाय के रूप में, रोजगार के रूप में अपना सकती हैं, है ना। और वर्तमान समय में प्लास्टिक का जो कैरी बैग को समाप्त किया जा रहा है, ऐसे समय में पेपर बैग या पेपर का ठोंगा जिसमें हम लोग सामान जो है हम सामान दिया जाता है दुकानों में,
1: जी, जी।
0: तो आदि बना करके बाजार में बेच सकती है क्योंकि आज बाजार में उनकी मांग काफ़ी बड़ी है।
1: बिल्कुल,
0: तो ऐसे समय में इसका व्यवसाय करना काफ़ी फायदेमंद है जिन्हें हम घर बैठे उस चीज़ को कर सकते हैं।
1: बिल्कुल,
0: और हर महिला ये कर सकती है।
1: जी बिल्कुल, और पिंकी जी आजकल सभी के घरों में पेपर तो आता ही है, न्यूज़पेपर, तो उन पेपर का सदुपयोग भी हो जाएगा।
0: जी हाँ,
1: और इनसे हमारा थोड़ा बहुत इनकम भी हो जाएगा,
0: आमदनी
1: बहुत ही अच्छा तरीका है।
0: जी हाँ, और इससे अच्छा आमदनी हो सकता है, तो महिलाएं जो हैं इन सारी चीज़ों से भी अपना आर्थिक सहयोग कर सकती हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: जी हाँ। हमारी ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं जो हैं कुटीर उद्योग के साथ साथ कृषि कार्यों में से भी आमदनी कर सकती, क्योंकि हमारे जो गांव की महिलाएं जो हैं कृषि कार्यों में काफ़ी दक्ष होती हैं, जैसे कि पारंपरिक खेती बाड़ी के अलावा बागवानी भी कर सकती हैं।
1: बिल्कुल,
0: और बागवानी के साथ साथ जैसे साग सब्जी उगाती हैं, फलदार पौधों को लगाकर फलों को बाजार तक पहुंचा सकती है ताकि उससे उन्हें आर्थिक रूप से वे सहयोग कर सकती हैं उन सबको बेच करके।
1: बिल्कुल बिल्कुल, तो पिंकी जी आज की ग्रामीण महिलाएं भी शहरों की महिलाओं की तरह ही आर्थिक रूप से अपना बढ़िया योगदान दे रही हैं। और एक बात है पिंकी जी, जैसा ग्रामीण क्षेत्र में हम खेतीबाड़ी करते हैं तो साथ में पशु तो होते ही हैं, तो क्योंकि पशु के बिना हमारा कृषि कार्य भी संभव नहीं है, तो कुछ महिलाएं जो पशु पालती हैं तो वो दुग्ध का व्यवसाय भी अच्छे से कर सकती
0: है। व्यवसाय कर सकती हैं, और एक व्यवसाय है बकरी है, मुर्गी है, सुअर है, इन सबको पाल करके भी वे आसानी से अपना आर्थिक सहयोग घरों में अपने परिवार में दे सकती हैं, क्योंकि आज देखिए कि ज़्यादातर शिक्षित महिलाएं जो है बाहर नौकरी करने जाती हैं, तो जो घरों पे रहती हैं गृहिणियाँ वे भी आराम से घरों में ही अपना मुर्गी पालन हुआ, बत्तख पालन हुआ, इन सबों को पाल करके इन सब से भी काफ़ी आर्थिक सहयोग मिल सकता है जो घर बैठे ही किया जा सकता है।
1: बिल्कुल बिल्कुल, जी हाँ। तो आज की जो महिलाएं हैं ये साबित होता है कि वो भी पुरुषों से कम नहीं
0: कम
1: है
0: नहीं
1: कोई
0: है।
1: भी क्षेत्र में हो, चाहे नौकरी के क्षेत्र में कहें या फिर खेतीबाड़ी के क्षेत्र में कहें या व्यवसाय के क्षेत्र में।

0: फिर हम खेलकूद की बात करें तो सभी क्षेत्र में महिलाएं आज पुरुषों के बराबर है और पुरुषों के समान ही वो भी अपना योगदान दे रही है घर परिवार चलाने के लिए भी या कोई भी क्षेत्र में हो। समाज के विकास की अगर अब हम बात कहें तो वहाँ भी महिलाएं अपना योगदान दे रही है।
1: बहनों, अभी आप भेंटवार्ता के माध्यम से जानकारी प्राप्त कर रहे थे कि महिलाएं घर की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए अपना योगदान किस तरह से दे सकती हैं, और इस विषय पर जानकारी दे रही थी पिंकी जी। तो इसी जानकारी के साथ ही बहनों, आज का हमारा मनोरमा कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। अगले कार्यक्रम में पुनः आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए बसंती को दीजिए विदा। जोहार, नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे बहनों का कार्यक्रम मनोरमा, और अब अगला कार्यक्रम के लिए हम चलते हैं आकाशवाणी के रांची केंद्र।

0: प्रसार भारती, भारत का लोक सेवा प्रसारक।
1: वेक्टर जनित रोग, मलेरिया, फाइलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, कालाजार और जापानीज इंसेफेलाइटिस से बचाव के लिए मच्छरों से अपना बचाव करें। अपने घर के आसपास सफाई रखें, जल जमाव न होने दें, पानी के बर्तनों को ढक कर रखें, पूरे आस्तीन के कपड़े पहनें और हमेशा मच्छरदानी के अंदर सोएं।
2: बुखार होने पर ओझागुनी के पास ना जाएं, अपने गांव की सहिया को बताएं या नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में जाएं, मुफ्त जांच और उपचार कराएं।
1: वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
3: क्या बात है सुनीता, बहुत परेशान लग रही है।
4: बहन, मेरी बिटिया का बुखार उतर ही नहीं रहा और आज गांव का चिकित्सा केंद्र भी बंद है।
3: अरे बहन, परेशान मत हो, 104 नंबर डायल कर, जहां तुझे मिलेगी प्रशिक्षित सलाहकारों से चिकित्सा सलाह।
4: बहन, पर इतनी रात में कौन बात करेगा इस नंबर पर?
3: अरे झारखंड सरकार की ये 104 स्वास्थ्य हेल्पलाइन तो 24 घंटे खुली है।
5: 104 की सेवाएं 24 घंटे प्रतिदिन, किसी भी फोन से डायल करें 104 और पाए स्वास्थ्य जानकारी।
6: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड।
7: हर दिन कमर तोड़ मेहनत करते हैं ताकि जो हमको ना मिला वो इनको मिले।
8: बात सिर्फ मेहनत की नहीं, बच्चों के लिए हमारा सबसे बड़ा तोहफा था सबसे आसान, बस बच्चों के बीच रखा 3 साल का अंतर। हमने इस्तेमाल की IUCD
9: कंडोम,
8: गर्भ निरोधक गोलियाँ,
10: खुशी का मंजर रखना यार, दूसरा बच्चा 3 साल बाद।
11: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
6: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड द्वारा जनहित में जारी।

0: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं कामिनी। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 10,700 करोड़ रुपए की 3 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को दी मंजूरी। झारखंड ओडिशा समेत कई राज्यों में होगा विस्तार। राज्य के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों सहित देश भर में 9वां राष्ट्रीय पोषण माह शुरू। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी के ने स्वस्थ और सशक्त भारत के संकल्प को आगे बढ़ाने का किया आह्वान। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने SIR दावा आपत्ति सुनवाई के दौरान भीड़ नियंत्रण के लिए टोकन सिस्टम अपनाने का दिया निर्देश। रांची विश्वविद्यालय में 39वें दीक्षांत समारोह में 58 मेधावी विद्यार्थियों को मिले स्वर्ण पदक। राज्यपाल ने कहा, अच्छी पढ़ाई से विकसित भारत के लक्ष्य को मिलेगी दिशा। और राज्य की भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी की CBI जांच की मांग को लेकर भाजपा का राज्यव्यापी आंदोलन जारी। सरायकेला में प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू के नेतृत्व में प्रदर्शन। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज 10,700 करोड़ रुपए से अधिक लागत के 3 मल्टी ट्रैकिंग रेलवे परियोजनाओं को मंजूरी दी। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद मीडिया को जानकारी देते हुए सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि ये परियोजनाएं पश्चिम बंगाल, झारखंड, ओडिशा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की 14 जिलों में फैली होंगी और इससे भारतीय रेलवे के मौजूदा नेटवर्क में लगभग 656 किलोमीटर की वृद्धि होगी। श्री वैष्णव ने बताया कि सरकार ने सभी 7 हाई डेंसिटी रेलवे कॉरिडोर को 4 लेन वाला बनाने का फैसला किया है।
1: रेलवे की मॉडर्नाइजेशन का जो काम पिछले 12 वर्षों में चल रहा है, उसमें माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कंप्लीट ओवरहॉलिंग जो रेलवे की हो रही है, कंप्लीट मॉडर्नाइजेशन हो रहा है उसके प्रोजेक्ट्स। रेलवे के 7 हाई डेंसिटी कॉरिडोर्स प्लस मेनी अदर कॉरिडोर्स जो कि बहुत ज्यादा भविष्य में ट्रैफिक लेने वाले हैं, उन सब कॉरिडोर्स को 4 लाइनिंग क्वाड्रुपलिंग कर रहे हैं। दिल्ली से मुंबई, मुंबई से चेन्नई, चेन्नई से कोलकाता, कोलकाता से वापस मुंबई, ये हो गया गोल्डन क्वाड्रिलेटरल।
0: झारखंड के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों के साथ देश भर में 9वां राष्ट्रीय पोषण माह आज से शुरू हो गया। केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि राष्ट्रीय पोषण माह स्वस्थ और सशक्त भारत के संकल्प को आगे बढ़ाने का अभियान है। उन्होंने कहा कि यह अभियान हर माँ के स्वास्थ्य, हर बच्चे के पोषण और हर परिवार की खुशहाली से जुड़ा है।
2: सुपोषित बचपन, स्वस्थ मातृत्व और समृद्ध परिवार ही विकसित भारत 2047 के संकल्प की सबसे मजबूत नींव है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन के अनुरूप 9 सितंबर 2026 से 9वें राष्ट्रीय पोषण माह का शुभारंभ हो रहा है। हर वर्ष यह आयोजन हमें प्रेरित करता है कि हम पोषण के प्रति निरंतर जागरूक रहें और इसे अपनी नियमित दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। इस वर्ष पोषण माह का हमारा संकल्प है, हमारी आंगनबाड़ी हमारी जिम्मेदारी, जिसमें हमारा विशेष ध्यान विविधतापूर्ण और प्रोटीन युक्त आहार, आंगनबाड़ी केंद्रों पर ताजा गर्म पौष्टिक भोजन, ECCE और गर्भवती व धात्री माताओं की समग्र देखभाल पर केंद्रित रहेगा।
0: मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान SIR दावा आपत्ति सुनवाई और मतदाता सेवाओं की समीक्षा करते हुए भीड़ नियंत्रण के लिए टोकन सिस्टम अपनाने का निर्देश दिया। उन्होंने 0 और 1 से 5 फॉर्म 6 वाले मतदान केंद्रों पर विशेष ध्यान देते हुए 1 अक्टूबर 2026 तक 18 वर्ष पूरे करने वाले पात्र युवाओं का नाम मतदाता सूची में जोड़ना सुनिश्चित करने को कहा। साथ ही साहिबगंज जैसी अनियमितता की पुनरावृत्ति रोकने के लिए सख्त निगरानी के निर्देश दिए। पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के सचिव अबू इमरान ने जल जीवन मिशन के तहत उत्कृष्ट कार्य करने वाली 8 जल सहियाओं को रांची के नेपाल हाउस में आयोजित कार्यक्रम में सम्मानित किया। सम्मानित जल सहियाओं में बोकारो की 5 और रांची की 3 जल सहिया शामिल हैं, जिन्होंने जलापूर्ति योजनाओं के संचालन और रखरखाव में सराहनीय योगदान दिया है। UIDAI क्षेत्रीय कार्यालय में PIB रांची द्वारा आयोजित IMPCC बैठक में अपर महानिदेशक अखिल कुमार मिश्रा ने कहा कि मानवीय संवेदना के साथ किया गया संचार अधिक प्रभावी होता है। बैठक में UIDAI ने बताया कि सितंबर तक आधार सेवा केंद्रों का विस्तार 3 से 14 जिलों में किया जा रहा है। वहीं रेलवे, स्वास्थ्य, मौसम और अन्य केंद्रीय संस्थानों ने अपनी जनहितकारी पहलों की जानकारी साझा की। मेरा युवा भारत की ओर से युवाओं को राष्ट्र निर्माण से जोड़ने के लिए विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग का आयोजन किया जा रहा है। राज्य निदेशक ललिता कुमारी और उपनिदेशक श्वेता सिंह ने आज रांची में बताया कि 30 सितंबर तक ऑनलाइन क्विज में युवा हिंदी और अंग्रेजी में भाग ले सकते हैं। झारखंड, पश्चिम बंगाल और ओडिशा के लिए सतत औद्योगिकीकरण और संसाधन आधारित विकास विषय निर्धारित है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। रांची विश्वविद्यालय के 39वें दीक्षांत समारोह में आज 58 मेधावी विद्यार्थियों को स्वर्ण पदक प्रदान किया गया। वहीं 2 शिक्षाविदों को मानद उपाधि से सम्मानित किया गया। इस मौके पर राज्यपाल सह कुलाधिपति संतोष कुमार गंगवार और रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ मौजूद रहे। इस दौरान राज्यपाल ने कहा कि अच्छी पढ़ाई से विकसित भारत के लक्ष्य को दिशा मिलेगी।
3: महिलाओं ने अच्छे ढंग से पढ़ाई की और उसका परिणाम भी सबको दिखाया। तो मेरी शुभकामनाएं सब बच्चियों के लिए है कि जिन्होंने अच्छे ढंग से काम किया और वास्तव में हमारे इस राज्य में अब शिक्षा के विषय में रुचि है और रुचि के हिसाब से बच्चे काम भी कर रहे हैं। पढ़ाई अगर अच्छी है तो निश्चित रूप से जो लक्ष्य है विकसित भारत की अच्छी दिशा मिलेगी।
0: सरायकेला खरसावां के आदित्यपुर स्थित NIT जमशेदपुर में 2 दिवसीय राष्ट्रीय महिला नेतृत्व सम्मेलन 2026 शुरू हुआ। सम्मेलन में 13 राज्यों से करीब 150 महिला शिक्षाविद, नीति निर्माता और नेतृत्वकर्ता शामिल हो रही हैं। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की सदस्य डॉ. आशा लकड़ा ने कहा कि शिक्षा और कुशल नेतृत्व से महिलाएं आत्मनिर्भर और सशक्त बन सकती हैं। JPSC और JSSC की भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी की CBI जांच और आंदोलनरत छात्रों पर दर्ज मुकदमे वापस लेने की मांग को लेकर भाजपा का धरना प्रदर्शन आज दूसरे दिन जारी रहा। सरायकेला खरसावां जिले में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने उपायुक्त कार्यालय का घेराव किया। वहीं नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में पाकुड़ समाहरणालय का घेराव किया गया। इस दौरान श्री मरांडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से परीक्षा में गड़बड़ी की CBI से जांच कराने की मांग की।
4: झारखंड के बच्चे चाहते हैं कि पूरे मामले पे जांच, चाहे JSSC का एग्जाम रहा हो, चाहे वो JPSC के द्वारा इन 6 वर्षों में हुआ है, और सभी नियुक्ति की जांच CBI से कराया जाए। CBI से जांच होगी जो अपने और मेरिट पर जो बच्चे पास किया है उनकी नौकरी को कोई आंच नहीं आएगी।
0: झामुमो के केंद्रीय प्रवक्ता मनोज पांडे ने कहा कि भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी की CID से जांच कराई जा रही है। इस मामले में दोषी पाए जाने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा।
5: CID की जांच हो रही है और बहुत सघन जांच। कोई भी दोषी हो वो बचेगा, स्पष्ट संदेश है माननीय मुख्यमंत्री। पूछताछ में जो भी दोषी पाए जाएंगे कार्रवाई होगी। वैसा झारखंड में थोड़ी होगा, दोषी जो होगा वो नपेंगे। कई कोचिंग संचालक भी आ रहे हैं जज में और भी कई लोग संदेह के घेरे में।
0: और अब मौसम का हाल। राजधानी रांची समेत राज्य के कई हिस्सों में आज दोपहर बाद जमकर बारिश हुई। मौसम विभाग ने कल भी रांची, बोकारो, धनबाद और हजारीबाग सहित राज्य के कई हिस्सों में भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 10,700 करोड़ रुपए की 3 मल्टीट्रैकिंग परियोजनाओं को दी मंजूरी। झारखंड, ओडिशा समेत कई राज्यों में होगा विस्तार। राज्य के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों सहित देश भर में 9वां राष्ट्रीय पोषण माह शुरू। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने स्वस्थ और सशक्त भारत के संकल्प को आगे बढ़ाने का किया आह्वान। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने SIR दावा आपत्ति सुनवाई के दौरान भीड़ नियंत्रण के लिए टोकन सिस्टम अपनाने का दिया निर्देश। रांची विश्वविद्यालय के 39वें दीक्षांत समारोह में 58 मेधावी विद्यार्थियों को मिले स्वर्ण पदक। राज्यपाल ने कहा अच्छी पढ़ाई से विकसित भारत के लक्ष्य को मिलेगी दिशा। और राज्य की भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी की CBI जांच की मांग को लेकर भाजपा का राज्यव्यापी आंदोलन जारी। सरायकेला में प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू के नेतृत्व में प्रदर्शन। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सुबह 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
2: प्रस्तुत है जिले में आज कल।

0: अंक में आप सुनेंगे बोकारो जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। रिपोर्ट के साथ हमारे बोकारो संवाददाता।
1: शिक्षक दिवस के अवसर पर बोकारो जिला प्रशासन के द्वारा झारखंड राज्य के आंदोलनकारियों को सम्मानित किया गया। उपायुक्त अजय नाथ झा ने बताया, सम्मान के माध्यम से राज्य सरकार और जिला प्रशासन ने आंदोलनकारियों का आभार व्यक्त किया है।
2: शिक्षक दिवस के दिन हम लोग आज एक विशेष अभियान के तहत झारखंड आंदोलनकारियों को सम्मानित करेंगे और उनका प्रमाण पत्र उनको वितरित करेंगे। हम सभी लोगों को प्रमाण पत्र उनका दे रहे हैं, जो उनका हक है उनको मिलना चाहिए। और ये झारखंड राज्य की तरफ से एक कृतज्ञता का बोध, पूरा प्रशासन, समस्त बोकारो वासी उनके प्रति कृतज्ञ है, समस्त झारखंड वासी उनके प्रति कृतज्ञ है।
1: बोकारो में संपन्न एनटीपीसी राष्ट्रीय तीरंदाजी प्रतियोगिता के दौरान अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त तीरंदाज दीपिका कुमारी ने कहा, टूर्नामेंट में झारखंड के तीरंदाजों की संख्या काफी कम थी, जो चिंतनीय है।
3: झारखंड का प्लेयर मुझे दिख रहा है, क्योंकि प्लेयर्स तो है या नहीं है मुझे नहीं पता, या फिर वो अच्छे से प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, या फिर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो नहीं मिल पा रही है उनको। बट धीरे धीरे मैं देख रही हूँ, क्योंकि जब मैं नई नई आई थी तब झारखंड के प्लेयर्स ज्यादा हुआ करते थे, अभी झारखंड के प्लेयर है ही नहीं।
1: भारतीय तीरंदाजी संघ के अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने बताया, इंडोर आर्चरी के कॉन्सेप्ट पर काम किया जा रहा है, जिससे तीरंदाजों को अभ्यास करने में काफी सहूलियत होगी।
4: देश की सरकार का पूरा सहयोग इसमें है कि हमारे खिलाड़ी अच्छे आने चाहिए, तो यहाँ पर जो आयोजन हुआ है बहुत अच्छे ढंग से हुआ है। और इस समय आर्चरी का अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत का नाम बहुत अच्छा से लिया जा रहा है, क्योंकि हमारे खिलाड़ी अच्छे उभर रहे हैं, देश भर के खिलाड़ी हमारे अच्छे ढंग से उभर रहे हैं और अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। इंडोर आर्चरी का एक कंसेप्ट अभी नया डेवलप हुआ है, इंडोर आर्चरी के पक्ष में हम लोग भी हैं, लेकिन उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर देश भर में कैसे बनेगा, किस तरह कैसे बनेगा, क्योंकि एक आउटडोर तीरंदाजी हमेशा आउटडोर के बारे में देखा गया है, लेकिन अब धीरे धीरे इंडोर के तरफ में भी हो रहा है, तो इंडोर में भी आउटडोर में भी कैसे हो।
1: बोकारो स्टील सिटी में सेल के जर्जर आवासों के अचानक गिरने की घटनाएं हो रही हैं। उपायुक्त अजय नाथ झा ने बताया, जांच के दौरान पता चला है कि नियमित मरम्मत नहीं कराए जाने के कारण इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। जिला प्रशासन ने बीएसएल प्रबंधन को तकनीकी टीम के माध्यम से आवासों की तकनीकी जाँच कराने का निर्देश दिया है।
5: भवनों का नियमित मेंटेनेंस हुआ होता और हम रिव्यू करते कि कौन से भवन हमारे जर्जर हो गए हैं, कहां से लोगों को हमको रिप्लेस कर देना चाहिए, हटाना चाहिए था, ये अगर नियमित पर्यवेक्षण हो जाता तो शायद ये घटना नहीं घटती। जांच में यही आया है कि इसका एक नियमित मेंटेनेंस जो किया जाना था वो नहीं किया जा सका, पहली बात। दूसरी बात ये कि इनके पास एक SOP होना चाहिए कि अगर हमारे पास कोई क्वार्टर का कंडीशन खराब हो गया है, और एक ऐसी टेक्निकल एजेंसी हो जो इसकी जांच अच्छे से कर सके, और वो टेक्निकल एजेंसी हमको ये बताए कि कौन कौन से भवन इनके असुरक्षित हैं, किस भवन में इमीडिएट इसको हटा देने की जरूरत है।
1: समय रहते अच्छी बारिश होने से जिले में 78% से भी ज्यादा धान की रोपनी हुई है, किसान खुश हैं। मनोज कुमार, आकाशवाणी समाचार, बोकारो।
0: अभी आप सुन रहे थे बोकारो जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट पर आधारित कार्यक्रम जिले में आजकल।

अभी आप सुन रहे थे जिले में आजकल आकाशवाणी के रांची केंद्र से। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज़ पे। शाम के 7:15 हो चुके हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम आपकी पसंद।

कार्यक्रम आपकी पसंद में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। कार्यक्रम के साथ मैं हूँ राधा, नमस्कार। इस कार्यक्रम में सबसे पहले हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म सुर का गीत। आवाजें हैं महालक्ष्मी और साथी की। गीत लिखा है निदा फाजली ने और संगीत दिया है M.M. करीम ने। इस गीत को सुनने के लिए इस गीत को सुनना चाहा है अमला टोला चायबासा से गौरख प्रसाद गुप्ता, फूलवंती गुप्ता, शीतल गुप्ता और अभिषेक सोनू। बड़ा निमली चायबासा से तुलसी पति, खमीरा देवी, बजरंगी ठाकुर, मीतू रंजन, राजीव रंजन, मौलिक रंजन, अमित कुमार, सुमित कुमार, शुभम कुमार। और इसी गीत को सुनना चाहा है छोटा निमडी चायबासा से बाबूराम, शांति देवी, ऋतिक, कोमल, रोहन। तुरी टोला चायबासा से मदन ठाकुर और पुष्पा देवी, रोहित ठाकुर, संगीता देवी, लाडो, हरी, खुशी कुमारी, रिया कुमारी, अर्पिता कुमारी। वसुंधरा कॉलोनी सेंटोला चायबासा से इसी गीत को सुनना चाहा है भोलाराम मधुर, अंबर कुमार मधुर, विशाल कुमार मधुर, प्रशांत कुमार मधुर, नीला मधुर, करुणा मधुर, रिंकी मधुर, अंशिका मधुर, आस्था श्रेष्ठा और सन्नी मधुर। इसी गीत को सुनना चाहा है न्यू कॉलोनी निमडी से ठाकुर प्रसाद रंगीला, निर्मला देवी, अर्चना राम, खुशबू खुशी, अभिषेक, अंश, अंशु, अनीश और मुन्ना। आप सबों की पसंद पे हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म सुर का ये खूबसूरत सा गीत। महालक्ष्मी और साथियों की आवाज़ सुनें।

0: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए 8700014242।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
2: नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम। और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय सेना, जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के, अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश खेर।
3: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर

ਜਾਂ ਸਵਯਮ ਹੀ ਘਟ ਪੜੇ। ਭਾਰਤੀਯ ਸੈਨਾ। इस विराम के बाद पुनः एक बार स्वागत है कार्यक्रम आपकी पसंद में। इस कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं अलका याग्निक और साथियों की आवाज़ों में। फिल्म का नाम है जख्म। आनंद बख्शी की रचना है, संगीत दिया है M.M. करीम ने। इस गीत को सुनना चाहा है बड़ा बाम्बो सुपाई साई से देवेंद्र ताती, प्रकाश ताती, कुमारी निशा ताती, राकेश ताती, ललित प्रधान, उग्रेर सेन प्रधान, ठाकुर प्रसाद गुप्ता, सुशांत सिंहदेव, सुदर्शन प्रमाणिक, ईश्वर वानरा, ललित बाबू और देवेन बाबू। और इसी गीत को सुनना चाहा है जमशेदपुर से हरजिंदर सिंह भाटिया, एंजल भाटिया, नवनीत भाटिया, पप्पी भाटिया। आप हैं गांव पोंडागाटा से नरसिंह महली, सावन महली, रॉकी महली, कविता महली, हर्षमणि महली, पार्वती महली, सुहानी महली, संजय सोरेन, नंदनी महली, संजीव महली, विजय बेसरा, N.S. महली। इसी गीत को सुनना चाहा है घाटशिला से संतोष कुमार भगत, श्रीमती बासंती भगत, मृणाल कांति भगत, चांदनी भगत, मास्टर आयुष भगत, मिस्टर संतोष आनंद। और आप हैं पटेल नगर भलोट पंजाब से डॉक्टर रमेश कुमार जाजोरिया, गीता रानी जाजोरिया, गगनदीप जाजोरिया, बेबी आरजू जाजोरिया। आदर्श नगर भलोट से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, भिंडी शर्मा, सौरव शर्मा, शाइना शर्मा, निवान शर्मा। आप हैं स्टार रेडियो श्रोता संघ, रेलवे कॉलोनी हनुमानगढ़ राजस्थान से जगमाल सिंह डागरा, हैप्पी डागरा, जेएस नायक, शोभा नायक, समस्त डागरा परिवार। आप सबों की पसंद पे हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म जख्म का ये गीत।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म जख्म का गीत अलका याग्निक की आवाज़ में। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के चायबासा केंद्र से फिल्म संगीत का कार्यक्रम आपकी पसंद। यस बॉस, इस फिल्म का गीत अब हम आपको सुनवा रहे हैं अभिजीत अलका याग्निक की आवाज़ों में। जावेद अख्तर की रचना है, जतिन ललित की संगीत। इस गीत को सुनना चाहा है गांव आम जोड़ा पुखरिया मालुका से शिवा गोप, प्रेम गोप, संगीता गोप, लिपि गोप, दीपाली गोप और समस्त परिवार के सदस्य। और इसी गीत को सुनना चाहा है गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव मीका, बलविंदर विरक, जैतक विरक, मीका विरक। आंखें जोजो कुर्मा से मनोज गागराए, बासंती गागराए, सोनाली, आयशा, जितेंद्र, पीताम्बर महतो, रचना गागराई। इसी गीत को सुनना चाहा है गांव कीता सरायकेला से राधा कृष्ण गोप, अमित, अंकित, अभिषेक, आशीष, सुमित गोप, शुभम गोप, विक्की गोप, राजू गोप, विनोद, सरस्वती, गीता, रीता देवी, सुनीता देवी, उमा कुमारी, भारती। इसी गीत को सुनना चाहा है रेलवे रोड गंज ढुंडवारा से मोहम्मद कलीम जख्मी, भुवन प्रकाश गौतम, शेख मोहम्मद फारूक, अब्दुल सत्तार अंसारी, डीएच बच्चन। और आप हैं सरायकेला पाड़ापुर दिसावली गांव पहाड़पुर से शिवम शिवाजी मुंडरी, सुरुमणि मुंडरी, हीरामणि मुंडरी, हेमंती मुंडरी, डोबरू मुंडरी, साजन मुंडरी, सिद्धेश्वर मुंडरी, पाड़ापुर शिवाजी, डोबरू मुकेश, कुशल मुंडरी, जानुम सिंह मुंडरी, सिद्धि बोस, सोना बाबू सोना, एफएम शिवा मुंडरी। आप सबों की पसंद पे हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म यस बॉस का ये गीत।

और अब इस कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं कुमार सानू की, कुमार सानू और साथियों की आवाज़ है। फिल्म का नाम है कहो ना प्यार है। इस गीत को सुनना चाहा है सरोज चौक अमरावती महाराष्ट्र से, कमरुल्ला भाई, नशीम बेगम, आयशा खान, हदिया खान, आसमा सालिया, शोएब खान, पोतरा मुस्तफा खान, राउफ भाई, शाहिद भाई, गांधी बाग अकोला से रमेश कटनकर, वैशाली कटनकर, और आप हैं औरंगाबाद से राजेश सांवले पाटिल, शीतल राजेश, राजदीप राजेश, राशि राजेश, कोटवा नारायणपुर बाबापट्टी बलिया से इसी गीत को सुनना चाहा है ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय, दुबिया नवादा गाजीपुर से प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी राय, प्रांजल राय इसी गीत को सुनना चाहा है, छत्तीसगढ़ भाटापाड़ा दंतरेगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा, झावेंद्र कुमार वर्मा, शिवाजी चौक राजिम छत्तीसगढ़ से अनिल कुमार, अंजुलता, आदित्य कुमार और क्रिस श्रीवास्तव, अमरपुर पेंड्रा छत्तीसगढ़ से इसी गीत को सुनना चाहा है, दीपक कुमार, रोशन कुमार, बंसीलाल, रेखा देवी, श्वेता देवी, सुरुचि देवी, दिशा और लवी श्रीवास्तव। आप सबों की पसंद पे हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म कहो ना प्यार है।

0: ख्याल है?
1: बहुत खूबसूरत है, लेकिन इसे नकली सजावट से खराब ना कीजिएगा, क्योंकि खूबसूरती सादगी में ही है।
0: पॉइंट नोटेड मिस्टर
1: रोहित।
0: मिस्टर
1: रोहित।

0: हाँ तो हम कहाँ थे?
1: तुम शायद सितारों की बात कर रही थी।
0: अच्छा मेरी बात छोड़ो, ये बताओ कि तुम क्या सोच रहे थे?
2: अंदाज है उसके नए

और अब इस कार्यक्रम के आखिर में हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म सावन को आने दो का यह खूबसूरत सा गीत यशोदास के स्वर में। इस गीत को सुनना चाहा है मौलडिया सोनुआ से नंद किशोर महतो, राधामणि महतो, रविवारी वंदनी, दीपक, संतोष, राहुल, बिट्टू, आयुष, गीतेश, अनु, तनु, डिस्को महतो भाई, नंदू महतो, मेन रोड सोनवा से गुरुचरण नायक, अनुसैया नायक, प्रियंका देवाशेष, गुलशन नायक, पिना पाणी प्रधान, तनुश्री प्रधान, नील पाणी प्रधान, निक पाणी प्रधान, कुचाई बिदरी से केपी सोए, सरिता, दुर्गामती, रश्मि, राजकुमारी, विशाल, मुन्ना और सन्नी, गांव सुराबेरा से वाह सिंह सरदार, धनी सरदार, कमल सिंह सरदार, सुकमती सरदार, रमेश, अंशु और वीरू सरदार, आप हैं दराई केला, पदमपुर जीरा सरायकेला से लक्ष्मण सोए, विरसा सोए, राज सोए, अनीता सोए, मनीषा सोए, पूनम सोए और समस्त सोए परिवार, कुचाई गांव इचाहातू से गोलाराम लोवादा, लुदरी सोमनाथ, पूर्णिमा लालमुनि, मिंजना लोवादा और समस्त लोवादा परिवार, ग्राम लोसो दिकी से कोमल महतो, प्रेमी महतो, गोविंद, जीतू, साइमन और समस्त महतो परिवार, भिलाई छत्तीसगढ़ से मुकेश शर्मा, सरिता शर्मा, गौरव शर्मा, गरिमा शर्मा, आप सबों की पसंद पे हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म सावन को आने दो का ये खूबसूरत सा गीत।

यशोदास के गाए इस गीत के साथ ही श्रोताओं, कार्यक्रम आपकी पसंद अब हम यहीं पे विराम देते हैं। अगले कार्यक्रम में पुनः होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।

हम आकाशवाणी के चायबासा केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 8 बज रहे हैं। प्रस्तुत है फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा।

इस कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। पहला गीत ये रात फिर ना आएगी, महेंद्र कपूर की आवाज़ है। सुनना चाहा है राजनाथ गांव से याकूब आसमा, यूसुफ आसमा, इमरान आसमा, इरफान आसमा। रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा, दंतरेगी से भागवत वर्मा, लेबई से गुलाबदास मानिकपुरी, लक्षणपुर से विश्वनाथ साहू, चर डोगरी पिपरिया से दुर्गाराम साहू, जेल रोड रायगढ़ से रेशमा तिवारी, सोनम तिवारी, आदिबा तिवारी, डोंगरगांव छत्तीसगढ़ से राष्ट्रपाल गंजभीरे, राधिका गंजभीरे, बेबी अंशिका, तन्मय गंजभीरे। आप सबों की फरमाइश पे हम आपको सुनवा रहे हैं ये रात फिर ना आएगी का ये खूबसूरत सा गीत महेंद्र कपूर की आवाज़ में।

0: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए 8700014242।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
2: और इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर के स्वर में फिल्म उपकार का गीत। गुलशन बाबरा की रचना है, संगीत दिया है कल्याण जी आनंद जी ने। इस गीत को सुनना चाहा है पंचशील रेडियो श्रोता संघ इस्लामपुर जिला बुलढाणा से सहदेव दामोदर, शशिकला दामोदर, कुमारी साधना, सुमित कुमार दामोदर, गोपाल पाटिल। इसी गीत को सुनने के लिए फरमाइश भेजा है बक्सर बिहार से सरफुद्दीन अंसारी और फातिमा खातून अंसारी, डुमराव बिहार से डॉक्टर डब्लू अंसारी, डॉक्टर सोनम अदीबा और दानिश अंसारी, सारिमपुर बक्सर से राज एस डी अंसारी और आसमा खातून अंसारी, जेल रोड दिल्ली से लाल बाबू दीवाना और दिव्या भारती। इसी गीत को सुनने के लिए फरमाइश भेजा है धमतरी छत्तीसगढ़ से संतोष कुमार ध्रुवंशी, श्रीमती सरोज ध्रुवंशी, मास्टर सानू ध्रुवंशी, मॉडल टाउन पानीपत से संदीप गुगलानी, आशा गुगलानी, पूजा अनन्या अनाया, नेहा सागर गुम्बर, हिमांशु गुगलानी, इमो कोरैसी, सुधीर नूतन। इसी गीत को सुनने के लिए फरमाइश भेजा है दुर्गई सेलू से चंदू कुलकर्णी, हेमलता परभनी से सी आर कुलकर्णी, और आप हैं गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव मीका, बलविंदर विरक, जैतक विरक, मीका विरक। आप सबों की फरमाइश पे हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म उपकार का ये गीत।

और अब कार्यक्रम रजनीगंधा का ये अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर सुरेश वाडेकर के स्वर में। फिल्म का नाम है सौदागर। गीत रचना आनंद बख्शी की है, संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। इस गीत को सुनना चाहा है टाटा नगर किताड़ी से चंद्रमोहन पात्रो, चंद्रवती पात्रो, निखिल पात्रो, उजाला पात्रो, युवराज, शिवान और विराज। आज़ाद नगर लक्सर हरिद्वार से ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, महराज सहा, धुर्रा बांधा भाटापाड़ा से प्रमोद साहू, देव कुमार साहू, नवीन कुमार साहू, युवराज साहू। इसी गीत को सुनने के लिए फरमाइश भेजा है चांडिल गांव हारूडी से तुलसीदास महतो, कल्पना महतो, मनमोहनी महतो, मनोरमा और दीनबंधु। आप हैं ग्राम पंचायत भटेना से बल करण वर्मा, अंजनी ज्योति वर्मा, रेखा धनीश्वरी वर्मा, चटोदा सारा गांव से सुजान वर्मा, सोहद्रा वर्मा, आयुषी कृत वर्मा। और आप हैं जरूर वरुण महाराष्ट्र से बाबा साहेब बरोड़ा, मीनाक्षी चरपे, रजनी कानीले, कार्तिक युवराज। आप सबों की फरमाइश पे हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म सौदागर का ये गीत।

जाग उठा इंसान, इस फिल्म का गीत अब हम आपको सुनवा रहे हैं आशा भोसले, किशोर कुमार की आवाज़ों में। हिंदी वर्ग की रचना है, संगीत दिया है राजेश रोशन ने। इस गीत को सुनने के लिए फरमाइश भेजा है बोड़खेरा उज्जैन से विनोद मुन्नत, नेहा जैन, दीपक मयंक मुन्नत, चेतन नाहचा, दिलीप सिंह पवार, दीक्षा कुश मुन्नत। आप हैं सहावत टाउन जिला कासगंज उत्तर प्रदेश से योगेंद्र नायक, गीता नायक, निहारिका नायक और सुशांत नायक। इसी गीत को सुनने के लिए फरमाइश भेजा है भलोट कैंप पंजाब से सतीश मिगलानी, सीमा शाइना, विशाल मिगलानी, सुप्रिया, अनमोल, धर्मपाल, महावीर साहू, रमेश मिगलानी। और आप हैं दौलत बाग मुरादाबाद से जाफ़र हुसैन, नईमा बेगम, कासिम अली, नदीम अली, जुनेद अब्बासी। इसी गीत को सुनने के लिए फरमाइश भेजा है सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, नवनीत राय, डॉक्टर अमनदीप, अनिल शर्मा, कालका से शुभचंद्र बजाज, करनाल से जग्गी दुआ। आप सबों की फरमाइश पे हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म जाग उठा इंसान का ये खूबसूरत सा नगमा।

और अब सुनते हैं फिल्म प्रेम रोग का गीत सुरेश वाडेकर लता मंगेशकर के स्वर में, पंडित नरेंद्र शर्मा की रचना है, संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। इस गीत को सुनना चाहा है कृष्णा नगर टीवी टावर सेमिनरी हिल्स नागपुर से नाना डोंगर दिवे, रमाताई डोंगर दिवे, सीमाताई डोंगर दिवे, रीमाताई डोंगर दिवे, दीक्षाताई डोंगर दिवे, राहुल डोंगर दिवे। आप हैं बरेली कैंट रेलवे केबिन के पास से विनेश कुमार, रागिनी श्रीवास्तव और मुस्कान। इसी गीत को सुनना चाहा है महाराजा रेडियो श्रोता संघ खंडवा ग्राम लोहारी से राजेश कुमार धनजे, राहुल कुमार धनजे, विशाल कुमार धनजे, शीला धनजे, गायत्री धनजे। खुर्दी रोड मानपुर से विजय वैद, रानी वैद, महिमा वैद, नीतू वैद। और आप हैं बिहारी कॉलोनी लोनी से परवीन डोम, सफरुद्दीन डोम, कुमारी वली डोम, कुमारी डब्लू डोम। जेल रोड मथुरा से वशीम आशमा बेलदार, अकमर अकरम आशमा बेलदार, अल्लाह आशमा बेलदार। और इसी गीत को सुनने के लिए फरमाइश भेजा है गांव नारायणपुर आमदा से नायडू महतो, खेतो महतो, खेतो मोहन साहू, कैलाश बाबू, उषा महतो, प्रिया महतो, डॉली महतो, तरुण महतो। और आप हैं गांव उड़िया से नायडू महतो, उषा महतो, प्रिया महतो, डॉली महतो, तरुण महतो, पंकज महतो और समस्त महतो परिवार। अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, तारिणी ठाकुर, सूरज ठाकुर, ज्योति ठाकुर, ईरांस ठाकुर, गुड़िया ठाकुर। बाबा कुटी उफरा पाटन से प्रेम साहू, यमुना साहू। आप सबों की फरमाइश पे हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म प्रेम रोग का ये खूबसूरत सा गीत सुरेश वाडेकर और लता मंगेशकर के स्वर में।

आप सुन रहे हैं श्रोता आकाशवाणी के चायबासा केंद्र से फरमाइसी फिल्म संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा। इस कार्यक्रम के आखिर में अब हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म क्रांति का ये खूबसूरत सा गीत। लता मंगेशकर, नितिन मुकेश की आवाज़ें हैं, संतोष आनंद की रचना है और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत हैं। इस गीत को सुनने के लिए फरमाइश भेजा है पुणे से पंकज बड़ोदे, आर्या, प्रियंका, बीटी बड़ोदे, चंद्रप्रभा बड़ोदे और बेरडी से हुकुम कर्मकार, सुनीता कर्मकार, हार्दिक कर्मकार, प्राची कर्मकार, तनु कर्मकार। इसी गीत को सुनना चाहा है बेरडी से राजेश सोनी, कंचन सोनी, गायत्री डोमने, वैष्णवी डोमने, चंचल डोमने, अर्जुन गवेनकर, धीरज सब्बा सेरे, जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, रुचि विनीत आहूजा, निमित विशाल गगनेजा। इसी गीत को सुनना चाह है चोपना भोपाल से रीता मंडल, बबलू मंडल, राधिका मंडल, नीलम मंडल, चंपा विश्वास और समस्त मंडल परिवार। आप सबों की फरमाइश पे हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म क्रांति का ये गीत।

फिल्म क्रांति के इस गीत के साथ ही श्रोताओं, कार्यक्रम रजनीगंधा अब हम यहीं पे समाप्त करते हैं। हम आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से बोल रहे हैं। कुछ ही पलों में अगला कार्यक्रम सुनेंगे आप आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। कृपया थोड़ी प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रेल संपर्क बढ़ाने के लिए 9 राज्यों में 20,800 करोड़ रुपए से अधिक की 8 रेलवे मल्टीटैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी। भारत और श्रीलंका ने L-70 तोपों में सुधार और दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग पर समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। श्रीलंका ने भरोसा दिलाया, कभी भी अपनी धरती का इस्तेमाल भारत के सुरक्षा हितों के खिलाफ नहीं होने देगा। भारत ने सऊदी अरब में हौसी विद्रोहियों के हमलों की निंदा की, कहा ऐसे हमले बाब अल मंदेब जलडमरू मध्य में आवाजाही के लिए खतरा। विश्व तीरंदाजी पैरा श्रृंखला का तीसरा चरण संपन्न, भारत ने 4 स्वर्ण सहित 15 पदक जीते। और जूनियर एशिया कप हॉकी में भारतीय पुरुष टीम सेमीफाइनल में और महिला टीम क्वार्टर फाइनल में पहुंची। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रेल संपर्क बढ़ाने के लिए 9 राज्यों में 20,800 करोड़ रुपए से अधिक की 8 रेलवे मल्टीट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इनमें 3 मल्टीट्रैकिंग परियोजनाएं में 10,700 करोड़ रुपए से अधिक की लागत आएगी। नई दिल्ली में आज मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया, ये परियोजनाएं पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के 14 जिलों में हैं। इससे भारतीय रेलवे के मौजूदा नेटवर्क में लगभग 656 किलोमीटर की वृद्धि होगी।
1: खड़गपुर से लेके उड़ीसा में झारसुगुड़ा तक का एक पूरा प्रोजेक्ट है, जहाँ पे फोर्थ लाइन बन। ये लाइन बन जाने से बहुत बड़ा जो कंजेशन होता है इस एरिया में वो खत्म होगा, कई नई गाड़ियां चला पाएंगे और जो ट्रैफिक की सीरियस प्रॉब्लम्स आती थी वो सारी प्रॉब्लम्स इससे सॉल्व होती। तो इस प्रोजेक्ट को हम जल्दी से जल्दी आगे बढ़ाएं। इसके सारे डिटेल्स है प्रोजेक्ट के, 367 किलोमीटर, 6,528 करोड़ रुपीज का और एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स को जोड़ने वाला प्रोजेक्ट है।
0: मंत्रिमंडल ने तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना के 17 जिलों में 5 मल्टीट्रैकिंग परियोजनाओं को भी मंजूरी दी गई। इससे भारतीय रेलवे के मौजूदा नेटवर्क में 540 किलोमीटर की वृद्धि होगी। इन परियोजनाओं की अनुमानित लागत 10,021 करोड़ रुपए से अधिक है। इन्हें वर्ष 2029-30 तक पूरा करने की योजना है। श्री वैष्णव ने बताया कि सरकार ने सभी 7 भीड़भाड़ वाले रेलवे कॉरिडोर को 4 लेन वाला बनाने का निर्णय लिया है।
1: रेलवे के मॉडर्नाइजेशन का जो काम पिछले 12 वर्षों में चल रहा है उसमें माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कंप्लीट ओवरहॉलिंग जो रेलवे की हो रही है, कंप्लीट मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, उसके प्रोजेक्ट्स हैं। दिल्ली से मुंबई, मुंबई से चेन्नई, चेन्नई से कोलकाता, कोलकाता से वापस मुंबई, ये हो गया गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। 7 हाई डेंसिटी कॉरिडोर्स हैं, उन कॉरिडोर्स की 4 लाइनिंग का काम चल रहा है। तो करीब करीब 2000 किलोमीटर ऐसे हैं जो ऑलरेडी 4 लाइनिंग हो चुके हैं।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन सेवा अगले वर्ष शुरू हो जाएगी।
1: वापी से सूरत का 100 किलोमीटर का सेक्शन, पहला सेक्शन ओपन करेंगे 2027 में। कंस्ट्रक्शन करीब करीब दिसंबर तक कंप्लीट हो जाएगा और जो ट्रेन बन रही है वो ट्रेन का काम बहुत तेजी से चल रहा है। जो फर्स्ट कोच टेस्टिंग के लिए बन रहा है वो टेस्टिंग का कोच लास्ट वीक बन के रेडी हुआ है और उसको अब पहला टेस्ट होता है उसका स्क्वीज टेस्ट है, उसके बाद में उसका क्लाइमेट टेस्ट होगा, उसके बाद में फर्निशिंग और नेक्स्ट बाकी के कोच बनेंगे। अगले साल मई जून तक ट्रेन पटरी पे आ जाएगी।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मंत्रिमंडल के आज के फैसले से यात्रियों की आवाजाही तेज होगी, रेल संपर्क बेहतर होगा और माल ढुलाई की क्षमता बढ़ेगी। श्री मोदी ने बताया कि 5 रेलवे परियोजनाएं दक्षिण भारत में बेहतर रेल संपर्क को बढ़ावा देंगी और इससे लाखों लोगों को लाभ होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि 3 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं से रेलवे नेटवर्क बढ़ेगा और छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में संपर्क बेहतर होगा। उन्होंने कहा कि इससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और संचालन की लागत भी कम होगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: एवरी ग्रेट जर्नी बिगिंस विद पीपल कमिंग टुगेदर टू लिसन, टू लर्न, टू इमेजिन व्हाट्स पॉसिबल। दिस इज द ब्रिक्स 2026, अ मोमेंट वेयर लीडर्स, इनोवेटर्स, बिजनेसेस एंड कम्युनिटीज फ्रॉम द ब्रिक्स नेशंस कम टुगेदर टू स्ट्रेंथन पार्टनरशिप्स। India welcomes the BRICS countries as the grouping marks

0: बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
1: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
2: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज कोलंबो में श्रीलंका के राष्ट्रपति अनोर कुमार देसानायक से मुलाकात कर भारत श्रीलंका के बीच बहुआयामी साझेदारी पर चर्चा की। दोनों पक्षों ने श्रीलंकाई वायुसेना के लिए L-70 तोपों में सुधार और दोनों देशों के राष्ट्रीय कैडेट कोर तथा राष्ट्रीय रक्षा महाविद्यालयों के बीच सहयोग पर समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान किया। भारतीय रक्षा बलों द्वारा निर्मित 3 बेली पुलों का भी वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया गया। बैठक के दौरान राष्ट्रपति देसानायक ने कहा कि श्रीलंका कभी भी अपनी धरती का इस्तेमाल भारत के सुरक्षा हितों के खिलाफ किसी भी गतिविधि के लिए नहीं होने देगा। श्री सिंह ने इस बैठक को सफल और सार्थक बताया।
3: आज मेरी हेज एक्सलेंसी द प्रेसिडेंट के साथ भी बहुत ही फ्रूटफुल और प्रोडक्टिव मीटिंग भी उनके साथ हुई है और उनका विजन और लीडरशिप हमारे दोनों देशों के बीच मैं समझता हूं कि पार्टनरशिप को और स्ट्रेंथन करने में वो कंट्रीब्यूट करेगी।
2: श्री राजनाथ ने श्रीलंका की प्रधानमंत्री हरिणी अमरा सूर्या से भी मुलाकात कर विकास सहयोग शिक्षा तथा भारत श्रीलंका के बीच सांस्कृतिक और सभ्यतागत संबंधों से जुड़े मुद्दों पर विचार विमर्श किया। भारतीय वायुसेना का 8वां विमान 35 टन राहत और बचाव का सामान लेकर नेपाल के काठमांडू के लिए रवाना हो गया है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि इस मदद में NDRF का सामान, बचाव कार्य के उपकरण, फोरेंसिक का सामान और सेना की टीम के लिए जरूरी सामान शामिल है। मंत्रालय ने कहा कि भारत अपने राहत और बचाव कार्य जारी रखे हुए है। मुंबई में आज ब्रिक्स वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की अंतिम बैठक हो रही है। इस वर्ष ब्रिक्स वित्तीय चर्चाओं का विषय है मजबूत नवाचार, सहयोग और सतत विकास के लिए निर्माण। इससे पहले वित्त मंत्री और गवर्नर पिछले महीने जयपुर में बैठक कर चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनसेवा के 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर 17 सितंबर से 1 महीने का सेवा संकल्प अभियान शुरू करेगी। ये अभियान प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर शुरू किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि सेवा मेरा योगदान कार्यक्रम 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक जन भागीदारी के साथ आयोजित किया जाएगा।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा विकसित भारत 2047 के संकल्प को लेते हुए हम भारत को आगे बढ़ाने में, देश को एक साथ लेकर चलने में और प्रधानमंत्री जी का जो मूल मंत्र रहा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, उस मूल मंत्र को इस कार्यक्रमों में हम लोगों ने लाने का प्रयास किया है।
2: महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को लंदन में 3 बड़े सम्मान दिए जाएंगे। उन्हें हाउस ऑफ लॉर्ड्स में कॉमनवेल्थ पब्लिक लीडरशिप रिकॉग्निशन और हाउस ऑफ कॉमन्स में स्टेट्समैनशिप अवार्ड दिया जाएगा। ये सम्मान उनके जन केंद्रित सुशासन और लोक कल्याणकारी योजनाओं जैसे मुख्यमंत्री मांझी लाड़की बहन योजना, शासन अपल्यादारी और मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना के लिए दिए जा रहे हैं। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री जयंत चौधरी ने कहा है कि जिला प्रशासन ही विकास, सुधार और परिवर्तन के असली इंजन हैं। श्री चौधरी ने ये बात महिलाओं के लिए सतत आजीविका का निर्माण विषय पर आधारित कौशल मंथन के उद्घाटन सत्र में कही। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
5: ध्यान दें, आपकी मेहनत को राष्ट्रीय पहचान, पशुपालन क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने और नवीन प्रौद्योगिकी प्रथाओं को अपनाने वालों को भारत सरकार का पशुपालन एवं डेयरी विभाग प्रदान करता है राष्ट्रीय सम्मान। आज ही नामांकन करें राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 के लिए। इस पुरस्कार के लिए 3 श्रेणियों में होता है चयन, सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान, सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी समिति और सर्वश्रेष्ठ AI तकनीशियन। उत्तर पूर्वी क्षेत्र और हिमालयी राज्यों के लिए विशेष पुरस्कार का प्रावधान। नामांकन की तिथि 10 अगस्त से 10 सितंबर 2026 तक, तो देर किस बात की, आज ही आवेदन करें www.awards.gov.in पर या संपर्क करें नजदीकी CSC केंद्र पर। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 पशुपालन एवं डेयरी विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
6: आकाशवाणी समाचार से जुड़े रहिए, expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें और ताजा खबरों के लिए newsonair.gov.in पर जाएं।
7: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए, expert@AIRnews हिंदी को फॉलो

0: करें और पीबी शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
1: ये आकाशवाणी है। भारत ने सऊदी अरब में हौसी विद्रोहियों के कथित हमलों की निंदा की है। भारत ने आम नागरिकों और आर्थिक ठिकानों को निशाना बनाए जाने पर चिंता व्यक्त की। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा है कि ऐसे हमले क्षेत्र की सुरक्षा और स्थिरता के लिए खतरा हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे हमले अस्वीकार्य हैं और इनसे बाब अल मंदेब जलडमरू मध्य में आवाजाही प्रभावित होगी। ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने दावा किया है कि उसने फारस की खाड़ी में 2 अमरीकी जहाजों और 8 तेल टैंकरों पर हमला किया है। ईरान ने एक कार्रवाई अमरीकी सेना द्वारा उसके 5 तेल टैंकरों को नष्ट किए जाने के जवाब में की है। एक रिपोर्ट।
2: अमेरिका और ईरान के बीच तनाव कल से और बढ़ गया है। पर्शियन गल्फ और उसके आसपास सैन्य ठिकानों के साथ साथ व्यापारिक जहाजों पर भी हमले हुए हैं। अमेरिका का कहना है कि ईरान के मिसाइल हमले के बाद उसने 5 ईरानी तेल टैंकरों को नष्ट कर दिया। वहीं ईरान का दावा है कि उसने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के आसपास 2 अमेरिकी नौसैनिक जहाजों और 8 तेल टैंकरों पर हमला किया। यूके एमटीओ ने पुष्टि की है कि गई रात कई व्यापारिक जहाजों पर हमला हुआ। इस बढ़ते तनाव का असर तेल की कीमतों पर भी पड़ा है। अगर जहाजों की आवाजाही और तेल के सप्लाई लंबे समय तक प्रभावित रहे तो इसका असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। मनीष शिवा, आकाशवाणी न्यूज, दुबई।
1: थाईलैंड के गृह मंत्रालय ने कहा है कि साधारण पासपोर्ट धारक भारतीय पर्यटकों को वीजा अनिवार्यता से छूट दे दी गई है। ये छूट पर्यटकों को थाईलैंड में 30 दिन तक रहने की अनुमति देती है। ये छूट इस महीने की 15 तारीख से लागू होगी। गंगा, गंडक, कोसी, पुनपुन और सोन समेत अन्य नदियों के जलस्तर में कमी आने के बावजूद बिहार के लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। एक रिपोर्ट।
3: आपदा प्रबंधन विभाग के अनुसार 14 जिले पटना, भोजपुर, सारण, वैशाली, भागलपुर, बेगूसराय, बक्सर, समस्तीपुर, मुंगेर, कटिहार, लखीसराय, खगड़िया, पूर्णिया और अरवल जिले बाढ़ से प्रभावित हैं। प्रभावित क्षेत्रों में 793 सामुदायिक रसोई केंद्रों का संचालन किया जा रहा है। इसके अलावा 15 राहत शिविर भी संचालित किए जा रहे हैं। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में लोगों की सुविधा के लिए 1872 नावों का परिचालन हो रहा है। राहत और बचाव कार्य में एनडीआरएफ की 10 और एसडीआरएफ की 27 टीमों की तैनाती की गई है। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से निधिश्री।
1: अहमदाबाद में विश्व तीरंदाजी पैरा श्रृंखला का तीसरा चरण आज संपन्न हो गया। भारत ने 4 स्वर्ण, 3 रजत और 8 कांस्य सहित कुल 15 पदक जीते। प्रतियोगिता के अंतिम दिन आज भारत ने 2 स्वर्ण और 4 कांस्य पदक हासिल किए। भारतीय पुरुष हॉकी टीम जूनियर हॉकी एशिया कप के सेमीफाइनल और महिला टीम क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। चीन की मोकी में आज भारतीय पुरुष टीम ने कप्तान अनमोल इक्का के शानदार 6 गोल की मदद से चीनी ताइपे को 15-0 से हराकर सेमीफाइनल में जगह पक्की की। वहीं भारतीय जूनियर महिला टीम ने अपने आखिरी पूल मैच में चीन के साथ गोल रहित ड्रॉ खेला। अब क्वार्टर फाइनल में कल भारत का मुकाबला पाकिस्तान से होगा। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं निखिल कुमार।
4: घरेलू शेयर बाजार के मुख्य सूचकांकों में आज गिरावट आई और वे लगभग 3 महीने पहले के स्तर पर आ गए। सेंसेक्स 813 अंक गिरकर 74,764 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 204 अंक नीचे आकर 23,432 पर पहुंच गया। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया $1 की तुलना में 28 पैसे गिरकर 95.11 पर बंद हुआ।
1: भारत इस वर्ष 21 से 23 अक्टूबर तक नई दिल्ली में 7वें एग्री वोल्टेक्स विश्व सम्मेलन की मेजबानी करेगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रेल संपर्क बढ़ाने के लिए 9 राज्यों में 20,800 करोड़ रुपए से अधिक की 8 रेलवे मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी। भारत और श्रीलंका ने L-70 तोपों में सुधार और दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग पर समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। श्रीलंका ने भरोसा दिलाया कभी भी अपनी धरती का इस्तेमाल भारत की सुरक्षा हितों के खिलाफ नहीं होने देगा। भारत ने सऊदी अरब में हौसी विद्रोहियों के हमलों की निंदा की। विश्व तीरंदाजी पैरा श्रृंखला का तीसरा चरण संपन्न। भारत ने 4 स्वर्ण सहित कुल 15 पदक जीते और जूनियर एशिया कप हॉकी में भारतीय पुरुष टीम सेमीफाइनल में और महिला टीम क्वार्टर फाइनल में पहुंची। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: Good evening. This is Akashvani. I am Valsa Williams with the news at 9. The headlines. Union Cabinet approves 8 railway multi-tracking projects worth over

0: करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत के रेलवे के 8 तौसीई प्रोजेक्टों को मंजूरी दी है। भारत और श्रीलंका ने L-70 तोपों को बेहतर बनाने और दिफाई इश्तराक से मुतालिक मफाहमत नामों पर दस्तखत किए हैं। श्रीलंका ने यकीन दहानी कराई है कि वो भारत के खिलाफ अपनी सरजमीन का कभी इस्तेमाल नहीं होने देगा। भारत ने सऊदी अरब पर यमन के हूसी बागियों के हमलों की मजम्मत की है। भारत ने कहा है कि इन हमलों से आबनाए बाबुल मंदेब में आजादाना जहाज रानी को खतरा लाहक होगा। भारत ने अहमदाबाद में आलमी पैरा तीरंदाजी सीरीज के तीसरे मरहले के अख्ताम तक कुल 15 तमगे जीते हैं, जिनमें सोने के 4 तमगे शामिल हैं। और जूनियर एशिया कप हॉकी में मर्दों की भारतीय टीम चीनी ताइपे पर 15-0 से शानदार जीत दर्ज करके सेमीफाइनल में पहुंच गई है। खवातीन की भारतीय टीम भी क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी की सदारत में मरकजी काबीना ने 20,700 करोड़ रुपए से ज्यादा की कुल तखमीना लागत के रेलवे की वजारत के 8 तौसीई प्रोजेक्टों को मंजूरी दी है। इत्तेलात और नशरियात के वजीर अश्विनी वैष्णव ने आज नई दिल्ली में मीडिया को तफसील बताते हुए मरकजी काबीना की जानिब से किए गए फैसलों के बारे में मालूमात फराहम की। जनाब वैष्णव ने कहा कि काबीना ने तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना के 17 जिलों का अहाता करने वाले 5 तौसीई प्रोजेक्टों को मंजूरी दी है। इन प्रोजेक्टों से भारतीय रेलवे के मौजूदा नेटवर्क में तकरीबन 540 किलोमीटर का इजाफा होगा। इन 5 प्रोजेक्टों की कुल तखमीना लागत 10,021 करोड़ रुपए से ज्यादा है और साल 2029-30 तक इनका काम मुकम्मल होने का इम्कान है। मंजूरशुदा तौसीई प्रोजेक्टों से तकरीबन 2,100 गांवों तक कनेक्टिविटी बेहतर होगी, जिनकी मजमुई आबादी तकरीबन 52 लाख है। जनाब वैष्णव ने कहा कि हुकूमत ने 10,700 करोड़ रुपए से ज्यादा की कुल तखमीना लागत के रेलवे के 3 तौसीई प्रोजेक्टों को भी मंजूरी दी है। ये प्रोजेक्ट मगरबी बंगाल, झारखंड, ओडिशा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के 14 जिलों का अहाता करेंगे और रेलवे के मौजूदा नेटवर्क में तकरीबन 656 किलोमीटर का इजाफा होगा। इन तौसीई प्रोजेक्टों से रेल खिदमात के मौसर होने और मसरूफ रास्तों पर भीड़भाड़ को कम करने में मदद मिलेगी। वजीर मौसूफ ने मजीद मुतला किया कि हुकूमत ने ज्यादा भीड़भाड़ वाले सभी 7 रेलवे कॉरिडोर्स को 4 लेन या उससे भी ज्यादा करने का फैसला किया है। कुल मिलाकर ये रूट रेलवे नेटवर्क के तकरीबन 11,000 किलोमीटर का अहाता करते हैं। नए मंजूर शुदा प्रोजेक्ट ज्यादा भीड़भाड़ वाले रेलवे नेटवर्क पर सलाहियत को बढ़ाने और रेल खिदमात की मजमूई कारकर्दगी को बेहतर बनाने की हुकूमत की कोशिशों का हिस्सा हैं।
1: रेलवे के मॉडर्नाइजेशन का जो काम पिछले 12 वर्षों में चल रहा है, उसमें माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कंप्लीट ओवरहॉलिंग जो रेलवे की हो रही है, कंप्लीट मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, उसके प्रोजेक्ट्स हैं। दिल्ली से मुंबई, मुंबई से चेन्नई, चेन्नई से कोलकाता, कोलकाता से वापस मुंबई, ये हो गया गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। 7 हाई डेंसिटी कॉरिडोर्स हैं, उन कॉरिडोर्स की 4 लाइनिंग का काम चल रहा है, तो करीब करीब 2000 किलोमीटर ऐसे हैं जो ऑलरेडी 4 लाइनिंग हो चुके हैं।
0: मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट पर एक सवाल के जवाब में इत्तेलात और नशरियात के वजीर ने इत्तला दी कि बुलेट ट्रेन खिदमात का आइंदा बरस आगाज होगा। उन्होंने कहा कि इस कॉरिडोर पर तामीराती काम तेजी से आगे बढ़ रहा है और शुरुआत में गुजरात में सूरत से वापी तक 100 किलोमीटर के हिस्से पर खिदमात दस्तियाब होंगी।
1: वापी से सूरत का 100 किलोमीटर का सेक्शन, पहला सेक्शन ओपन करेंगे 2027 में। कंस्ट्रक्शन करीब करीब दिसंबर तक कंप्लीट हो जाएगा और जो ट्रेन बन रही है वो ट्रेन का काम बहुत तेजी से चल रहा है। जो फर्स्ट कोच टेस्टिंग के लिए बन रहा है वो टेस्टिंग का कोच लास्ट वीक बन के रेडी हुआ है और उसको अब पहला टेस्ट होता है उसका स्क्वीज टेस्ट, उसके बाद में उसका क्लाइमेट टेस्ट होगा, उसके बाद में फर्निशिंग और नेक्स्ट बाकी के कोच बनेंगे। अगले साल मई जून तक ट्रेन पटरी पे आ जाएगी।
0: इस दौरान वजीराजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि काबीना के आज के फैसले मुसाफिरों की तेज नकलो हरकत, मुस्तहकम कनेक्टिविटी और इजाफी माल बरदार सलाहियत को यकीनी बनाते हैं। सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब मोदी ने कहा कि इससे खास तौर से विरासती मकामात और जंगलाती जिंदगी से मुतालिक सियाहत को फरोग हासिल होगा और लॉजिस्टिक्स की लागत में कमी आएगी। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने आज कोलंबो में श्रीलंका के सदर अनुरा कुमार दिस्सानायके से मुलाकात की और दोनों मुल्कों के दरमियान कसीर रुखी शराकत दारी के वसी तर पहलुओं पर तबादला ख्याल किया। मीटिंग के दौरान तरफैन ने खित्ते में सलामती, सिक्योरिटी, अमन खुशहाली को यकीनी बनाने की खातिर मिलकर काम करने के साथ साथ दोनों मुल्कों के तरक्याती कामों के सिलसिले में इश्तराक के अपने अहद का भी इरादा किया।
2: आज मेरी प्रेसिडेंट के साथ भी बहुत ही फ्रूटफुल और प्रोडक्टिव मीटिंग उनके साथ हुई है और रीजनल लीडरशिप हमारे दोनों देशों के बीच मैं समझता हूं कि पार्टनरशिप को और स्ट्रेंथन करने को कंट्रीब्यूट करेगी।
0: दोनों मुल्कों ने श्रीलंका की फिजाइया के लिए L-70 तोपों को बेहतर बनाने और दोनों मुल्कों की नेशनल कैडेट कोर और नेशनल डिफेंस कॉलेजों के दरमियान इश्तराक के सिलसिले में भी मफाहिमतनामों का तबादला किया। मीटिंग के दौरान सदर डी सनाइके ने यह बात दोहराई कि श्रीलंका कभी भी अपनी सरजमीन को ऐसी सरगर्मियों के लिए इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं देगा जिनसे भारत के सिक्योरिटी मफादात को खतरा लाहक हो। जनाब राजनाथ सिंह ने श्रीलंका के वजीर आजम हरिनी अमरासुरिया से भी मुलाकात की और भारत और श्रीलंका के दरमियान तरक्याती इश्तराक, तालीम और करीबी सकाफती और तहजीबी राबतों से मुतालिक मामलात पर नजरियात का तबादला किया। नई दिल्ली में इस हफ्ते होने वाले ब्रिक्स लीडर्स समिट से पहले मुंबई में ब्रिक्स वज़राए खजाना और सेंट्रल बैंक के गवर्नरों की आखिरी मीटिंग हो रही है। इस साल ब्रिक्स के मालियाती मामलों का मौजू है लचक, जिद्दत तराजी, इश्तराक और पायदारी की तामीर। इससे पहले गुज़श्ता महीने जयपुर में वज़राए खजाना और गवर्नरों की मुलाकात हुई थी। मुंबई में होने वाली आखिरी मीटिंग से पहले खजाना और कॉरपोरेट उमूर की मरकजी वजीर निर्मला सीतारमन ने ब्रिक्स फाइनेंस ट्रैक के कलीदी नतायज का जायजा लिया। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। कॉमर्स और सनत के वजीर पीयूष गोयल ने आज नई दिल्ली में थाईलैंड के नायब वजीर आजम और कॉमर्स के वजीर सुफाजी सुथुमपुम से मुलाकात की। कॉमर्स और सनत की वजारत ने कहा कि दोनों वजीरों ने भारत और थाईलैंड के दरमियान इकतसादी शराकत दारी को मजीद मुस्तहकम करने के तौर तरीकों पर तबादला ख्याल किया जिसमें बाहमी तिजारत और सरमायाकारी में इजाफा करने, कारोबारी इम्कानात में वसत पैदा करने और दोनों मुल्कों के दरमियान कारोबार से कारोबार के राबते मजबूत करने पर तवज्जो मरकूज की गई। उन्होंने दोतरफा तिजारत के सिलसिले में मुतवाजन और पायदार तरक्की को फरोग देने की खातिर मजीद इश्तराक पर भी बातचीत की। भारत ने सऊदी खुद मुख्तार जमीन पर हूसी हमले की मजम्मत की है जिसमें शहरियों और इकतसादी मराकज को निशाना बनाया गया है। सऊदी अरब में हमलों से मुतालिक पूछे गए मीडिया के सवाल का जवाब देते हुए वजारत खारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने बताया कि बाबुल मंदेब में इस तरह के हमले जिनसे इलाकाई सलामती और इस्तेहकाम की पामाली होती है और जहाज रानी की आजादी खतरे में पड़ जाती है पूरी तरह नाकाबिल कबूल हैं। अमरीका और ईरान के दरमियान जारी तनाजे में उस वक्त अचानक तेजी आ गई जब दोनों फरीकों ने एक दूसरे के फौजी ठिकानों और तजारती बहरी जहाजों को निशाना बनाया। हालिया हमलों को तनाजे की शुरुआत के बाद से तिजारती जहाजों पर अब तक के सबसे संगीन हमले करार दिया जा रहा है जिससे अहम बहरी रास्तों की सलामती और तवानाई की आलमी सप्लाई से मुतालिक ताजा खदशात पैदा हो गए हैं। मजीद तफसील हमारे मगरबी एशिया के नुमाइंदे से।
3: अमरीका और ईरान के दरमियान जारी तनाजे में कल उस वक्त अचानक शिद्दत आ गई जब खलीज फारस में और उसके अतराफ फौजी ठिकानों और तजारती बहरे जहाजों को हमलों का निशाना बनाया गया। इन हमलों को तनाजे की शुरुआत के बाद से इसलिए भी इंतहाई शदीद माना जा रहा है क्योंकि महज चंद घंटों में कई बहरी जहाजों पर सीधे हमले किए गए। अमरीका ने कहा है कि अमरीकी बहरिया के जहाज पर ईरान के मिजाइल हमलों के बाद उसने 5 ईरानी तेल टंकरों को तबाह कर दिया है। वहीं ईरान ने दावा किया है कि उसने आबनाए हुरमुज के अतराफ ममनुआ खित्ते के करीब अमरीकी बहरिया के 2 जहाजों और 8 तेल टंकरों पर हमले किए हैं। तजारती बहरी जहाजों और फौज के दरमियान राबते के तौर पर काम करने वाली तंजीम UKMTO ने तस्दीक की है कि रात भर चली फौजी कार्रवाई के दौरान कई तजारती बहरी जहाजों को निशाना बनाया गया। इन वाकयात के सबब तेल की कीमतों में इजाफा हो गया है और ब्रेंट खाम तेल $100 फी बैरल से तजावज कर गया है। वहीं WTI भी 95 अमरीकी डॉलर से ऊपर रहा जिससे इस बात पर तशवीश बढ़ गई है कि जहाजरानी और तवानाई की फराहमी तवील अरसे तक महसूद रहने से आलमी मईशत पर मजीद दबाव पड़ सकता है। दुबई से मनीष शिवा की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं महताब आलम।
0: थाईलैंड के दाखिले उमूर की वजारत ने कहा है कि आम पासपोर्ट रखने वाले भारतीय सयाह वीजा की जरूरियात से मुस्तस्ना रहेंगे और उन्हें थाईलैंड में कयाम की इजाजत होगी लेकिन वो 30 दिन से ज्यादा नहीं होने चाहिए। इसका इतलाक इस महीने की 15 तारीख से होगा। थाईलैंड में भारतीय सफारतखाने ने सोशल मीडिया पोस्ट पर कहा है कि सयाहों के पास वहां आमद की तारीख से कम अज कम 6 महीने की मुद्दत तक का लाजमी तौर पर एक जायज पासपोर्ट होना चाहिए। उनके पास तस्दीक शुदा वापसी के टिकट, होटल की बुकिंग और वाजे सफर के मंसूबे भी हों। उसने मजीद कहा कि सयाहों को इमिग्रेशन की सरकारी वेबसाइट के जरिए आमद से पहले 72 घंटों के अंदर अंदर थाईलैंड डिजिटल अराइवल कार्ड मुकम्मल करने की जरूरत होगी। بھارتی محکمہ موسمیات نے کل اوڈیشہ میں کچھ مقامات پر شدید سے بہت شدید بارش کا ریڈ الرٹ جاری کیا ہے۔ موسمیات کی ایجنسی نے اگلے 2 سے 3 دن میں آسام، میگھالیہ، ناگالینڈ، منی پور، میزورم، تریپورہ، گنگا کی ترائی والے مغربی بنگال، بہار، جھارکھنڈ، چھتیس گڑھ، کیرلا، ماہے اور اتراکھنڈ میں شدید بارش کی پیش گوئی کی ہے۔ اس دوران تمل ناڈو، پڈوچیری، کرائیکل، آندھرا پردیش، تلنگانہ، ذیلی ہمالیائی مغربی بنگال اور سکم میں اتوار تک گرج چمک کے ساتھ چھینٹے پڑنے اور تیز ہوائیں چلنے کا امکان ہے۔ بلوچستان میں مزید 2 افراد پاکستانی فورسز کے ہاتھوں جبری گمشدگی کا شکار ہو گئے ہیں، جسے بلوچ افراد کی گمشدگی اور متاثر خاندانوں کو دستیاب معلومات کو لے کر تشویش ایک بار پھر نمایاں ہو گئی ہے۔ بلوچستان پوسٹ کے مطابق 23 اگست کو رات تقریباً 3 بجے پاکستانی فورسز نے مستونگ میں علی بلوچ کو مبینہ طور پر حراست میں لے لیا۔ اس کے بعد علی بلوچ کا کوئی پتہ نہیں چل سکا۔ ایک دوسرے واقعے میں شکیل بلوچ کے افراد خاندان نے کہا کہ اسے کوئٹہ کے کلی گوہر آباد سے 16 اپریل کی آدھی رات اس کے مکان سے اٹھا لیا گیا۔ اس کے کنبے نے پاکستانی آئی ایس آئی اور انسداد دہشت گردی محکمے سی ٹی ڈی پر اس کی گمشدگی کا الزام عائد کیا ہے۔ بھارت نے آج احمد آباد میں عالمی پیرا تیراندازی سیریز کے تیسرے مرحلے میں آخری دن 2 سونے اور 4 کانسے کے تمغے جیت کر اپنی مہم ختم کر دی۔ پیرا اولمپک میں 2 بار تمغہ جیتنے والے ہرویندر سنگھ اور موجودہ عالمی چیمپئن اور عالمی نمبر 1 شیتل دیوی نے بھارت کے تمغوں کی مہم کی قیادت کی۔ شیتل دیوی نے خواتین کے کمپاؤنڈ انفرادی مقابلے میں سونے کا تمغہ جیتا۔ انہوں نے قزاقستان کی آئزدہ سیدان کو ایک سنسنی خیز شوٹ آف میں شکست دے کر یہ تمغہ حاصل کیا ہے۔ ہرویندر سنگھ نے بھاونا کے ساتھ مل کر ریکرو مکسڈ ٹیم مقابلے میں سونے کا تمغہ جیتا ہے۔ بھارتی جوڑی نے فائنل میں چین کے لیانگ کوئرونگ اور زیائی لی کو 6-0 سے شکست دی۔ بھاونا ایک اور کانسی کا تمغہ بھی جیتی ہیں۔ انہوں نے خواتین کے پیرا ریکرو برونز میڈل پلے آف میں اپنی حریف راج شری راٹھوڑ کو 6-0 سے شکست دی ہے۔ انہوں نے مقابلے میں ایک دوسرا میڈل بھی حاصل کیا ہے۔ انہوں نے اس سے قبل کمپاؤنڈ مکسڈ ٹیم ایونٹ میں تومن کمار کے ساتھ کانسے کا تمغہ جیتا تھا۔ بھارت کی سریتا نے خواتین پیرا کمپاؤنڈ انفرادی ایونٹ میں ایک دوسرا کانسے کا تمغہ حاصل کیا ہے۔ اس نتیجے کے ساتھ احمد آباد میں بھارت کی مہم کا اختتام مضبوط اور شاندار انداز میں ہوا ہے۔ مردوں کی بھارتی جونیئر ہاکی ٹیم چین کے شہر موکی میں جاری جونیئر ہاکی ایشیا کپ کے سیمی فائنل میں پہنچ گئی ہے۔ 5 مرتبہ کے چیمپئن بھارت نے آج چینی تائپے کو 15-0 سے شکست دے کر پول اے میں پہلی پوزیشن حاصل کی ہے۔ بھارت نے 3 کامیابیوں اور 1 ڈرا کے ذریعے 10 پوائنٹ حاصل کیے ہیں۔ کپتان انمول ایک کا میچ کے ہیرو رہے اور انہوں نے 6 گول کیے اور یہ تمام گول پینلٹی کارنر کے ذریعے کیے گئے۔ اریان زیس نے ہیٹرک کی جبکہ ہرپال نے 2 گول کیے۔ پربدیپ سنگھ، گرو سیوک سنگھ، ارجن سنتوش ہرگودے اور اجیت یادو نے 1-1 گول کیا۔ بھارتی خواتین کی ٹیم نے اپنے آخری ایلیٹ پول میچ میں چین کے خلاف بغیر گول کے ڈرا کھیلا اور کوارٹر فائنل میں پہنچ گئی۔ بھارتی خواتین کی ٹیم اگلے مرحلے میں پاکستان کا مقابلہ کرے گی۔ اور آخر میں خاص خاص خبریں ایک بار پھر۔ مرکزی کابینہ نے 9 ریاستوں میں کنیکٹیوٹی کو فروغ دینے کی خاطر 20,800 کروڑ روپے سے زیادہ مالیت کے ریلوے کے 8 توسیع پروجیکٹوں کو منظوری دی ہے۔ بھارت اور سری لنکا نے L-70 توپوں کو بہتر بنانے اور دفاعی اشتراک سے متعلق مفاہمت ناموں پر دستخط کیے ہیں۔ سری لنکا نے یقین دہانی کرائی ہے کہ وہ بھارت کے خلاف اپنی سرزمین کا کبھی استعمال نہیں ہونے دے گا۔ بھارت نے سعودی عرب پر یمن کے حوثی باغیوں کے حملوں کی مذمت کی ہے۔ بھارت نے کہا ہے کہ ان حملوں سے آبنائے باب المندیب میں آزادانہ جہاز رانی کو خطرہ لاحق ہوگا۔ بھارت نے احمد آباد میں عالمی پیرا تیر اندازی سیریز کے تیسرے مرحلے کے اختتام تک کل 15 تمغے جیتے ہیں، جن میں سونے کے 4 تمغے شامل ہیں۔ اور جونیئر ایشیا کپ ہاکی میں بھارت کی مردوں کی ٹیم چینی تائپے پر 15-0 سے شاندار جیت درج کر کے سیمی فائنل میں پہنچ گئی ہے۔ خواتین کی بھارتی ٹیم بھی کوارٹر فائنل میں پہنچ گئی ہے۔ اس کے ساتھ ہی آکاشوانی سے خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔
4: चर्चा का विषय है। ये आकाशवाणी है। चर्चा का विषय है। कार्यक्रम में प्रस्तुत है संपूर्ण विकास के महत्व को दर्शाता पोषण माह पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अनु माहेश्वरी और दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर नीना भाटिया कॉल। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं आनंद श्रीवास्तव।
5: जब एक पौधा मिट्टी में गहराई तक अपनी जड़ें जमाता है तभी उस पर फल और फूल लहलहाते हैं। ठीक वैसे ही जब किसी राष्ट्र की भावी पीढ़ी सेहत और पोषण से परिपूर्ण होती है तभी वो देश आर्थिक और सामाजिक प्रगति के शिखर को छूता है। इसी सोच को धरातल पर उतारने के लिए देश भर में गूंज रहा है एक नया संकल्प, नौवां राष्ट्रीय पोषण माह 2026। और इस बार हमारा मूल विचार है पोषण से समृद्धि। बाबा विश्वनाथ की पवित्र नगरी वाराणसी से इस राष्ट्रव्यापी अभियान का बिगुल बज चुका है, लेकिन इसकी तरंगे देश के हर गांव, हर शहर और हर घर तक पहुंचनी है। सवाल ये है कि क्या हमारी थाली सिर्फ भूख मिटा रही है या देश की समृद्धि की नींव भी रख रही है। बाल कुपोषण और एनीमिया के आंकड़े आज भी हमसे एक गंभीर संवाद की मांग करते हैं। इन्हीं नीतिगत पहलुओं, शोध और चिकित्सीय समाधानों पर विस्तार से चर्चा के लिए आज हमारे साथ दो मेहमान जुड़ रही हैं, दिल्ली विश्वविद्यालय की पोषण विशेषज्ञ प्रोफेसर नीना भाटिया कॉल और प्रसिद्ध बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अनु माहेश्वरी। आप दोनों का कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
6: थैंक यू, धन्यवाद।
5: डॉक्टर भाटिया, आपके साथ शुरुआत करते हैं। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट कहती है कि बाल कुपोषण के कारण भारत को अपनी जीडीपी का लगभग 3-11% का आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है। ये जो वाराणसी से अभियान शुरू हुआ है पोषण से समृद्धि, इसके तहत खाद्य सुरक्षा को केवल पेट भरने तक सीमित नहीं रखा गया है, इसमें सूक्ष्म पोषक तत्वों की उपलब्धता और आर्थिक उत्पादकता को भी शामिल किया गया है। आपसे ये समझना चाहेंगे कि इस अभियान को आप कैसे देखती हैं और इससे कितना बड़ा परिवर्तन होने की उम्मीद है।
6: जैसा कि हम सब जानते हैं कि केवल पेट भरने को पोषण नहीं कहा जा सकता, और जो अभी एक बदलाव आ रहा है इस पोषण की लड़ाई में हमारी, वो बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम सभी पोषक तत्वों को, जिसमें कि हमारे मेन मेजर पोषक तत्व जिसमें एनर्जी, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, वसा को इंक्लूड करना है, उसके अलावा साथ ही जो विटामिन और मिनरल प्रयुक्त पदार्थ हैं जिनमें कि प्रमुख रूप से आयरन, जिंक, विटामिन ए और कई विटामिन और मिनरल्स को शामिल करना बहुत जरूरी है। जब पोषक पदार्थों की कमी रहती है तो बच्चे के मानसिक विकास में भी कमी आती है, जिसकी वजह से उसकी आर्थिक क्षमता और उसकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट IQ भी कम रह जाती है और उसकी बड़े होकर कमाने की क्षमता कम होती है, जिससे कि देश के विकास में जो आपने बताया GDP में 3-11% कमी आ जाती है। और इसके लिए जरूरी है कि सभी पोषक तत्व उपयुक्त मात्रा में सम्मिलित किए जाएं। इस दिशा में डाइट्री डाइवर्सिटी, जो आहार में विविधता के प्रिंसिपल को अपनाकर सभी स्टेट्स अलग अलग पोषक पदार्थों को, जिसमें कि मोटा अनाज, दालें और पोषण वाटिका के थ्रू सब्जी और फलों को इंक्लूड कर रहे हैं, जिससे कि एक पूरा पूर्ण पोषण मिलेगा और सभी तरह की जो कमियां हैं और माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी से होने वाले एनीमिया और जो अधिक कुपोषण की समस्या है उसको कम किया जा सकेगा, और देश के, पहले तो देश के नागरिकों और बच्चों के विकास में और उससे देश के आर्थिक विकास में ये एक बड़ा कदम है।
5: आपसे समझना चाहेंगे कि गर्भाधारण से लेकर बच्चे के दूसरे जन्मदिन के पहले, यानी पहले 1000 दिन में सही डॉक्टरी सलाह और पोषण देकर इस स्थिति को कैसे पलटा जा सकता है।
7: इसका जवाब सिर्फ डॉक्टर दे दें कि हाँ आप ये कर लो, आपको भी पता है अगर डॉक्टर आपको एडवाइस देते हैं तो बहुत बार ना हम उस एडवाइस को 100% मानते नहीं है। सबसे जरूरी ये है कि जैसे माँ शिशु और जो माँ है, दे आर नॉट इंडिविजुअल नहीं है, एक फैमिली का पार्ट होते हैं। तो जो मदर है, सबसे पहले जो माँ का पोषण है और आयरन का स्टेटस है, मैडम ने बोला अनीमिया हो जाता है, जिंक की डेफिशिएंसी, माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी, हमें ये ध्यान रखना है कि जो माँ है वो सक्षम होनी चाहिए एक गर्भ कैरी करने के लिए, एंड इसीलिए हमारी जो प्रेगनेंसीज हैं वो प्लान्ड होनी चाहिए। और जो हम फोलिक एसिड की बात करते हैं वो प्रेगनेंसी के बाद नहीं, वो प्रेगनेंसी से पहले लेना शुरू करना चाहिए। अनीमिया की जांच सही टाइम पे होनी चाहिए, एएनसी विजिट टाइम से होनी चाहिए, ताकि एक गायनोकोलॉजिस्ट उनका वेट गेन और मदर ठीक ठाक कर रही है या नहीं कर रही, बच्चे की ग्रोथ हो रही है, तो शुरुआत वहां से होती है। फिर उसके बाद आती है बारी कि जब बच्चा पैदा हुआ, पहले 6 महीने में जो सबसे ज्यादा जरूरी होता है बच्चे की जिंदगी के लिए और उसके डेवलपमेंट के लिए, वो है स्तनपान करना। वो अभी भी मतलब हमारे देश में क्या, इवन वर्ल्ड में भी बहुत अच्छे आंकड़े नहीं है, बट हमारा देश में उस आंकड़े को बढ़ाने के लिए हमें बहुत संघर्ष करना पड़ता है एज डॉक्टर्स। बहुत सारी माएं, मैं गरीब तबके के सिर्फ लोगों की बात नहीं कर रही, इवन एजुकेटेड मदर्स जो हैं, जो पढ़ी लिखी माएं हैं, उनको भी कन्विंस करना कि आप बच्चे को 6 महीने तक अपना दूध दें, वो भी उनको समझ नहीं आता है कि दूध पिलाना चाहिए। तो हमें इसके लिए भी बहुत काम करना पड़ेगा कि एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग जरूर करें। फिर आती है बारी 6 महीने से 24 महीने। अब माओं को लगता है कि 6 महीने दूध पिलाना है, लेकिन कोई ये नहीं बोल रहा कि 6 महीने पे आप बच्चे का माँ का दूध छुड़वा दीजिए। बच्चे को 2 साल तक माँ का दूध पीना चाहिए, ये नहीं कि सिर्फ माँ का दूध पी रहा है। अगली बाधा आती है कि जब हमें उनको खाना देना है, बहुत सारे लोग समझते हैं कि दाल का पानी दे दो, चावल का पानी दे दो, सूप दे दो, ये सब चीजें ठीक नहीं है बच्चे के लिए। तो हमें ये भी जानना है कि उनको सही मात्रा में सही प्रकार का खाना, जो कि ऊर्जा संघन जो आहार होता है, अलग अलग, जैसे मैडम ने डाइटरी डाइवर्सिटी की बात करी, वो खाना बच्चे के 6 महीने पे शुरू करना है। अगर मांस मछली आप खाते हैं तो आप शुरू कर सकते हैं 8-9 महीने पे, उसमें कोई भी आपत्ति नहीं है। और एक जो माँ सोचती है ना कि चलो अब मैं दूध नहीं पिलाऊंगी और गाय का दूध पिलाना है, गाय का दूध 2 साल से पहले बच्चे के लिए तो ठीक नहीं है, बिल्कुल भी नहीं पिलाना चाहिए, उसके बहुत सारे नुकसान होते हैं। और सिर्फ डॉक्टरी सलाह से ना नहीं चलता है, क्योंकि जैसे मैंने बोला कि ब्रेस्ट फीडिंग एक सोशल प्रॉब्लम भी है। बहुत सारी माएं अब जैसे गर्भ अवस्था में उनको परिवार से सपोर्ट मिला, अब सास को भी लगता है, नानी को भी लगता है कि चलो अब तो हमने कर दिया, अब हम बच्चा पालते हैं, तुम घर का काम करो। ये बहुत जरूरी है, ये मेंटालिटी हमें इंडियन हाउस होल्ड से ये मेंटालिटी हटानी है। माँ और बच्चा एक डायड है, उनको प्यार की और उनको सपोर्ट की बहुत जरूरत है।
5: डॉक्टर भाटिया, अगर इसी चर्चा को आगे बढ़ाएं, वाराणसी और पूर्वी यूपी के संदर्भ में अगर हम देखें तो बाजरा, रागी और स्थानीय पारंपरिक अनाजों को दैनिक आहार में शामिल करके पोषण सुरक्षा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था दोनों को एक साथ कैसे मजबूती दी जा रही है।
6: जैसा कि हम जानते हैं कि जब ग्रीन रेवोल्यूशन से पहले हम लोग सब भी मोटे अनाज को रेगुलर रूप में, मतलब डे टू डे डाइट में हम इंक्लूड करते थे, और अब ये जो एक अश्री अन्न करके प्रधानमंत्री जी ने मोटे अनाज को फिर से एक सम्मान दिया है और उसको सेंटर में लाया है, उसका सबसे मुख्य कारण ये है कि ये बहुत कम पानी में और बहुत कम उपजाऊ जमीन पर भी उग जाते हैं, और जैसे आपने कहा कि अगर पैसे की कमी है तो भी ये परिवार में अवेलेबल रहते हैं, और इनमें कई पोषक तत्व काफी अधिक मात्रा में मिलते हैं, जैसे कि रागी जो है वो कैल्शियम और बाजरा जो है वो आयरन में भरपूर मात्रा में इनमें मिलता है। तो इसी तरह के अलग अलग क्षेत्रों में पाए जाने वाले, जिन्हें हम मिलेट्स आम भाषा में कहते हैं, वो अगर हम इंक्लूड करेंगे बच्चों के खाने में, गर्भवती महिलाओं के और पूरे परिवार के खाने में, तो ये हमारे कई पोषक तत्व, खास करके माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, फाइबर और इनसे इनफैक्ट नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज, जो बाद में ओवरवेट, ओबेसिटी, डायबिटीज और ऐसी बीमारियां भी होती है, उनसे भी बचाव मिलेगा। तो छोटे छोटे किसानों के द्वारा उगाकर और लोकल प्रोक्योरमेंट के जरिए, जो सरकार जैसे खासकर यूपी में और कई जगह और इसको इंक्लूड करने की बात कर रही है, ये एक डबल कह सकते हैं कि स्ट्रेटजी है, जिसमें कि किसान अपनी छोटी जमीन पर इसको उगा भी सकते हैं, ये सस्टेनेबल होते हैं क्योंकि ये कम पानी में उगते हैं और हार्श कंडीशंस में भी ये उग सकते हैं, और इनको लोकल प्रोड्यूस की तरह इस्तेमाल करने से हम जो खाना दे रहे हैं अभी, जो इनफैक्ट जो हम खाना दे रहे हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा को कम करके ये अधिक पोषक तत्व वाले को देने से हमें पोषण लाभ भी मिलेगा और ये ओवरऑल इकोनॉमी के लिए भी अच्छा रहेगा।
5: डॉक्टर अनु, अगर आपसे हम समझने की कोशिश करें कि शुरुआती 6 महीने तक केवल स्तनपान न कराने के पीछे आप किस तरीके का डर देखती हैं या सामाजिक बाधाएं देखती हैं, और अगर स्तनपान के दर को बढ़ाया गया तो नवजात मृत्यु दर को घटाने में क्या भूमिका हो सकती है।
7: तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर माँ अवेयर है, बच्चे को एक घंटे में माँ दूध पिला सकती है, माँ को उठने की भी जरूरत नहीं है, माँ लेटे लेटे बच्चे को दूध पिला सकती है, एंड जो रुकावट है ना वो मानसिक ज्यादा है रादर देन एक्चुअल प्रॉब्लम। तो सिजेरियन के बाद जो डिलीवरी होती है, जैसे सपोज हम माने कि 20-30% सिजेरियन डिलीवरी है, तो मेरे को नहीं लगता कि इनमें से कोई भी अपना ब्रेस्ट फीड कर रहे हैं, तो वो आंकड़े वैसे ही कम हो गए। दूसरी चीज ये कि दादी और नानी एंड जो घर के बड़े हैं उनको बहुत प्रॉब्लम है कि जो कोलोस्ट्रम माँ का पहला दूध जो बच्चों को देते हैं वो उसको नहीं पिलाने देती है, वो बच्चा ले जाती है, वो चाय

0: पिलाएंगी, घुट्टी पिलाएंगी, वो पारिवारिक हनी जो होता है, शहद पिलाना है, क्योंकि रस्में पूरे करना ज्यादा जरूरी है। हमें ये मानना पड़ेगा, हमें थोड़ा सा ना निकलना पड़ेगा, हमें थोड़ा एजुकेशन और इन सब चीजों से मदर को अवेयर करना पड़ेगा। और फीमेल एम्पावरमेंट की जो आप बात कर रहे हैं ना, कि अगर माँ ठीक नहीं है, अगर बच्चे का पोषण ठीक नहीं है, तो आगे जाके दिमागी जो कैपेसिटी है बच्चे की वो तो डेफिनेटली कम होगी। अगर बच्चे को पहले 2 साल में आयरन की कमी है, जिंक की कमी है, थायराइड की कमी है, कोई भी बीमारी है, कोई भी न्यूट्रिशनली भी रिलेटेड कुछ डेफिशिएंसीज है, जैसे B12 डेफिशिएंसी है, उसका बहुत ज्यादा दिमाग पे बच्चे के असर पड़ता है। एंड आगे जाके जैसे नीना मैम ने बोला कि आगे जाके उनकी अर्निंग कैपेसिटी, उनकी इकोनॉमिकल वायबिलिटी, ये सारा प्रॉब्लम होता है। तो ये जो ब्रेस्ट फीड ना करने की प्रॉब्लम है ना, वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। एक और चीज मैं बोलना चाहूंगी कि सिर्फ फैमिली वाले नहीं है, इवन डॉक्टर्स भी माँ को बोल देते हैं कि नहीं तुम अपना दूध मत पिलाओ। तो हमें अपने डॉक्टर्स को भी थोड़ा जागरूक करना पड़ेगा कि वो माँ को ऐसे स्टेटमेंट्स ना दें कि तुम्हारे दूध से कुछ प्रॉब्लम हो रही है। तो माँ की जो मिसकंसेप्शन है, इसको हटाना बहुत जरूरी है। और अगर हम न्यूट्रिशन ठीक रखेंगे, तभी हमारे बच्चे दिमागी तौर पे, फिजिकल तौर पे, बच्चे इकोनॉमिकली वायबल सिटीजन बनेंगे। और जिन बच्चों को पहले 2 साल में अगर खाना ठीक से नहीं मिलता है, आयरन की कमी होती है, वो बच्चों की IQ पॉइंट्स तो कम होते ही हैं। एक और चीज बोलना चाहूंगी, हम सारे माँ बाप हैं, हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों की IQ बहुत बढ़िया हो, NEET JEE निकालें, बच्चे बढ़िया बढ़िया कॉलेज में जाएं। अगर माँ अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड कराती है तो उसके IQ पॉइंट्स में 20-30% की बढ़त हो सकती है। तो बहुत जरूरी है कि माएं अपने बच्चे को अपना दूध पिलाएं, क्योंकि वो दिमागी डेवलपमेंट के लिए बहुत बहुत बहुत जरूरी है।
1: जी हाँ, उम्मीद करते हैं कि जितने भी श्रोता ये कार्यक्रम सुन रहे होंगे और उनमें बहुत सारी संख्या महिलाओं की भी होंगी, तो डॉक्टर अनु जो सलाह दे रही हैं उस पर आप जरूर गौर कर रही होंगी। डॉक्टर भाटिया, आपसे समझने की कोशिश करेंगे कि जो पोषण ट्रैकर ऐप है उस पर 10 करोड़ से अधिक लाभार्थियों का रियल टाइम डेटा पंजीकृत है। सवाल उसी से जुड़ा है, नीति निर्धारण के स्तर पर इस विशाल डेटा का उपयोग जरूरत से ज्यादा कुपोषित बच्चों की पहचान करने और टारगेटेड फूड डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजी बनाने में कितना प्रभावी सिद्ध हो रहा है?
2: ये जो पोषण ट्रैकर अभी 2021 से लॉन्च किया है गवर्नमेंट ने, ये एक बिल्कुल रियल टाइम डेटा प्रोवाइड कर रहा है। और इससे जो पहले आंगनवाड़ी वर्कर को वजन लेना था, फिर उसको प्लॉट करना है, फिर वो डेटा कंपाइल होगा, वो सारा टाइम लैग रिड्यूस होकर एक बहुत इजीली उसको जो अति कुपोषित बच्चे हैं, जिन्हें हम सैम और मैम बच्चे कहते हैं, उनकी आइडेंटिफिकेशन, उनको पहचानने में बहुत ही मदद होती है। और उन तक जो अतिरिक्त राशन पहुंचाने की प्रक्रिया है उसमें भी इससे बहुत मदद हो रही है। और इनफैक्ट जो इतना सारा डेटा है, जिसमें हम सिर्फ ना कि बच्चों को चिन्हित कर सकते हैं, मगर उनकी होम विजिट, उनकी और एक्स्ट्रा केयर के लिए भी प्रयास किया जा रहा है। अभी होम विजिट्स में और इनकी ग्रोथ के साथ साथ उनकी डेवलपमेंट के लिए 34 इंडिकेटर्स को पहचाना गया है और उस पर ट्रेनिंग हो रही है। तो ये एक जो टूल है प्लानिंग के लिए, आंगनवाड़ी वर्कर के काम के लिए, और आपस में जो आशा और ANM वगैरह से मिलके काम करने के लिए इन एप्स को आगे और विकसित किया जा रहा है। सो मैं ये सोचती हूँ कि ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है, जिससे हम हर बच्चे को, पहले अभी तक हम बात करते हैं कि इतना कुपोषण है, इतने परसेंट है, मगर यहाँ हम हर एक को एक इंडिविजुअल की तरह ट्रैक कर सकते हैं, उसकी ग्रोथ को देख सकते हैं और उसकी वजन और उसकी हाइट और ग्रोथ में जो भी उतार चढ़ाव आ रहे हैं उनके हिसाब से एक एक बच्चे के लिए इंडिविजुअली एक्शन लिया जा सकता है।
1: डॉक्टर अनु, जो बच्चे गंभीर रूप से कुपोषित होते हैं और उनका इलाज भी किया जाता है, पोषण पुनर्वास केंद्रों की भूमिका इसमें अहम होती है। अब सवाल ये उठता है कि जब बच्चे का इलाज घर पर एम्बुलेटरी केयर के तहत होता है या फिर रेडी टू यूज थेरेपेटिक फूड यानी RUTF से किया जा रहा है, तो माता पिता को बच्चे के खान पान, दवा और देखभाल को लेकर किन जरूरी सावधानियों का ध्यान रखना चाहिए?
0: एक्चुअली जो न्यूट्रिशनल रिहैबिलिटेशन सेंटर है हमारे भी अस्पताल में NRC, अगर आप वहाँ पे देखेंगे ना, तो इन बच्चों की इतनी अच्छी केयर होती है। नॉट ओनली खाना खिलाना, बच्चा सिर्फ खाने से नहीं बढ़ता है, बच्चा बढ़ता है प्यार से, उसको अच्छे तरीके से पेरेंटिंग हो, उसका प्ले थेरेपी हो, एज अप्रोप्रिएट. इनफैक्ट हमारी सरकार ने एक मदर एंड चाइल्ड हेल्थ कार्ड MCP कार्ड बनाया है, एक नया है ना, वो इतना सुंदर डॉक्यूमेंट है, वो इतनी बढ़िया चीज है. एज ए पीडियाट्रिशियन मैं चाहूंगी कि जो भी माएं हैं जो मुझे सुन रही हैं और मुझे आपने अपॉर्चुनिटी दी माओं से बात करने के लिए, वो MCP कार्ड ना आप पूरा पढ़िए. हिंदी में इतना बढ़िया दिया हुआ है ना, कौन सा बच्चा किस उम्र पे क्या करना चाहिए, और अगर आपका बच्चा नहीं कर रहा तो आप क्या कर सकते हैं उस बच्चे के लिए. तो एक तो वो जो रिहैबिलिटेशन है वो कंप्लीट होती है, साइकोलॉजिकल, मेंटल, फिजिकल, इमोशनल एंड फीडिंग ऑल्सो. जो RUTF की हम जो हम बात कर रहे हैं ना, इट्स जस्ट अ न्यूट्रिशनली डेंस, मतलब जिसमें बहुत सारी एनर्जी है. मुझे याद है कि जब हम इंटर्नशिप करते थे, मैं एम्स से पढ़ी हूँ, नई दिल्ली से, हम बल्लभगढ़ में अपनी इंटर्नशिप करने जाते थे, तो वहाँ पे एक बल्लभगढ़ मिक्स करके हम इन बच्चों को बांटते थे पीडियाट्रिक OPD के बाहर, जो छतरी के नीचे लगता था. तो वो क्या होता था, वो बेसन, मूंगफली, सूजी और बहुत सारा उसमें घी होता था और थोड़े से ड्राई फ्रूट्स होते थे, और उसका ना हलवा टाइप का बना के हम बांटते थे. तो RUTF भी वैसे गाढ़ा खाना है जो रेडी टू यूज है. रेडी टू यूज का मतलब है कि वो आप खरीदिए और खिला सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि RUTF दे के काम आपका खत्म हो गया. RUTF एक सप्लीमेंट है, मतलब वो कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं पूरी डाइट को. आपको रोटी, सब्जी, दाल, फ्रूट, डेयरी प्रोडक्ट्स, अंडा, मांस, मच्छी अगर आप खाते हैं और आपके परिवार में बनता है, आपको वो पूरी डाइवर्सिटी से खाना खिलाना है. और RUTF बहुत गाढ़ा होता है, तो आपको ना उसके साथ बच्चे को इंश्योर करना पड़ेगा कि उसको पानी अच्छे से मिले, और बच्चे का वजन एक डॉक्टर या आंगनबाड़ी वर्कर या जहां भी पीडियाट्रिक OPD होती है, PHC के मेडिकल ऑफिसर होते हैं, उनके मॉनिटरिंग में होना चाहिए. जो भी जैसे पोषण ऐप मैम ने बोला कि रियल टाइम हम वेट करते हैं, तो वो संतुलित आहार का पार्ट हम बना सकते हैं RUTF का. बट अगर RUTF नहीं हम ला पा रहे, या महंगा पड़ रहा है या नहीं मिल पा रहा है, तो आप ये जो अच्छी चीजें जो हमारे हिंदुस्तानी डाइट में, जैसे पिन्नी है, पंजीरी है, जैसे मैंने बल्लभगढ़ मिक्स बताया, तो अलग अलग PHCs अपना खुद का भी इस तरीके का खाना बना के बच्चों में, ये कुपोषित बच्चे हैं उनको आप दे सकते हैं. क्योंकि मैं ये नहीं बोल सकती कि आप जैसे साउथ में चावल की ज्यादा चीजें बनती हैं, नॉर्थ में वीट की ज्यादा चीजें बनती हैं, सेंट्रल इंडिया में हम मिलेट्स विलेट्स ज्यादा खाते हैं. तो जो भी आपके एरिया का ग्रेन है उसी से आप इनोवेशंस करिए, हलवा बनाइए, लड्डू बनाइए, खीर बनाइए, जो भी है आपको बैलेंस करके खिलाना है. और चीनी या नमक का अमाउंट थोड़ा सा बच्चों में ध्यान रखना चाहिए. बाकी तो RUTF इट्स एन ऑप्शन, बट इट इज नॉट दी ओनली ऑप्शन. सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ RUTF ही करना है, लेकिन RUTF है तो बहुत अच्छी बात है. अगर नहीं है तो ऐसा नहीं है कि उसके बिना नहीं हो पाएगा. तो उसका थोड़ा ध्यान रखना है कि वो रिच होता है थोड़ा, तो पानी ठीक से देना है, न्यूट्रिशनली बैलेंस मील करके देना है, उस तरीके से.
1: जी बिल्कुल. पहले पोषण माह से लेकर अब तक 60 करोड़ से अधिक पोषण गतिविधियों का आयोजन किया जा चुका है. डॉक्टर भाटिया, एक एकेडमिक और पोषण विशेषज्ञ के रूप में आप इस जन आंदोलन को लोगों की आदतों में स्थायी व्यवहार परिवर्तन में बदलने के लिए क्या ठोस रणनीतियां देखती हैं? क्योंकि जब तक हम किसी के व्यवहार में परिवर्तन नहीं देखेंगे, तब तक ऐसा लगता है कि कोई भी आंदोलन पूर्ण रूप से अपने लक्ष्य को हासिल नहीं कर सकता है.
2: जी, ये आपने बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय को हाईलाइट किया है. जन आंदोलन पोषण अभियान की एक मेन स्ट्रेटजी में से है, जो कि 2018 में लॉन्च हुआ. और जैसा आपने कहा कि अब हम 9वां पोषण माह आज से शुरू हुआ है और हम इसको मना रहे हैं. इसका रोल पोषण माह और पोषण पखवाड़ा जो हम मनाते हैं हर वर्ष, और इतनी 60 करोड़ एक्टिविटीज करी गई है इसके तहत, तो ये एक न्यूट्रिशन के बारे में जागरूकता और सभी की इन्वॉल्वमेंट का काम करता है. पर स्थायी रूप से डाइट और फूड हैबिट्स को चेंज करने के लिए, जैसे हमें 1-on-1 या काउंसलिंग की जरूरत है, या एक जो हमें चेंज लाना है उसमें सभी डॉक्टर, आंगनवाड़ी वर्कर, टीचर, सभी की रोल है. और जैसा अभी अनु मैम भी बता रही थी कि NRC में अगर बच्चे हैं तो वहां पे मदर की काउंसलिंग की जाती है, उनको सिखाया जाता है बच्चे को कैसे खिलाना है. और अभी जो हमारे ये होम बेस्ड केयर के प्रोग्राम्स हैं यंग चिल्ड्रन के लिए, उनमें भी होम विजिट्स करती हैं आशा और आंगनवाड़ी वर्कर, जो हर महीने VSSND डेज मनाए जाते हैं. तो इनके थ्रू हमें बहुत ज्यादा जागरूकता पैदा करने की जरूरत औरत है, जिसमें हम जो एक गर्भवती महिला है, जो एक स्तनपान कराने वाली महिला है और खासकर बच्चे, और जो एक पहले 1000 दिन की जब बात होती है तो उसमें पहले 2 साल के बच्चे इंक्लूडेड है प्रेगनेंसी के बाद, तो हमें एक तो एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग की हमने ऑलरेडी मैम ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके बात की है, और उसके बाद जो हम

0: खाने को देना है, ऐसे ही प्रेगनेंसी में बहुत ज्यादा भी नहीं देना है, मगर पोषण युक्त आहार देना है, प्रोटीन युक्त आहार देना है, जिसमें कि मोटा अनाज शामिल किया जा सकता है, लोकल वेजिटेबल्स एंड फ्रूट शामिल किए जा सकते हैं। तो उसके साथ जब हम कंबाइन करके ये जन आंदोलन को और पोषण माह को देखेंगे, तो ये एक सटीक स्ट्रेटजी हो सकती है बिहेवियर चेंज लाने के लिए।
1: जी बिल्कुल, बच्चों में जिंक, विटामिन ए और आयरन की कमी से उनके इम्यून सिस्टम और कॉग्निटिव डेवलपमेंट पर बुरा असर पड़ता है। डॉक्टर अनु, एक बाल रोग विशेषज्ञ के रूप में आप बार बार होने वाले संक्रमणों जैसे निमोनिया, डायरिया और पोषण की कमी के बीच के दुष्चक्र को कैसे देखती हैं?
2: बिल्कुल, बहुत ही अच्छा सवाल है आनंद जी। एक्चुअली ये सवाल ना मेरे दिल के बहुत करीब भी है, क्योंकि मैं बाल रोग विशेषज्ञ तो है लेकिन मेरी स्पेशलिटी है इम्यूनोलॉजी एंड रूमेटोलॉजी। तो हम बहुत सारे ऐसे बच्चे देखते हैं जिनको इम्यूनिटी की प्रॉब्लम होती है, जिसकी वजह से इनको बार बार इन्फेक्शन होते हैं। वो बच्चे दूसरे होते हैं जिनको प्राइमरी इम्यूनोडेफिशिएंसीज होती हैं, लेकिन ये वाले जो बच्चे जिनकी हम बात कर रहे हैं, जिनको इम्यूनिटी की कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन कुपोषण होने के कारण एंड इनकी जो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज है, स्पेशली जिंक, आपको याद होगा कि 20 साल पहले हम लोग जिंक नहीं देते थे डायरिया के साथ, है ना। जब मैं एमडी कर रही थी तभी इसकी गाइडलाइन आई थी, मुझे याद है कि जिंक देना है हमें डायरिया के साथ। जिंक एक ऐसा न्यूट्रिएंट है जो इम्यूनिटी के बहुत सेंट्रल रोल प्ले करता है, और विटामिन ए भी जो है वो भी एक सेंट्रल रोल प्ले करता है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी में। और जो हमारे गट है, जो गट की लाइनिंग है, जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की लाइनिंग है ना, जो फर्स्ट डिफेंस है इन्फेक्शन के लिए, तो अगर हम विटामिन ए और जिंक की कमी हो जाएगी तो इन्फेक्शन तो होंगे ही, एंड जब बच्चे को इन्फेक्शन होंगे तो बच्चा पनप नहीं पाएगा, एंड अगर बच्चा पनपेगा नहीं तो बच्चा खेलेगा नहीं, इंटरैक्ट नहीं करेगा, स्कूल मिस करेगा। तो बार बार इन्फेक्शन होने से फिजियोलॉजिकली तो प्रॉब्लम है ही कि बच्चे का ब्रेन डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, बच्चे का सोशल इमोशनल डेवलपमेंट भी तो नहीं होता है। तो ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं, आयरन हो गया, जो कि हम अब आजकल एचबी भी चेक करते हैं, इंडियन पीडियाट्रिक्स ने अपनी कुछ गाइडलाइन दी है कि बच्चे जब कुछ कुछ एज पे आए तो हमें उनका हीमोग्लोबिन चेक करना है, उनको आयरन सप्लीमेंट करना है, ये सारी चीजें करनी है। तो ये बहुत ही जरूरी न्यूट्रिएंट्स हैं, क्योंकि ये सेंट्रल रोल प्ले करते हैं बच्चे की ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए, साइकोलॉजिकल, कॉग्निटिव, इमोशनल डेवलपमेंट के लिए। तो ये बहुत ही जरूरी है कि अगर कोई बच्चा इसमें फंस रहा है, और ये बच्चे जनरली सैम और मैम वाले, जैसे मैडम बता रहे थे, ये सैम और मैम वाले बच्चे हैं, ये फंस जाते हैं, एक विशेष सर्कल हो जाता है। बीमार बच्चा मैल न्यूरिस्ट हुआ, बिकॉज मैल न्यूरिस्ट हुआ उसको फिर इन्फेक्शन हुआ, फिर वो इन्फेक्शन की वजह से और मैल न्यूरिस्ट हुआ। ये वर्लपूल में बच्चा जो फंस जाता है ना, उससे बच्चों को निकालना बहुत ही दिक्कत होती है। एंड इससे बेटर ये है कि हम पहले ही माँ को हेल्दी रखें, गर्भावस्था में ध्यान रखें, पहले 6 महीने में बच्चे को दूध पिलाएं माँ का, उसके बाद ठीक से खाना शुरू करें। अगर हम इन 3-4 चीजों के स्टेप्स पे ही अगर हम फोकस करें तो हम बहुत सारी चीजें अचीव कर सकते हैं, बिना बहुत ज्यादा खर्चा करे हुए या बहुत फैंसी इंटरवेंशन नहीं चाहिए हमें। बेसिक चीजें करने से बहुत बड़े चेंजेस आ सकते हैं। तो बेसिकली इन्फेक्शन प्रिवेंट करना बहुत ही जरूरी है। लेकिन अगर ये सब करने के बाद भी आपके बच्चे को बार बार इन्फेक्शन हो रहा है, तो प्लीज एक एमडी डॉक्टर को, एमडी पीडियाट्रिशियन को जरूर जाके दिखाइए कि कहीं आपके बच्चे को कोई इम्यूनिटी की दिक्कत तो नहीं है।
1: जी डॉक्टर भाटिया, एनीमिया मुक्त भारत रणनीति के तहत फोर्टिफाइड चावल का वितरण एक बड़ा कदम रहा है, लेकिन दूसरा पहलू ये भी है कि इसके सुरक्षित उपयोग और आम जनता के बीच जो इसको लेकर मिसकंसेप्शन है, भ्रांतियां हैं, उसको दूर करने के लिए भी कई प्रयास किए जा रहे हैं। विश्वविद्यालय स्तर और शोध संस्थानों को किस तरीके से आगे आने की जरूरत है, कितना काम किया जा चुका है और आगे की क्या कार्य योजना चल रही है इस पर?
0: इस पर मैं ये बताना चाहूंगी कि जो फोर्टिफाइड राइस है, इसको लेकर बहुत सी भ्रांतियां हैं लोगों में, और उसको कुकिंग कैसे ठीक से करनी है, पानी को नहीं फेंकना है जिसमें हम चावल को कुक कर रहे हैं, जो मांड अलग कर देते हैं चावल पकाते समय, उस तरह की जानकारी नहीं है। और कई बार उन लोगों को ये भी लगता है कि ये प्लास्टिक का चावल है, ये एक मिलावट है, ये क्यों दी जा रही है, इसके हार्मफुल इफेक्ट्स हैं। तो इन सब चीजों को लेकर कई विश्वविद्यालयों में इस पर रिसर्च हुआ और जाना गया कि सिर्फ 20-30% महिलाओं और लाभार्थियों को ही इसके बारे में पता भी है, और इसको कैसे ठीक से इस्तेमाल करना है वो नंबर तो और भी कम है, हार्डली 5-10% के बीच में है। तो

0: इसके ऊपर एक काम करने की, इसकी डेमोन्स्ट्रेशन करने की और इसकी भ्रांतियों को दूर करने की बहुत आवश्यकता है, जिससे कि इसकी एक्सेप्टेबिलिटी को बढ़ाया जा सके। और उसके अलावा जब जिन लाभार्थियों को मिले, जरूरी है कि वो इसको ठीक से पकाकर ठीक से इसका सेवन कर सके, ना कि उसको निकाल दें जो चावल को चुनते समय या पानी को फेंक दें, जिससे कि जो उसमें आयरन है उसका अवशोषण ठीक से नहीं होगा। पूरा पर्पस फोर्टिफिकेशन का डिफीट हो जाएगा अगर हम आयरन को कुकिंग में लूज करेंगे। इसके ऊपर विश्वविद्यालय काफी एक महत्वपूर्ण भूमिका कर सकते हैं, इसके बारे में डेमोस और भ्रांतियों को दूर करने के लिए जनता में जानकारी देने के थ्रू।
1: जितने भी माताएं आपको इस समय सुन रही हैं या जो परिवार इस कार्यक्रम के जरिए आपकी बातों को समझ रहा है, क्या संदेश देंगी पोषण माह को लेकर, बच्चों के विकास को लेकर, और माताएं खुद अपना ध्यान कैसे रखें, बहुत संक्षेप में?
2: पहली बात तो ये, जैसे मैडम ने बोला, भ्रांतियों को दूर करना बहुत जरूरी है। और जो भी आपके मन में शंका होती है, आप डॉक्टर के पास जाइए, पढ़िए। किताब पढ़ने से ना बहुत नॉलेज आता है। मुझे लगता है कि हमारी जो माए हैं, जो यंग मदर्स हैं, वो ना कई बार बोल नहीं पाती हैं परिवार में। मेरे को लगता है कि बहुत जरूरी है कि हम अपनी लड़कियों को, जो हमारी डॉटर्स हैं, जो यंग मदर्स हैं, उनको आवाज दें। एंड उनकी जो आवाज है वो परिवार तक पहुंचे, वो बहुत जरूरी है। कई बार माओ को लगता है कि हाँ उनको पता है ये उनको करना है, लेकिन वो डर जाते हैं बिकॉज इकोनॉमिकली वो इंडिपेंडेंट नहीं है। उनको बोलने में भी लगता है कि अगर हमने बोल दिया तो हमारी सास क्या सोचेगी, या हमारी मम्मी क्या सोचेगी, हमारे पापा क्या सोचेंगे। तो पहले तो हम, ये जो यंग मदर्स है, मैं कहना चाहूंगी आप प्लीज किताब पढ़िए, कि जो आपको भाषा समझ में आती है, हिंदी, बांग्ला, गुजराती, वट एवर, वो जरूर पढ़िए। न्यूट्रिशन पे पढ़िए, थोड़ा बहुत पढ़िए। अगर आपको जरूरत है तो मदद लीजिए। आजकल तो यूट्यूब पे इतने सोर्सेस हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ICMR की गाइडलाइंस है कि हमें क्या खाना चाहिए, कैसे हमारा थाली बननी चाहिए, आधा फल सब्जियां होना चाहिए, दाल कितनी होनी चाहिए। पढ़ के एक तो एजुकेट करना ये यंग लड़कियों को बहुत जरूरी है। अगर हम उनको एम्पावर करेंगे ना आनंद जी, उसके बाद तो सब कुछ
1: बिल्कुल
2: पजल
1: ठीक
2: की
1: कह रही
2: तरह
1: हैं।
2: फिट हो जाएगा।
1: आज की चर्चा हमें यही याद दिलाती है कि एक पौष्टिक निवाला सिर्फ भूख नहीं मिटाता, वो किसी बच्चे को ताकत देता है, किसी माँ का भरोसा बनता है और किसी परिवार के बेहतर भविष्य की नींव रखता है। इसलिए पोषण की जिम्मेदारी सिर्फ सरकार की नहीं, सिर्फ एक विभाग की नहीं, ये जिम्मेदारी हम सब की है। क्योंकि एक पोषित बच्चा एक मजबूत पीढ़ी है, एक स्वस्थ परिवार एक सशक्त समाज है, और एक पोषित भारत एक समृद्ध भारत है। इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए और अपने विचार आकाशवाणी के श्रोताओं के साथ साझा करने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत आभार।
2: थैंक यू आनंद जी,
0: धन्यवाद।
3: अभी आप सुन रहे थे संपूर्ण विकास के महत्व को दर्शाता पोषण माह पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे थे बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अनु माहेश्वरी और दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर नीना भाटिया कौल। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे आनंद श्रीवास्तव। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
4: चर्चा का विषय है।

अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के रांची केंद्र के कार्यक्रम। हम आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से बोल रहे हैं एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज पे। और अब हमारे केंद्र से हम प्रसारित कर रहे हैं गजलों का कार्यक्रम महफिल। पहली गजल मनहर उदास की आवाज़ में।

0: इस तरह मोहब्बत की शुरुआत कीजिए। ये गज़ल अभी आप सुन रहे थे चंदन दास की आवाज़ में। और अब अगली गज़ल सुनने से पहले आइए सुनते हैं ये संदेश।
1: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
2: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
1: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
2: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
1: डायल कीजिए 8700014242।
2: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
0: इस विराम के बाद पुनः एक बार स्वागत है कार्यक्रम महफिल में। और अब कार्यक्रम के आखिर में हम आपको सुनवा रहे हैं आशा भोसले और गुलाम अली की आवाज़ में ये गज़ल।

आशा भोसले और गुलाम अली की स्वर में गाई इस गज़ल के साथ ही श्रोताओं, कार्यक्रम महफिल अब हम यहीं पे समाप्त करते हैं।

हम आकाशवाणी के चायवासा केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 10:30 हो रहे हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुरों के रंग। इस कार्यक्रम में सबसे पहले हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म सफ़र का गीत। मुकेश की आवाज़ है, इंदिवर के बोल हैं और संगीत दिया है कल्याण जी आनंद जी ने।

0: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए 8700014242।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
2: और अब इस कार्यक्रम का ये अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं। फिल्म हंसते जख्म से हमने लिया है, लता मंगेशकर की आवाज़ है, कैफी आजमी के बोल हैं और संगीत दिया है मदन मोहन ने।

आदमी, इस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। शकील बदायूनी की रचना थी, संगीत दिया था नौशाद ने। आप सुन रहे हैं श्रोताओं आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुरों के रंग, मेरे हम सफ़र। इस फिल्म का गीत अभी हम आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर के स्वर में। आनंद बख्शी की रचना है, संगीत दिया है कल्याण जी आनंद जी ने।

0: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए 8700014242।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
2: और अब मुकेश की आवाज़ में फिल्म मंदनी का ये गीत हम आपको सुनवा रहे हैं। शैलेंद्र की रचना है, संगीत दिया है ST बर्मन ने।

फिल्म आरजू का गीत अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर के स्वर में। इसी के साथ कार्यक्रम शुरू के रंग से राधा की दीजिए इजाजत, नमस्कार। हम आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से बोल रहे हैं। कुछ ही पलों में आप आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से सुनेंगे क्रमशः हिंदी और अंग्रेजी में समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आशुतोष मिश्र। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रेल संपर्क बढ़ाने के लिए 9 राज्यों में 20,800 करोड़ रुपए से अधिक की 8 रेलवे मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी। नई दिल्ली में आज मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि ये परियोजनाएं पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के 14 जिलों में हैं। इससे भारतीय रेलवे के मौजूदा नेटवर्क में लगभग 656 किलोमीटर की वृद्धि होगी।
1: खड़गपुर से लेके उड़ीसा में झारसुगुड़ा तक का एक पूरा प्रोजेक्ट है, जहाँ पे फोर्थ लाइन बन। ये लाइन बन जाने से बहुत बड़ा जो कंजेशन होता है इस एरिया में वो खत्म होगा, कई नई गाड़ियां चला पाएंगे और जो ट्रैफिक की सीरियस प्रॉब्लम्स आती थी वो सारी प्रॉब्लम्स इससे सॉल्व होती। तो इस प्रोजेक्ट को हम जल्दी से जल्दी आगे बढ़ाए। इसके सारे डिटेल्स है प्रोजेक्ट के, 367 किलोमीटर, 6,528 करोड़ रुपीज का और एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स को जोड़ने वाला प्रोजेक्ट है।
0: मंत्रिमंडल ने तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना के 17 जिलों में 5 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को भी मंजूरी दी। इससे भारतीय रेलवे के मौजूदा नेटवर्क में 540 किलोमीटर की वृद्धि होगी। इन परियोजनाओं की अनुमानित लागत 10,021 करोड़ रुपए से अधिक है। इन्हें वर्ष 2029-30 तक पूरा करने की योजना है। श्री वैष्णव ने बताया कि सरकार ने सभी 7 भीड़ भाड़ वाले रेलवे कॉरिडोर को 4 लेन वाला बनाने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मंत्रिमंडल के आज के फैसले से यात्रियों की आवाजाही तेज होगी, रेल संपर्क बेहतर होगा और माल ढुलाई की क्षमता बढ़ेगी। श्री मोदी ने बताया कि ये 5 रेलवे परियोजनाएं दक्षिण भारत में बेहतर रेल संपर्क को बढ़ावा देंगी और इससे लाखों लोगों को लाभ होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज कोलंबो में श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुर कुमार दिसानायके से मुलाकात कर भारत श्रीलंका के बीच बहुआयामी साझेदारी पर चर्चा की। दोनों पक्षों ने श्रीलंकाई वायुसेना के लिए L-70 तोपों में सुधार और दोनों देशों के राष्ट्रीय कैडेट कोर तथा राष्ट्रीय रक्षा महाविद्यालयों के बीच सहयोग पर समझौता ज्ञापनों का भी आदान प्रदान किया। भारतीय रक्षा बलों द्वारा निर्मित 3 बेली पुलों का भी वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया गया। बैठक के दौरान राष्ट्रपति दिसानायके ने कहा कि श्रीलंका कभी भी अपनी धरती का इस्तेमाल भारत के सुरक्षा हितों के खिलाफ किसी भी गतिविधि के लिए नहीं होने देगा। रक्षा मंत्री ने श्रीलंका की प्रधानमंत्री हरिणी अमरासुरिया से भी मुलाकात कर विकास सहयोग, शिक्षा तथा भारत श्रीलंका के बीच सांस्कृतिक और सभ्यतागत संबंधों से जुड़े मुद्दों पर विचार विमर्श किया। भारत ने सऊदी अरब में हूती विद्रोहियों के कथित हमलों की निंदा की है। भारत ने आम नागरिकों और आर्थिक ठिकानों को निशाना बनाए जाने पर चिंता व्यक्त की है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि ऐसे हमले क्षेत्र की सुरक्षा और स्थिरता के लिए खतरा हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे हमले अस्वीकार्य हैं और इससे बाब अल मंदेब जल डमरू मध्य में आवाजाही प्रभावित होती है। दिल्ली नगर निगम ने शहर के सभी 12 जोन में खतरनाक इमारतों, अवैध निर्माण और दिल्ली मास्टर प्लान व निर्माण नियमों के उल्लंघन के खिलाफ अपनी कार्रवाई तेज कर दी है। आज चलाए गए अभियान के तहत दिल्ली नगर निगम के सभी 12 जोन में 34 जगहों पर तोड़फोड़ की कार्रवाई की गई। इसके अलावा 17 प्रॉपर्टीज को सील किया गया, 22 कारण बताओ नोटिस जारी किए गए। राजधानी में पीजी इमारतों के एक बड़े सर्वे के तहत लगभग 1,243 ऐसी इमारतों की पहचान की गई है जहां पीजी की सुविधाएं चल रही हैं और जिनमें लगभग 24,000 लोग रह रहे हैं। यह सर्वे पूरी दिल्ली में जारी है, इसे कल तक पूरा करने के निर्देश हैं। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री जयंत चौधरी ने आज कहा कि जिला प्रशासन ही विकास, सुधार और परिवर्तन के असली इंजन है। श्री चौधरी ने यह बात महिलाओं के लिए सतत आजीविका निर्माण विषय पर आधारित कौशल मंथन के उद्घाटन सत्र को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा कि जिला आधारित योजना पद्धति के माध्यम से मंत्रालय यह सुनिश्चित कर रहा है कि कौशल विकास पहल स्थानीय जरूरतों से प्रेरित हो और उद्योग, विशेष रूप से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम की आवश्यकताओं के अनुरूप हों। अहमदाबाद में विश्व तीरंदाजी पैरा श्रृंखला का तीसरा चरण संपन्न हो गया। भारत ने 4 स्वर्ण, 3 रजत और 8 कांस्य सहित कुल 15 पदक जीते। प्रतियोगिता के अंतिम दिन आज भारत ने 2 स्वर्ण और 4 कांस्य पदक हासिल किए। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।